तिरुपुनेरी आवाज 107.10 पर आ रहा है एक अनोखा आध्यात्मिक सफर, आंतरिक दिव्यता का आह्वान। जानिए कैसे देवी दुर्गा और लक्ष्मी हमारे भीतर की शक्तियों का प्रतीक है, कैसे जागरण, व्रत और दीपक जलाना हमें आत्मा चेतना की ओर ले जाते हैं, और कैसे रास गरबा हमें सिखाते हैं। जीवन में सामंजस्य और सहयोग। नवरात्रि के नौ दिन रोज सुबह 11 बजे जुड़िए आरजे संजय के साथ सिर्फ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। आंतरिक दिव्यता का आह्वान।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे which will not be according to the way I want them to be. Aaj sara din, awareness and checking. Kaun zyada powerful hai? Baatein, situations or me? Kiska prabhav kis par padta hai? आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माय चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम भी भूल गए कि हम मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, इन कर्म इंद्रियों के हम मालिक हैं, हम राजा हैं, हम भूल गए। आज हम कहते हैं मुंह से निकल गया, हाथ उठ गया, आंखों से देख लिया, किसी का बुरा बोल दिया। मन तो सारा दिन चलता है, वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में तो कर्म इंद्रियों के भी गुलाम। ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, इसको हम कहते हैं सटल ऑर्गन्स, मन, बुद्धि, संस्कार। लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रियां, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन ऑर्गन्स ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबडी एल्स। इट्स लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, अपनी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन चाहते हैं कि बाकी सबकी गाड़ी मेरे हिसाब से चले। रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब गाड़ियों में भी जो बैठे हैं ना, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है। वो भी ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उनके हिसाब से चले। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन ऑन द रोड। जस्ट ओनली सी कि पांच गाड़ियां एक सड़क पर हैं, पांचों के ड्राइवर्स का अपनी अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खत्म हो चुका है। एंड पांचों चाहते हैं कि जो बाकी चार है गाड़ियां, वो उनके कंट्रोल से चले।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। सेल्फ मैनेजमेंट की इस पूरी श्रृंखला में खुद को मैनेज करते हुए जब खुद को एक नए अंदाज से देखा तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी सामने आई, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब देखा तो सबसे पहले अपने प्रति थी। और साथ ही हम बात कर चुके हैं रिलेशनशिप्स की। अब आगे बढ़ते हैं और रोल्स के बारे में जानते हैं कि कितने तरह के रोल्स हम हर रोज निभा रहे होते हैं और कैसे उनको मैनेज करना है। हमसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। अगर पीछे मुड़कर देखते हैं तो रिलेशनशिप्स भी समझ में आए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब समझ में आई, और सेल्फ के साथ रिश्ता कैसे जोड़ना है, खुद के प्रति जो जिम्मेवारी है वो। अब रोल की बारी आती है, तो क्या मैं अपने रोल्स को देखूंगा, किस तरह से मैं रोल्स को आगे मैनेज कर सकता हूँ।

0: मैनेजमेंट मीन्स कि एक अवेयरनेस के साथ अब जीवन जीना शुरू करें कि ये हर दिन जो बीत रहा है, हर दिन में जो हर पल बीत रहा है, इट इज लाइक अ सीन ऑफ द ड्रामा. एक सीन, नेक्स्ट सीन, नेक्स्ट सीन, सीन्स आफ्टर सीन्स आफ्टर सीन्स इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑल द टाइम पुट टुगेदर इन द होल डे. एंड हर सीन में व्हाट एम आई डूइंग? आई एम जस्ट प्लेइंग अ रोल. बिकॉज हमें समझ में आ गया कि आई एम द एक्टर एंड दिस इज माई रोल. लेकिन एम आई कॉन्शियस वाइल प्लेइंग द रोल?
1: आई थिंक नेवर. और एक यहां से मुझे एक और बात समझ में आ रही कि जैसे ही मेरी सिचुएशन चेंज होती है, मेरा रोल भी तो चेंज हो जाता है. कितनी बार, मतलब मैं पहले अगर हस्बैंड था, उसके बाद जब मैं फादर बना, सडनली देयर इज अ मेजर रोल चेंज, यू नो. और अगर मैं पहले बैचलर था और फिर मेरी शादी हुई, तो मेरे और कितने सबके साथ रिश्ते जो है वो चेंज, उसकी कॉन्शियसनेस तो कभी भी नहीं रही.
0: So one is all these roles that I play. लेकिन ये जो आपने नाम भी लिए कि मैं हस्बैंड था, मैं फादर हूँ, मैं कल को ग्रैंड फादर भी बनूंगा, ऑल दीज रोल्स दैट आई प्ले, इसमें भी आई प्ले रोल्स. जैसे रोल मीन्स कि हर सीन जो आए, उस सीन में मैंने कैसे इनैक्ट किया, दैट इज माई रोल इन दैट पर्टिक्युलर सीन. अब एक है अगर बिना सेल्फ अवेयरनेस के चल रहे हैं, कोई कॉन्शियसनेस नहीं है कि आई एम द एक्टर, तो हर सीन जो आती जाती है एंड एवरी रोल दैट आई प्ले, आई एम नॉट अवेयर कि मैं अपना रोल क्रिएट कर रहा हूं. आई फील कि मेरा रोल ये क्रिएट हो रहा है आपकी वजह से, सिचुएशन की वजह से. क्यों? इट कम्स बैक टू द बिगिनिंग ऑफ आर सीरीज कि जब हम कह रहे थे कि माई रिस्पॉन्सेस आर बेस्ड ऑन द सिचुएशन, या मेरा जो रिस्पॉन्स है वो परिस्थिति या लोगों पर बेस्ड है. इसका मतलब मैं जो अभी इनैक्ट कर रही हूं वो किस पर बेस्ड है?
1: क्योंकि जैसे सिचुएशन आती गई मैं उसे.
0: सो इट वॉज एज इफ सिचुएशन एंड लोग आर रिस्पॉन्सिबल, जिसके कारण आई एम प्लेइंग दिस रोल लाइक दिस.
1: ओके, दे आर इंस्टिगेटिंग मी टू बिहेव लाइक दिस और एक्ट लाइक दिस,
0: राइट? तो फिर हम समझते थे कि मेरा रोल ऑलरेडी फिक्स्ड है. हम ये कहते थे कि डेस्टिनी ऑलरेडी फिक्स्ड है, भाग्य मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, मैं तो सिर्फ उसको प्ले कर रहा हूं. नाउ इसमें फिर कोई क्रिएटिविटी नहीं चाहिए कि मेरा रोल ऑलरेडी फिक्स्ड है और ये तो मैं सिर्फ करता जा रहा हूं. ये मेरे हाथ में नहीं है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग.
1: दिस इज एक्सपेक्टेड ऑफ मी एज अ ग्रैंडफादर, एज अ फादर, दिस इज एक्सपेक्टेड ऑफ मी
0: एंड दिस इज फिक्स्ड एंड आई एम प्लेइंग इट लाइक दिस बिकॉज ऑफ यू. आई एम इनएक्टिंग दिस पर्टिकुलर सीन लाइक दिस बिकॉज ऑफ यू. जो भी मेरा अभी रिस्पॉन्स है, जो मेरा व्यवहार है, जो मेरा बात करने का तरीका है, इट इज बिकॉज ऑफ यू. तो इसलिए मेरे पास बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी नहीं थी कि अपने रोल को कैसे प्ले करना है, क्योंकि हमने सोचा डायरेक्टर कोई और है, क्रिएटर कोई और है, मैं तो सिर्फ एक एक्टर हूं और मैं वो जो किसी ने फिक्स किया हुआ मेरा रोल, मैं उसको प्ले कर रहा हूं. लेकिन जैसे जैसे हमें ये अवेयरनेस आती गई कि एवरी रिस्पॉन्स स्टार्ट्स विद माई थॉट, सिचुएशन आई, मैंने थॉट क्रिएट किया, तो जब ये फर्स्ट फंडामेंटल रिस्पॉन्स समझ में आया कि मेरी थॉट मेरी चॉइस है, इसका मतलब मेरा रोल मुझे कैसे प्ले करना है वो
1: मेरी अपनी चॉइस है,
0: मेरी चॉइस है. सो बेसिकली सेम लाइफ, सेम रिलेशनशिप, सेम सो कॉल्ड रोल्स, बट नाउ आई विल क्रिएट द रोल
1: The way I want
0: to do it.
1: But we always say the director is one.
0: Who's the director?
1: He's directing, you know.
0: Now again, we understood what's God's role. हमने पिछले एपिसोड में देखा कि परमात्मा का क्या रोल है हमारे जीवन में. जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं आज व्यवहार कर रहा हूँ, क्या उसको परमात्मा कंट्रोल कर रहा
1: है? नहीं, that is not there.
0: Yeah, that is not there. So I cannot say he is creating the role for me. He can give me the wisdom and the power, लेकिन who creates my role?
1: I create
0: my role. तो अगर मैं एक दिन भी इस अवेयरनेस के साथ चलूं कि सीन आफ्टर सीन आई नॉट ओनली प्ले द रोल बट आई क्रिएट द रोल,
1: आई क्रिएट द नेक्स्ट सिचुएशन, आई क्रिएट द एंड आई स्टार्ट एक्टिंग इट दैट वे, आई कैन एक्ट दिस वे, आई कैन एक्ट दिस वे.
0: सी ना, फिक्स्ड नहीं है. हर सिचुएशन में, कोई भी परिस्थिति में, आज आपसे किसी ने बुरा भला कह दिया, वो एक सीन है. You can act this way, you can act this way, you can. There will be at least five different ways जिसमें आप act कर सकते हैं. इसका मतलब as an actor आपका role fixed नहीं है, आपके पास choice है कि आप किस तरह से उसको enact करना चाहते हैं. आपकी script already

0: लिखी हुई नहीं है.
1: दिस इज अ वेरी बिग थिंग. ये बहुत बड़ी रियलाइजेशन हो जाती है. और उससे क्या होगा अगर हम उस अवेयरनेस से चलेंगे.
0: ओह इट्स सो ब्यूटीफुल. ओनली द सिचुएशन कम्स. अगर आप थिएटर में भी है, अगर मैं प्ले कर रही हूँ और मेरे पास प्री जो रिटन डायलॉग्स नहीं है, इट्स ओनली द सिचुएशन, देन हाउ आई हैंडल इट, इट्स माय चॉइस.
1: तो कितना क्रिएटिव हो जाएगा ये सारा.
0: इट्स अमेजिंग.
1: फिक्स्ड नहीं है कि आपने लाइन्स पूरी याद की हुई है, आपको सिर्फ बोलना है. नहीं, उसमें कोई अवेयरनेस नहीं चाहिए. वो तो एक ऑटोमेटिक जो याद किया हुआ बोल रहे हैं. लेकिन एक है सिचुएशन आई, आपने परिस्थिति को परसीव किया, अपनी क्रिएटिविटी को यूज किया कि इस सिचुएशन में मुझे कैसा रोल प्ले करना है, और उसको प्ले किया. अब वही सिचुएशन में डिफरेंट एक्टर्स विल प्ले डिफरेंटली,
0: बट आई कैन देन टेक द प्ले इनटू अ डिफरेंट डायरेक्शन.
1: एब्सोल्यूटली. एंड दैट इज व्हाई वी सेड यू क्रिएट योर डेस्टिनी. व्हेन वी सेइंग आप अपना भाग्य, अपनी डेस्टिनी खुद क्रिएट करते हैं, दैट मीन्स यू कैन टेक द प्ले
0: इनटू अ डिफरेंट डायरेक्शन, इनटू अ डिफरेंट, ओह कम्प्लीटली
1: कम्प्लीटली डिफरेंट बेस्ड ऑन हर सीन में आप क्या क्रिएटिविटी यूज करेंगे. अगर कोई अपनी क्रिएटिविटी को नहीं यूज कर रहा है तो दैट पर्सन इज वर्किंग इन अ वेरी ऑटोमेटेड मोड. वो आया, मैंने ऐसे बोल दिया. वो सीन आई, मैंने ऐसे कर दिया. उसने गुस्सा किया, मैंने कर दिया. उसने इंसल्ट की, मुझे बुरा फील हुआ. क्रिएटिविटी नहीं है, ऑटोमेटेड है. तो उसमें फिर जीवन कैसे हो जाएगी. इट बिकम्स बोरिंग. इट इज ऑटोमेटिक, अपने आप ही चल रहा है. मुझे कुछ बहुत ज्यादा उस पर सोचने की जरूरत नहीं है. लेकिन जिस दिन मैंने जीवन को इस तरह से देखना शुरू किया कि हर सीन में मेरा क्या रोल होने वाला है, मुझे कैसे रिएक्ट करना है, दैट्स टोटली माय चॉइस. माय होल वे ऑफ लुकिंग एट इट इज गोइंग टू चेंज.
0: इनफैक्ट इससे पता है क्या, एक बहुत बड़ी बात और क्या हो सकती है कि हमारा जो माइंड है, जो अभी ऑलरेडी जो जो चीजें मेरे साथ हो चुकी हैं, उन्हीं पे अपना टाइम वेस्ट करता रहता है कि मेरे साथ ऐसा हो गया, उसने ऐसा किया, उसकी बजाय विल बी नाउ वर्किंग कि मैं कैसे सिचुएशन
1: इन द प्रेजेंट.
0: यस.
1: इतनी सारी जो आज हम मैनेजमेंट वर्कशॉप सुनते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, व्हाट इज इट अबाउट, प्रेजेंट में कैसे जीतें, पास्ट और फ्यूचर को फिनिश करें. लेकिन प्रेजेंट में क्यों नहीं जी पा रहे, क्योंकि प्रेजेंट में क्रिएटिविटी की जरूरत ही नहीं है. ये ऑटोमेटिक मोड में चल रहा है. ये ऑटोमेटिक मोड में चल रहा है. आप देखो, जब एक लेट्स से कि हम एक रास्ते पर जाते हैं घर से ऑफिस, अब घर से ऑफिस रोज जाते हैं, घर से ऑफिस रोज जाते हैं, डू यू नो आफ्टर सम टाइम आप पूरा रास्ता कवर कर सकते हैं बिना कोई अवेयरनेस के. बिना मतलब आप बिल्कुल कुछ कुछ कुछ और सोचते सोचते आपको पता ही नहीं चलेगा आप एक घंटे में ऑफिस पहुंच गए, राइट. लेकिन एक नए रास्ते पर जाना है तो आप कितनी अवेयरनेस से चलते हैं. अच्छा, अब यहां जाना है या यहां जाना है, यहां जाना है, फिर यहां टर्न करना. आप रास्ते में चीजों को देखेंगे. लेकिन जहां आप उसी पैटर्न पर रोज जा रहे हैं, डजेंट रिक्वायर एनी अवेयरनेस. दैट मीन्स आपने वो पूरा एक घंटा जर्नी की, लेकिन यू वर नॉट प्रेजेंट. आप किसी और चीज के बारे में सोच रहे थे. इसी तरह आप जीवन की पूरी यात्रा में जर्नी कर रहे हैं. आप रास्तों पर जा रहे हैं, आप सीन्स में आ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन आई एम नॉट देयर. आई एम नॉट देयर बिकॉज आई एम नॉट नीडेड देयर, बिकॉज मैं अपना रिस्पॉन्स चूज ही नहीं कर रही. फिक्स्ड किए हुए हैं रिस्पॉन्सेस. कोई गुस्सा करेगा तो मुझे गुस्सा करना ही है, तो उसमें क्रिएटिविटी की क्या जरूरत है अभी. तो विदाउट अवेयरनेस आई वॉज गोइंग थ्रू द जर्नी ऑफ लाइफ, कुछ और सोचते सोचते. तो इधर द पास्ट और द फ्यूचर, एंड उसमें प्रेजेंट वाला मिनट कब निकल गया पता ही नहीं चला. अब जैसे ये अटेंशन आ जाएगी कि हर मिनट एक नया सीन, नया सीन, नया रोल, एंड माई चॉइस हाउ टू प्ले. पर टाइम है पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचना.
0: दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, देन यू नो लाइक अवेयरनेस में फिर हम एक्टिव रहेंगे. हम एक्चुअली यू नो ऑल हमारी सेंसेस जो है वो तैयार रहेंगे कि हाउ कैन वी इनोवेटिवली डू.
1: एब्सोल्युटली. तो फिर जो बात हो रही है बार बार, हाउ टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट. यू नो द क्वेश्चन इज कि हरेक को ये पता है कि पास्ट और फ्यूचर इज वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, लेकिन हाउ टू डू इट. क्यों हमारा मन बार बार पास्ट में जा रहा है, क्योंकि उसके पास प्रेजेंट में करने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं. अनलेस आई हैव समथिंग इंटरेस्टिंग टू डू. ऑफिस में देखो, काम काम हम करते हैं. कई लोगों का काम होता है जो बहुत मोनोटोनस होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत मोनोटोनस है. थोड़े समय के बाद करने के बाद आप वो काम करते जा सकते हैं विदाउट बींग देयर. आपका मन घर बैठ सकता है और आप अपना सारा यहाँ काम खत्म कर सकते हैं. लेकिन अगर आपका कोई काम है विच रिक्वायर्स अ कंटिन्यूस अवेयरनेस, डिसीशन, एक्यूरेसी, फिर आपके पास टाइम नहीं है यहाँ.

0: express and experience. Lekin wo kab hoga? When I am creative. Ke har role mujhe kaise play karna hai. To apne roles ko dekhen. Aaj kya hua? Humne kahin na kahin fix kar diya. Humne ye socha, I have to play the role. Tomorrow, pura din bitaye, I have to create the role. Not play the role. Play the role aise lagta hai kisi aur ne likha hua hai. I have to play it. अगर हम इस कॉन्शियसनेस से चलते हैं कि मैं क्रिएटिव नहीं हूं, मुझे तो सिर्फ रोल प्ले करना है, तो मेरी दो चीजें बहुत लिमिट हो जाती हैं, एंड वो है फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्रिएटिविटी. मेरे पास कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है. सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, आई एम गोइंग टू रिस्पॉन्ड ओनली इन दैट वेरी फिक्स्ड रिजिड वे. एंड क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है, मेरे अंदर की जो अनुभूति है, जो एक्सपीरियंस है, इट्स गोइंग टू बी वेरी बिकॉज स्टैग्नेंट हो जाएंगे. हम वही चीज, यू नो, सेम चीज रोज प्ले कर रहे हैं. तो आप लाइफ को जो इंजॉय करना है, इसीलिए आज किसी से बोलो कैसा है, चल रहे हैं, हो रहा है, इंजॉयमेंट वाली फीलिंग, एक्साइटमेंट वाली फीलिंग, नो, बिकॉज उनके लिए हर दिन वो सेम बन चुका है. सेम उसी तरह उठना, उसी तरह बच्चों को उठाना, उसी तरह ऑफिस जाना, वापिस आना, मोर और लेस एवरी डे इज बिकमिंग लाइक सिमिलर. फिर हम कहते हैं कुछ चेंज चाहिए, यू नो, दैट इज व्हाई देयर इज दिस डीप डिजायर कि कुछ चेंज चाहिए. चलो हॉलीडे पे जाके,
1: हाँ, मैं वही कहने लगी थी कि स्ट्रेट हॉलीडे पे ले जाते हैं, वहां पे भी बैठे रहते हैं या स्विमिंग पे चले जाते हैं. जनरली अगर हम देखें
0: तो चेंज की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि यहाँ कोई भी चीज अगर हम बार बार करेंगे तो उसके बाद उसके अंदर कुछ एक्साइटमेंट नहीं रहता. सो बी लुकिंग फॉर अ चेंज. लेकिन इफ वी लुक फॉर दैट एक्साइटमेंट एवरी डे, यू रियली वुडंट नीड अ सेपरेट हॉलीडे, बिकॉज एवरी डे वुड बी एक्साइटिंग. के हर रोज कुछ नया करना है. हम नया फिर से सिचुएशंस में ढूंढ रहे हैं. सी, हम नया कहाँ ढूंढ रहे हैं? कि कहीं सिचुएशन चेंज हो तो कुछ नया हो. अब सिचुएशन हर टाइम नहीं चेंज हो सकती. आप कितनी बार ऑफिस से हॉलीडे पर जाएंगे? फाइनली आपको 365 डेज में से 11 महीने या 11.5 महीने तो ऑफिस में ही काम करना है ना. आप साल में 15-20 दिन ही हॉलीडे जा सकते हैं. डज दैट मीन कि नया विल बी जस्ट फॉर 15 डेज and the rest 11.5 months the same boring way? No. Why not make every day exciting? And wo tab hoga ki situation nahi ho wo nahi, usi situation mein main koi naya response create karu,
1: main nahi ho jaau.
0: Creativity here, not necessarily creativity in event, creativity in situation, creativity in responses. Is that possible? A creativity in a response? Ki wo hi situation, वही बॉस, वही पेरेंट, वही हस्बैंड, बट आई विल लुक एट अ डिफरेंट वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग
1: एंड आई सडनली बिकम वेरी नाइस.
0: हाँ, वट एवर यू कैन,
1: अदरवाइज नाइस से अगर आई सडनली बिकम वेरी बैड,
0: क्रिएटिविटी बट विच विल गिव यू अ फीलिंग ऑफ
1: हैप्पीनेस,
0: सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट. अभी क्या हुआ, हम बहुत सारे रोल्स प्ले करते हैं, लेकिन मेजरली हमने दो रोल्स में अपने आप को फिक्स किया हुआ है. वन इज एट वर्क, वन इज एट होम. ये दो रोल्स हैं जिसमें हम एकदम से अपने आप को टाइट पकड़ लेते हैं, लेकिन हम उसमें क्रिएटिविटी नहीं ढूंढते और हम बहुत सीरियसली उन रोल्स को प्ले करना शुरू कर देते हैं. दिस इज माय रोल, यू नो, एंड इस रोल को मैंने इस तरह से प्ले करना है. और जहां उस रोल में हम बहुत सीरियस हो जाते हैं, वो मजा खत्म हो जाता है. दैट फन ऑफ प्लेइंग द गेम इज ओवर. जैसे जो आपने कहा पोजिशन, यू नो, आई एम अ मदर या आई एम अ मैनेजर, ये फिक्स्ड हो गई है. तो पोजिशन को ही रोल समझ लिया. अब क्या होगा, एक ऑफिस का लीडर है या मैनेजर है या चेयरमैन है, जो भी, इफ ही सेज आई एम द मैनेजर, दैट्स इट, देन वो अपने रोल को हर रोज किस तरह से प्ले करेंगे?
1: मैनेजर के रूप में या चेयरमैन के रूप में.
0: परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, एम्प्लॉयज कितना भी उतार चढ़ाव से गुजर रहे हो, मैं तो बॉस हूं. तो अगर मैंने अपने आप को सिर्फ उसी पोजिशन
1: में, आई हैव टू क्रिएट दैट इमेज, यू नो, आई हैव टू कंटिन्यू टू मेंटेन दैट इमेज ऑफ बीइंग अ बॉस.
0: तो मैंने अपनी पोजिशन को सिर्फ अपना रोल बना लिया कि दिस इज माय रोल, आई हैव टू बी द बॉस. सामने आपके एम्प्लॉय बैठा है, वो उदास है, वो परेशान है किसी बात से, लेकिन मैं तो बॉस हूं. आई कैन नॉट सडनली बिकम वेरी फ्रेंडली विद हिम और समथिंग, बिकॉज हु एम आई? आई एम द बॉस. नाउ वॉट इफ टुमारो द बॉस गोज टू द ऑफिस with this awareness ki yes, ye meri position hai lekin ye mera role nahi hai. Role could be different in different situations. Main kabhi boss ka role play karu lekin position boss ki hai, kabhi main ek motivator ka role play karu, kabhi main counselor ka role play karu. Koi dard mein hai, koi confusion mein hai,

0: कॉन्शियसनेस कि मैं एक्टर हूँ, आई एम प्लेइंग द रोल. दूसरी रीजन जो हम बहुत सीरियस हो जाते हैं ये करते करते इज बिकॉज हम रोल से ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं
1: और रिस्पॉन्सिबिलिटी मान लेते हैं अपने, मेरा कर्तव्य है.
0: लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी ज्यादा आइडेंटिटी बन जाती है वो,
1: यही मैं हूँ,
0: यही मैं हूँ. तो यही मैं हूँ तो फिर फ्लेक्सिबिलिटी की मार्जिन नहीं आती, क्योंकि हमने देखा कि अपना परिचय न होने के कारण हम रोल से आइडेंटिफाई कर लेते हैं. और जैसे ही हम रोल से आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर हम हर सीन में उसको वैसे ही प्ले करेंगे, क्योंकि यही मैं हूं. तो फ्लेक्सिबिलिटी का क्वेश्चन ही नहीं होता. आई एम अ पेरेंट, इट्स नॉट आई एम अ सोल प्लेइंग द रोल ऑफ अ पेरेंट.
1: एक्चुअली डजंट कम, यस, यू नो, उस वक्त आपको वो छोड़ देता है थॉट कि आई एम अ सोल, यू नो.
0: व्हेन आई अंडरस्टैंड दैट आई एम द सोल प्लेइंग दिस रोल, तो एक डिटैचमेंट आ जाएगी फर्स्ट. एंड डिटैच्ड होके जो भी रोल प्ले करेंगे वो रोल पहले से भी
1: अच्छा
0: ज्यादा होगा. जब रोल में फिक्स होकर प्ले करते हैं तो कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी होती है. देखो, व्हेन आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद द रोल, तो उस आइडेंटिटी को बचाने के लिए, जितने फियर्स हैं मेरे मन में, उस आइडेंटिटी को बचाने के लिए आई कैन बी अग्रेसिव, आई कैन बी डिफेंसिव. इफ लेट्स से माई आइडेंटिटी इज मैं बॉस हूं, अब आप मेरे से जरा हंस के बात करो थोड़ा सा, तो मुझे डर लगने लगेगा कि वो जो मेरा बॉस का इमेज है वो कहीं, यू नो, कहीं ये मुझे, जैसे आपने कहा, फॉर ग्रांटेड ना ले लें. तो फिर मैं तुरंत अग्रेसिव हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने सोचा आई हैव टू गिव यू द मैसेज, प्लीज रिमेम्बर, यस, प्लीज रिमेम्बर हु एम आई. आई एम द बॉस एंड यू बेटर टॉक टू मी जस्ट लाइक अ बॉस. सेम विद द पेरेंट एंड अ चाइल्ड. पेरेंट इमीडिएटली वो सिग्नल कन्वे करेगा बच्चे को, यू प्लीज रिमेम्बर आई एम द पेरेंट. That doesn't mean कि हम rudeness आने दें या you know misbehavior आने दें, लेकिन कोई हल्कापन, एक you know lightness relationship के अंदर, that's a part of the, you enjoy that relationship. लेकिन जहां हर relationship को उतना tightness से पकड़ा कि ये how could he talk to me like this, how could he behave with me like this, because who am I? आई एम दिस. तो कहीं ना कहीं हमारा फिर जो बिहेवियर होता है वो अग्रेशन की तरफ या यू नो वो विड्रॉल की तरफ चला जाता है, जस्ट बिकॉज मैं इनसिक्योर हूँ अपनी वो आइडेंटिटी.
1: इनफैक्ट अगर हम देखें तो अगर क्रिएटिविटी है उस रिश्ते में, फन है, वी लुक फॉरवर्ड टू यू नो बींग
0: विद दोस पीपल. यस, एब्सोल्युटली.
1: आप उनसे करनी नहीं काट रहे होते बिल्कुल.
0: तो जो हमने पहले डिस्कस किया रिलेशनशिप्स में कि आज हम कट रहे हैं एक दूसरे से, हम कटेंगे नहीं जब हमें ये लगेगा कि एवरी रिलेशनशिप इज अ चांस फॉर मी टू एक्सप्लोर न्यू एवेन्यूज ऑफ माई क्रिएटिविटी. इट विल बिकम अ लॉट ऑफ फन.
1: और जहां जहां थोड़ी मुश्किल भी है वहां पर, मतलब कहीं कुछ खटास या पहले से कुछ थोड़ा डिस्टेंस आया हुआ है, आई कैन ऑलवेज स्टार्ट डूइंग इट नाउ.
0: एब्सोल्युटली, क्योंकि अब आपके पास चॉइस है कि वो रिश्ते में बहुत खटास है लेकिन आप अपने रेगुलर जो मेथड ऑफ एक्टिंग है, प्लेइंग द रोल, उस पे नहीं जाओ. मेक इट क्रिएटिव, क्रिएट अ ब्यूटिफुल न्यू थॉट उस आत्मा के प्रति. जस्ट गो एंड इनएक्ट इट द वे यू नेवर थॉट यू कुड हैव डन इट. अभी मैंने सोचा कि वो मेरे से ठीक से नहीं बात कर रहे तो मैं ठीक से क्यों बात करूं, फिक्स्ड वे ऑफ एक्टिंग द रोल. कल मैं सोचा कम ऑन, फॉरगेट ऑल दिस,
1: कंसंट्रेट ऑन योर परफॉर्मेंस,
0: लेट मी गो एंड प्ले इट इन अ वे दैट इवन आई विल सरप्राइज माय सेल्फ. मैं आपको क्या सरप्राइज करूं, मैं तो खुद ही सरप्राइज हो जाऊं कि वो मैंने कैसे कर लिया ये. दैट इज क्रिएटिविटी.
1: एंड कंसंट्रेट ऑन योर परफॉर्मेंस,
0: ओनली माय परफॉर्मेंस. वैसे भी आपके परफॉर्मेंस पर मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मैं सिर्फ कंप्लेन कर सकती हूँ या जजमेंटल हो सकती हूँ. बट इफ आई जस्ट फोकस ऑन माइंड, you see how much fun we are going to have in the whole day.
1: Oh, wonderful. Spirituality teaches you fun.
0: Yeah. Spirituality is a lot of fun.
1: Yes, that's what we are understanding. Thank you so much, Sister Shivani, aaj ki is puri baat cheet ke liye. Om Shanti.
0: Om Shanti.
1: Ab apne roles पर काम करना शुरू करें. आई थिंक इट विल बी रियल फन. और जो हमारे अंदर का एक्टर छुपा है अपनी परफॉर्मेंस को, जैसे कि सिस्टर शिवानी ने एंड में आई थिंक यू गिवन द पंच लाइन कि अपनी ही परफॉर्मेंस से अपने आप को चकित करते, एक नए अंदाज से खुद हम एक्ट करना शुरू करें, तो वो, और वो एक्टिंग जितनी नेचुरल होगी, जितनी हमारी अपनी होगी, उतना हम उसे एंजॉय करेंगे. अब एक निमित ब्रह्मा कुमारीज में हम हर बार की तरह आपसे यही कहेंगे, ये प्रोग्राम आपका अपना है, ये मंच आपके लिए है. कोई बात, कोई सवाल आपके मन में उठता है, आपका हम स्वागत करते हैं. आप हमें फोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं.
2: हमारे फोन नंबर है 0999-344-555, 0999-344-666, 0987-366-555, 0999-744-555. हमारा ईमेल आईडी है ओम शांति स्टूडियो @

0: pkmail.org. अब एक दिन दामा कुमारी इसमें आज इतना ही, लेकिन सेल्फ मैनेजमेंट का ये पूरा सिलसिला आगे भी चलता रहेगा. आप हमारे साथ जुड़े रहिए. आज आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति.
1: ब्रह्मा कुमारीज के प्रत्येक सेवा केंद्र पर राजयोग मेडिटेशन निशुल्क सिखाया जाता है. ये कोर्स 7 दिन प्रतिदिन 1 घंटे का है. भारत में बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों में हमारे 8000 से अधिक सेवा केंद्र हैं. राजयोग सीखने के लिए और अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता जानने के लिए संपर्क करें

हे महामाया, तेरी सदा ही जय हो। तूने भक्ति का दान देकर एक भक्त का जीवन सफल कर दिया है। इस नाचीज को अपने चरण की शरण देकर उसका जीवन खास बना दिया है। अब ये भक्त ताउम्र तेरे चरणों में रहना चाहता है। सदैव उसकी सेवा को स्वीकार करते रहना। हे दातिये,

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: पुणेरी आवाज
1: सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झकास रेडिओ स्टेशन
0: पुणेरी आवाज
1: ऐकत रहा 107.8 FM
0: आनंदी रहा आणि आनंद
2: और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप उन्हें के तहत रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आनंदाचे सुर पुण्याचा नाद आपण ऐकतायत रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो खुशियां बांटो.
1: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार.
2: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से. तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया. सबको डांट रहा था तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी. अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा. इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे, किसने रखे थे, वो हमने ही रखे थे. अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है. तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहां और ठीक करने की उंगली भी यहां. वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स. ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं, उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं.
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो खुशियां बांटो.

0: खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपनेपन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में। सिर्फ पुणे री आवाज में 107.8 खुश रहो खुशियाँ बाँटो।
1: ब्रह्मा कुमारी इस श्रृंखला में आज फिर आप सबका हार्दिक स्वागत नमस्कार। जागरूकता किसके प्रति होनी है? जागरूक हमें अपने प्रति होना है कि हु एम आई, आई द सोल, आई द बॉडी, आई द माइंड। इसके बारे में हम कई बातें कर चुके हैं और ये बात हमारे सामने आती है कि आई द सोल इज सुप्रीम। और उसके बाद जागरूकता अपने पूरे इस सफर में खुद को पहचानने की और किस तरह से जिंदगी जीते हुए एक अच्छी जिंदगी, एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। याद होगा कि पिछली कड़ी में हमने बात की थी डिप्रेशन की। क्यों है इतना प्रेवलेंट आज डिप्रेशन? क्यों आज हर आम आदमी डिप्रेस्ड फील करता है? किसी न किसी मोड़ पर जरूर हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं या हम डिप्रेस्ड हैं। हमने ये जाना था कि डिप्रेशन जो है वो एक ऐसा एहसास है, एक ऐसा एस्पेक्ट है जिससे हमें दो चार होना पड़ सकता है, एक ऐसी सच्चाई है, लेकिन उससे हम अपनी माइंड पावर से यानी कि अपने विचारों से भी बदल सकते हैं और बाहर आ सकते हैं। आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सिम्टम्स होते हैं और किस तरह से प्रोफेशनल्स की मदद की कब जरूरत पड़ सकती है और किस तरह मदद ली जा सकती है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, जो कि खास मुंबई से आए हैं। और डॉक्टर गिरीश पटेल के बारे में ये भी बता दें कि 7 किताबें लिख चुके हैं कि किस तरह से जिंदगी को पॉजिटिव किया जा सकता है। आपका हार्दिक स्वागत।
2: नमस्कार।
1: और हमारे साथ हर बार की तरह हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी, अ वेरी वार्म वेलकम।
3: ओम शांति।
1: ओम शांति। डॉक्टर गिरीश, हमने जहां छोड़ा था वहां एक बार फिर लौटते हैं और डिप्रेशन की हमने बात की थी कि इतना प्रेवलेंट है, इतने सारे लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। एक बार फिर उस डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, ये जानने को थोड़ा और डिटेल में कोशिश करते हैं कि डिप्रेशन है क्या।
2: यह शब्द में ही वह क्या है और समय है, जैसे कि भी डिप्रेस्ड नहीं, किसी को दबाना, नीचा करना, तो वैसे ही जब व्यक्ति अपने आप को नीचा समझता है, जीवन में इंटरेस्ट खो बैठता है, इस प्रकार की जो स्टेज होती है तब उसको कहेंगे डिप्रेशन। बल्कि कई सिम्टम्स भी है। आज अमेरिकन साइकेट्रिक सोसाइटी ने हर बीमारी के वास्तव में लिस्ट ऑफ सिम्टम्स उन्होंने तैयार की है और उसमें से कुछ 60-70% अगर सिम्टम्स फिट होते हैं तब उस व्यक्ति को कहेंगे कि ये सचमुच डिप्रेस्ड है।
1: जी बिल्कुल। और सिस्टर शिवानी, अगर हम बात याद करें तो सेल्फ एस्टीम की बात की थी, आज अभी डॉक्टर पटेल ये कह रहे हैं कि खुद को ही सप्रेस करने लग जाए, खुद को ही कहे कि मुझ में तो कुछ रह ही नहीं गया, मैं तो कर ही नहीं सकता, या पूरा ये डिप्रेशन का एस्पेक्ट आ जाता है। सेल्फ एस्टीम ऐसे में कितनी हेल्प करती है और कहां हम अपनी सेल्फ एस्टीम खो बैठते हैं कि हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं?
3: क्योंकि अपने असली स्वरूप को नहीं पहचाना, अपने आप को नहीं समझा, अपनी शक्तियों को नहीं पहचाना, अपनी विशेषताओं को नहीं जाना, तो एक खालीपन है कि नहीं, मेरे से नहीं हो सकता या मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। कोई ना कोई ऐसी थॉट इसको ट्रिगर कर देती है, या मैं कितना भी ट्राई करूं मुझे सक्सेस नहीं मिलती है, मेरे से कोई अच्छी तरह से बात नहीं करता, या जो उनके पास है वो मेरे पास नहीं है, यू नो कंपैरिजन, सो ऑल दैट पब्लिक ओपिनियन, लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, दिस कैन लीड टू सप्रेसिंग माय एक्चुअल क्वालिटीज एंड इन इट इंटरनल यू नो द ब्यूटी दैट इज देयर, आई स्टार्ट सप्रेसिंग इट।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब,

0: है कि जहां पर जीन्स प्रीडोमिनेंट है तो भी परिस्थिति भी ऐसी नहीं, व्यक्ति भी कुछ भी नेगेटिव नहीं सोच रहा है, फिर भी अचानक डाउन फील करता है, अचानक डिप्रेस्ड हो जाता है, तो वहां कहेंगे कि प्रीडोमिनेंट केमिकल इम्बेलेंस का रोल है।
1: ओके, और फिर क्या उससे नेचुरली नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे?
0: या तो उसके लिए मुश्किल होगा भी उस स्टेज में पॉजिटिव सोचने लेके ज्यादा मेहनत करें। जैसे भी प्लेन पर चलना इजी है, पहाड़ी पर ऊपर चलने के लिए आपको फोर्स लगाना।
2: तो अब हम उन्हीं सिम्टम्स पर आते हैं, नेक्स्ट स्टेज बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, हमने लाइफ स्टेज पे तो देख लिया वो जब कभी खुशी कभी गम है, कभी कभी खुश हो जाता हूँ, कभी कभी दुखी हो जाता हूँ कुछ कुछ घंटे के गैप के बाद। उसके बाद सिम्टम्स क्या नजर आए कि हमें सोचना चाहिए कि डिप्रेशन सीप इन कर गया है?
0: हाँ जी, नहीं, बहुत सारे डिप्रेशन है, काफी जितना संभव होगा आपको मैं बताता हूँ। कि एक तो बात यह है कि भी व्यक्ति को ये होगा कि चलो जो ऑफिस नहीं जाना है, घर में ही पड़ा रहूं, कोई बीमारी नहीं है। और एक जो बात देखी गई है कि भी अच्छे से स्नान करने की दिल नहीं होगी, अच्छे कपड़े नहीं पहनेगा, है कैसे भी कपड़े पहन लेगा, शेविंग करने का अच्छा नहीं लगेगा, नेल्स कट नहीं करेगा। ऐसी जो सिंपल चीजें हम आमतौर पर करते हैं, भले जीवन में समस्याएं हैं फिर भी एक सामान्य व्यक्ति करता है,
2: लेकिन एक दिन करें तो चलेगा। हाँ जी, अगर ज्यादा दिन चेक करेंगे तब एक दिन, तो मैंने कई लोगों को देखा ये करते हुए कि एक दिन वो कहते हैं कि संडे को हर चीज की छुट्टी,
0: एक दिन ठीक है। हाँ। ये वो तो भी इसलिए ये नहीं कि आपको इच्छा नहीं है, परंतु संडे के दिन आप फ्रीडम लेना चाहते हैं, आराम से भले 9:30 बजे
1: रूटीन से ब्रेक करने।
2: कितने दिन तक अगर वो करते रहे तो डिप्रेशन का शिकार?
0: वो तो 5-6 दिन भी कहेंगे। एक दिन जो संडे को आप कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि आप रिलैक्स होना चाहते हैं, नो यू वॉन्ट टू जस्ट लेट गो थिंग्स। परंतु ऐसा अगर 2-3 भी रहे और आपको दिल नहीं हो रहा है तो उसका मतलब है कि भी वो डिप्रेशन की सचमुच शुरुआत है, हो गई है। और कुछ इम्पोर्टेंट सिम्टम्स है कि भी खाने का दिल नहीं होता, नहीं अच्छी अच्छी चीजें घर में बनाई है फिर भी आपको लगता है कि भी नहीं खाऊं तो अच्छा है, आज भूख ही नहीं है, तो वह भी एक डिप्रेशन की निशानी हो सकती है।
2: कहीं ना कहीं सोना भी जुड़ा हुआ होता है। नींद
0: है ना, पिक्यूलियर है डिप्रेशन में जो नींद की पिक्यूलियरिटी है कि एक तो सारी रात भी नींद नहीं आएगी, वो भी पॉसिबल है। बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, सारी रात व्यक्ति को नींद नहीं आएगी। और कई लोग ऐसे हैं कि जिनको एक बार नींद आ जाएगी, 4 घंटे 5 घंटे नींद आ गई, लेकिन फिर सवेरे 3-4 साढ़े 4 बजे नींद उड़ गई, फिर लाख कोशिश करने से भी नींद आ नहीं रही है, तो वह एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है डिप्रेशन का। और एक सिम्टम है लॉस ऑफ वेट, कि उसका वजन है वह देखो हर मास कम होता जा रहा है, और साथ में और भी सिम्टम्स है। हाँ, कुछ फिजिकल डिजीज में भी लॉस ऑफ वेट हो, जैसे डायबिटीज वाले भी वेट को लूज करते हैं, दैट इज डिफरेंट। और सिम्टम्स के साथ उसको जोड़ना होगा तो सचमुच पता चलेगा। और एक पिक्यूलियर सिम्टम्स है कि जो कई बार फैमिली फिजिशियन भी मिस कर जाते हैं, वह एक्सेसिव स्लीप।
2: अच्छा, ज्यादा सोना,
0: ज्यादा सोना भी कहते भी बच्चा सोता ही जा रहा है, 11 बजे उठता है सवेरे, बड़े भी है उनको लगता है सवेरे 9 बजे अभी भी थकावट है, अभी भी सो जाऊं, दैट एक्सेस ऑफ स्लीप ऑल्सो कैन बी अ सिम्टम ऑफ। और एक पावरफुल जो सिम्टम है वह है कि जीवन जीने की इच्छा खो देना। एक शुरुआत में होता है कि मर जाऊं तो अच्छा है, कल खुद बोलेगा नहीं परंतु कोई पूछेगा तो कहेंगे हाँ जीवन अच्छा नहीं है। दूसरा एक है व्यक्ति खुद बोलेगा कि अभी भगवान ले तो अच्छी बात है। उसके आगे की स्टेज है कि व्यक्ति प्लान करने लगता है कि भी कैसे मरूं, ट्रेन के नीचे गिर के मरूं, जहर पी के मरूं, क्या करूं तो मैं मर जाऊं। अगर प्लानिंग की शुरुआत होगी तो देन स्टिल यू आर इन अ डीपर डिप्रेशन। एंड दोज हु हैव कमिटेड सुसाइड दे आर रियली एक्यूटली डिप्रेस्ड।
2: यहाँ ये एक बहुत क्लियर बात हमें ये सामने नजर आ रही है कि जो सिम्टम्स हैं इन्हें पकड़ लेना चाहिए हमें खुद भी, और अगर हम खुद नहीं पकड़ पा रहे तो हमारे अपने क्या समझ सकते हैं इस बात?
0: बिल्कुल है ना, वो अपनों फैमिली मेंबर्स को ही देखना चाहिए। कई बार फैमिली मेंबर्स क्या कहते हैं, उसको ब्लेम करते हैं कि आलसी हो गया।
2: एक ईमेल भी हमारे पास आया है सतीश शिवानी एंड डॉक्टर साहब की, ये अल्पना जी ने अपनी बेटी के लिए भेजा है कि ये 16 इयर्स की इनकी बेटी है, 12th में पढ़ रही है और 10th में भी रिजल्ट बहुत अच्छा था, 10th में टॉपर थी, लेकिन 11th में आते आते सडनली शी सेज की शी हैज लॉस्ट इंटरेस्ट इन हर स्टडीज, और अब वो टोटली रिबेल भी हो गई है, लेकिन म्यूजिक में चली जाती है, कभी कभी अपने फ्रेंड्स के पास चली जाती है, और इतना हम प्रेशर नहीं भी डाल रहे लेकिन उसके बावजूद भी वो पढ़ने में इंटरेस्ट होती जा रही है। और कई बार ये कह रही है कि मैंने उसे देखा है कि वो, मैंने बात करने की कोशिश भी की है कि किससे प्यार तो

0: हो गया या कुछ ऐसी बात तो नहीं होगी, वो भी कोई ऐसी बात नहीं है, तो कहीं मेरी बेटी डिप्रेशन में तो नहीं चली गई है, तो क्या ये कोई ऐसी बात पता चलती है?
1: काफी है वो इसी प्रकार के, और भी थोड़ा अच्छे से उसको केस को स्टडी करना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत सारी सिम्टम्स है यहाँ।
0: एक सडनली जो है पढ़ाई से इंटरेस्ट लूज हो जाना,
1: अगर ये सडन हुआ और अगर यही बात एग्जाम के दौरान हुई है, समझो एग्जाम के 15 दिन एक मास पहले, तो फिर एग्जामिनेशन फोबिया भी कॉज
0: नहीं, शी सेज कि 10th में शी इज अ टॉपर बट 11th तक आते हैं तो शी हैज लॉस्ट इंटरेस्ट।
1: एंड इफ इट हैज हैपेंड फ्रॉम द स्टार्टिंग, फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, कि जब भी कोई एग्जामिनेशन फोबिया का सवाल ही नहीं है, तो फिर वो डिप्रेशन की संभावना है,
0: तो ऐसे
1: थोड़ा स्टडी करना चाहिए।
0: कैसे कैसे वो हेल्प कर सकती हैं अपनी बेटी की?
1: तो भी बहुत अच्छा है कि उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया, कई माता पिता इस चीज को ऑब्जर्व ही नहीं करते, उल्टा ब्लेम करते कहीं बार, फिर भी बच्चा आलसी हो गया है, हाँ उसने जैसे और कहीं उसका मूड लग गया है, कई बार तो विशेष ड्रग्स लेने लगे, नहीं सचमुच वो डिप्रेस्ड हो सकते, तो ये जो आइडेंटिफाई किया वो बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ पर आवश्यकता है कि भी प्रोफेशनल को भी कंसल्ट करे एक बार, तब है ना एग्जैक्ट वो बात को समझ में आएगी, और एक्सपर्ट सचमुच बता सकते हैं, कई टेस्ट भी आती है इसकी।
0: स्कूल काउंसलर जैसे में कितना हेल्प कर सकते हैं? स्कूल काउंसलर से बातचीत अगर की जाए, बच्चा अगर बातचीत करने की हिम्मत रख पाए, तो कितना कहाँ तक उनकी मदद हो सकती है?
2: आई थिंक काउंसलर बहुत अच्छी मदद कर सकेंगे, लेकिन उससे अच्छा भी अगर ये मदर,
0: हाँ इफ शी कैन टॉक,
2: मदर अगर बात करती है, एंड इसीलिए वो एक रिलेशनशिप पहले से कैसे बना हुआ था, अगर वो डॉटर उतनी कंफर्टेबल है कि वो जिस दौर से गुजर रही है अगर वो शेयर कर पाए, देन द मदर विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट
0: रोल। एक्चुअली पर किसी एज की बात करें उसमें रिबेल भी हो चुका होता है बच्चा, तो कहीं ना कहीं मदर और डॉटर के बीच में भी कई बार वो कोल्डनेस आ चुकी होती है,
2: ट्रू,
0: मतलब देखा ये गया बिकॉज शी इज अ रिबेल, द वे शी इज कमिंग आउट ऑल्सो, कि वो इग्नोर करती है चीजों को, तो मदर भी अप्रोच नहीं कर पा रही, तो वो
1: प्रोफेशनल काउंसिलर कैन डेफिनेटली, शुड बी रियली प्रोफेशनल इनफैक्ट, ना आज ना काउंसिलर, एनीबॉडी कैन बी अ काउंसिलर।
0: अंडरलाइंड हमने बात की थी, आपने एक बार कहा था कि अंडरलाइंड कुछ वो बातें होती हैं, तो अंडरलाइंड वजहें क्या हो सकती हैं
1: इस प्रकार के स्टेज की? हाँ हाँ, अभी ये जो यूथ में अगर हम इस बात को स्टडी करते हैं, तो यूथ में तो एक नो लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम कैन बी अ कॉज, क्योंकि ये एक स्टेज है कि जिसमें बॉडी ग्रो हो रही है, वो बच्चे भी नहीं है शायद एडल्ट भी नहीं है, तो जो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, ऑर्गन्स आर ऑल्सो गेटिंग ट्रांसफॉर्म, तो तब कई यूथ कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो कंफ्यूजन में उनको सही आंसर नहीं मिले तो भी डिप्रेशन होने की एक बहुत बड़ी संभावना।
0: और आज के वक्त में जबकि इतनी अवेयरनेस है, मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो गई है, कहीं ना कहीं नॉलेज नहीं है,
2: एंड आई थिंक यही वो फेज है जहां हम वो आइडेंटिटी क्राइसिस से भी गुजरते हैं यूथ, ये वाले एडोलेसेंट पीरियड में फिजिकल चेंजेस भी हो रहे हैं, लेकिन वो इंटरनल जो चेंजेस हैं, फिर से कॉलेज, स्कूल लाइफ तक फिर भी एक प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट था, लेकिन कॉलेज में आने के बाद कंपैरिजन, इनसिक्योरिटी, दूसरों की तरह बनने की कोशिश, किसी फिल्म स्टार की तरह, यू नो, और फिजिकल ब्यूटी पर बहुत ज्यादा अटेंशन।
0: तो ये भी रॉन्ग मिथ हो सकती है क्या कि एडोलेसेंस में ऐसा होता ही है कि बच्चे रिबेल होते ही हैं या आइडेंटिटी क्राइसिस होता ही है? क्या ये भी एक रॉन्ग मिथ है या
2: होता ही है? नहीं है, बट उनके लिए सिचुएशंस वैसी बनती जा रही हैं, यू नो, एक तो वो पेरेंट्स से थोड़ा सा विड्रॉ कर जाते हैं क्योंकि लगता है ये वो पीरियड है जहां हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, या कुछ एक पर्सनल रिलेशनशिप्स में इस तरह से फंस जाते हैं जो अभी अपने पेरेंट्स के साथ नहीं शेयर कर पाते, ये वो भी पीरियड है जब पेरेंट्स बहुत ओवर प्रोटेक्टिव होने लग जाते हैं, इंटरफियरिंग ज्यादा लगने लगते हैं, करने तो नहीं लेकिन शायद वो लगने बहुत लगते हैं, दिस इज दैट पीरियड जहां आप अपनी फ्रीडम शायद बहुत ज्यादा पसंद करने लगते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स जब इकट्ठे प्ले करते हैं, और उस टाइम पर अगर आपने वो इंटरनल ब्यूटी पर नहीं ध्यान दिया तो देन दीज फैक्टर्स कैन यू नो जस्ट वे यू अवे, एंड आपको वो दूसरी तरफ फिर ले जाता है।
1: शिवानी बहन, मैं के बहुत समझता हूँ कि आज पेरेंट्स में जो सबसे बड़ी गलती हुई है क्योंकि सब कुछ दे देते, पैसा दे दिया,
2: बहुत ज्यादा
1: गिव टाइम,
0: और एक्चुअली उनके पास कुछ बचता ही नहीं कि खुद अचीव करने के लिए, बच्चों के पास भी कुछ नहीं बचता कि वो अचीव करें, दे कांट इवन लुक अप टू कि अगर मैं ऐसा परफॉर्म करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, उनके कहते ही तो मिल जाती है चीज़,
1: हाँ वो चीजें मिल जाती
2: है, लेकिन जो डॉक्टर साहब ने जो
1: बता रहा हूँ, और मेरी एक सचमुच राय भी है कि भले आप कम कमाओ कोई बात नहीं है, कम लग्जरीज लो, आपका फ्लैट छोटा होगा कोई बात नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए कम से कम 1 घंटा रोज दो,
2: और अपने लिए भी,
1: अपने लिए तो देना है, अपने लिए देना है, लेकिन बच्चों के लिए भी कम से कहीं से भी निकालना है।
0: एक्चुअली ये पूरा

0: दफा जो हम तय कर रहे हैं, सिर्फ एक बात सामने ये आती है कि अभी तक तो हम ये जानते आए थे कि हमें लोगों के लिए काम करना चाहिए, लेकिन एक बात जो मुझे क्लियर लगते जा रही है वो ये कि सबसे इम्पोर्टेंट मैं हूँ. यू नो आई हैव टू बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, क्योंकि उसके ऊपर काम नहीं किया गया है. सबसे कम काम हमने अपने ऊपर किया है और बाहर काम हमने सबसे ज्यादा,
1: क्योंकि जैसे इस केस में भी अगर वो मदर अपनी बेटी को हेल्प करना चाहते हैं तो वो खुद एक बहुत अच्छी स्टेट ऑफ माइंड में होने चाहिए. यू नो बच्चे को डिप्रेशन से निकालना, पेरेंट खुद स्टेट ऑफ माइंड में है तो वो बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे उनके लिए.
2: आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो अपने लिए भी, लेकिन हम शरीर के लिए समय निकालते हैं, आत्मा के लिए नहीं निकालते. इनर डेवलपमेंट ठीक है ना, आंतरिक जो उन्नति की जरूरत है कि सदा काल के लिए चलेगी.
0: अच्छा, आज अभी जब हम बात ही कर रहे हैं डॉक्टर साहब, आज के यूथ की बात कर रहे हैं तो बहुत कुछ अवेयरनेस की बात करी. वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस इतने ज्यादा हैं आज की, वो बच्चा जो है वो पूरी तरह से कंफ्यूज है कि क्या सच्चाई है और क्या बाहर से मैंने लिया है. तो ऐसे में जहां हम ये देख रहे हैं कि हम तो पूरी तरह से इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं, अगर हम पश्चिम की तरफ देखते हैं तो वहां भारतीय जो पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस है या पूरी हमारी फिलॉसफी है उसे अपनाया जा रहा है, क्योंकि वहां पे भी कहीं इतना सब कुछ होने के बाद खोखलापन है. तो ये जो टू वे कम्युनिकेशन चल रहा है कि वहां का सब कुछ है, जो नेगेटिविटी है हम ले रहे हैं, हमारी जो पुरानी पॉजिटिविटी है वहां जा रही है, तो इसका क्या आगे आस्पेक्ट नजर आ रहा है?
2: आपने कहा तो ये बात मुझे याद आई कि कहीं अखबार में पढ़ा था कि भूटान के किंग को किसी ने पूछा कि आपके वहां पर जो पर कैपिटा इनकम है वो कम है, तो उन्होंने कहा कि मुझे इसकी ज्यादा फिक्र नहीं है कि भले पर कैपिटा इनकम कम हो, लेकिन मुझे इंटरेस्ट है कि पर कैपिटा हैप्पीनेस कितनी है.
0: बहुत इम्पोर्टेंट
2: है, सभी को यह देखना चाहिए. वेस्टर्न कंट्रीज में भी अगर जो रूलर्स है वो यह सोचे कि भी पर कैपिटा हैप्पीनेस को मुझे सचमुच बढ़ाना,
0: लेकिन अगर हम वहां देखें तो वहां अब अध्यात्म को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाने लग गई है. द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी या इस तरह का पूरा आस्पेक्ट जो है इतने ज्यादा पैमाने पर नजर आ रहा है. क्यों?
2: नो, पर फिर भी है ना, वो इतना ज्यादा नहीं है. सच देखेंगे ना तो जो ऐसी किताबें पढ़ते हैं, ऐसे प्रोग्राम, दे आर लिमिटेड पीपल, मे बी 1%, 2%, और उसी से भले वो तो बेस्ट सेलर किताब भी बन जाती है अगर 1% भी पढ़ने लगे तो. परंतु ओवरऑल अगर हम अवेयरनेस देखें तो और लाने की जरूरत है. लोगों को ये सचमुच बताया जाए कि आप अपनी जो अंदर की खुशी है उसको प्रायोरिटी दीजिए.
0: तो हम डिप्रेशन पे हैं डॉक्टर साहब, की डिप्रेशन के उस आस्पेक्ट पे बात कर रहे थे हम जब बच्चों पे आ गए थे.
2: हाँ जी.
0: हर वर्ग में, हर उम्र में डिप्रेशन नजर आ रहा है. केमिकल चेंजेस तब हो रहे थे जब कभी खुशी कभी गम वाले स्टेज पर थे, कि थोड़ा थोड़ा वक्त हम खुश थे, थोड़ा थोड़ा हम सुखी थे. लेकिन वो स्टेज वो है जहां हम डॉक्टर के पास जाने की अभी जरूरत नहीं है. स्कूल के काउंसलर से बात चल जाएगी या अपने ही किसी परिवार वालों से बात चल जाएगी. आज उस सिवियरिटी की बात करते हैं जब डिप्रेशन इतना बढ़ जाए कि हमारे अपने हाथ में ना रहे, जब पूरा कंट्रोल खो दें हम. अब कितने सीवियर केसेस हमने देखे हैं, चाहे वो वेस्ट में हो, एक बार भारत में भी देखने को आ रहे हैं, जो डिप्रेशन का शिकार होके वायलेंस पर उतर आते हैं. सो ऐसे में पहले ही कैसे रोका जा सकता है?
2: ये भी बात बहुत ही अच्छी है कि क्या सीवियर चीज होती है वो हमें कई बार देखना चाहिए. भारत सूरत में ही हुआ था कि भी थोड़ा सा डिप्रेस था, सब बच्चों को भी नींद की गोलियां दे दी, खुद सुसाइड कर दिया, सारा परिवार खत्म हो गया.
0: मतलब क्या हमने जिंदगी को इतना छोटा बना लिया है, पूरी तरह से बात
1: होपलेसनेस आ गई है ना. तो जैसे कहा, जीवन जीने का उत्साह नहीं रह गया और जीवन जीने की शक्ति जो चाहिए, पावर टू फेस द वर्ल्ड, वो भी नहीं है
2: इसमें. तो नहीं, हमारे दर्शकों को ये समझने की आवश्यकता है सचमुच कि भी इस चीज से क्या भयानक परिणाम हो सकते हैं. शुरू में जैसे नहीं बर्ड आगे बढ़ रहा है उसको हम रोक सकते हैं, तो डिप्रेशन की जो स्टेज शुरुआत हुई उसको रोको. नहीं, अमेरिका में कुछ समय पहले मैं देखा था कि जो यूथ ने गन लेके आया और कहीं 25-30 को खत्म कर दिया, देवर डिप्रेस्ड. हम समझते नहीं, कई बार हमें ना उसको कहीं और कॉजेज ढूंढने लगते हैं, लेकिन इन बहुत सारी चीजों में कॉज है वो डिप्रेशन. कई बार ऐसा भी हुआ कि मां ने बच्चों को मार दिया, वो डिप्रेशन की स्टेज थी एक्चुअली.
0: अगेन होपलेसनेस भी था ना, बिल्कुल कुछ नहीं नजर आ रहा था, रोशनी नहीं नजर आ रही थी. तो वो रोशनी जो है वो हमें कहाँ से मिल सकती है, ये हम आपसे जानते हैं इस वक्त.
1: उसी में अगर हम पहले से ही, ये तो एक बहुत सिवियर स्टेज पर पहुंच गए, तो आई थिंक इस समय तो मेडिकल हेल्प की जरूरत है. वो ट्रीटमेंट और मेडिसिन की बहुत ज्यादा जरूरत है, कि उसके बिना, क्योंकि शायद इस टाइम सेल्फ काउंसलिंग पॉसिबल भी नहीं है, हमें शायद अवेयरनेस भी नहीं है कि हम उस दौर से गुजर रहे हैं. लेकिन उससे पहले, जैसे समय की बात की, थोड़ा समय अगर हम अपने लिए निकालना शुरू करें, थोड़ा अपने प्रायोरिटीज को देखना

0: स्वस्त आरजे संजय आरजे नीतू आणि आरजे ऋत्विक यांच्या सोबत तर ऐकायला विसरू नका फक्त आपला पुणेरी आवाज 107.8 FM वर. आनंदी रहा, आनंद लुटा.
1: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुणेरी आवाज. अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं. बने रहिए हमारे साथ.
2: ओम शांति. नमस्कार, मैं हूं ACP अरुणेंद्र सिंह. आप सभी के लिए अच्छे स्वास्थ्य और सुंदर मन की शुभकामनाएं. आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM. सुनते रहिए.

0: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस करियर काउंसलिंग कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष मेहमान सुब्रत नारायण जी हमारे साथ हैं। तो इनसे हम लोग बातें करने वाले हैं करियर के बारे में, और आप करियर काउंसलर हैं, और निश्चित तौर पर आज जब आप विचार करेंगे और आप सुनेंगे सुब्रत नारायण जी को, तो निश्चित तौर पर आपको अपना करियर में विशेष रूप से करियर काउंसलिंग के बारे में तो पता चलेगा, और आप अपने करियर को कैसे फ्रेम कर सकते हो इस बात पर भी आपको आत्मचिंतन मिलेगा। तो आइए, आप सभी की तरफ से सुब्रत नारायण जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में।
1: नमस्कार, मेरा नाम सुब्रत नारायण अग्रवाल है। इस सेगमेंट में मैं आपसे करियर काउंसलिंग के प्रिंसिपल्स माना सिद्धांत के बारे में बात करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना होगा कि जब हम किसी भी करियर के बारे में हम चुनाव करते हैं तो एक सिद्धांत होता है कि करियर छोटे से बड़ा होता है। कई बार लोग शॉर्टकट के बारे में सोचते हैं कि एकदम से बहुत धन और पैसा हमारे पास आ जाए, लेकिन सही मायने में करियर वो है जहां से एक शुरुआत होती है। जैसे कि गुलाब, एक पंखुड़ी होती है, फिर धीरे धीरे वो बीच में से गुलाब खिलता है और वो बड़ा होकर पूरा खिला हुआ गुलाब बनता है। वही उसकी खूबसूरती है। चाहेंगे कि एकदम से गुलाब खिल जाए तो वो भी नहीं होगा। उस पंखुड़ी की भी अपनी खूबसूरती होती है और उस खिले हुए गुलाब की भी अपनी एक खूबसूरती होती है। तो हमको ये समझना होगा कि जो करियर होता है वो धीरे धीरे डिवेलप होता है। जैसे कि जॉब, जब हम जॉब करते हैं एक होटल इंडस्ट्री में मिसाल के तौर पे, तो हो सकता है हमको वहां पर रिसेप्शनिस्ट का जॉब मिले या हमको वहां पर शेफ का जॉब मिले, लेकिन जो मैनेजर होता है होटल का, उसको क्या डायरेक्ट वो जॉब मिलती है? बच्चे ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी ना, होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया, 21-22 साल के हैं, तो क्या सीधे उनको एक 5-स्टार होटल का होटल मैनेजर बना दिया जाएगा? सोचने की बात है। पहले उनको जॉब्स दिए जाएंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के जॉब दिए जाएंगे। तो साल भर किसी एक जॉब में काम करेंगे, जैसे कि मैंने बताया रिसेप्शन हो गया। हा? और एक होटल में तो कई प्रकार के टास्क होते हैं, तो 2 साल के बाद फिर उनको दूसरा टास्क दिया जाएगा। अगर उनकी काबिलियत अच्छी रही, क्षमता अच्छी रही, लोगों के साथ कैसे व्यवहार में आते हैं, कस्टमर को कैसे खुश करते हैं, ऐसे करके फिर हो सकता है 5 साल 7 साल 10 साल के बाद जब उन्होंने भिन्न प्रकार के जॉब्स उस होटल में रहकर करे हों, तब उनको होटल मैनेजर का रोल मिलता है और उनको अपने ऑफिस में बैठकर लोगों से काम कराना होता है। तो जब व्यक्ति ने खुद ग्राउंड लेवल पे काम नहीं किया होगा, तो ऑफिस में बैठकर क्या वो ग्राउंड लेवल का काम करा पाएंगे? कहने का भाव ये है कि जो करियर होता है वो स्पाइरल में डेवलप करता है, वो धीरे धीरे डेवलप करता है। जैसे स्पाइरल होता है

आपने देखा होगा जो कोई लताएं होती हैं, इससे जो क्रीपर्स होते हैं, तो उनमें छोटे छोटे वो टेंड्रिल्स बने हुए होते हैं जो कि पकड़ के दीवार को या किसी ऐसे सहारे को वो ऊपर की तरफ चढ़ती जाती है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में करियर का भी महत्व है। दूसरा सिद्धांत जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं वो है कि हमको एसेस करना चाहिए जब कोई अपॉर्चुनिटी हमारे पास आती है, उसको स्वीकार करने से पहले। एसेस माना हमको उसका माना परखना चाहिए कि वो हमारे लिए इस समय फायदेमंद है या नहीं। इंग्लिश तो सब अच्छी बोल लेते हैं अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हुए हो, क्लास टेंथ का भी बच्चा बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेता है, और कॉल सेंटर एक इंडस्ट्री है, क्या उसको ट्वेल्थ का एग्जाम देने से पहले जॉब नहीं मिल सकता? मिल सकता है, इंग्लिश अच्छी बोलता है। और जॉब कहाँ मिलेगी उसको? कॉल इंडस्ट्री में। कॉल इंडस्ट्री में क्या करना होता है, एक कॉल सेंटर में क्या करना होता है? उनको बातचीत करनी होती है, भले चाहे वो हिंदी भाषा में हो या वो अंग्रेजी भाषा में हो। तो हमको ये देखना होगा कि वो अपॉर्चुनिटी हमको पैसा दे रही है 10,000 रूपये की, क्या हमको अपनी पढ़ाई छोड़कर वो 10,000 रूपये की नौकरी लेनी चाहिए? Assess before you accept। इस सिद्धांत का मतलब यही है, आपने 12th खत्म कर लिया, उसके बाद आपको नौकरी नहीं मिल सकती। आप अपना CV बनाकर कहीं मार्केट में दोगे, नौकरी मिल जाएगी आपको, लेकिन क्या उस समय आपको वो नौकरी लेनी चाहिए? कारण बहुत हो सकते हैं, हमारे परिवार का बैकग्राउंड क्या है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, अगर परिवार की जिम्मेदारी हमारी है, घर में फाइनेंसेज हमारे इतने नहीं है, फाइनेंसेज अर्थात धन, हाँ, क्योंकि धन अगर हमारे पास इतना नहीं, रुपया हमारे पास इतना नहीं है और घर की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है तो बात अलग है, क्योंकि हम घर के बड़े हैं और जिम्मेदारी हमारी है, माँ बाप और हमारे भाई बहन है, उनकी हमको देखभाल करनी है। तो उस रूप से अगर हम ये कदम उठाते हैं तो ठीक है, लेकिन हमको ये भी सोचना होगा कि ग्रेजुएशन करके अगर मैं जॉब करता हूं या मैं खुद का अपना कोई कारोबार शुरू करता हूं तो उसका क्या फर्क होगा, उसके क्या फायदे हमारे होंगे। तो ये प्रिंसिपल बात करता है, असेस बिफोर यू एक्सेप्ट। तीसरा प्रिंसिपल जो है, सिद्धांत जो है, वो ये कहता है कि हमको सेंसिटिव होना चाहिए पर्यावरण के प्रति। कोई कारोबार हमको मिल रहा है जो कि लीगल ना हो, कमाई बहुत है, क्या हमको करना चाहिए? ये सोचने की बात है। मिसाल के तौर पे शराब बनाने की जो कंपनियां हैं, या फिर मांस काटने का जो कारोबार होता है, मांस खाना, सिगरेट बनाना, बीड़ी, और मछुआरे का जो पूरा काम होता है, समुद्र तट पे जो पूरा कारोबार चलता है, सी फिशिंग को लेकर, अगर हमारा परिवेश, हमारा बैकग्राउंड, हमारी संस्कृति हमको इन करियर्स में जाने के लिए मना करती है तो हमको नहीं जाना चाहिए। हमको ये भी समझना चाहिए कि इन सब कारोबारों को करने से पर्यावरण को क्या नुकसान पहुंचता है, दूसरे लोगों को क्या नुकसान पहुंचता है, खुद को क्या नुकसान पहुंचता है। तो क्या हम ऐसे करियर को चूज करके सदैव खुश रहेंगे? अगर रहेंगे तो निर्णय आपके हाथ में है, अगर नहीं रहेंगे तो आपको मालूम है कि आपको क्या करना है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम समझ लें कि हम किस दिशा में अपने जीवन को लेकर जाना चाहते हैं। चौथा सिद्धांत ये है कि कई चीजें होती हैं जो कि चेंजिंग होती हैं मगर फिर भी अनचेंज्ड रहती हैं। मिसाल के तौर पे जब ककून तैयार होता है, उसके अंदर उस कीड़े को भी नहीं मालूम होता है कि कुछ समय के बाद जाकर वो बहुत खूबसूरत एक तितली बनेगी, रंग बिरंगी, और उसके अंदर उड़ने की क्षमता होगी। हम सभी के अंदर वो क्षमताएं हैं, वो कुशलताएं हैं, वो काबिलियत है, लेकिन हो सकता है वर्तमान समय में हमको उसकी भासना नहीं है, हमको उसका एहसास नहीं है, क्योंकि हम अभी तैयार हो रहे हैं। और तैयार कैसे होंगे? जिस प्रकार ककून के अंदर जो कीड़ा, जब ककून का समय पूरा हो जाता है और वो ककून को फाड़ के बाहर निकलता है और हरी हरी जो पत्तियां होती हैं उसे खाते हैं, जिससे कि वो

0: पौष्टिक आहार उस कीड़े को मिलता है और वो उसको बोलते हैं लावा बोलते हैं ना, लावा बोलते हैं उसको, और वो लावा फिर धीरे धीरे चलता है, कीड़ा बड़ा होता है और फिर धीरे धीरे उसके अंदर वो डेवलपमेंट होते हैं तितली के, एक बटरफ्लाई के। उसी रूप से हम जब अपनी बाल अवस्था में होते हैं तो स्कूल में जो एजुकेशन हमको मिलती है, अपने समाज में जो एजुकेशन हमको मिलती है, परिवार में रहकर हमको जो एजुकेशन हमको मिलती है, वो हमको तैयार करता है कार्य क्षेत्र के लिए। हमको धीरज रखना होगा अपने ऊपर और हमको मूल्यनिष्ठ जीवन को अपनाते हुए हाँ धीरे धीरे धीरे धीरे अपने आप को शक्तिशाली बनाना होगा, ताकि जब वो समय आएगा, वो सुंदर समय आएगा उड़ने के लिए हमारा, तो हम बहुत खूबसूरती से उड़ पाएंगे। तो ये 14 सिद्धांत होता है, ये चौथा सिद्धांत होता है कि चेंजिंग एंड द अनचेंज्ड। हमें अपने ऊपर धीरज रखना होगा, हमें समझना होगा कि ये हमारी तैयारी का समय है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सुगत नारायण जी, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया करियर के बारे में, करियर प्रिंसिपल्स क्या है, किस तरह से हम अपने करियर को फ्रेम आउट कर सकते हैं, उसके बारे में आपने बताया कि हमें अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए उनके मुख्य करियर की जो सिद्धांतिक वैल्यूज है उसके बारे में आपने शेयरिंग किया, बहुत ही अच्छा लगा। आइए अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक, सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं, सुबत नारायण जी बड़ी अच्छी बातें बता रहे हैं उनके अनुभव के, तो हम सभी को बड़ा अच्छा लाभ मिल रहा है। तो आइए फिर से एक बार सुबत जी का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, करियर काउंसिलिंग की बात जब करते हैं तो खुद को समझना बहुत जरूरी है। तो खुद को कैसे एनालाइज करें, खुद की विशेषताओं को खुद के बारे में जाने कैसे, इस विषय को लेकर थोड़ी सी बातें बताएंगे तो हमारे विद्यार्थी

रखा अपने लिए। और चौथा स्टेप होता है करियर प्रेपरेशन का, यानी कि जो करियर हमने अपने लिए चुना है वहां तक पहुंचने के लिए हमको क्या तैयारी करनी होगी। इन चार स्टेप्स में करियर काउंसलिंग की जाती है। आज हम आपके साथ पहला स्टेप सेल्फ अंडरस्टैंडिंग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग में तीन बातें आती हैं। पहला है इंटरेस्ट, दूसरा है एप्टीट्यूड और तीसरा करियर बिलीफ। इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट माना जो हमें पसंद है करना, हमारी लाइक्स, हमारी डिसलाइक्स, हमारी जो हम पसंद नहीं करते हैं, कोई ऐसी एक्टिविटीज जो कि दूसरों का ध्यान खिंचवाती हैं, वो इंटरेस्ट होती हैं, जिससे कि हमारे अंदर इच्छा किसी जागृत होती है कोई काम करने के लिए, उसको इंटरेस्ट कहते हैं। या कोई ऐसी चीज जो हम आगे चल के करना चाहें, हाँ, उसको इंटरेस्ट करना है। बहुत जरूरी है कि हम इंटरेस्ट का अर्थ सही तरीके से समझें। इंटरेस्ट का मतलब वो होता है कि जो एक्टिविटी या जो कार्य करने से हमको लगता है समय का हमारा सदुपयोग होता है। इंटरेस्ट वो भी एक्टिविटीज होते हैं, ऐसे कार्य होते हैं जिसमें हमें बहुत मजा आता है, हमको आनंद आता है। तो इंटरेस्ट जरूरी नहीं है कि हर समय वो स्थायी रहे। इंटरेस्ट समय और उम्र के हिसाब से बदलते भी रहते हैं। तो जब हम सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं तो हमको ये सोचना बहुत जरूरी है कि ऐसे कौन से इंटरेस्ट हमारे जो कि हमको अच्छा लगता है। पर इंटरेस्ट ऐसे नहीं जो कि हमको निजी जीवन में अच्छे लगते हैं, पर इंटरेस्ट ऐसे जो कि हमको कार्य क्षेत्र में अच्छे लगे, जो हम चाहेंगे कि रोज हम करें तो हमको अच्छा लगे। मिसाल के तौर पर कई लोगों को घूमना बहुत पसंद है, तो घूमने के लिए तो हमको धूप में जाना होगा, बाहर हमको जाना होगा, हा? लेकिन क्या हम ये घूमना रोज करना चाहेंगे? क्या हम चाहेंगे कि हमारा फील्ड वर्क हमारा काम हो जो कि हमको रोज करना हो? इसी तरह से हमको चुनना होगा जब हम इंटरेस्ट की बात करते हैं कि ऐसा इंटरेस्ट हमारा जो कि हमको हमारे वर्क लाइफ में, हमारे कार्य क्षेत्र में हमको आनंद की महसूसता कराए। क्या मैं एक ऑफिस वाला व्यक्ति हूं या मैं फील्ड में काम करने वाला व्यक्ति हूं? मुझको कंप्यूटर के सामने काम करना अच्छा लगता है या मुझको पब्लिक के सामने बीच में रहकर मुझको काम करना पसंद है? इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं। इंटरेस्ट वो चीजें हैं जो कि दूसरों का ध्यान हमारी तरफ आकर्षण करते हैं, या फिर हम किसी एक्टिविटीज से दूसरों की तरफ आकर्षित होते हैं, उसको इंटरेस्ट कहा जाता है। इंटरेस्ट वो भी है जिससे कि हमारी क्यूरियोसिटी, हमारी इच्छा शक्ति जागृत होती है। कोई ऐसी चीजें जो कि हम आगे भी करना चाहें, उसको इंटरेस्ट कहा जाता है, जिसको हम परस्यू आगे करना चाहें। कोई ऐसी एक्टिविटीज जिसे व्यक्ति समझता है वर्थ वाइल, माना हमारा समय का सदुपयोग हुआ, समय हमारा खराब नहीं हुआ। वो ऐसी एक्टिविटीज भी होती जिसमें व्यक्ति बोर नहीं होता, यानी कि उसका मन लगा रहता है, मन उसका भटकता नहीं है, तो वो इंटरेस्ट उसको कहा जाएगा। और इंटरेस्ट वो भी चीजें होती हैं जो कि दूसरों से प्रभावित हो, जैसे कि हम हो जाते हैं, कहते हैं इंटरेस्ट आर अफेक्टेड बाय इन्फ्लुएंसेस। हमने किसी को देखा कि वो बहुत अच्छा स्पोर्ट्स खेलते हैं, हाँ, क्रिकेट आजकल सभी को बहुत अच्छा लगता है, और अपने फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन को देखकर मन करता है कि हम भी क्रिकेट खेला करें, तो उसको इन्फ्लुएंस कहेंगे, उसको प्रभाव कहेंगे, और ये इंटरेस्ट की एक निशानी है। जो दूसरा एस्पेक्ट है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का, वो है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब ये है कि हम पहचाने हमारी काबिलियत क्या है, हमारे गुण हमारे अंदर क्या है, हमारे टैलेंट क्या है। काबिलियत, कुशलता, ये सारी चीजें एप्टीट्यूड होती है। अब इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड में अंतर क्या हुआ? इंटरेस्ट वो चीजें हैं जो कि हमको अच्छी लगती है, हमको आनंद आता है और हम एंजॉय करते हैं करना। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो चीज हम एंजॉय करते हैं और जो चीज हमें बहुत रुचि है जिस चीज को करने की, हमारे अंदर काबिलियत भी हो उसको कर पाने की। तो रुचि बहुत होती है लोगों को कंप्यूटर पे काम करने की, इंटरनेट से बहुत भिन्न प्रकार की जानकारी निकालने के लिए, लेकिन क्या वो काबिलियत हमारे अंदर है? ये हमको प्रश्न अपने से पूछना होगा। तो दोस्तों, एप्टीट्यूड का अर्थ यही है, काबिलियत और टैलेंट। कोई ऐसी चीजें, कोई ऐसे एक्टिविटीज जिसको करने में हम प्राकृतिक

0: आध्यात्मिक रूप से अच्छे हों, सक्षम हों। कोई ऐसी टेस्ट जिससे कि हमको हमारे पोटेंशियल्स का हमको पता चलता हो। कई प्रकार के पोटेंशियल्स होते हैं, कई प्रकार की ऐसी विशेषताएं हमारे अंदर होती है जिससे कि हमको मालूम चलता है कि हम कितने अच्छे किसी कार्य को करने में हैं। कुछ लोगों का लिखने की कला बहुत अच्छी होती है, कुछ लोगों की स्फूर्ति होती है, वो जो शारीरिक श्रम का काम होता है खूब अच्छे से कर लेते हैं, कुछ लोगों की बातचीत करने की कला बहुत अच्छी होती है, कुछ लोगों की समाज में व्यवहार निभाने की, हाँ, संबंध में आने की, हाँ, लोगों को ऐसे सहानुभूति देने की कला बहुत अच्छी होती है। तो भिन्न प्रकार की कलाएं होती हैं, रचनात्मक कला होती है। तो हमारी कला, हमारी काबिलियत, हमारी कुशलता किस तरफ है, ये हमको थोड़ा पहचानना होगा। हमें अपने आप से बात करनी होगी, शांति में बैठकर हमें इस चीज को समझना होगा। एप्टीट्यूड के कुछ उदाहरण मैं आपको और दे दूं। एक्टिविटीज, एप्टीट्यूड वो चीजें होती है जिसमें हम प्राकृतिक रूप से अच्छे होते हैं। हमको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट भी है और साथ साथ हम देखते हैं कि हमारी कुशलता भी उसमें दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए, तो वो एप्टीट्यूड कहलाएगा। एप्टीट्यूड वो एक्टिविटीज होते हैं जिसमें हम मतलब हमारी कुशलता का स्तर बहुत ऊंचा हमारा हो उसमें। मैं आपको एग्जाम्पल दूं उसमें, अगर हम कुशलता की बात करें, एक होता है कि घर में खाना बनाकर खिला देना, एक होता है मेहमान आते हैं तो उनको खाना बना के खिला देना, और एक होता है कि बड़ा एक फंक्शन है, कार्यक्रम है, और उसमें वो खाना पकाकर 100, 200, 500 लोगों को खाना खिलाना। तो घर में जो खाना बनता है, रोज जो खाना बनता है वो तो चलेगा, लेकिन जब हमको ऐसे ही बड़े फंक्शन में 500 लोगों को हमको भोजन खिलाना होगा, तो वो खाने बनाने का स्तर क्या होना चाहिए, वो बहुत ऊंचा होना चाहिए। तो उसको एप्टीट्यूड कहेंगे। जो व्यक्ति उस प्रकार का लजीज, स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन बना सकता है, हाँ, कम समय में, कम सामग्री, जितना हमको चाहिए सामग्री हमको चाहिए, बिना बर्बादी करे हुए, हाँ, उतने ही लोगों को पर्याप्त मात्रा में भोजन भी बना ले, हाँ, समय अनुसार कोई बर्बादी भी ना हो, तो उसको बोलेंगे वो व्यक्ति सक्षम है भोजन बनाने की कला में। तीसरी चीज एप्टीट्यूड को, तीसरा उदाहरण ये है, जो कार्य हम अच्छी तरीके से कर पाए, जो कार्य हम करने में हमको कठिनाई, हमको दिक्कत या हमको डिफिकल्टी, मतलब मुश्किल शब्द हमको ना लगे कि हम उसको करने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं। एप्टीट्यूड वो कार्य होते हैं जिसमें हम ज्यादातर अक्सर करके हम जीत जाते हैं, जीत माना एक्सेल हम करते हैं उसमें। और एप्टीट्यूड वो चीजें हमारे अंदर होती हैं जो कि दूसरों से हमारे ऊपर प्रभावित नहीं होंगे, इंटरेस्ट से प्रभावित होंगे। एप्टीट्यूड आर नॉट अफेक्टेड बाय इन्फ्लुएंसेस, क्योंकि वो कुशलता, काबिलियत तो हमारे अंदर है ही। तो जब हमारे अंदर है ही तो हम किसी से प्रभावित क्यों होंगे, कैसे होंगे।
1: सुगत नारायण जी, बहुत ही सुंदर आपने स्व एनालाइजिंग के बारे में बताया, खुद के बारे में जानने की कैसे हम लोग प्रयास करें, इसके बारे में आपने बहुत ही अच्छे एग्जांपल देकर बताया कि जब तक हम लोग खुद को नहीं समझेंगे तो अपने करियर में आगे मुश्किल हो सकता है। अगर हम दूसरों को देखकर अपने करियर को चूज करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी फिर अंतरात्मा जब जग जाएगी या हमारी कलाएं हमें आवाज देगी कि भाई आप ये करना था आपको और इसमें आपको अच्छा लग रहा है, तो शायद बाद में हम वापस रिटर्न तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन मन में एक पछतावा, एक जो है गिल्टीनेस बना रहेगा। इसलिए उस गिल्टीनेस से मुक्त होने के लिए आपको करियर चुनते वक्त थोड़ा सा टाइम खुद के लिए जरूर देना है, चाहे साल भर भी अगर आप अपने बारे में सोचने के लिए देते हैं तो ये कम है, क्योंकि इसके बाद जिंदगी भर आप खुश रह सकते हैं। अगर आपने अभी टाइम नहीं दिया और जिंदगी भर के लिए मुश्किल मोड़ ले सकते हैं, इसीलिए बहुत जरूरी है करियर चूज करने के लिए आपको वक्त जरूर देना है। थोड़ा सा वक्त अगर आप देते हैं तो आप पूरी जिंदगी को अच्छा बना लेते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा संगीत। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। और सोबत नारायण जी से बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग बातें वो सुना रहे हैं, क्योंकि एक अनुभवी व्यक्ति जब बात करता है तो निश्चित तौर पे सभी को अच्छा लगता है। तो जिस तरह से उन्होंने स्व के बारे में बताया कि खुद का आत्मचिंतन होना चाहिए, खुद के बारे में सोचना चाहिए करियर करने से पहले या करियर चूज करने से पहले, तो आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और उसी चीज को थोड़ा सा और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। सुबत नारायण जी, करियर चूज करने के लिए जो हमारा इंटरेस्टिंग फील्ड है उसे कैसे एनलाइट करें, उसको कैसे समझे, इसके बारे में बताइए। और कभी कभी कुछ करियर ऐसे भी होते हैं कि हमें इंटरेस्ट तो है गीत संगीत में, लेकिन घर वाले उसके लिए बिल्कुल मना

0: कर देते हैं, पहले बोलते हैं पढ़ाई करो, नौकरी करो, फिर बाद में ये हॉबीज में यूज करो, तो ऐसे में थोड़ी सी दिक्कतें हो जाती है। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा और अगर आप स्पष्ट करते हैं इस बात को, निश्चित तौर पर वो भी बहुत अच्छा होगा। जी
1: नमस्कार और आपका स्वागत है एक बार फिर आपके ही कार्यक्रम में करियर काउंसलिंग। मैं हूं शोभित, एक लाइसेंस्ड करियर काउंसलर, और आज के इस सेगमेंट में हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड की। जैसे कि अगर आपको याद होगा पिछले सेगमेंट में हमने कहा था कि अपने करियर को पहचानने के लिए सेल्फ अंडरस्टैंडिंग जरूरी होती है जो कि पहला स्टेप है, तो उसमें इंटरेस्ट हमारा क्या है, माना हमारी रुचियां, हमारे शौक जो हमें अच्छा लगता है करना, और एप्टीट्यूड जो कि हमारी कैपेबिलिटी है, माना हमारी क्षमता, हमारी काबिलियत, हमारी कुशलता, इन दोनों को हमको समझना होता है। इसी को बात को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर मैं आपको मुख्य दो बातों से अवगत कराना चाहता हूँ। पहली बात कि अगर हमारा इंटरेस्ट बहुत हाई है, माना हमारी रुचि किसी कार्य को करने में बहुत ज्यादा है, तो जरूरी नहीं है कि हमारी काबिलियत भी उतनी ही ऊंची हो। मिसाल के तौर पे गीत गाना सभी को पसंद है, कई लोगों को जिनके गले में सुर भी नहीं होता फिर भी वो गीत गाना सीखते हैं, काफी समय भी उसमें देते हैं, लेकिन एक प्लेबैक सिंगर की जो वॉइस क्वालिटी होती है, वो जो काबिलियत और कुशलता एक गॉड गिफ्टेड आवाज में होती है, वो ना होने के कारण प्लेबैक सिंगर वो नहीं बन सकते। भले वो घर में जैसे परिवार होता है तो उनमें वो उनके बीच में वो गा सकते हैं, फ्रेंड्स के बीच में गा सकते हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल रूप में अगर एक प्लेबैक सिंगर बन के गाना होगा तो फिर नहीं होगा। इसी वजह से रुचि अगर बहुत ज्यादा है तो जरूरी नहीं है कि काबिलियत भी हमारी उतनी ज्यादा हो। दूसरी बात यह है कि कई बार लोगों को लगता है कि अगर हमारी रुचि है तो फिर हम वो काम भी बहुत अच्छे से कर लेंगे। कर लेंगे वो अलग बात होती है, क्या हम वर्तमान में कर पाते हैं? तो इस वजह से या तो हम समय दें उस कार्य को सीखने के लिए, जैसे कि जो डिजाइनर होते हैं, तो डिजाइनर को अगर स्केचिंग और ड्राइंग की कला नहीं होगी तो वो डिजाइन कैसे बनाएंगे? मन में जो उन्होंने सोचा है, जो चित्र बनाया है, अगर वो कागज पे उसका रूपांतर नहीं बना पाएंगे जो सोचा है, तो फिर वो डिजाइनर कैसे हुए? तो उसी रूप से हमको उसकी तैयारी करनी होगी, हमको वो चित्रकला सीखना होगा। तो कोई भी ऐसा करियर हो सकता है। दूसरी बात यह है कि इंटरेस्ट जो होते हैं, रुचियां जो होती हैं, वो समय पर बदलती भी रहती हैं। बचपन में जैसे बच्चों को कार्टून देखना बहुत अच्छा लगता है, पर जब वो थोड़े बड़े होते हैं, किशोर अवस्था में आते हैं, तो हम देखते हैं उनको कहानी, सीरियल्स, इस तरह की चीजें देखना अच्छा लगता है। और जैसे ही वो युवा अवस्था में आते हैं, यंग एडल्टहुड में एंटर करते हैं, कॉलेज में आते हैं, तो वहां पर लाइफ, प्रैक्टिकल जिंदगी की जो बातें होती हैं, उनको उस पर चर्चा करना, उसके बारे में समझना, ऐसी चीजों को टेलीविजन पे देखना, विश्व में क्या हो रहा है, वो ज्यादा उनको उनका शौक, उनकी रुचि उसमें बैठती है। तो ये भी स्थायी नहीं रहता, इंटरेस्ट भी स्थायी नहीं रहता, क्योंकि ये समय समय पर उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो हमको क्या समझना है, इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड का मिलाप। अगर हमारे अंदर ये इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड का मिलाप हमको नजर आता है तो वो हमारी काबिलियत, हमारा पोटेंशियल होगा। रुचि और काबिलियत नहीं है, रुचि है पर काबिलियत नहीं है, तो हम वो करियर चूज ना करें। काबिलियत है और रुचि नहीं है तो भी हम वो करियर चूज ना करें। मिसाल के तौर पे लोगों को काबिलियत होती है, रिपेयरिंग का काम बहुत अच्छा कर लेते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल्स है, चार पहिया गाड़ी है, दो पहिया गाड़ी है, काम आता है करना, लेकिन क्या वो उसको करियर बनाना चाहते हैं? क्या उनका रुचि है उस काम में? अगर नहीं है तो फिर उसको अपना करियर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उसमें खुश नहीं रहेंगे। उसी तरह से इंटरेस्ट है, रुचि बहुत है। रुचि क्या है, मिसाल के तौर पे हो सकता है रुचि खाना बनाने में बहुत है, लेकिन काबिलियत नहीं है बनाने की। जैसे कि कुछ लड़कियां होती हैं

0: उनको वैसे माँ बाप भी कहते हैं कि खाना बनाना सीखना है, सीखना है। हाँ, और हो सकता है खुद में भी रुचि हो, पर अगर हम ना कर पाए तो फायदा क्या। ऐसे होते हैं, लड़के भी होते हैं, कई ऐसे लड़के होते हैं जिनको खाना बनाने का बहुत शौक होता है, तो घर में जाएंगे, रसोई में जाएंगे, खाना बनाएंगे, पर वो उस तरह का खाना नहीं बना पाएंगे। तो वो शेफ, जैसे कहते हैं 5-स्टार होटल्स में जो शेफ का काम करते हैं, वो फिर एज अ करियर, एज अ प्रोफेशन वो नहीं ले सकते। तो इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड का मिलाप, जो कि पोटेंशियल होता है हमारी, हमारी मतलब एक तरह से कुशलता, काबिलियत हमारी जो होती है, वो हमको फाइंड करना, ओवरलैप इन दोनों का। हम लोग साइकोमेट्रिक टेस्ट यूज करते हैं इसका आंकलन करने के लिए। साइकोमेट्रिक टेस्ट ऐसे प्रकार के मतलब एक प्रकार के शीट्स होते हैं जिसमें हम क्लाइंट का, स्टूडेंट का, हम सारा इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड का प्रोफाइल उसके अंदर, वो 2 घंटे का टेस्ट होता है जो कि वो आ जाता है, और हम लोग एनालिसिस, उसका अध्ययन, विश्लेषण करते हैं, तो हम बता पाते हैं कि आपका जो पोटेंशियल है किस क्षेत्र में ज्यादा हाई है। तो मैं आपको बताऊं, पोटेंशियल 5 प्रकार के होते हैं। लिंग्विस्टिक पोटेंशियल, जो कि बोलने की कला होती है, लिखने की कला होती है। दूसरा एनालिटिकल लॉजिकल पोटेंशियल, जो कि तर्क करने की, अध्ययन करने की कला होती है। तीसरा स्पेशियल पोटेंशियल, जो कि रचनात्मक कला, सोच विचार, हम ऐसे चित्र जो मन में सोचा है उसको फिर हम कागज पर बना पाए, तो वो जो कला होती है उसको स्पेशियल पोटेंशियल कहते हैं। चौथी कला होती है पर्सनल पोटेंशियल, माना व्यवहार की कला, लोगों के साथ मिलनसार होना। और पांचवी होती है फिजिकल मैकेनिकल, माना शारीरिक श्रम या मशीन्स के साथ जो काम किया जाता है, वो कई लोगों को हम देखते हैं रिपेयरिंग का काम अच्छा लगता है, पंखे हैं, घर में रिमोट कंट्रोल है, मोबाइल फोन है, उसको खोलना, ठीक करना। हाँ, तो ये सारी चीजें फिजिकल मैकेनिकल में आती है। स्पोर्ट्स भी फिजिकल मैकेनिकल में आता है। और ये 5 प्रकार के पोटेंशियल होते हैं। हमारा इंटरेस्ट किस पोटेंशियल में है और हमारा एप्टीट्यूड किस पोटेंशियल में है, इसको हम लोग मार्क्स देते हैं इस टेस्ट के द्वारा, और हमको मालूम चलता है कि हमारा पोटेंशियल क्या हाई है। और उसी से संबंधित जो करियर्स होते हैं, जैसे कि लिंग्विस्टिक्स में काउंसलर आ गया, टीचर आ गया, लॉयर आ गए, हाँ, तो वो हम करियर्स उनको रेकमेंड करेंगे कि आप उसमें अपना करियर बनाएं। स्पेशल पोटेंशियल हुआ जैसे कि फैशन डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर, क्योंकि उसमें आपको रचनात्मक कला चाहिए होती है। आर्किटेक्ट होते हैं जो कि मकान बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, उनको भी ये कला उनके अंदर होनी चाहिए, ये जो पोटेंशियल उनके अंदर होना चाहिए। तो आप भी ये कर सकते हैं अगर कुछ समय शांति से बैठे अपने साथ और ये समझें कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है। और सबको आइडिया होता है आज के समय में कि वो आगे चलकर क्या बनना चाहते हैं, तो क्या हम बनना चाहते हैं उसमें हमको क्या कारोबार करना पड़ेगा, क्या कार्य, हमारे टास्क, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी क्या होगी उस कार्य को करने के लिए, ये हम पता करें और खुद अपने आप से पूछें, क्या मैं इसको करने में इंटरेस्टेड हूँ, और अगर इंटरेस्टेड हूँ तो क्या मेरे अंदर वो केपेबिलिटी है। अगर इन दोनों का ओवरलैप होता है तो माना हम वो करियर अपने लिए सोच सकते हैं, हम वो निर्णय ले सकते हैं कि इसको हम अपना करियर बनाएं। ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। हम अगले सेगमेंट में देखेंगे, बात करेंगे करियर बिलीफ के बारे में। हाँ, ये कुछ धारणाएं होती, मान्यताएं होती हैं, तो जिसमें कहा जाता है जैसे कि जो लड़कियां होती हैं उनके लिए कहते हैं कि पुलिस लाइन, और जो पुरुष प्रधान जो क्षेत्र होते हैं उसमें उनको नहीं जाना चाहिए, उनके लिए टीचिंग जॉब बहुत अच्छा रहता है, या फिर कुकिंग रिलेटेड, हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड, एविएशन, जैसे एयर हॉस्टेस वाले जो काम होते हैं, बस वहीं तक वो सीमित रहेंगे। और ऐसे ही पुरुषों के लिए कहा जाता है कि वो महिला प्रधान क्षेत्र में ना जाएं। तो महिला प्रधान क्षेत्र क्या हुआ, जैसे कि टीचिंग हो गए, नर्सिंग हो गया, काउंसलिंग हो गया। तो एज अ करियर काउंसलर मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि कोई भी करियर महिला प्रधान या पुरुष प्रधान नहीं है। एक न्यूट्रल वे में रहकर हमको सोचना होता है।
1: सुब्रत नारायण जी, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, बहुत ही अच्छा लगा। और आइए अभी लेते एक और छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत, उसके बाद फिर बातें करेंगे करियर काउंसलिंग की, थोड़ी सी बातें जो रह गई है वो भी सुनी लेते हैं सुबह जी से। सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत।

0: नमस्कार। करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम के आखिरी मोड पे हम लोग पहुंच गए हैं। सुबह जिसे अच्छी बातें हो रही है करियर काउंसलिंग की, आशा करूंगा उनकी बातें सुनकर आपको अपना करियर फ्रेम करने में बहुत ही आसानी हो रही होगी। तो चलिए, करियर चूज करते वक्त उसके कुछ मान्यताएं हैं, कुछ बिलीफ सिस्टम जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उसके बारे में भी प्रकाश डालें। जी शोभा जी,
1: नमस्कार एंड वेलकम टू योर शो करियर काउंसलिंग। मैं हूं शोभित नारायण अग्रवाल और आज हम बात करेंगे करियर बिलीफ के बारे में। करियर बिलीफ है क्या? ये ऐसी मान्यताएं हैं, ऐसी धारणाएं हैं जो कि हम किसी भी करियर के प्रति रखते हैं। कारण कुछ भी हो सकता है। करियर बिलीफ एक प्रकार के आइडियाज होते हैं किसी करियर के प्रति। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर, डॉक्टर बनने के लिए MBBS करना होता है, ये कोर्स का नाम है। और डॉक्टर को समाज में किस निगाह से देखा जाता है? भगवान के रूप में। कहते हैं कि आप तो डॉक्टर नहीं, आप भगवान हैं, जो आपने हमारे परिवार वाले को, आपने हमारे स्वजन को आपने ठीक कर दिया। उसी रूप से टीचर को भी ऊंची निगाह में देखा जाता है। लेकिन क्या एक कारपेंटर को उस रूप से देखा जाएगा? कहते हैं कि ये तो बढ़ई का काम करता है। तो ये क्या हुआ? ये एक मान्यता, एक धारणा है। करियर बिलीफ बहुत ही गहरी कन्विक्शंस होते हैं किसी करियर के प्रति। जैसे कि एक फैशन डिजाइनर, तो एक फैशन डिजाइनर को समाज में किस रूप से देखा जाता है? क्या लड़के इसको अपना करियर बना सकते हैं या ये करियर केवल लड़कियों के लिए है? करियर बिलीफ हमेशा एक्यूरेट, सटीक नहीं होते हैं। माना जो हमने मान्यताएं, धारणाएं किसी करियर के प्रति बनाई हैं, जरूरी नहीं कि वो सटीक हो। ये एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन को भी पास ऑन किया जाता है। कैसे और क्यों? क्योंकि हम जिस पर्यावरण में रहते हैं, जिस संस्कृति, जिस कम्युनिटी को हम बिलोंग करते हैं, वहां पर जो बातचीत होती है और बातचीत करके उसका जो सारांश उस कम्युनिटी पर फैलता है, वो उस कम्युनिटी के लोग मानते हैं, उसको स्वीकारते हैं। और वही बातें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती हैं। इस वजह से वो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पर पास ऑन होता है। मिसाल के तौर पे एक करियर बिलीफ ये है कि लड़कियों को तो एजुकेशन में ही जाना चाहिए, वो एक साफ सुथरा काम है, उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बुद्धि इस्तेमाल करनी होती, बच्चों को पढ़ाना होता है, तो वो एक सुरक्षित प्रोफेशन है लड़कियों के लिए। उसी तरह से ये एक

करियर बिलीफ माना एक बहुत ही कड़ा प्रभाव हाँ करियर के विकास के प्रति। पुलिस तो पुलिस लाइन में लड़कियों को जाने के लिए माँ बाप प्रेरणा नहीं देते हैं, उसी तरह से हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में लड़कों को माँ बाप प्रेरणा नहीं देते हैं जाने के लिए। आइए दोस्तों हम समझते हैं कि करियर बिलीफ की परिभाषा क्या है। करियर बिलीफ एक प्रकार से हमारी जो दृष्टिकोण है, हमारी जो सोच है, हमारे विचार, केवल हमारे ही नहीं पर हमसे संबंधित हम जिस समुदाय में रहते हैं, जिस संगठन में रहते हैं, वो जो संस्कृति है, वहां की वेशभूषा, वहां की जाति, वहां का जो धर्म, ये सारी बातें जो है मिलकर एक प्रकार की धारणाएं बनाती हैं उस समाज की। वो रचता है लोगों के मन बुद्धि और उनके एक प्रकार से जैसे कि कड़े विचार की ऐसा ही होना चाहिए। अगर लड़की है तो उसको ऐसा ही करना चाहिए, अगर लड़का है तो उसको ऐसा ही करना चाहिए, सर्विस क्लास के लोग इस प्रकार के होते हैं, हाँ बिजनेस क्लास के लोग इस प्रकार के होते हैं, और उसमें धन का महत्व क्या है, तो अगर वो इस प्रकार के जॉब में जाएंगे तो इतना धन मिलेगा, बिजनेस में रहेंगे तो इतना ज्यादा कमाई हो सकती है। तो ये सब क्या है, करियर बिलीफ, ये सारे एक प्रकार की मान्यताएं हैं, दृष्टिकोण हैं, धारणाएं हैं। बच्चा बच्ची को ये सब बातें नहीं मालूम होते हैं, वो इनसे परे होते हैं। और जैसे मैंने पहले के सेगमेंट्स में आपको बताया था कि इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड का ओवरलैप पोटेंशियल बताता है बच्चे के बारे में, और वो पोटेंशियल के आधार से अगर हम करियर को डिसाइड करें तो बच्चे के हित में होता है, परिवार के हित में होता है। लेकिन आज के समय में कहीं ना कहीं ये जो धारणाएं मान्यताएं बनी हुई हैं करियर को लेकर, और माँ बाप की स्वयं की इच्छाएं होती हैं, और वो अपनी इच्छाओं को अपने बच्चों के ऊपर चाहते हैं कि वो बच्चे उनको माने, स्वीकारें और उसी राह पर चले तो उनका भला होगा, सोचना तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप खुद बताइए, खुद सोचिए, इस प्रकार से उनके करियर को डिसाइड करना क्या उनके पोटेंशियल को जस्टिफाई करता है, क्या उनके पोटेंशियल से न्याय करता है? हमें ये प्रश्न अपने आप से पूछना होगा। ये जो मान्यताएं होती कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि सामाजिक अनुभव के आधार से ये मतलब ये फैलता है। अब हम बात करते हैं एयरफोर्स की, कितने माँ बाप चाहेंगे कि उनके बच्चे आर्मी में जाएं, मिलिट्री में जाएं, हाँ देश सेवा की भावना के बारे में जो बात होती है कितने माँ बाप चाहेंगे। वहां पर जो कड़ा परिश्रम करना होता है, हाँ और परिवार से दूर रहकर उनको जो देश की सेवा करनी होती है, वो एक अलग प्रकार का, पूरा एक अलग प्रकार का, जैसे कि एक करियर ही बिल्कुल अलग प्रकार का है। तो ये तो बात हुई थी आर्मी के बारे में। हम अगर बात करें जर्नलिज्म जहां पर पत्रकार लोग होते हैं, आपने टेलीविजन पे देखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हाँ रिपोर्टिंग होती है, न्यूज पढ़ा जाता है, सुनाया जाता है, और प्रिंट मीडिया में देखा जाए तो जैसे अखबार में जो सारी खबरें मिलती हैं तो उसको भी लिखा जाता है। तो हर संस्कृति में, हर समाज में करियर को एक एक एक दृष्टि के रूप से देखा जाता है कि वो अच्छा है कि वो बुरा है। और अगर सही करियर को चुनाव बच्चा नहीं कर पाता है किसी भी कारण से, तो आगे चलकर उसको दिक्कत होती है, जिसे कहते हैं मिड करियर क्राइसिस। मिड करियर क्राइसिस वो होता है कि जब व्यक्ति अपने 30 या 40 की उम्र में आता है, उसको लगता है कि मैंने अपने जीवन में क्या किया, मैं ये नहीं करना चाहता था, मुझे खुशी नहीं मिली है, मैं अपना वर्क लाइन चेंज करूंगा और मैं कुछ ऐसा करूंगा जिसमें मुझे बहुत खुशी मिले, संतोष मिले, हाँ पैसा भी कमाए पर साथ ही साथ मैं वो करना चाहता हूं जिसमें मुझे बोझ ना लगे कि हाँ मंडे आया है तो मुझको ऑफिस जाना पड़ेगा, मुझको फिर वही काम करना पड़ेगा। करियर बिलीफ खुद कुछ प्रकार की स्वयं की बनाई हुई धारणाएं भी होती हैं। मिसाल के तौर पे जाति,

0: अगर जैसे जाति बनी हुई है भारत में जो चार वर्ण बने हुए हैं, हाँ, ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण, तो लोग अपने आप को ये भी सोचते हैं कि अगर हम इस जाति के हैं तो हमको यही काम करना चाहिए, हम ब्राह्मण हैं तो हम ब्राह्मण लोग ये काम नहीं करेंगे, ब्राह्मण लोग ऐसे प्रोफेशन में नहीं जाएंगे, हाँ, छुआछूत की जो बातें होती हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। क्योंकि अभी जो समय आ गया है वो ग्लोबलाइजेशन का है। ग्लोबलाइजेशन माना विश्व स्तर पे कारोबार करने का, राष्ट्र स्तर पे कार्य करने का। अभी तो बातचीत बहुत जल्दी होती है, इंटरनेट आ गया है, फेसबुक है, सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, और इस माध्यम से हम देखते हैं कि जानकारी भी बहुत सहज हो गई प्राप्त होना, और ट्रैवलिंग भी बहुत सहज है। तो कोई भी व्यक्ति एक जगह सीमित नहीं रहता है, उनकी विकास की जो चांसेस हैं वो अनलिमिटेड हो गई हैं। वो कहीं पर भी जाकर काम कर सकते हैं, और विश्व में अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, अगर हम अपने देश में कैपिटल्स की बात करें, तो काम को छोटा बड़ा नहीं देखा जाता है, काम को काम के रूप में देखा जाता है। मैंने अपने अर्लियर सेगमेंट में एग्जाम्पल आपको दिया था होटल मैनेजर का, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम ये समझेंगे कि हमको मान्यताओं धारणाओं में नहीं जाना चाहिए, न्यूट्रल होकर करियर को डिसाइड करना चाहिए। ये भी नहीं सोचना चाहिए कि आर्ट्स तो कमजोर बच्चे लेंगे और साइंस तो जो होशियार बच्चे लेंगे, ऐसा नहीं है, या कॉमर्स है वो कमजोर बच्चे लेंगे, नहीं। अगर बच्चे की कुशलता मतलब आर्ट्स में है, हाँ, उसको हिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है तो आगे चलकर वो हिस्टोरियन बन सकता है, ये भी एक बहुत अच्छा करियर है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जाकर वो भी सरकारी जॉब होती है, अच्छा वेतन मिलता है और उसमें वो अच्छा सर्विस कर सकते हैं और अपने लिए कमाई भी अच्छी कर सकते हैं। करियर बिलीफ के बारे में इस सेगमेंट में इतना ही है। अगले सेगमेंट में फिर हम मिलेंगे, तब तक कुछ विचार करिएगा, कुछ अपने अपने साथ साइलेंस में बैठकर ये सोचिएगा कि मुझे क्या करना है।
1: चलिए सुभद जी, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया करियर बिलीफ के बारे में, और ये एक ऐसा मुद्दा था जहां पर हमें इसको ठीक से समझने की जरूरत थी, और आपने बहुत ही अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से समझा कि कैसे एक डॉक्टर और एक फिलोसोफर या फिर एक राइटर, सबकी अलग अलग जो है समाज में मान्यता है, और आप किस मान्यता को प्राथमिकता देते हैं, आप कैसे लोगों से प्रेज चाहते हैं, अप्रिशिएशन चाहते हैं, अगर उस चीज पर अगर आप फोकस करते हैं तो भी आप अपने करियर को फ्रेम आउट करने में बहुत ही अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये भी एक मोटिवेशन मिलता है यहाँ पर, ये एक नई चीज मुझे आज समझने को मिला आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए विद्यार्थी मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8। आपका हार्दिक स्वागत है ज्ञान चिंतन में, एक ऐसा रेडियो कार्यक्रम जहां हम विचारों की गहराई में उतरकर ज्ञान, जीवन, समाज, संस्कृति और आध्यात्म से जुड़े विषयों पर सार्थक संवाद करते हैं। यह कार्यक्रम न केवल जानकारी देता है बल्कि सोच को नई दिशा भी प्रदान करता है। तो आइए आत्ममंथन और बौद्धिक समृद्धि की इस प्रेरक यात्रा में हमारे साथ जुड़िए और चिंतन को जीवन का हिस्सा बनाइए।
1: नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं हूं आपका मित्र विवेक जैन और आज हम एक ऐसे विषय पर चिंतन करने जा रहे हैं जिसकी तलाश हर इंसान करता है और उसे पाने के लिए अक्सर बाहर की दुनिया में भटकता रहता है। यह विषय है आंतरिक शांति। आंतरिक शांति एक ऐसी स्थिति है जिसमें मन स्थिर, शांत और संतुलित रहता है। यह मानसिक तनाव, चिंता और नकारात्मक विचारों से मुक्ति पाने की अवस्था है। मित्रों, आज हम बाहरी रूप से सुविधाओं से भरपूर हैं, लेकिन भीतर से अशांत हैं। हमारे पास तकनीक है, साधन है, उपलब्धियां हैं, फिर भी मन में बेचैनी, तनाव और असंतोष बना रहता है। कारण स्पष्ट है, हमने जीवन की गति तो बढ़ा ली है लेकिन मन को थामना भूल गए। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में आंतरिक शांति प्राप्त करना एक चुनौती हो सकता है, लेकिन कुछ सरल तरीके अपनाकर इसे संभव बनाया जा सकता है। आंतरिक शांति पाने का पहला और सबसे प्रभावी तरीका है स्वयं से जुड़ना। दिन भर हम दूसरों की अपेक्षाओं, जिम्मेदारियों और समस्याओं में उलझे रहते हैं, लेकिन खुद से बात करने का समय नहीं निकालते। प्रतिदिन कुछ मिनट मौन में बैठना, अपनी सांसों पर ध्यान देना, मन की गति को देखना, यह एक छोटा सा अभ्यास है जो हमें भीतर की शांति से जोड़ सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र है वर्तमान में जीना। हमारा मन या तो अतीत की स्मृतियों में उलझा रहता है या भविष्य की चिंताओं में भटकता रहता है। अतीत अब बदला नहीं जा सकता और भविष्य अभी आया नहीं है। जीवन तो केवल इसी क्षण में है। जब हम वर्तमान को पूरी सजगता से जीते हैं तभी मन शांत होता है। श्रोताओं, आंतरिक अशांति का एक बड़ा कारण है नकारात्मक सोच। हम अक्सर वही बातें याद रखते हैं जो हमें दुख देती हैं। आवश्यकता है दृष्टिकोण बदलने की। हर परिस्थिति में कुछ न कुछ सीख छिपी होती है। सकारात्मक सोच कोई जादू नहीं बल्कि एक अभ्यास है जिसे रोज अपनाया जा सकता है। आंतरिक शांति के मार्ग में क्षमा का विशेष महत्व।

0: है। जब हम दूसरों के प्रति क्रोध, ईर्ष्या या शिकायत पालते हैं तो सबसे अधिक नुकसान हमारा ही मन झेलता है। क्षमा करना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मिक शक्ति है। माफ करने से सामने वाले का नहीं हमारा मन हल्का होता है। मित्रों, संतोष और कृतज्ञता भी आंतरिक शांति की कुंजी है। हम जो नहीं है उसी पर ध्यान देते हैं और जो है उसे अनदेखा कर देते हैं। प्रतिदिन जीवन में मिली छोटी छोटी खुशियों के लिए आभार व्यक्त करना सीखें। यह आदत मन को गहराई से शांत करती है। प्रकृति भी हमें शांति का संदेश देती है। प्रकृति के सानिध्य में समय बिताना, जैसे सुबह की सैर, पेड़ों के बीच कुछ पल, आकाश को निहारना, यह सब मन को सहज रूप से शांत करता है। प्रकृति हमें सिखाती है कि बिना शोर किए भी संतुलन में कैसे रहा जाए। आंतरिक शांति का एक और सशक्त माध्यम है आध्यात्मिकता और प्रार्थना। इसका अर्थ केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं बल्कि जीवन के गहरे अर्थ को समझना है। जब हम किसी उच्च शक्ति पर विश्वास रखते हैं तो जीवन की कठिनाइयां भी हमें विचलित नहीं कर पाती। अंत में श्रोताओं, इतना ही कहना चाहूंगा कि आंतरिक शांति कोई बाहरी वस्तु नहीं जिसे खरीदा जा सके, यह हमारे भीतर ही विद्यमान है। आवश्यकता है तो केवल उसे पहचानने, अपनाने और रोजमर्रा के जीवन में उतारने की। इसी संदेश के साथ मुझे अनुमति दीजिए, फिर मिलूंगा एक नए चिंतन के साथ। बने रहें हमारे साथ पुनेरी आवाज 107.8 FM पर और सुनते रहें इसी तरह प्यार से, खुश रहें, खुशियां बांटें। प्रिय श्रोताओं, ज्ञान चिंतन के आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमें आशा है कि आज की चर्चा ने आपके मन में नए विचारों को जन्म दिया होगा और सोच को एक नई दिशा प्रदान की होगी। ज्ञान और चिंतन की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। फिर मिलेंगे ज्ञान चिंतन में एक नई सोच, एक नई दिशा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और शुभकामनाएं। खुश रहें, खुश रहें।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। मैं स्मिता जयकर, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी, और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीजें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको

0: नहीं करने वाला हो। सपोज पांव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया, जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा। तो फिर उस घाव के पांव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी। जितनी और जोर से लगेगी, दर्द और जोर से होगा, हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा। अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा? और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दें या भरते जाएं? घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है, लेकिन तुरंत क्या करेंगे? उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है। अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दाग लग जाएगा। और यहां कुछ गिरा, यहां कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीजें गिरती गई गिरती गई गिरती गई। लास्ट कब साफ किया? और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया? कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: मित्रांशिवाय आयुष्य अपूर्णच, हसणं भांडणं आणि गाणं सगळं शेअर
1: करायचं.
0: जुन्या दिवसांची आठवण आली की मन पुन्हा शाळेत जातं.
2: लकडी की काठी, काठी पे घोडा,
0: मनात पीठ वाजल्या की शरीर आपोआप फिरकतं. त्याचसोबत
3: गावाची आठवण, मातीचा सुगंध.
0: जुन्या गाण्यांचा तोच सुगंध, तीच नशा.
1: पहला नशा, पहला खुमार.
0: घेऊन येत आहे आपल्यासाठी पुणेरी आवाज 107.8 FM. आनंदी रहा, आनंद लुटा.
4: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी. सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं. वेलकम सिस्टर.
5: ओम शांति.
4: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन.
5: थैंक यू सो मच.
4: आपने कहा था कि सोल खुद को भी देखना है, दूसरे को भी देखना है और जानना है. लेकिन सोल की क्वालिटीज और सोल क्या है और सोल मैं हूं, इसको पक्का करने के लिए एज एन एक्टर, जैसे मैं एक कैरेक्टर प्ले करता हूं, तब मैं लिखता हूं एक पेपर पे पूरा एक किरदार बना के स्टार्ट लिविंग इट. तो डिटेल में थोड़ा जाना बहुत जरूरी है.
5: हर रोज सेंटर पर जो हम परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं, जिसको मुरली कहते हैं, हर रोज परमात्मा बच्चों को क्या कर रहे हैं, रोज याद दिला रहे हैं कि तुम आत्मा हो और कैसी आत्मा हो. तो हर रोज जो मुरली मिलती है, जो हम क्लास, स्पिरिचुअल क्लास सुबह सुबह सुनते हैं सेंटर पे, वो एक्चुअली ये कैरेक्टर स्केच है. जैसे आपने कहा ना, एक कैरेक्टर लिया, उसकी पूरी डिटेल में गए, ये है, ये है, ये है, ये है. ऐसे ही जब हम मुरली सुनते हैं सेंटर पे, वो हर रोज डिटेल में जाकर हमारे सबकॉन्शियस के अंदर वो जो इन्फॉर्मेशन जाएगी, वो आत्मा कैसी है और सारा दिन कैसी होनी चाहिए, वो फिट हो जाता है. दैट्स व्हाई इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग. रोज वो रीअफॉर्मेशन चाहिए, रोज वो इन्फॉर्मेशन चाहिए कि तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो, ऐसे हो. ऐसे बात करती है ऐसी आत्मा, ऐसे व्यवहार में आती है. कैसा हमें बनना है, वो रोज परमात्मा के महावाक्यों से हमें मिलता है. एंड अगर हम उसको रोज स्टडी करते हैं, तो जैसे आपने कैरेक्टर स्केच बनाया, तो अगर रोज उसको देखेंगे, तो देखते देखते धीरे धीरे उसको पता होगा ना कि हमें क्या करना है, कैसे.
4: परफॉर्मेंस ऑल्सो, जब कैरेक्टर से बाहर निकल जाऊं, आउट ऑफ कैरेक्टर, तो पता चल जाता, अरे ये तो पुलिस ऑफिसर है.
5: तो सेम चीज सारा दिन हो जाएगी.
4: हाँ.
5: कि अगर हमारा कैरेक्टर क्या है, अब ये है, हम सोल कॉन्शियस हैं, अगर थोड़ा सा भी उससे बाहर चले जाएं, तो हमें पता चल जाएगा. ये कब होगा? अगर रोज हम वो परमात्मा महावाक्य सुनेंगे, रोज सुनेंगे, यहाँ फिट करेंगे, डायरी में नोट्स बनाएंगे, दिन में बीच बीच में उसको देखेंगे कि मुझ आत्मा को आज सारा दिन कैसे चलना है, औरों को किस नजरिए से देखना है. वो करते करते धीरे धीरे वो चीज, आत्मा की जो सोल कॉन्शियसनेस की जो स्थिति है, वो इमर्ज होती जाएगी.
4: म्यूजिक भी जब सीखते हैं सिस्टर,

0: अपने कैरेक्टर में रहेंगे, दूसरे नहीं करके आएंगे। बट इम्पोर्टेंट इज अगर प्रिपेयर करे बिना चले गए। आज हम कैसे कर रहे हैं, सुबह उठे, उठते ही लेट हैं क्योंकि लेट सोते हैं, तो उठते ही हम एक हरिड नोट पे हैं आजकल कि लेट हो गया, जल्दी उठो, फैमिली को उठाओ, तैयार करो, चलो गाड़ी में बैठो, ऑफिस पहुंचो, ऑफिस गए, अपनी सीट पर बैठ गए, काम करना शुरू कर दिया। जस्ट सी हाउ वी आर गोइंग फ्रॉम वन सीन टू अनदर सीन। पहले पेरेंट बने, फिर रोड पे ट्रैवलर बने, फिर ऑफिस में जाके जो पोजीशन है वो बने, लेकिन ये सारे रोल्स प्ले करने के लिए जो कैरेक्टर की सुबह तैयारी करनी चाहिए थी वो नहीं की, तो फिर नहीं होगा, चांसेस नहीं है गलती होने के,
1: बहुत है।
0: ओनली बिकॉज वी आर गोइंग विदाउट प्रेपरेशन।
1: एक हमारा पीरियड आया था 80s 90s में, बिटवीन 80 एंड 2000 में, जबकि एक एक्टर 10-10, 15-15, 20-20 फिल्में साइन कर लेता था, तो फुल डे तो एक ही दिन में 4 प्रोड्यूसर को जरूरत होती थी, तो वो 2-2 घंटे 3-3 घंटे देता था, तो इतना खराब काम करके जाते थे वो लोग। और जब फिल्में देखो तो लगता था कि सेम एक्टर सेम रोल सब पिक्चर में एक जैसा कर रहा है।
0: लेट्स टेक दिस लाइन, सेम एक्टर सेम रोल सब पिक्चर में एक जैसा कर रहा है, क्योंकि
1: कैरेक्टर में नहीं,
0: कैरेक्टर में नहीं है ना। ऐसे हम भी सुबह से उठे, अपने आप को तैयार किया, बच्चों को तैयार किया, भागे, गाड़ी ली, पहुंचे, एक के बाद एक काम किया, शाम को उसी तरह से भागते हुए वापस आए, एक एक सीन कैसा लगेगा।
1: आज 1000 गाने गाने के बाद भी कोई भी सिंगर कभी नहीं बोलता कि मैं मुझे आ गया है, वो रोज सुबह 4 बजे उठ के आज भी प्रैक्टिस करते, रियाज करते, रिहर्सल करते।
0: जब ये सब चीजों के लिए इतना रिहर्सल, तो जीवन आज सारा दिन कैसे जीना है उसके लिए सुबह बिना तैयारी किए कैसे जा सकते हैं? हाउ इज इट पॉसिबल?
1: उसको ज्यादा तवज्जो ज्यादा वो देते हैं, उसमें इम्पोर्टेंस देते हैं लाइफ में उन चीजों को।
0: रोल को इम्पोर्टेंस दिया लेकिन कैरेक्टर प्रिपेयर करके नहीं गए। मूवी को इम्पोर्टेंस दिया लेकिन कैरेक्टर प्रिपेयर करके नहीं गए। विल वी डू वेल?
1: नो।
0: देन और यही अगर कैरेक्टर प्रिपेयर करके चले गए तो आपने कहा फिर वहां जाके मेहनत नहीं करनी पड़ती, राइट? मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो नेचुरल आएगा। तो कितना टाइम बचा, गलतियां नहीं हुई, रीटेक्स नहीं हुए, तो सुबह की 1 घंटे की तैयारी सारा दिन परफॉर्मेंस के दौरान टाइम को बचाएगी।
1: सिस्टर, जब मैं हॉलीवुड की फिल्म इंग्लिश फिल्म करता था उसमें तो एक दिन पहले याद भी करके जाना पड़ता था। ये नहीं कि सेट पे आए, हम डायलॉग अभी मिला, मैं भी आता हूँ मेकअप रूम में, 100 बार पढ़ रहे, सब लोग वेट कर रहे, नोबडी वेट।
0: तैयारी अगर की तो सारा दिन क्या होगा, कम टाइम में
1: अच्छा काम होगा, ज्यादा काम होगा।
0: कम टाइम में अच्छा काम होगा, ज्यादा काम होगा। अब यही अगर हमने सुबह उठकर सारा दिन की तैयारी की, मतलब मैं कौन हूँ, उस परमात्मा का मैं बच्चा कैसा हूँ, सबके साथ मुझे आज कैसे रहना है, ये सारा कुछ अंदर भरा, तो कैरेक्टर स्केच यहाँ मिला, फिर मेडिटेशन में बैठे, उस कैरेक्टर को इंटरनलाइज कर दिया कि ये ऐसा होगा, ऐसा सारा दिन में ऐसे होगा, ऐसे ऐसे। अब अगर ये तैयारी करके सारा दिन में गए तो आपने कहा गलतियां नहीं होंगी, काम अच्छा होगा एंड ज्यादा काम होगा। यही 3 चीजें तो हमें चाहिए सारा दिन में, ये 3 चीजें चाहिए ना सारा दिन में, कि गलतियां ना हो, काम अच्छा हो और काम ज्यादा हो, क्योंकि आज हमारे पास बहुत कुछ है करने के लिए। सो वी कांट अफोर्ड टू लूज टाइम इन आर मिस्टेक्स, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, वी कांट अफोर्ड टू लूज एनर्जी द होल डे। सुबह उठकर एक वैल्यू, जैसे हमने कहा लवफुल बींग, फिर आत्मा की तीसरी वैल्यू पीस, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, इस कैरेक्टर को बनाए आज सुबह बैठकर कि शांत स्वरूप आत्मा आज सारा दिन कैसे रहेगी, पीसफुल बीइंग, काम नहीं हो रहा उसके आसपास, लोग टाइम पर नहीं पहुंच रहे, लोग पहुंचे लेकिन तैयार नहीं है, ये पीसफुल बीइंग कैसे फेस करेगी सबको। विजुअलाइज, इंटरनलाइज, प्रिपेयर, प्रिपेयर थॉट क्रिएट करके वहां रिकॉर्डिंग कर दी। अब जाएं सारा दिन में, आज तो क्या हो रहा है, एक कार भी आगे थोड़ा सा स्लो चल रही है,

0: speeches are horn baja.
1: So there's so much impatience because I did not prepare for peace in the morning. वो दिखता है ना कितनी अधैर्यता है, अशांति है. यहाँ से घुसते हैं, यहाँ से घुसेंगे, इतनी सी जगह मिलेगी इधर, क्योंकि आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड. ये जो हम इस तरह से सिर्फ ड्राइव भी कर रहे हैं, दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम. हम कहते टाइम नहीं था ना इसलिए. इट्स नॉट अबाउट टाइम, इट्स अबाउट मन की स्थिति.
0: हैबिट भी हो गया.
1: मन की स्थिति अशांत है, वो तो फिर रोज ऐसे रहेंगे. अब अगर आज हम सुबह प्रिपेयर करें कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, आज मुझे एक घंटा ड्राइव करना है ऑफिस पहुंचने के लिए, उस ड्राइव पर बहुत कुछ होगा. मैं शांत स्वरूप आत्मा कैसे जाती हूं, तैयारी हो गई. अब वो ड्राइव क्या हो जाएगी, स्मूथ एक्सपीरियंस. नहीं तो वो ड्राइव हम कहते हैं आजकल ट्रैफिक में इतना स्ट्रेस है. See how everything will change.
0: I don't know why and how it happens. Mera ek driver tha jo red light pe bhi horn bajata tha. Maine bola red light hai. Nahi sahab abhi time ho gaya, aane wali hai green. To bola aane, to main usko jaga raha hu. Main so raha hai kya aage aadmi.
1: Ah,
0: it's a habit.
1: It's not a habit.
0: Impatience.
1: Adhairyata. Kyun adhairyata? Kyunki roz शांति का कैरेक्टर प्रिपेयर करे बिना घर से निकले हैं.
0: आई एम अ लवफुल सोल, आई एम अ पीसफुल सोल.
1: प्रिपेयर करे बिना निकले हैं.
0: अगर सातों, आपने क्या कहा, सात है ना,
1: राइट,
0: सातों रोल्स इंडिया के लोग, सपोज वर्ल्ड तो छोड़ दो, कुछ कुछ लोग एक एक कंट्री भी, एक स्टेट भी एक एक रोल लेवे. सुबह आज मैं पीसफुल लेता हूँ, आज मैं लवफुल लेता हूँ, आज मैं तो कितनी शांति हो जाएगी.
1: हम सिर्फ अपने लिए एक घर में एक जना ये कर ले तो देखेंगे घर में वातावरण कैसा बदल जाएगा.
0: एक जने से,
1: एक जना भी इम्पेशेंट होता है ना अगर घर के अंदर, तो पूरे घर का वातावरण बदल जाता है. और वही आत्मा अगर शांत हो जाए आज, पूरे घर का वातावरण बदल जाएगा.
0: मेरे साथ होता है ना,
1: हाँ,
0: जैसे जरा सी रोटी देर से आई तो उनको मालूम है मैं इम्पेशेंट होता था.
1: हाँ,
0: पहले की बात कर रहा हूँ.
1: हाँ,
0: तो मेरी वाइफ उठ के भागती थी किचन में, रोटी दे रो साहब को, इतना लेट नहीं करो.
1: yeah.
0: फिर वो उसको बोला, फिर उसको, फिर बच्चे भी, फिर नहीं पहले आप ले लो.
1: yeah.
0: तो नहीं आप ये वाली ले लो. yeah. पूरा घर हिल जाता है.
1: हिल जाता है, पूरा घर हिल जाता है. कुछ दिन पहले एक भाई शेयर कर रहा था, कहते हमारे कंपनी का जो ओनर है, मालिक है, पहले उसके अंदर इतना गुस्सा था कि बात हुई नहीं कि वो रिएक्ट कर देगा. और हम सब थोड़ा सा डरते थे कि बात हुई नहीं अभी जोर से रिएक्ट करेगा, और अगर प्रॉब्लम आई तो गुस्सा आना ही है, वो उनकी नेचर थी. लेकिन जब से उन्होंने राजयोग मेडिटेशन सीखा, वो भाई हमें सुना था, जब से आपके सेंटर पे ये भाई आए और ये मेडिटेशन रोज सीख रहे हैं, अब कहते हैं मीटिंग में भी बैठते हैं, क्राइसिस है, डिस्कस हो रहा है, सब गुस्से में है, अशांत है, और ये आंख बंद करके वेट करते हैं अभी ठीक हो जाएंगे सारे. पहले अपने ऊपर कंट्रोल ले लेते हैं, अब गुस्सा नहीं आता बिल्कुल.
0: ब्यूटीफुल थिंग, कितनी
1: अब गुस्सा नहीं आता. और फिर कहते दो मिनट के बाद हम सबको कहते हो गया अभी बैठो, अब बात करते हैं, शांति में बैठो पहले. वन पर्सन
0: सारी टीम को लेके साथ चल सकता है. वो
1: लीडरशिप क्वालिटी है. ये आज लीडरशिप क्वालिटीज के बारे में कितनी बात हो रही है दुनिया में कि लीडर कैसा होना चाहिए. तो कहेंगे लीडर वो जो एग्जाम्पल सेट करे, लीडर वो जो दूसरों को मोटिवेट करे, लीडर वो जो खुद पहले
0: स्टेबल रहे.
1: संयम में रहकर ही तो आगे नेक्स्ट कुछ हो सकता है. लीडर वो जो टेक्स इन चार्ज ऑफ हिमसेल्फ, नॉट टेक्स इन चार्ज ऑफ अदर पीपल, दैट इज द सेकेंड स्टेज. तो ये अगर हमने तैयारी सुबह की तो सचमुच में वो लीडरशिप क्वालिटी है. चाहे वो हम घर के लीडर हैं, चाहे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लीडर हैं. लीडर मतलब वो जो अपनी वाइब्रेशन से औरों को लीड कर ले, एक शांत रहे, सबको लीड कर ले. लीडर इज नॉट बाय पोजिशन, लीडर इज नॉट बाय एज, लीडर इज बाय माय क्वालिटी. तो पवित्र स्वरूप आत्मा, प्रेम स्वरूप आत्मा, कितनी तैयारी है करने की. शांत स्वरूप आत्मा, शक्ति स्वरूप आत्मा, आई एम अ पावरफुल सोल. अब अगर हम ये तैयार करें स्केच सुबह, आई एम अ पावरफुल सोल, तो पावरफुल मतलब चाहे कोई भी परिस्थिति, चाहे कोई

0: भी आत्मा, आई एम अ पावरफुल सोल, तो मैं हावी होऊंगा उन पर, वो मुझ पर नहीं हावी हो सकते, बिकॉज आई एम अ पावरफुल सोल, एंड पावर मतलब आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई सेल्फ एंड देयरफॉर इन चार्ज ऑफ सिचुएशंस, इन कंट्रोल ऑफ माई सेल्फ। तैयारी कर ली, अब कोई भी बात आए, ऐसा लगे मुझसे नहीं हो रहा, ये काम मुझसे नहीं होता, ये आदत मुझसे नहीं छूटती, ये एडिक्शन मुझसे नहीं छूट रही, आई एम अ पावरफुल सोल। इंस्टेड ऑफ सेइंग ये मुझसे नहीं छूटता, वी से आई एम अ पावरफुल सोल। अब मुझसे नहीं छूटता कहा तो यहाँ क्या रिकॉर्डिंग हो गई, तो वो छूटने नहीं वाला है, लेकिन आई एम अ पावरफुल सोल, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। ये चीज क्या है, ये क्या है, कुछ भी नहीं, मैं तो शक्तिशाली आत्मा हूं, रिकॉर्डिंग हो गई। हमने की नहीं थी ना क्रिएट कभी भी ऐसी चीजें, तो वो रिकॉर्डिंग नहीं बन रही थी। अब जैसे जैसे ये रिकॉर्डिंग होती गई, वो ओरिजिनल संस्कार ऑफ द सोल निकलता गया। ज्ञान स्वरूप आत्मा, आई एम अ नॉलेजफुल सोल। आज हम औरों से जाते हैं पूछने के लिए, 2 मिनट साइलेंस में बैठे, आत्मा के पास सारे आंसर्स हैं। विजडम, नॉलेज आत्मा का ओरिजिनल संस्कार है, इसीलिए हमें कई बार लगता है ये बात कहां से आ गई मेरे मुख से, ये तो मैंने नहीं कहीं पढ़ी, ये तो मैंने कहीं नहीं सुनी, कहां से
1: दूसरे आदमी प्रॉब्लम लेके आता है जब ऑटोमेटिकली निकलती है, खुद के लिए जो है,
0: क्योंकि जब दूसरा व्यक्ति लेकर आता है हम उस प्रॉब्लम से डिटैच्ड हैं,
1: अच्छे से डिटैच,
0: हाँ हम अटैचमेंट नहीं है ना किसी भी चीज से। सपोज दूसरा व्यक्ति बोले मेरे बेटे ने ऐसा किया ऐसा किया, इट्स वेरी इजी टू टेल देम व्हाट इज द राइट थिंग टू डू, क्योंकि उस बच्चे से हमारी अटैचमेंट नहीं है, तो ईगो नहीं है, ईगो नहीं, अटैचमेंट नहीं, आत्मा नॉलेजफुल है। एंड यही अगर हमारे बच्चे के साथ कुछ है तो शायद हम राइट एडवाइस को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अटैचमेंट है। तो इसीलिए डिटैच, डिटैच फ्रॉम रोल, डिटैच फ्रॉम पर्सन, डिटैच फ्रॉम सिचुएशन, नाउ सी दी आंसर, हमारे पास सारे आंसर्स हैं। तो आत्मा ज्ञान स्वरूप है एंड आत्मा आनंद स्वरूप है, ब्लिस। ब्लिस इज द ओरिजिनल क्वालिटी ऑफ एवरी सोल, आनंद। सारा दिन मुझे ये याद रखना है, खुशी आनंद चीजों में नहीं है, अचीवमेंट में नहीं है, कोई लेने में खाने में खरीदने में नहीं है, ये मुझ आत्मा की ओरिजिनलिटी है। सारा दिन एक वर्ड भी ले, आई एम अ ब्लिसफुल बीइंग, आई एम अ ब्लिसफुल बीइंग, दिस इज माय नेचर, सारा दिन कैसे फील होगा। तो वो थॉट क्रिएट करने से वो संस्कार इमर्ज होकर सामने आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। वी हैव टू टच दैट सॉन्ग फॉर इट टू स्टार्ट प्लेइंग अगेन। तो हर रोज मॉर्निंग आत्मा की एक ओरिजिनल क्वालिटी लेकर कैरेक्टर को प्रिपेयर करके, उस कैरेक्टर को आज सारा दिन के रोल्स परफॉर्म करते हुए देखकर फिर सुबह निकलना है।
1: ऑलरेडी ये सारे के सारे 7 क्वालिटीज रेडीमेड है, सिर्फ हमारा चॉइस है,
0: लेकिन चूंकि बहुत टाइम से नहीं किया है तो हम जब एक्शन में आते हैं तो वो हो नहीं पाता। लेकिन अगर हम अब मॉर्निंग में बैठकर उसको रिवाइज कर लेंगे, उसको इमर्ज कर लेंगे, फिर वो सारा दिन कर्म में आ जाएगा। दैट इज वाई मेडिटेशन हेल्प्स टू ब्रिंग आर ओरिजिनलिटी इन टू एक्शन।
1: हम लोग बाय डिफॉल्ट का बटन नहीं दबा सकते,
0: थोड़े दिन तो करना पड़ेगा ना, थोड़े दिन करने के बाद वो लूप में चला जाएगा, लूप में जाने के बाद वो हमारा व्यवहार परमानेंट बन जाएगा।
1: देन आई डोंट हैव टू सीक ब्लिस एंड पीस एंड लव, बिकॉज अपने पास है वो,
0: अपने पास है।
1: Thank you so much, sister.
0: Om Shanti.
1: Om Shanti. Om Shanti.
2: The Godly Versions studied daily at all the Brahma Kumaris Raj Yoga Meditation Centers is called Murli. Supreme Father and Teacher, through the Murli, daily reminds each of us that we are not the acquired body. We are souls, and how we should be the entire day in the soul conscious stage. Let us take one thought. I am a pure soul. Now visualize and prepare this character. How would a pure soul think?

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्बड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 करोड़ सेल्स है, जस्ट द ब्रेन, ओके, 10,000 करोड़ सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 करोड़ सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 करोड़ सेल्स इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 करोड़ सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सिक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितनी आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते वैसे करना।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM और मैं हूं आपकी अपनी आरजे नीतू। स्वागत है हमारे विशेष आध्यात्मिक कार्यक्रम आंतरिक दिव्यता का आह्वान। दोस्तों, क्या कभी आपने खुद से कहा है, मैं बहुत कुछ सह सकती हूं, लेकिन यह नहीं, मैंने बहुत बर्दाश्त किया है, अब और नहीं कर सकती। हम सभी जीवन में ऐसे लोगों, ऐसी परिस्थितियों और ऐसे अनुभवों से गुजरते हैं जो हमारी परीक्षा लेते हैं। कभी किसी का व्यवहार हमें परेशान करता है, कभी किसी की बात दिल को चोट पहुंचा देती है और कभी परिस्थितियां हमारे अनुसार नहीं चलती। ऐसे समय में हम सोचते हैं कि हमारी सहन करने की क्षमता समाप्त हो रही है, लेकिन क्या वास्तव में हमारी सहन शक्ति सीमित है या फिर हमने स्वयं ही अपनी शक्ति को सीमाओं में बांध रखा है। आज के इस विशेष एपिसोड में हम बात करेंगे सहन शक्ति की गरिमा की, उस शक्ति की जो हर आत्मा के भीतर मौजूद है, उस शक्ति की जो हमें परिस्थितियों के बीच भी शांत, स्थिर और सकारात्मक बनाए रखती है। दोस्तों, जीवन की हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। आइए माँ कुष्मांडा की पावन आरती सुनते हैं और फिर लौटते हैं आज के विषय पर।

स्वागत है आपका। दोस्तों, जब हम सहन शक्ति की बात करते हैं तो अक्सर इसका अर्थ गलत समझ लेते हैं। कई लोग सोचते हैं कि सहन करना मतलब मन मारकर चुप रहना, अपना दुख दबाना, मजबूरी में परिस्थितियां झेलना। लेकिन वास्तविक सहन शक्ति का अर्थ कुछ और ही है। सच्ची सहन शक्ति वह नहीं जहां भीतर दर्द चलता रहे और बाहर हम मुस्कुराते रहें। सच्ची सहन शक्ति वह है जहां बाहरी परिस्थितियां हमारे भीतर की शांति को प्रभावित ही ना कर पाएं। जब कोई व्यक्ति हमारे बारे में कुछ गलत कह दे और फिर भी हमारा मन स्थिर रहे, जब कोई हमारी अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार ना करे और फिर भी हम अपनी सकारात्मकता बनाए रखें, तब हम वास्तव में सहन शक्ति का प्रयोग कर रहे होते हैं। अक्सर हम अपनी शक्ति पर स्वयं ही सीमाएं लगा देते हैं। हम कहते हैं यह मैं सहन कर सकती हूँ, लेकिन यह नहीं, इतना मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन आत्मा की शक्ति पर कोई सीमा नहीं होती। शक्ति अनंत है, जरूरत केवल उसे पहचानने और उपयोग करने की है। जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं, तब कठिन परिस्थितियाँ भी हमें कमजोर नहीं कर पाती। आइए सुनते हैं एक मधुर पुराना भक्ति गीत।

माँ कूष्मांडा की कथा। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के कूष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है। कथा के अनुसार जब सृष्टि का कहीं अस्तित्व नहीं था और चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था, तब माँ कूष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की। इसी कारण उन्हें सृष्टि की आदि शक्ति कहा जाता है। कहा जाता है कि सूर्य मंडल के भीतर निवास करने की क्षमता केवल माँ कूष्मांडा में ही है। उनके तेज से सूर्य को प्रकाश और ऊर्जा प्राप्त होती है। आठ भुजाओं वाली माँ अपने हाथों में विभिन्न अस्त्र और शस्त्र और अमृत कलश धारण करती हैं। माँ कूष्मांडा अपने भक्तों को

शक्ति और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। उनकी कथा हमें यह प्रेरणा देती है कि मुस्कान और सकारात्मक विचारों से अंधकारमय परिस्थितियों को भी प्रकाश में बदला जा सकता है। दोस्तों, यही सहन शक्ति का भी सार है। जब जीवन में अंधकार दिखाई दे, तब शिकायत करने की बजाय स्वयं प्रकाश का स्रोत बन जाना। माँ कूष्मांडा हमें सिखाती हैं कि सकारात्मकता सबसे बड़ी शक्ति है। आइए सुनते हैं माँ की पावन चालीसा।

दोस्तों, सहन शक्ति की सबसे बड़ी नींव है स्वयं को परिस्थितियों से अलग देखने की क्षमता। जब कोई व्यक्ति कुछ गलत कहता है और हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, तब हम उसकी ऊर्जा के प्रभाव में आ जाते हैं। लेकिन यदि हम कुछ क्षण रुक जाएं, गहरी सांस लें और परिस्थिति को एक साक्षी की तरह देखें, तो हमारी प्रतिक्रिया बदल जाती है। हम प्रतिक्रिया नहीं देते बल्कि उत्तर देते हैं। यही आंतरिक परिपक्वता है। जब हम दूसरों के व्यवहार को अपनी शांति का आधार बनाते हैं, तब हम कमजोर हो जाते हैं। लेकिन जब हम अपने मन की स्थिति की जिम्मेवारी स्वयं लेते हैं, तब कोई भी व्यक्ति हमारी शांति नहीं छीन सकता। याद रखिए, स्वीकार करना हार मानना नहीं है, स्वीकार करना वास्तविकता को समझना है। और वास्तविकता को समझने के बाद सही प्रतिक्रिया चुनना ही सहन शक्ति की पहचान है। परिस्थितियों से ऊपर उठकर उन्हें देखना ही वास्तविक शक्ति है। आइए सुनते हैं एक सुंदर गरबा गीत।

दोस्तों, यदि हमें सहन शक्ति को अपने जीवन का स्वभाव बनाना है तो सबसे पहले हमें स्वयं के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाना होगा। हम चाहते हैं कि लोग हमें स्वीकार करें, हमारी गलतियों को समझें, हमारी कमजोरियों पर हमें जज ना करें, लेकिन क्या हम स्वयं अपने साथ ऐसा करते हैं? अक्सर नहीं। हम अपनी गतिविधियों के लिए खुद को कठोर शब्दों में दोष देते हैं, अपनी कमजोरियों पर निराश होते हैं और कई बार स्वयं के सबसे बड़े आलोचक बन जाते हैं। लेकिन यदि एक माँ अपने बच्चे को उसकी हर कमजोरी के बावजूद प्रेम कर सकती है, तो क्या हम स्वयं के प्रति वैसी करुणा नहीं रख सकते?

माँ बनना मतलब स्वयं को समझना, अपने संस्कारों को पहचानना, अपनी कमियों को स्वीकार करना और बिना शर्त स्वयं से प्रेम करना। जब हम अपने प्रति प्रेम और सम्मान विकसित करते हैं, तब दूसरों के प्रति भी स्वाभाविक रूप से सहनशीलता बढ़ने लगती है। तब सहन शक्ति प्रयास नहीं लगती है, वह हमारा स्वभाव बन जाती है। जो स्वयं से प्रेम करना सीख जाता है, वह दूसरों को भी सहजता से स्वीकार कर पाता है। आइए सुनते हैं एक सुंदर भक्तिमय गीत।

प्रिय श्रोताओ, आज हमने जाना कि सहन शक्ति कमजोरी नहीं है, यह आत्मा की सबसे सुंदर शक्तियों में से एक है। जब हम स्वयं को परिस्थितियों से अलग करके देखते हैं, जब हम दूसरों को स्वीकार

0: करना सीखते हैं, जब हम स्वयं के प्रति करुणामय बनते हैं, तब हमारे भीतर सहन शक्ति का फूल खिलने लगता है। आज का आध्यात्मिक होमवर्क, अगले 24 घंटे तक स्वयं के लिए एक माँ बनकर रहिए। अपने विचारों को प्रेम से देखिए। अपनी गलतियों के लिए स्वयं को दोष देने के बजाय समझिए। यदि कोई कमजोरी दिखाई दे तो उसे स्वीकार कर सुधारने का प्रयास कीजिए और दिन में कई बार स्वयं से कहिए, मैं स्वयं को स्वीकार करती हूँ, मैं स्वयं से प्रेम करती हूँ, मेरे भीतर हर परिस्थिति को शांतिपूर्वक सहने की शक्ति है। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि आपकी आंतरिक शक्ति बढ़ रही है और जीवन पहले से अधिक सहज लगने लगेगा। मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे नीतू। आप सुन रहे थे आंतरिक दिव्यता का आह्वान, केवल रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। खुश रहो, खुशियाँ बांटो। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।
1: पावसाच्या थेंबात दडलेलं जुनं प्रेम, आठवणींचा ओलावा। कधी कधी विरहातलं मौन सुद्धा गाण्यापेक्षा जास्त बोलतं।
2: अश्विनी
1: जीवन म्हणजे चालत राहणं, गाणं, हसणं आणि स्वप्न पाहणं।
3: वाऱ्यावरती गंध पसरला ना ते मनाचे।
1: आईचा आवाज म्हणजे मनाला शांती मिळवण्याचं संगीत। या सगळ्यांची सांगड कुठे बरं घातली जाते? आपल्याच पुणेरी आवाज 107.8 FM वर। आनंदी रहा, आनंद लुटा।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पर डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी न कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी। तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म, वन। सेकंड, अब मैं अगर व्हाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए व्हाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि अब जब हम व्हाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जरा उसे तो देखो कितना सीरियस होकर पढ़ाई कर रहा है।
1: अरे भाई अभी छुट्टियां चल रही है, मजे करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है।
2: पर अब थोड़ा ही तो समय रह गया है, काम भी तो शुरू करना है जो टीचर्स ने दिया हुआ था।
3: हमारी टीचर ने तो बहुत ही अजीब काम दिया है।
4: क्या
3: कहा है? मेक इन इंडिया क्या है इसकी जानकारी हासिल करो और क्लास को समझाओ।
5: ये अच्छा तरीका है, बजाय डायरेक्टली कोई टॉपिक समझाने के हमें ही इसकी तैयारी करके क्लास में समझाने को कहा है। हमें भी तो नीरू मैम पढ़ाती है, हमें भी यही काम दिया है।
1: लेकिन आइडिया बुरा नहीं है।
4: क्या मतलब?
1: अरे भाई कहते हैं ना, सबसे अच्छा तरीका कुछ भी सीखने का यही है कि उसे सिखाना शुरू कर दिया जाए।
6: यही तो बात है, उसकी पूरी तैयारी भी तो करनी पड़ेगी।
0: क्या मतलब? बस स्टाइल से क्लास में खड़े हो जाना और देने लगना एक शानदार सा भाषण।
3: ये क्या बात हुई, बिना कुछ जाने पढ़े कैसे पढ़ा लोगे भाई?
1: एग्जैक्टली, जब पढ़ने की जिम्मेदारी सर पर आ जाए तो मरता क्या ना करता। उस टॉपिक के बारे में एक रीजनेबल ज्ञान तो हासिल करने की कोई भी इंसान कोशिश करेगा ही।
5: अब हालत ये है प्यारी दीदी कि हमें मेक इन इंडिया पर तैयारी करनी होगी।
1: तुम्हें एक तरीका बताती हूँ, ऐसा करते हैं इस टॉपिक के कुछ कुछ हिस्से बांट लो, फिर एक दूसरे को अपनी अपनी बात समझा दो।
3: वाह क्या आइडिया है दीदी, इससे तो हमारी कुछ पढ़ने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी
5: और एक दूसरे से समझेंगे तो बात जल्दी समझ भी आ जाएगी।
7: बल्कि अगर हम सब लोग कुछ कुछ बताएं तो गेम का गेम और ज्ञान का ज्ञान हो जाएगा।
3: कैसे?
1: देखो हम आठ लोग हैं ना।
5: आठ।
1: एक जना टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेगा।
7: अच्छा।
1: दूसरा उसका मतलब डिटेल में बताएगा।
0: हाँ ठीक है, जैसे एक बताएगा कि इस प्रोग्राम के लक्ष्य क्या हैं।
1: राइट।
7: और एक बताएगा उन लक्ष्यों तक पहुँचने के साधन क्या हैं।
8: समझ गया।

0: एक की रास्ते में रुकावटें क्या हैं?
1: और फिर एक ये बता सकता है कि उनको दूर करने के लिए किन किन स्टेप्स को लेना पड़ेगा।
2: काफी मुश्किल काम लग रहा है।
3: अरे सब मिलके करो ना, सबके हिस्से थोड़ा थोड़ा ही आ रहा है।
4: पर जितना भी हिस्से में आए, जरूरी बात ये है कि सभी को इसके बारे में जानकारी तो पूरी रखनी होगी।
2: सिवाय उसके जो इंट्रोड्यूस कर रहा है, वो इंट्रो देकर सीट पर जाकर सो सकता है।
3: अच्छा ये तो बताओ, बिना कुछ ज्यादा पढ़े इसके बारे में जस्ट लाइक दैट हमें इसकी कितनी जानकारी है?
5: भाई पहली बात तो मेक इन इंडिया मतलब भारत में बनाओ किसे।
6: ए स्टॉप जोकिंग, मतलब भारत में निर्माण करो, हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ना।
1: तो भारत में ही तो बन रहा है ना अपनी जरूरत की चीजें।
3: सॉरी बच्चों, आपकी जानकारी काफी लिमिटेड है, तो आपके लिए आज का होमवर्क यह भी है कि अपने घर के कई इलेक्ट्रॉनिक्स देखिए, आप पाएंगे कुछ मेड इन चाइना है तो कुछ मेड इन कोरिया।
0: हाँ और दूर क्यों जाना, दीदी के हाथ के इस मोबाइल के पीछे ही देख लो।
4: हाँ हम तो ये कभी नोटिस ही नहीं करते।
2: ऐसे तो कई बच्चों के खिलौने और स्टेशनरी आइटम्स,
5: स्पोर्ट्स मटेरियल, ये सब बाहर के देशों से हमारे देश में आया है।
3: अरे यही नहीं, साइकिल, कार, ट्रक।
5: ओ गॉड, ध्यान से देखो तो, यू आर राइट, कितनी चीजें अभी भी हमारे देश में बाहर से आती हैं। क्यों भाई क्यों, हम दूसरे देशों से क्यों खरीदे, अपने देश में क्यों न बनाए।
6: और क्या, अब क्या नहीं है हमारे देश में, सब तरह की शिक्षा, जानकारी, कच्चा सामान, मशीनें।
0: फिर ऐसा क्यों हो रहा है?
5: क्या यही कि हम दूसरे देशों से इतना कुछ निर्यात करते हैं?
3: देखा नहीं, सबसे ज्यादा अगर किसी देश ने जरूरत की चीजों के लिए मार्केट को कैप्चर किया है तो वो है चाइना।
6: उन्होंने तो हमारे भगवानों की मूर्तियों, त्योहारों में काम आने वाली चीजों तक को नहीं छोड़ा।
5: हाँ मजेदार बात तो ये है कि दिवाली के दिनों में हमारी गणपति चाइनीज लोगों की तरह के नए नक्श वाले होते हैं।
1: हाँ देखा है मैंने भी बाजार में चाइनीज गणपति।
0: पर कहते हैं कि चाइना जिस चीज को जितने भी घंटों में बनाता है, भारत उसे दुगने से भी ज्यादा समय में बनाता है।
4: एक नंबर के आलसी हैं हम।
3: हाँ तो चाइनीज माल की गारंटी भी तो नहीं होती,
0: तो हमारी चीजें खराब नहीं होती क्या?
5: चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं सब, लाइब्रेरी में जाकर कुछ मटेरियल ले आते हैं, कल चलेंगे। प्रिंसिपल ने कहा था कि छुट्टियों में लाइब्रेरी खुली रहेगी बच्चों के लिए। पर जरा सुनो तो, ये रेडियो पर क्या खबरें आ रही हैं?
7: ये आकाशवाणी है, सुनिए आज की ताज़ा खबरें। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया मेक इन इंडिया अभियान एक नई योजना है, जिसके तहत विदेशों के कई निवेशकों को भारत में विभिन्न व्यवसायों में पैसा लगाने के लिए एक अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। भारत में बने हुए उत्पादों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घरेलू कंपनियों के साथ ही बहुउद्देशीय कंपनियों को भी प्रसन्न करने के लिए भारतीय सरकार द्वारा एक शुरुआती अभियान चलाया जा रहा है। भारत में रोजगार लाने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया ये एक प्रयास है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 25 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री द्वारा इस मुहिम की शुरुआत की गई थी और अब कुछ देश विदेश के।
1: ऐसा मेरे साथ कई बार होता है, जो भी मैं सोचता रहता हूँ वही सामने आ जाता है किसी भी रूप में।
0: हाँ मेरे साथ भी होता है, कभी कभी तो लगता है जैसे कोई मेरे विचार पढ़ रहा हो।
1: कहीं इसीलिए तो नहीं कहा जाता
3: क्या कि केवल शब्दों पर ही नहीं अपने विचारों पर भी ध्यान दो?
5: बल्कि मेरी मम्मी कहती हैं कि विचारों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही कभी न कभी शब्द बन जाते हैं।
4: कहते हैं कोई भी प्रश्न अगर मन में हो और हम किसी भी अच्छी पुस्तक को उठाकर बीच में से पढ़ने लगे तो हमें उस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है।
2: ये बात तो तुम ही कह सकते हो, तुम्हें पुस्तकें पढ़ने का इतना शौक जो है।
3: चलो तुम सबको काफी कुछ पता चल गया है मेक इन इंडिया पर।
5: हाँ आप कोई पूछे तो सिर्फ इतना नहीं कहेंगे भारत में बनाओ, तो क्या कहोगे?
6: ये कहेगा भारत में बनाकर और देशों में बेचो, देश को और धनी बनाओ।
1: पक्का व्यापारी बनोगे?
0: व्यापारी तो बाद में बनेंगे, अभी तो हम सब ने घर में ही पाठशाला खोल ली है और बन गए हैं झूठ मूठ के शिक्षक।

पुनेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

की बातों से किसी का पेट भरता नहीं। हम जो सलाम कर कभी भूखा मरता नहीं।

0: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बाल संसार इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए, बच्चों के मनोस्थिति पर, ये मनोविज्ञान पर हम लोग कार्यक्रम आपको दे रहे हैं और जिसमें डॉक्टर अजय शुक्ला जी हमेशा की तरह हमारे साथ उपलब्ध है और बाल संसार बाल मनोविज्ञान में व्यक्तित्व विकास पाठ्यक्रम के विशेष राइटर हैं डॉक्टर अजय शुक्ला जी। सबसे पहले तो हमने कुछ चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए आपको जनरल एक एपिसोड में बातें की थी पिछली बार। अब हम लोग पाठ्यक्रम के अनुसार आपको कुछ बातें जरूर बताएंगे। तो बाल मन के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण का निर्माण, तो ये सबसे पहला लेसन है जिसमें बच्चों की मनोस्थिति की विविधता को समझना। तो आइए इस बात को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर से डॉक्टर अजय शुक्ला जी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी।
0: बाल संसार में आपका स्वागत है और सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि बाल मन के प्रति जो संवेदनशील बातें करते हैं या दृष्टिकोण का निर्माण करना, बच्चों की मनोस्थिति को अलग अलग ढंग से समझना, इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप किस तरह से उस चीज को समझ पाते हैं, जान पाते हैं, तो उस पर बताइए बच्चों की मनोस्थिति को कैसे समझा जाए।
1: बहुत ही सटीक और व्यवहारिक प्रश्न है और सामान्य तौर पर एक आम परिवार में इस प्रकार की समस्या रहती है और बड़े चाहते हैं कि इस मनस्थिति को हम समझें। और खासकर जब संवेदनाओं की बात आती है तो हमें लगता है कि मानवीय संवेदनाएं केवल बड़ों तक सीमित हैं, लेकिन उसका जो रेंज है वो बच्चों के पास ज्यादा है। कारण उसके पीछे है कि जो भावनाएं और विचार उनकी मनस्थिति में उत्पन्न होते हैं उसकी अभिव्यक्ति के लिए उनके पास में जो माध्यम है वो बहुत कम है, लेकिन वो अपनी भाव भंगिमाओं से, व्यवहार से और कई बार अलग अलग अपने स्वभाव को वो व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए जब आपके परिवार में कोई आता है बड़ा और अपने बच्चों को आप बुलाते हैं तो उनके मन में रहता है कि अभी ये बड़ों से हमको मिलवाएंगे तो हमारा खेलने का समय है, हमारा पढ़ाई का समय है। अर्थात उन बच्चों के उन मनोभावों को वहां उस लेवल पर स्वीकार नहीं किया जाता। ये माना जाता है कि ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है और ये बच्चे आएंगे और बड़ों को प्रणाम करेंगे, नमस्ते करेंगे, अभिवादन करेंगे और वो अभिवादन बहुत प्रसन्नतापूर्वक होना चाहिए, बहुत आनंदपूर्वक होना चाहिए, जिससे बड़ों की डिग्निटी या उनके डेजिग्नेशन को कोई धक्का नहीं लगे। उन्हें बड़े सोच रहे हैं कि हमारी संवेदनाएं तो प्रोटेक्ट रहें, लेकिन उस स्थिति में बड़ों को चाहिए कि जिस बच्चे को हमने जन्म दिया है, उसको पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, वो जब हमारे मित्रों से मिलने आ रहा है तो उसकी क्या अपेक्षाएं हो सकती हैं, उनकी संवेदनाएं क्या हो सकती हैं। उदाहरण के लिए जो गेस्ट हैं वो कुछ गिफ्ट उनके लिए लेके आए हैं या कुछ फल या मिष्ठान लेके आए हैं तो उनका मन लगेगा, जुड़ाव होगा और आप चाह रहे हैं कि वो अभिवादन भी करें और कोई पोयम भी सुनाएं और कुछ अपनी बात भी रखें, तो ऐसी स्थिति में बच्चा भी मानसिक रूप से तैयार नहीं है।

0: आएगा, हो सकता है कि वो आके प्रणाम करके और तेजी से वहां भाग जाए। लेकिन बड़ों को लगेगा, देखो ये बड़े हैं और हमारे मित्र हैं, उन्होंने कुछ एटिकेट्स नहीं सिखाए हैं, रुकना चाहिए था, परमिशन लेना चाहिए था बच्चों को हमसे जहां से जाने के लिए। तो इस प्रकार के जो फ्लक्चुएशन है उस पर हमें बड़ा सटीकता से अध्ययन करना होगा, उनकी संवेदनाओं को समझना होगा। ये भी समझना होगा कि जब बच्चा हमारे पास आया है, बड़ों से हम जुड़ाव करने की बात कर रहे हैं, तो ये एक मशीनी प्रक्रिया नहीं है। उसको सहजता से जुड़ने दें, उसके भाव को समझें। वो चला भी जाता है तो नाराजगी व्यक्त नहीं करें, उसे पकड़ने का प्रयास नहीं करें, उसे बलपूर्वक रोकने का भी प्रयास नहीं करें, बल्कि उसको सहजता में कन्वर्ट होने दें। और ये हो सकता है कि आपकी उस सहजता या बाल मनोविज्ञान को समझने के बाद वो बच्चा 10 या 5 मिनट के बाद में वापस आ जाए। उसको लगेगा कि अभी बड़ों के पास में बातचीत मुझे करना था और मेरी बात वहां नहीं हो पाई, मैं अपना कुछ अभिव्यक्त नहीं कर सका, लेकिन अब मैं उनसे पुनः जुड़ता हूं। और उस जुड़ाव के वसीभूत वो अपने आप को वहां उपस्थित भी करेगा और अंतर्मन से जुड़ने का प्रयास करेगा, क्योंकि वो उस समय तक जान चुका होगा कि मेरे प्रति भी बड़ों की संवेदनाएं जागृत हैं और वो कहीं न कहीं मुझसे जुड़ना या जोड़ना चाहते हैं। जी
1: डॉक्टर अजय शुक्ला जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया बच्चों की मनस्थिति को कैसे समझा जाए। तो सिंपल और सहज तरीके से अगर इसको समझा जाए तो बड़े अच्छी तरह से आपने बताया कि हम अपनी मनोस्थिति को भी समझ लेंगे तो शायद बच्चों के मन को समझने में आसान होगा। कई बार अवलोकन भी करना जरूरी है कि बच्चों के व्यवहार कैसे हैं, वो खेलते कैसे हैं, खेलने के साथ साथ उनकी बातचीत का तरीका क्या है, इस पर अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, या फिर कभी कभी वो बात करते हैं भले ही उनकी बातों में कुछ शब्दों का कमी हो सकता है, कुछ सटीक शब्द आपको नहीं मिलेंगे, समझने में थोड़ा देर होता होगा, लेकिन भाव तो जरूर समझ सकते हैं। खुले प्रश्न उनसे पूछिए, सोचने समझाने की बात प्रोत्साहित करें। और सहानुभूति और स्वीकारता जो है आपके पास हमेशा रहना चाहिए और एक विश्वास बनाए रखना चाहिए। मुझे लगता है कि ये चीजें अगर आप करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो बच्चों पे शुरुआत में हम लोग जो है कई बार कुछ हो जाता है तो सीधे डांट डपट के उनको चुप कर आते
0: हैं,
1: तो शायद वो मनोस्थिति हमारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस समय हम, मुझे लगता है कि किसी पिताजी का या माँ का जो व्यवहार है शायद ये उनको नहीं सिखाया गया होगा।
0: जी जी।
1: दूसरी बात, अगर सीख भी गए होंगे तो या तो उनके पास टाइम इतना नहीं है कि मैं पेशेंट हूं,
0: बिल्कुल,
1: या फिर पेशेंट भी नहीं होगा। कई बार होता है कि ये बच्चा है मेरी बात क्यों नहीं समझता है,
0: जी
1: ऐसा उनको लगता है। तो बच्चे को समझाने से ज्यादा हमें उनके पास टाइम निकाल के उनको समझने के लिए टाइम देना होगा।
0: बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। यही मानवीय संवेदनाओं की आवश्यकता भी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो हर व्यक्ति चाहता है कि दूसरे मेरी बात को समझे और चला जाए।
0: जी जी।
1: लेकिन वो समझने के लिए नया शायद आपकी हेल्प करने भी आया हो।
0: बिल्कुल, यही पक्ष होना चाहिए।
1: तो कई बार हम लोग जो है ऐसा सोचते हैं कि हमारा टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, हर व्यक्ति का टाइम इम्पोर्टेंट है। टाइम को इंग्लिश में मनी कहा गया, अंग्रेजी में टाइम इज मनी कहा गया। अगर समय ही पैसा है तो फिर समय को सफल करो, पैसा सफल होगा।
0: बिल्कुल।
1: तो अगर हम इस चीज को ठीक से नहीं समझ पाते हैं तो शायद टाइम को हम लोग वर्क में लगा देते हैं या वेस्ट हो जाता है, तो वो हमारा मनी भी काम में लग जाता है और या तो वेस्ट हो जाता है।
0: जी जी जी।
1: तो उसको सफल करने के लिए शायद मुझे लगता है थोड़ा बियॉन्ड होके सोचना पड़ेगा। तो आइए यहां पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप सुनाए हैं बाल बच्चों के मनोविज्ञान पर बाल संसार इस कार्यक्रम को। आशा करूंगा आप सभी को अच्छा लगता हो, तो जरूर हमारे साथ जुड़े और अपनी प्रतिक्रिया दें ताकि हम आपको अपने अनुभवों को या फिर आपके अनुभवों को साझा करने में हमें हेल्प मिले। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं। बाल मनोविज्ञान पर बातें हो रही हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी पे बातें हो रही हैं और अजय शुक्ला जी हमारे साथ हैं, उनसे बातें हो रही हैं। कई बार हम लोग जब इस पाठ्यक्रम को देखते हैं तो यहां पर मैंने देखा अजय जी ने बड़े अच्छे पाठ्यक्रम को जो है शुरूआत किया है, बाल मन के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण का निर्णय। तो इसमें एक और चैप्टर आता है जहां

0: बच्चों की मनोस्थिति को कैसे समझा जाए जिसके बारे में हमने बातें की। जो दूसरा जो इसमें भाव आता है, दूसरा जो पैराग्राफ है, दूसरा जो उसमें सब टाइटल है, वो है पवित्र संवेदनाओं की गरिमा का ध्यान रखना। तो इस बात को कैसे हम लोग समझे, अजय जी बताइए।
1: बहुत अच्छी यहाँ बातचीत चल रही है और एक विश्लेषणात्मक अध्ययन करने का हम प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पवित्र शब्द का उपयोग इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि सामान्य संवेदनाओं के प्रति तो हम जागृत रहते हैं, लेकिन बच्चों के लिए जैसा पहला एपिसोड में हमने बातचीत भी किया कि बच्चे मन के सच्चे हैं और हम कहते हैं कि भाई ये भगवान के समकक्ष हैं और इनके जो मनोभाव हैं वो इतने पवित्र हैं कि इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। और कई बार बड़ों के निर्णय के बीच में जब बच्चों से हम पूछते हैं कि बेटा बताओ कि ये हम सारी उलझन में हैं तो आपका इसमें क्या ओवरव्यू है या क्या आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया या क्रिया आपके मन में आती है, तो उस समय आप देखेंगे एक निष्पक्ष सुझाव उठता आएगा और वो इतना कारगर होता है कि ऐसा लगता है कि उसे अपना लिया जाए। जैसे मैं एक उदाहरण आपको दूंगा, एक विद्वान विदुषी बहन है, उन्होंने अपने बच्चे के लिए काउंसलिंग के लिए मुझे बुलाया और कहा कि अभी बच्चे को मैं बुलाती हूं और उन्होंने ये भी कहा कि आप प्रणाम करो क्योंकि आप मेरे गुरु हैं। मैंने बच्चे को मैसेज दिया कि ये आपके गुरु नहीं बल्कि मेरे गुरु हैं, जिनको आप प्रणाम करो। अब वो बच्चा जैसे ही प्रणाम करता है और मैं उसको ब्लेसिंग देने के लिए अपना हाथ बढ़ाता हूं तो बच्चों के अंदर एक चंचलता होती है, बहुत जल्दी वो मेरे स्पर्श के पहले ही वहां से भाग खड़ा होता है। अब यहां हमें समझना होगा कि ऐसी स्थिति में एक काउंसलर की भूमिका दोषारोपण की नहीं है बल्कि ये समझने की है। और मैंने मां से, उनके बच्चे की मां से कहा कि आप मुझे बताइए कि इस समय आप क्या सोच रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे को तो बड़ा अपमान फील हुआ कि बहुत अच्छे से वह बच्चा नहीं मिला आपसे या मैं उसको सिखाने में असफल रही। मैंने बोला ऐसा नहीं, हम बच्चों के मनोभावों को बड़ों जैसे विश्लेषण नहीं करें, हम उनकी प्योरिटी को समझें। उस बच्चे के अंदर जो परसेप्शन का लेवल है वो इतना पवित्र है कि वो बच्चा आता है, प्रणाम करता है और वो भाग जाता है। उसको ये विश्वास है कि जब मेरी मां के गुरु बैठे हुए हैं तो ये मेरे लिए कितने हम्बल हो सकते हैं, कितना स्नेह प्यार हमको इनसे मिल सकता है। तो इस भावना को ध्यान में रखते हुए वो बच्चा चला गया। 15 से 20 मिनट के बाद में जब हमारी कुछ बातचीत हुई तो बच्चा वापस आता है और वो बड़े प्यार से मेरे पास आके बैठ जाता है। अब बच्चे की मां को ये विश्वास हो गया कि जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि वो जो पवित्र संवेदनाएं हैं वो वापस लौटी हैं, हमने अपेक्षा नहीं की लेकिन ब्रह्मांड में हमने एक संकल्प भेजा कि बच्चा आएगा और हमसे जुड़ेगा। क्योंकि यहां पर हम उस बच्चे के साथ में कैदी जैसा बिहेव नहीं कर सकते, उसको कुर्सी पर बिठा के बांध के बाय फोर्स नहीं कह सकते कि आपको बात करनी ही पड़ेगी, ये सम्मान देना ही पड़ेगा। ये सारी क्रियाएं हमारी मनस्थिति में चल रही हैं, लेकिन अगर हम पवित्र मनोभाव को देखेंगे तो बच्चे का निश्चल मन, बच्चे का निर्मल हृदय वापस ले आया। और उस पवित्र मन की विशेषता देखिए कि मैंने बड़े धीरे से कहा कि बेटा ये बताओ कि पढ़ने में कितना मन लगता है और खेलने में कितना मन लगता है। अब बच्चे के पास में कोई मेजरमेंट टूल तो है नहीं, ये मन को कैसे बताए। हम सोच रहे हैं कि वो शायद बच्चा बोल देगा कि अभी मेरा पढ़ने में कम मन लगता है और खेलने में ज्यादा लगता है। अब कम और ज्यादा को आप कैसे मेजरमेंट करेंगे। तो बच्चे से मैंने कहा, बच्चे की उम्र के हिसाब से कि बच्चा 3 या 4 साल का है, उस समय मैंने कहा बेटा आप हाथ से बताओ कि पढ़ने में कितना मन लगता है। तो आप आश्चर्य करेंगे भाई जी कि वो बच्चा छोटी सी मुट्ठी दोनों हाथों को ऐसे बंद करके बोल रहा है कि इतना सा मेरा मन पढ़ने में लगता है। अब मैंने बोला खेलने में कितना लगता है, तो वो बिल्कुल पीछे घूम गया और दोनों हाथों को पूरा वो फैलाता है और कहता है कि इतना सारा मन मेरा खेलने में लगता है, और इतना कह के वो फिर भाग गया। अब मां ने कहा कि आप एज ए काउंसलर बच्चे की मनस्थिति को समझ गए, आपने पवित्र संवेदनाओं को स्वीकार कर लिया, लेकिन क्या मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो सकता है कि ये छोटी सी मुट्ठी बता रहा है कि इतना मन पढ़ने का मैं लगता है, तो ये थोड़ा सा 50% ये हो जाए और खेलने वाला 50% कम हो जाए तो शायद बैलेंस हो सकता है। तो हमने बाकी प्रोसेस करने का प्रयास किया और उसमें सफलता भी हमको मिली और बच्चे के मनोभाव को समझते हुए उनको फिर अलग अलग तरीके से मदद के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं मैंने उनकी मदर को बताया और वो उसको उन्होंने फॉलो भी किया। तो कुल मिला के कहने का अर्थ कि हमें बच्चों के उस समय त्वरित क्रिया या प्रतिक्रिया को प्योरिटी के फॉर्म में स्वीकार करना चाहिए और उनके प्रति अपनी संवेदनाओं को और गहरा करके और समाधान के लिए छोटे छोटे प्रयास।

0: जोर देते हैं तो भी आपको अच्छा लगेगा। और कृतज्ञता जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि आप उस पवित्र भावनाओं के साथ ऐसे जुड़ जाए कि आपको हर चीज जो है स्पष्ट रहे और आपको आईने की तरह हर चीज दिखाई दे। आपको बहुत अच्छी तरह से इन चीजों को जब आप समझेंगे तो आसानी से लोगों को बता सकते हैं, समझा सकते हैं और जान सकते हैं। तो ये ऐसा यहां पर कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जहां पर हम लोग हो सकता है कि वो चीजें कर पाए नहीं कर पाए
1: जी,
0: थोड़ा सा मैकेनिज्म वाली बात है। देखिए ट्रायल एंड एरर सारी जिंदगी चलती रहती है
1: जी जी जी,
0: लेकिन आप अगर सोचेंगे कि मैं कंप्लीट कर दूंगा तो वो गड़बड़ है। यू शुड ऑलवेज मतलब हमेशा ये देखिए कि ट्रायल एंड एरर, और ये चीज हमेशा काम करती है। भले आपने सीखा हो लेकिन सीखने के साथ साथ आपको जो है हमेशा जब भी आप बच्चों के मनोस्थिति से जुड़ जाते हैं तो आपको पता नहीं कि बच्चा क्या करेगा, है ना, क्योंकि उसके स्वभाव के आधार पे कुछ चीजें हो सकता है कि आप उसको जान ले, लेकिन कुछ जगह पे आप नहीं जान पाते हैं तो वहां पर आपको कैसे डील करना है ये बहुत जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा कि यहां पर एक और सवाल, एक और भावनाएं जो है हम इस चैप्टर में ले रहे हैं, जैसे कि सकारात्मक दृष्टिकोण का उपयोग करना। तो अजय जी मैं चाहूंगा कि कैसे हम लोग सकारात्मक दृष्टिकोण का उपयोग कर सकते हैं वो थोड़ा सा बताएं।
2: सकारात्मक दृष्टिकोण के संबंध में जो मेरा यहां चिंतन है वो ये है कि बच्चे के मनोभाव को हम समझ रहे हैं, लेकिन उस मनोभाव को समझने और समझाने की क्रिया में जो सबसे बड़ी बाधा आती है कि थोड़े समय तक हमारा प्रयास स्नेह और प्यार को लेकर होता है, हम अच्छी केयरिंग भी कर रहे हैं, नर्सरिंग भी कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चा है हमारी वो हमारी भावनाओं को समझ रहा है, स्वीकार कर रहा है, लेकिन उसके मन में एक अच्छी अपेक्षा है हमारे से कि हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं बनाएंगे, क्योंकि दबाव और तनाव क्या करता है, बच्चे को एक द्वंद में डाल देता है और वो माता पिता से जुड़ने की बजाय उनसे अलग होने का प्रयास करता है, अर्थात एकांत की ओर जाता है। ऐसे समय में हम ये परिस्थिति घटित होने दें, उसके बाद हम सकारात्मकता को फॉलो करेंगे या सकारात्मक दृष्टिकोण हम अपनाएंगे तो उस समय तक हम काफी लेट हो जाएंगे, इससे पहले कि बच्चे के मन में हमारे प्रति कोई दूसरे भाव पैदा हों और उस भाव के कारण वो अपने व्यवहार में बदलाव लाए। उससे पहले ही हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा फर्ज बनता है कि हमारे बच्चे हैं और उस बच्चे को माता पिता के प्रति या गुरु के प्रति ये गहरी आस्था है और वो इस सोचता है कि ये तीन लोग मिलकर हमारी पालना करते हैं, तो वो मैक्सिमम एफर्ट करता है कि मैं बहुत अच्छा अपना प्रस्तुतिकरण दे सकूं। जैसा आपने भाई जी ने बताया कि आप ये मान के चल रहे हैं कि सारी चीज में परफेक्शन नहीं हो सकता है, परफेक्शन के लिए हम एफर्ट कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, कंप्लेंट एंड सजेशन की गुंजाइश हमेशा होती है। बड़ी से बड़ी व्यवस्था में इस बात के लिए आर्गुमेंट किया जाता है कि आप बहुत सारे अच्छे सजेशन और कहीं अगर कोई शिकायत या सुझाव है तो वो दीजिए, तो वहां परिवर्तन करने की स्थिति ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर या व्यक्तिगत जीवन में भी कोई इंसान कर सकता है। यही वस्तु स्थिति हमारे मन में भी होना चाहिए कि बच्चे की बात जब हम सुन रहे हैं या समझ रहे हैं या किसी को शेयर कर रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम प्रयास करें कि हम सकारात्मक दृष्टिकोण रख के चल रहे हैं, और उस सकारात्मक दृष्टिकोण का प्रतिफल क्या है कि अपने बच्चे की अच्छाइयों, विशेषताओं, गुणों, उस बच्चे का जो इनर पावर है, साहस है, इनिशिएटिव पावर है, कुछ अच्छी बातें जो आपके मन में अपने बच्चे को लेकर गर्व पैदा करती हैं, गौरव पैदा करती हैं, और आप ये मान के चलते हैं कि एक श्रेष्ठ नागरिक बनने में बच्चे के इस गुण के कारण बड़ी मदद मिलेगी, तो उसको हम प्रमोट करेंगे और उसके साथ में बहुत सारी क्वालिटी या बहुत सारी विशेषताएं धीरे धीरे जुड़ती जाएंगी, तो बच्चों के अंदर एक उत्साह होगा, उमंग होगा और उसे लगेगा कि बड़ों के सामने हमारी केवल यहां प्रेजिंग नहीं हो रही है बल्कि कुछ अच्छी चीजों को शेयर किया जा रहा है ताकि इसको और बच्चे को अच्छा कैसे बनाया जा सके। तो हमारा उद्देश्य किसी अच्छाई को बताने के पीछे ये है कि उसमें हम अभिवृद्धि करें और उसको प्रमोट करें और सकारात्मकता को अंत तक बनाए रखें, जिससे कि बच्चे का मनोबल किसी भी स्थिति में अगर कहीं टूट रहा हो तो उसे हम संभाल सकें, संवार सकें और एक नई दिशा दे सकें। जी
0: अजय जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, आशा करूंगा हमारे सभी श्रोताओं को भी बड़ा अच्छा लग रहा है। अब जो बातें हम लोग कर रहे हैं पाठ्यक्रम से बिल्कुल अलग कर रहे हैं, थोड़ा सा पाठ्यक्रम को ले रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश यही है हमारी है हम दोनों की कि आपको अपने लाइफ के साथ जो रियलिटी है उसके साथ जुड़े और उसमें और जल्दबाजी

0: में बिल्कुल नहीं चलती। अगर आप बहुत जल्दबाजी करते हैं तो हो सकता है कि बच्चों की क्रिएटिविटी के बजाय बच्चों को हम लोग उसकी क्रिएटिविटी समाप्त कर रहे हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा आपके शब्दों में बहुत इम्पोर्टेंस होना चाहिए। जिस तरह से आप सम्मान चाहते हैं वैसा बच्चा भी सम्मान चाहता है, क्योंकि सम्मान से उसकी सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि वो आपको उतना ही सम्मान से देख रहा है। बालक आपको एक पिता समान, मां समान, बड़े के रूप में आपको देख रहा है। तो उसके अंदर आपके प्रति जो भाव है, वो भाव से अगर बच्चे को देखना शुरू करेंगे तो चीजें बड़ी अच्छी हो जाएगी। कई बार हम लोग अपने लाइफस्टाइल में उन चीजों का कहीं मायने बना, ऐसा कोई ट्रेनिंग तो नहीं लेते कि हम बच्चों के साथ कैसे बात करें, है ना। हम सोचते हैं कि मेरा लड़का है, मेरा अधिकार है इसके ऊपर बोलने का, वो सोचते हैं। तो वहां सारा जो है खेल बिगड़ जाता है। तो रियलिटी को ज्ञान जो है दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए होता है। तो स्वदर्शन से परमात्मा दर्शन होगा। ज्ञान को अप्लाई नहीं किया है वो फिर आप ज्ञान सुनने सुनाने तक रहेंगे, लेकिन उसका एप्लीकेशन नहीं है तो इम्प्लीमेंट जीरो है, तो उसका यूज भी नहीं होगा, उसका रिजल्ट भी नहीं आएंगे। तो इसीलिए ज्ञान खुद के लिए उपयोग में लाए और अपने जीवन को बेहतर बनाए, अपनी भावनाओं को समझे, अपनी भावनाओं को ठीक करे तो बहुत अच्छी बात होगी। तो इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले कड़ी में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और ख्याल रखिए अपना और बच्चों की मनोस्थिति को। सम्मान से देखे, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चले होंगे, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चले होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व्ड बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती, When they are under stress, कोई problem है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए the mind needs to slow down. If I am disturbed about something, the mind just goes on and on. आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे 8 घंटे जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर। मैं स्मिता जयकर, खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं, अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
2: बात पुरानी बड़ी सुहानी, मनात खोलवर रुजलेल्या चित्रपट, साहित्य, संगीत, गाणी यांच्या आठवणींचा नॉस्टैल्जिक खजिना।
3: बात पुरानी बड़ी सुहानी,
2: फक्त रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 एफएम वर। संकल्पना आणि सादर करते श्री धनंजय कुलकर्णी।

زمانہ معلوم ہوتا ہے، نہ قانون نہیں معلوم جہاں کا،

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8।

Chana ka chana ka pa ya la ba de chana ka chana ka pa ya la ba de.

मेरे कंप्यूटर चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आपने अब तक जाना कि स्वामी जी मध्य प्रदेश होते हुए एक बार फिर महाराष्ट्र गए थे। वहाँ कोल्हापुर और बेलगांव में ठहरे थे। उन्हीं दिनों ट्रेन में उनकी मुलाकात लोकमान्य तिलक जी से हुई थी। उन लोगों की दोस्ती जीवन पर्यंत बरकरार रही। बेलगांव में श्री भाटे जी के अलावा वे श्री हरिपद मित्रा जी के घर में भी 9 दिनों तक ठहरे थे। उन दिनों की घटनाओं का विवरण हमें मित्र महाशय के संस्मरणों में मिलता है। वे वन विभाग के सब डिविजनल ऑफिसर थे। उन्होंने लिखा था,
1: बेलगांव 18 अक्टूबर 1892 ईस्वी मंगलवार। संध्या हुए लगभग 2 घंटे हुए हैं। एक प्रसन्न मुख युवा सन्यासी मेरे एक परिचित महाराष्ट्रीयन वकील के साथ मेरे घर पर पधारे हैं। मेरे वकील मित्र ने कहा, ये एक विद्वान बंगाली सन्यासी हैं, आपसे मिलने आए हैं। घूमकर देखा, प्रशांत मूर्ति, नेत्रों से मानो विद्युत प्रकाश निकल रहा हो। दाढ़ी मूछ मुड़ी हुई, शरीर पर गेरुआ अंगरखा, पैर में मरहटी चप्पल, सिर पर गेरुआ

0: ली। सन्यासी के उस भव्य मूर्ति का स्मरण होने पर अभी भी जैसे अपनी आंखों के सामने देखता हूँ। कुछ देर बाद प्रणाम कर पूछा, महाशय क्या आप तंबाकू का सेवन करते हैं? मेरे पास कोई और दूसरा हुक्का नहीं है, आपको यदि मेरे हुक्के में तंबाकू पीने में कोई आपत्ति न हो तो तंबाकू तैयार करने को कहूं। उन्होंने कहा,
1: तंबाकू चुरट जब जो पाता हूं तब उसी का सेवन करता हूं, और आपके हुक्के से पीने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।
0: फिर मैंने उन्हें अपने यहाँ ठहरने के लिए कहा और उनसे पूछा, आपका सामान अपने यहाँ मंगवा लूं?
1: मैं वकील बाबू के यहाँ अच्छी तरह से हूँ, और आपको बंगाली जानकर यदि उनके यहाँ से मैं चला हूँ तो उनके मन में दुख होगा, क्योंकि वे सभी लोग मुझ पर बड़ी भक्ति और स्नेह करते हैं, अतएव ठहरने ठहराने के विषय में पीछे विचार किया जाएगा।
0: उस रात कोई अधिक बातचीत न हो सकी, किंतु उन्होंने जो दो चार बातें कही उसी से अच्छी तरह समझ गया कि वो मेरी अपेक्षा हजार गुना अधिक विद्वान है और बुद्धिमान है। इच्छा मात्र से ही वो बहुत धन उपार्जित कर सकते हैं, तथापि रुपया पैसा छूते तक नहीं, और सुखी होने के कोई भी साधन के न होते हुए भी मेरी अपेक्षा हजार गुना सुखी है। ज्ञात हुआ उन्हें किसी वस्तु का अभाव नहीं है, क्योंकि उन्हें स्वार्थ सिद्धि की इच्छा नहीं है। मेरे यहाँ नहीं रहेंगे ये जानकर मैंने फिर कहा, यदि चाय पीने में कोई आपत्ति न हो तो कल प्रातःकाल मेरे साथ चाय पीजिए, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। उन्होंने आना स्वीकार किया और वकील बाबू के साथ उनके घर लौट गए। रात में उनके विषय में बड़ी देर तक सोचता रहा। मन में आया, ऐसा निष्प्रह चीर सुखी सदा संतुष्ट प्रफुल्ल मुख पुरुष तो कभी देखा नहीं। दूसरे दिन 19 अक्टूबर 1892 की बात है, प्रातःकाल 6 बजे उठकर स्वामी जी की प्रतीक्षा करने लगा। देखते देखते 8 बज गए किंतु स्वामी जी नहीं दिखाई पड़े। अंत में अधीर होकर मैं अपने एक मित्र के साथ स्वामी जी के वास स्थान की ओर चल पड़ा। वहां जाकर देखता हूँ कि एक महासभा जुटी हुई है, स्वामी जी बैठे हुए हैं और उनके समीप अनेक प्रतिष्ठित वकील तथा विद्वान लोग बैठे हैं, उनके साथ बातचीत हो रही है। स्वामी जी किसी को अंग्रेजी में, किसी को संस्कृत में और किसी को हिंदी में उनके प्रश्नों का उत्तर तुरंत दे रहे हैं। कोई कोई हक्सले के दर्शन को प्रमाणिक मानकर उसके आधार पर स्वामी जी के साथ तर्क करने को उद्यत है, किंतु वे किसी को हंसी में, किसी को गंभीर भाव से यथोचित उत्तर देकर सभी को चुप करा रहे हैं। मैंने जाकर प्रणाम किया और एक और बैठ गया और आवाज सुनने लगा। सोचने लगा, ये मनुष्य है या देवता? एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण वकील ने प्रश्न किया, स्वामी जी संध्या पूजा आदि के मंत्र संस्कृत में हैं, हम लोग उन्हें समझ नहीं पाते, इन सब मंत्रोच्चारण का क्या कुछ फल है?
1: अवश्य उत्तम फल है। इन संस्कृत मंत्रों का अर्थ तो इच्छा रहने से सहज ही समझ सकते हो, फिर भी समझने की चेष्टा नहीं करते, इसमें भला किसका दोष? और यद्यपि तुम मंत्रों का अर्थ नहीं समझते तो भी जब संध्या वंदन आदि करने बैठते हो तो उस समय क्या सोचते हो? धर्म कर्म कर रहा हूँ ऐसा सोचते हो, या ये सोचते हो कि कोई पाप कर रहा हूँ? यदि धर्म कर्म समझकर संध्या वंदन करने के लिए बैठते हो तो उत्तम फल पाने के लिए वही पर्याप्त है।
0: इसी समय दूसरे एक व्यक्ति संस्कृत में बोले, धर्म के संबंध में मलिच्छ भाषा द्वारा चर्चा करना उचित नहीं है, अमुक पुराण में इसका उल्लेख है। स्वामी जी ने उत्तर दिया,
1: किसी भी भाषा के द्वारा धर्म चर्चा की जा सकती है, हाई कोर्ट के फैसले को छोटी अदालत नहीं काट सकती।
0: और इस प्रकार 9 बज गए। जिन लोगों को ऑफिस या कोर्ट जाना था वे सब चले गए, कोई कोई उस समय भी बैठे रहे।

0: स्वामी जी की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ते ही उन्हें चाय पीने के लिए जाने की बात याद आ गई। फिर बोले, बच्चा बहुतों का मन तो दुखा कर नहीं जा सकता था ना, कुछ बुरा मत मानना। बाद में मैंने उनसे अपने निवास स्थान पर रहने के लिए विशेष अनुरोध किया। इस पर वे बोले कि मैं जिनका अतिथि हूँ, यदि उन्हें मना लो तो मैं तुम्हारे पास ही रहने को प्रस्तुत हूँ। फिर वकील महाशय को समझा बुझा कर स्वामी जी को साथ ले अपने स्थान पर आया। उनके साथ एक कमंडल और गिरवे वस्त्र में लपेटी हुई एक पुस्तक, बस इतना ही सामान था। स्वामी जी उस समय फ्रांस देश के संगीत के संबंध में एक पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे। घर पर आकर लगभग 10 बजे चाय पानी हुआ। उसके बाद ही स्वामी जी ने एक गिलास ठंडा जल भी मंगवा कर पिया। ये देखकर कि मुझे अपने मन की कठिन समस्याओं के बारे में पूछने का साहस नहीं हो रहा है तो उन्होंने स्वयं ही मुझसे दो एक बातें की और उसी से उन्होंने मेरी विद्या बुद्धि को नाप लिया।
1: इस तरह हरिपद बाबू के घर पर 20 अक्टूबर तक 2 दिन बीत गए। इस सुयोग से हरिपद बाबू के मन में दीर्घकाल से धर्म और दर्शन के संबंध में जितने संदेह थे, स्वामी जी से उन्होंने एक एक कर सबको दूर करने का अनुरोध किया और स्वामी जी ने भी आनंद पूर्वक वैसा ही किया। इसके अलावा नगर के अनेक पढ़े लिखे लोग प्रतिदिन वहाँ एकत्रित होते और अनेक प्रसंग चलते। स्वामी जी भी सभी विषयों में यथायोग्य समाधान का उपाय बताते। शहर के 5वें दिन उन्होंने कहा,
2: सन्यासियों को नगर में 3 दिन और गांव में 1 दिन से अधिक ठहरना उचित नहीं। मैं अब जल्दी चला जाना चाहता हूँ। एक स्थान पर अधिक दिन रहने पर माया ममता बढ़ जाती है। हम लोगों ने घर और आत्मीय जनों का परित्याग किया है, अतः जिन बातों से उस प्रकार की माया में मुग्ध होने की संभावना है, उनसे दूर रहना ही हम लोगों के लिए अच्छा है।
1: अंत में मित्र महाशय का आग्रह सुनकर वे और भी 2-4 दिन रुकने के लिए सहमत हो गए। स्वामी जी के याददाश्त के बारे में हरिपद बाबू ने लिखा है कि एक बार एक अंग्रेजी किताब से स्वामी जी 2-3 पन्ने कंठस्थ बोल गए। मित्र बाबू आश्चर्यचकित हो गए, सोचा सन्यासी जी ने इस किताब को क्यों रट लिया है। उन्होंने जवाब दिया,
2: रटा कहाँ है, बस 2 बार पढ़ा है। एक बार स्कूल में पढ़ते समय और दोबारा 5-6 महीने पहले।
3: और एक दिन दोपहर में बिछौने पर लेटे हुए एक पुस्तक पढ़ते पढ़ते स्वामी जी जोरों से हंस पड़े। एकाएक ऐसा होने का कारण जानने के लिए हरिपद बाबू ने उस कमरे के दरवाजे के पास आकर देखा, स्वामी जी एकाग्रचित्त होकर पढ़ रहे हैं, किसी दूसरी ओर दृष्टि नहीं है। इस तरह प्रायः 15 मिनट बीत जाने पर उन्होंने हरिपद बाबू को देखकर अंदर आने के लिए कहा और हरिपद बाबू इतनी देर से खड़े हैं सुनकर कहा,
2: जब जो काम करना हो तब उसे पूरी लगन और शक्ति के साथ करना चाहिए। गाजीपुरा के पवहारी बाबा ध्यान जप पूजा पाठ जिस प्रकार एक चित्त होकर करते थे, उसी प्रकार वे अपने पीतल के लोटे को भी एक चित्त होकर मांजते थे। ऐसा मांजते थे कि सोने समान चमकने लगता था।
3: स्वामी जी उन दिनों साधारण व्यक्ति की तरह ही हास परिहास गपशप करते, पर उसी के बहाने अनेक जटिल समस्याओं का समाधान भी कर देते थे। इसके साथ ही उनकी दृष्टि भी मर्म भेदी थी, प्रत्येक व्यक्ति के मन में अंदर तक देख लेते। एक समय एक धनी का पुत्र स्वामी जी के पास बारम्बार आता था और साधु होने की इच्छा प्रकट करता था। उत्सुक होकर हरिपद बाबू ने जानना चाहा, स्वामी जी इस लड़के को साधु बनने के लिए उपदेश देंगे या नहीं। किंतु स्वामी जी ने कहा,
2: ये केवल एमए परीक्षा के भय से साधु होना चाहता है। मैंने उससे कहा है, एमए पास कर चुकने के बाद साधु होने के लिए आना, साधु होने की अपेक्षा एमए पास करना कहीं अधिक सरल है।
1: हरिपद बाबू की पत्नी किसी गुरु से मंत्र दीक्षा लेना चाहती थी। उस समय हरिपद बाबू ने अपनी पत्नी से कहा था, ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाना जिसकी भक्ति मैं भी कर सकूं। ऐसे स्वामी जी को अपने निकट पाकर उन्होंने सहधर्मिणी से पूछा, यदि ये सन्यासी तुम्हारे गुरु हो तो तुम उनकी शिष्या हो सकती हो। स्वामी जी से यह अनुरोध करने पर उन्होंने पहले तो कहा कि गृहस्थ के लिए गृहस्थ गुरु ही ठीक है, गुरु होना बहुत कठिन कार्य है।

0: शिक्षा का समस्त भार ग्रहण करना पड़ता है। दीक्षा के पहले गुरु के साथ शिष्य का कम से कम 3 बार भेंट होना आवश्यक है, इत्यादि कहकर मित्र दंपति को टालना चाहा, किंतु उन लोगों के तीव्र अनुरोध की उपेक्षा नहीं कर पाए। अंत में 25 अक्टूबर को उन दोनों ने स्वामी जी से दीक्षा ली।
1: एक दिन स्वामी जी ने कहा, कुछ दिन तुम्हारे साथ जंगल में तंबू डालकर रहने की मेरी इच्छा है, किंतु शिकागो में धर्म महासभा होगी, यदि वहां जाने की सुविधा हुई तो वहीं जाऊंगा। हरिपद बाबू ने तुरंत चंदा इकट्ठा करने का प्रस्ताव किया, किंतु स्वामी जी ने कुछ सोचकर उसे स्वीकार नहीं किया। हरिपद बाबू उस समय स्वास्थ्य के लिए औषधियों का अत्यधिक व्यवहार करते थे। इस बात को जानकर स्वामी जी ने एक दिन कहा,
2: जब देखो कि किसी रोग ने अत्यधिक प्रबल होकर धराशायी कर दिया है, उठने की शक्ति नहीं रही, तभी औषधि का सेवन करना, अन्यथा नहीं। मानसिक दुर्बलता आदि रोगों में से तो 90% काल्पनिक हैं। जितने दिन जियो आनंद से रहो, पर जिस आनंद से एक बार कष्ट हो चुका है उसके पीछे फिर और कभी न दौड़ना। तुम्हारे हमारे समान एक व्यक्ति के मर जाने से पृथ्वी अपने केंद्र से दूर तो न हट जाएगी और न जगत का किसी तरह से कोई नुकसान ही होगा। आप भले हो तो जग भला, ये उक्ति कितनी सत्य है कोई नहीं समझता। आज से किसी में बुराई देखने की चेष्टा करना एकदम छोड़ दो। देखना जितना ऐसा कर सकोगे उतना ही उनके विचार और उनके कार्य बदल जाएंगे।
1: दवा और लोक व्यवहार विषयक दोनों उपदेशों को मान लेने पर हरिपद बाबू का बड़ा कल्याण हुआ था। उन्होंने स्वयं लिखा था, बस उसी दिन से औषधि सेवन का मेरा पागलपन दूर हो गया और दूसरों के दोष ढूंढने की चेष्टा को त्याग देने के फलस्वरूप क्रमशः मेरे जीवन का एक नया भाग उजागर हो गया।
0: और एक दिन की बात है, कलकत्ते में एक व्यक्ति भूख से मर गया। ये समाचार अखबार में पढ़कर स्वामी जी इतने दुखी हुए थे कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। वे बारंबार कहते रहे, अब तो तेज गया। किसी के द्वारा कारण पूछे जाने पर वे बोले,
2: देखते नहीं दूसरे देशों में गरीबों की सहायता के लिए पुअर हाउस, वर्क हाउस, चैरिटी फंड आदि संस्थाओं के रहने पर भी प्रतिवर्ष सैकड़ों मनुष्य अनाहार से मर जाते हैं, पर हमारे देश में एक मुट्ठी भिक्षा की प्रथा होने से अनाहार के कारण लोगों का मरना कभी सुना नहीं गया। मैंने आज पहली बार अखबार में ये समाचार पढ़ा कि अकाल न होते हुए भी कलकत्ता जैसे शहर में अन्न के बिना मनुष्य मरे।
1: हरिपद बाबू द्वारा पश्चिमी सभ्यता के अनुसार भी भिक्षा देने की प्रथा बंद करने के पक्ष में विचार प्रकट करने पर स्वामी जी अत्यंत उदार दृष्टि के साथ बोले,
2: दोगे तो केवल 2-1 पैसा, उसके लिए वो 1 पैसा वो किसमें खर्च करेगा? ठीक खर्च होगा या गलत होगा, ये सब बातें लेकर माथा पच्ची करने की क्या आवश्यकता। और यदि सचमुच ही वो उस पैसे को गांजे में उड़ा देता हो तो भी उसे देने से समाज का लाभ ही है, नुकसान नहीं, क्योंकि तुम्हारे समान लोग यदि दया करके उसे कुछ न दें तो वो तुम लोगों के पास से चोरी करके लेगा।
0: वस्तुतः स्वामी जी के जीवन में ये एक विशेष गुण दिखाई पड़ता है, वे कभी भी पश्चिमी जगत की सभ्यता के मोह से मोहित होकर अपने देश की सभी प्रथाओं की निंदा नहीं करते थे, बल्कि प्रत्येक आचार विचार का उद्देश्य और अच्छाई बुराई सब देखकर तभी किसी निश्चय पर आते। परंतु बाल विवाह के विरुद्ध वे अत्यंत स्पष्ट विचार रखते थे और बेलगांव में उन्होंने इसे व्यक्त भी किया था। हरिपद बाबू ने लिखा है,
3: मैंने पहले से ही स्वामी जी को बाल विवाह के बिल्कुल विरुद्ध देखा है। वे सदैव सभी को, विशेषतः युवकों को, हिम्मत बांधकर समाज के इस कलंक के विरोध में खड़े होने के लिए उपदेश देते थे। स्वदेश के प्रति इस प्रकार अनुराग भी मैंने और किसी में नहीं देखा। स्वामी जी के पाश्चात्य देशों से लौटने के बाद जिन लोगों ने प्रथम बार उनके दर्शन किए थे वे भी नहीं जानते कि वहाँ जाने के पूर्व वे संन्यास आश्रम के कठोर नियमों का पालन करते हुए पैसों को स्पर्श तक नहीं करते हुए कितने दिनों तक भारत के समस्त प्रांतों में भ्रमण करते रहे।

0: किसी के एक बार ऐसा कहने पर कि उनके समान शक्तिमान पुरुष के लिए नियम आदि का इतना बंधन आवश्यक नहीं है। इस पर वे बोले,
1: देखो मन बड़ा पागल है, बड़ा उन्मत्त है, कभी भी शांत नहीं रहता। थोड़ा मौका पाते ही अपने रास्ते खींच ले जाता है। इसलिए सभी को निर्धारित नियमों के भीतर रहना आवश्यक है। सन्यासी को भी मन पर काबू रखने के लिए नियम के अनुसार चलना पड़ता है। मन पर विश्वास करके कभी निश्चित न रहना।
2: स्वामी जी से पहले भी अनेक देशी राजा महाराजाओं का परिचय हुआ था। किसी किसी ने तो दीक्षा भी ग्रहण की थी। इतने राजा महाराजाओं से एक सन्यासी इतनी घनिष्ठता क्यों रखे? इस विषय में एक दिन स्वामी जी से किसी ने पूछा और उन्होंने कहा,
1: निर्धन प्रजा की इच्छा रहने पर भी सत्कार्य करने की क्षमता उसके पास कहाँ, किंतु राजा के हाथ में प्रजाओं के मंगल विधान की क्षमता पहले से ही है, केवल उसे करने की इच्छा भर नहीं है। वो इच्छा यदि उसके भीतर किसी प्रकार जागृत कर सकूं, तो ऐसा होने पर उसके साथ साथ उसके अधीन सारी प्रजा की अवस्था बदल सकती है, और इस प्रकार जगत का कितना अधिक कल्याण हो सकता है।
2: अर्थात वे सन्यासी हैं, किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए धनी और शक्तिमान लोगों से आत्मीयता स्थापित नहीं करते थे। दरिद्रों के लिए उनका प्राण रोया करता था और उन लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने शासक वर्ग के हृदय में जनहित का बीज बोना चाहा था। कालांतर में स्वामी जी ने ये पथ छोड़कर लोक शिक्षा और जन जागरण के मार्ग को ही ठीक समझा था और भारतीय विख्यात नेताओं में उन्होंने ही इसके प्रयोजन को सर्वप्रथम स्वीकार उद्घोष किया था। हरिपद बाबू कहते थे,
0: स्वदेश का कल्याण साधन उनके जीवन का अन्यतम व्रत था, किंतु उन दिनों सन्यास और स्वदेश प्रेम में तालमेल ढूंढ पाना बहुत सहज नहीं था। अतएव स्वामी जी की भावधारा को एकाएक ग्रहण करने में अनेक लोगों को बाधा होती और प्रत्यक्ष रूप से वे लोग उस विचारधारा की समालोचना भी करने लगते। स्वामी जी का स्वदेश के प्रति अत्यंत अनुराग था, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ। एक दिन इस संबंध में बातचीत के प्रसंग में उनसे कहा गया कि संसारी लोगों का अपने अपने देश के प्रति अनुराग रखना कर्तव्य है, परंतु सन्यासियों को अपने देश की माया छोड़कर सभी देशों पर संदृष्टि रखकर सभी देशों की कल्याण चिंता हृदय में रखना अच्छा है। इसके उत्तर में स्वामी जी ने जो ज्वलन बातें कही उनको जीवन में कभी नहीं भूल सकता। वे बोले,
1: जो अपनी माँ को खाना नहीं देता वो दूसरे की माँ का क्या पालन करेगा।
0: वे स्वीकार करते थे कि हमारे प्रचलित धर्म आचार व्यवहार में सामाजिक प्रथा में अनेक दोष हैं। वे कहते थे,
1: उन सभी का संशोधन करने की चेष्टा करना हम लोगों का मुख्य कर्तव्य है, किंतु उसके लिए संवाद पत्रों में अंग्रेजों के सामने उन दोषों को घोषित करने की क्या आवश्यकता है। घर की गलतियों को जो बाहर दिखलाता हो उसके समान गधा और कौन है।
3: हरिपद बाबू स्वयं अपने आप गीता पढ़ा करते किंतु उसका अर्थ समझ नहीं कर पाते थे, अतएव ऐसे पढ़ने की कोई सार्थकता नहीं मानकर उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया। किंतु जब स्वामी जी उस ग्रंथ से विशेष अंश पढ़कर उसकी व्याख्या करने लगे तब वे समझ सके कि गीता कैसा अपूर्व ग्रंथ है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से उसका कैसा घनिष्ठ संबंध जानकर उसके पुनः अध्ययन में अपना मन लगाया और बहुत लाभान्वित हुए। परंतु स्वामी जी ने केवल गीता की गंभीर बातों की व्याख्या ही नहीं की, उन्होंने टॉमस कार्लाइल के ग्रंथों और जूलियस बर्न के उपन्यासों के साहित्यिक सौंदर्य और चिंतन के विस्तार को भी बराबरी से समझाया था। हरिपद बाबू के घर में देखते देखते 8 दिन बीत गए। 9वें दिन यानी 27 अक्टूबर को स्वामी जी ने कहा,
1: और नहीं ठहरूंगा, रामेश्वर जाने के विचार से बहुत दिनों से जोर निकला हूँ, पर यदि इसी प्रकार चला तो इस जन्म में शायद रामेश्वर पहुंचना न हो सकेगा।
3: हरिपद बाबू ने निश्चय ही और रुकने का अनुरोध किया, किंतु वे उन्हें रोक नहीं सके। ये निश्चित हुआ कि स्वामी जी मेल ट्रेन से मर्मागोवा की यात्रा करेंगे। हरिपद बाबू ने टिकट खरीद कर उन्हें गाड़ी में बैठा दिया। इसके बाद साष्टांग प्रणाम कर कहा,
0: स्वामी जी, मैंने जीवन में आज तक किसी को भी आंतरिक भक्ति के साथ प्रणाम नहीं किया। आज आपको प्रणाम कर मैं कृतार्थ हो गया।
2: पुर्तगालियों द्वारा अधिकृत गोवा में स्वामी जी किस किस जगह पर गए थे और क्या क्या देखा था ये ज्ञात नहीं है, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि देखने योग्य सब कुछ उन्होंने देखा था। मडगांव से हरिपद बाबू को लिखे गए एक पत्र में स्वामी जी ने कहा है,
1: अभी अभी तुम्हारा एक पत्र मिला, मैं यहाँ सकुशल पहुँच गया। मैं पंजिम तथा उसके आसपास के कुछ गांव एवं वहाँ के मंदिरों को देखने गया था, आज ही लौटा हूँ। गोकर्ण, महाबलेश्वर तथा अन्य स्थानों के दर्शन की इच्छा का मैंने परित्याग नहीं किया है। कल सुबह की गाड़ी से मैं धारवाड़ जा रहा हूँ। यहाँ के अधिकतर ईसाई साक्षर हैं, अन्य लोग अधिकतर अशिक्षित हैं।
3: स्वामी जी गोवा में श्री सुब्राय नायक नामक एक व्यक्ति के नाम एक परिचय पत्र लेकर आए और उन्हीं के घर पर 3 दिन ठहरे। नायक संस्कृत के पंडित और आयुर्वेद शास्त्र के ज्ञाता थे। परिवार के गृह देवता श्री दामोदर जी के मंदिर से लगे एक कमरे में स्वामी जी वास करते थे। वो कमरा आज भी उसी तरह सुरक्षित है। एक दिन स्वामी जी के गायन के साथ तबला वादक खापूर जी पर्वतकर संगत कर रहे थे। तबला बजाने के साथ उनकी अंग भंगी देख कर स्वामी जी ने ऐसा करने से रोका। इस पर खापूर जी ने कहा, ये असंभव है। तब स्वामी जी ने स्वयं तबला बजाकर दिखा दिया कि वो सर्वथा संभव है। एक गायक को भी उन्होंने इस तरह की भंगिमा का परित्याग करने के लिए कहा था।
2: गोवा में रहते समय स्वामी जी रासेल जाकर कैथोलिक धर्म पुरोहितों का एक शिक्षा केंद्र देखाए। मडगांव से विदा लेते समय नायक जी ने स्वामी जी से उनका एक फोटो मांग लिया। ये फोटो बड़े आकार में इन दिनों दामोदर जी के मंदिर की बगल के कमरे में रखा हुआ है। नायक जी ने बाद में संन्यास ग्रहण किया और स्वामी जी सुब्रह्मानंद तीर्थ के नाम से ज्ञात हुए। उन्होंने उसी कमरे में देह त्याग किया।
3: इस कड़ी में हमने आपको स्वामी जी के जीवन की कई छोटी छोटी घटनाओं के बारे में बताया है। इन घटनाओं का शायद उनके संपूर्ण जीवन में ज्यादा महत्व नहीं है, पर इन प्रसंगों से उनके चरित्र के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डलता है। जैसे उनका फ्रांसीसी संगीत का ज्ञान, स्वदेश प्रेम, दरिद्र जनों के लिए चिंता, परिहास प्रियता एवं याददाश्त आदि सभी विषयों में उनकी रुचि थी तथा प्रकांड पांडित्य था। ऐसे सन्यासी को बारंबार नमन।

0: अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम आपसे मिलते रहेंगे अपने कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद में।
1: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
2: डिप्रेशन इज एंगर टर्न्ड इनवर्ड्स। जब आप औरों पे नहीं गुस्सा करते तो आप अपने पर ही करने लग जाते हैं, लेकिन शायद जब आप औरों पे भी गुस्सा करते हैं तब भी अपने पर गुस्सा कर रहे हैं। आपको गुस्सा देने के लिए वो मेरे से होते हुए ही गुजरेगा, वो एनर्जी पहले यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको कुछ भी दे दूं विदाउट क्रिएटिंग इट। पहले मुझे कूट कूट के गुस्सा अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे अपने आप को क्या देना है। नहीं, मुझे तो इसे गुस्सा करना ही है, कीजिए, बट ओनली रिमेम्बर द एनर्जी दैट एंगर आई क्रिएट देन आई गिव।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफस्टाइल कहते हैं। लाइफस्टाइल इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी आर ईटिंग, ड्रिंकिंग, वेयरिंग। लाइफस्टाइल इज अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग, स्पीकिंग, बिहेविंग। दैट्स माय लाइफस्टाइल।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: वेलकम बैक श्रोते हो। चला तर मग ठाव घेऊया हळव्या मनांचा। चला तर मग ठाव घेऊया हळव्या मनांचा, आनंद घेऊया जीवनातल्या प्रत्येक क्षणांचा। चला तर मग ठाव घेऊया हळव्या मनांचा, आनंद घेऊया जीवनातल्या प्रत्येक क्षणांचा। काही तुमचे काही माझे गुंफून शब्द मोती, काही तुमचे काही माझे गुंफून शब्द मोती, सजवूया हा खेळ शब्दांचा।

जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल। आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुंदर

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ।

टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बाल संसार इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए बच्चों के मनोस्थिति पर, ये मनोविज्ञान पर हम लोग कार्यक्रम आपको दे रहे हैं और जिसमें डॉक्टर अजय शुक्ला जी हमेशा की तरह हमारे साथ उपलब्ध है और बाल संसार बाल मनोविज्ञान में व्यक्तित्व विकास पाठ्यक्रम के विशेष राइटर हैं डॉक्टर अजय शुक्ला जी। सबसे पहले तो हमने कुछ चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए आपको जनरल एक एपिसोड में बातें की थी पिछली बार। अब हम लोग पाठ्यक्रम के अनुसार आपको कुछ बातें जरूर बताएंगे। तो बाल मन के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण का निर्माण, तो ये सबसे पहला लेसन है जिसमें बच्चों की मनोस्थिति की विविधता को समझना। तो आइए इस बात को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर से डॉक्टर अजय शुक्ला जी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी,
0: बाल संसार में आपका स्वागत है। और सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि बाल मन के प्रति जो संवेदनशील बातें करते हैं या दृष्टिकोण का निर्माण करना, बच्चों की मनोस्थिति को अलग अलग ढंग से समझना, इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप किस तरह से उस चीज को समझ पाते हैं, जान पाते हैं, तो उस पर बताइए बच्चों की मनोस्थिति को कैसे समझा जाए।
1: बहुत ही सटीक और व्यवहारिक प्रश्न है और सामान्य तौर पर एक आम परिवार में इस प्रकार की समस्या रहती है और बड़े चाहते हैं कि इस मनस्थिति को हम समझें। और खासकर जब संवेदनाओं की बात आती है तो हमें लगता है कि मानवीय संवेदनाएं केवल बड़ों तक सीमित हैं, लेकिन उसका जो रेंज है वो बच्चों के पास ज्यादा है। कारण उसके पीछे है कि जो भावनाएं और विचार उनकी मनस्थिति में उत्पन्न होते हैं उसकी अभिव्यक्ति के लिए उनके पास में जो माध्यम है वो बहुत कम है, लेकिन वो अपनी भाव भंगिमाओं से, व्यवहार से और कई बार अलग अलग अपने स्वभाव को वो व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए जब आपके परिवार में कोई आता है बड़ा और अपने बच्चों को आप बुलाते हैं तो उनके मन में रहता है कि अभी ये बड़ों से हमको मिलवाएंगे, मिलवाएंगे तो हमारा खेलने का समय है, हमारा पढ़ाई का समय है। अर्थात उन बच्चों के उन मनोभावों को वहां उस लेवल पर स्वीकार नहीं किया जाता। ये माना जाता है कि ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है और ये बच्चे आएंगे और बड़ों को प्रणाम करेंगे, नमस्ते करेंगे, अभिवादन करेंगे और वो अभिवादन बहुत प्रसन्नतापूर्वक होना चाहिए, बहुत आनंदपूर्वक होना चाहिए, जिससे बड़ों की डिग्निटी या उनके डेजिग्नेशन को कोई धक्का नहीं लगे। उन्हें बड़े सोच रहे हैं कि हमारी संवेदनाएं तो प्रोटेक्ट रहें, लेकिन उस स्थिति में बड़ों को चाहिए कि जिस बच्चे को हमने जन्म दिया है, उसको पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, वो जब हमारे मित्रों से मिलने आ रहा है तो उसकी क्या अपेक्षाएं हो सकती हैं, उनकी संवेदनाएं क्या हो सकती हैं। उदाहरण के लिए जो गेस्ट हैं वो कुछ गिफ्ट उनके लिए लेके आए हैं या कुछ फल या मिष्ठान लेके आए हैं तो उनका मन लगेगा, जुड़ाव होगा और आप चाह रहे हैं कि वो अभिवादन भी करें और कोई पोएम भी सुनाएं और कुछ अपनी बात भी रखें, तो ऐसी स्थिति में बच्चा भी मानसिक रूप से तैयार नहीं है। वो आएगा, हो सकता है कि वो आके प्रणाम करके और तेजी से वहां भाग जाए, लेकिन बड़ों को लगेगा देखो ये बड़े हैं और हमारे मित्र हैं, उन्होंने कुछ एटिकेट्स नहीं सिखाए हैं, रुकना चाहिए था, परमिशन लेना चाहिए था बच्चों को हमसे जहां से जाने के लिए। तो इस प्रकार के जो फ्लक्चुएशन है उस पर हमें बड़ा सटीकता से अध्ययन करना होगा, उनकी संवेदनाओं को समझना होगा। ये भी समझना होगा कि जब बच्चा हमारे पास आया है, बड़ों से हम जुड़ाव करने की बात कर रहे हैं तो ये एक मशीनी प्रक्रिया नहीं है, उसको सहजता से जुड़ने दें, उसके भाव को समझें। वो चला भी जाता है तो नाराजगी व्यक्त नहीं करें, उसे

0: लड़ने का प्रयास नहीं करें, उसे बलपूर्वक रोकने का भी प्रयास नहीं करें, बल्कि उसको सहजता में कन्वर्ट होने दें। और ये हो सकता है कि आपकी उस सहजता या बाल मनोविज्ञान को समझने के बाद वो बच्चा 10 या 5 मिनट के बाद में वापस आ जाए। उसको लगेगा कि अभी बड़ों के पास में बातचीत मुझे करना था और मेरी बात वहां नहीं हो पाई, मैं अपना कुछ अभिव्यक्त नहीं कर सका, लेकिन अब मैं उनसे पुनः जुड़ता हूं। और उस जुड़ाव के वसीभूत वो अपने आप को वहां उपस्थित भी करेगा और अंतर मन से जुड़ने का प्रयास करेगा, क्योंकि वो उस समय तक जान चुका होगा कि मेरे प्रति भी बड़ों की संवेदनाएं जागृत हैं और वो कहीं न कहीं मुझसे जुड़ना या जोड़ना चाहते हैं। जी
1: डॉक्टर अजय शुक्ला जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया बच्चों की मनस्थिति को कैसे समझा जाए। तो सिंपल और सहज तरीके से अगर इसको समझा जाए तो बड़ा अच्छी तरह से आपने बताया कि हम अपनी मनोस्थिति को भी समझ लेंगे तो शायद बच्चों के मन को समझने में आसान होगा। कई बार अवलोकन भी करना जरूरी है कि बच्चों के व्यवहार कैसे हैं, वो खेलते कैसे हैं, खेलने के साथ साथ उनकी बातचीत का तरीका क्या है, इस पर अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, या फिर कभी कभी वो बात करते हैं भले ही उनकी बातों में कुछ शब्दों का कमी हो सकता है, कुछ सटीक शब्द आपको नहीं मिलेंगे, समझने में थोड़ा देर होता होगा, लेकिन भाव तो जरूर समझ सकते हैं। खुले प्रश्न उनसे पूछिए, सोचने समझाने की बात प्रोत्साहित करें। और सहानुभूति और स्वीकारता जो है आपके पास हमेशा रहना चाहिए और एक विश्वास बनाए रखना चाहिए। मुझे लगता है कि ये चीजें अगर आप करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो बच्चों पे शुरुआत में हम लोग जो है कई बार कुछ हो जाता है तो सीधे डांट डपट के उनको चुप करा देते
0: हैं,
1: तो शायद वो मनोस्थिति हमारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस समय हम, मुझे लगता है कि किसी पिताजी का या माँ का जो व्यवहार है शायद ये उनको नहीं सिखाया गया होगा।
0: जी जी।
1: दूसरी बात, अगर सीख भी गए होंगे तो या तो उनके पास टाइम इतना नहीं है कि मैं पेशेंट हूं,
0: बिल्कुल,
1: या फिर पेशेंट भी नहीं होगा। कई बार होता है कि ये बच्चा है मेरी बात क्यों नहीं समझता है,
0: जी
1: ऐसा उनको लगता है। तो बच्चे को समझाने से ज्यादा हमें उनके पास टाइम निकाल के उनको समझने के लिए टाइम देना होगा।
0: बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। यही मानवीय संवेदनाओं की आवश्यकता भी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो हर व्यक्ति चाहता है कि दूसरे मेरी बात को समझे और चला जाए।
0: जी जी।
1: लेकिन वो समझने के लिए नहीं आया, शायद आपकी हेल्प करने भी आया हो।
0: बिल्कुल, यही पक्ष होना चाहिए।
1: तो कई बार हम लोग जो है ऐसा सोचते हैं कि हमारा टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, हर व्यक्ति का टाइम इम्पोर्टेंट है। टाइम को इंग्लिश में मनी कहा गया, अंग्रेजी में टाइम इज मनी कहा गया। अगर समय ही पैसा है तो फिर समय को सफल करो, पैसा सफल होगा।
0: बिल्कुल।
1: तो अगर हम इन चीज को ठीक से नहीं समझ पाते हैं तो शायद टाइम को हम लोग वर्क में लगा देते हैं या वेस्ट हो जाता है, तो वो हमारा मनी भी काम में लग जाता है और या तो वेस्ट हो जाता है।
0: जी जी जी।
1: तो उसको सफल करने के लिए शायद मुझे लगता है थोड़ा बियॉन्ड होके सोचना पड़ेगा। तो आइए यहां पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप सुनाए हैं बाल बच्चों के मनोविज्ञान पर बाल संसार इस कार्यक्रम को। आशा करूंगा आप सभी को अच्छा लगता हो, तो जरूर हमारे साथ जुड़े और अपनी प्रतिक्रिया दें ताकि हम आपको अपने अनुभवों को या फिर आपके अनुभवों को साझा करने में हमें हेल्प मिले। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं। बाल मनोविज्ञान पर बातें हो रही हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी पे बातें हो रही हैं और अजय शुक्ला जी हमारे साथ हैं, उनसे बातें हो रही हैं। कई बार हम लोग जब इस पाठ्यक्रम को देखते हैं तो यहां पर मैंने देखा अजय जी ने बड़े अच्छे पाठ्यक्रम को जो है शुरूआत किया है, बाल मन के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण का निर्णय। तो इसमें एक और चैप्टर आता है जहां पर बच्चों की मनोस्थिति को कैसे समझा जाए, जिसके बारे में हमने बातें की। जो दूसरा जो इसमें भाव आता है, दूसरा जो पैराग्राफ है, दूसरा जो उसमें सब टाइटल है, वो है पवित्र संवेदनाओं की गरिमा का ध्यान रखना। तो इस बात को कैसे हम लोग समझे, अजय जी बताइए।
1: बहुत अच्छी यहां बातचीत चल रही है और एक विश्लेषणात्मक अध्ययन करने का हम प्रयास कर रहे हैं। यहां पवित्र शब्द का उपयोग इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि सामान्य संवेदनाओं के प्रति तो हम जागृत रहते हैं, लेकिन बच्चों के लिए जैसा पहला एपिसोड में हम

0: चिंत भी किया कि बच्चे मन के सच्चे हैं और हम कहते हैं कि भाई ये भगवान के समकक्ष हैं और इनके जो मनोभाव हैं वो इतने पवित्र हैं कि इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। और कई बार बड़ों के निर्णय के बीच में जब बच्चों से हम पूछते हैं कि बेटा बताओ कि ये हम सारी उलझन में हैं, तो आपका इसमें क्या ओवरव्यू है या क्या आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया या क्रिया आपके मन में आती है, तो उस समय आप देखेंगे एक निष्पक्ष सुझाव उठता आएगा और वो इतना कारगर होता है कि ऐसा लगता है कि उसे अपना लिया जाए। जैसे मैं एक उदाहरण आपको दूंगा, एक विद्वान विदुषी बहन है, उन्होंने अपने बच्चे के लिए काउंसलिंग के लिए मुझे बुलाया और कहा कि अभी बच्चे को मैं बुलाती हूं, और उन्होंने ये भी कहा कि आप प्रणाम करो क्योंकि आप मेरे गुरु हैं। मैंने बच्चे को मैसेज दिया कि ये आप के गुरु नहीं बल्कि मेरे गुरु हैं, जिनको आप प्रणाम करो। अब वो बच्चा जैसे ही प्रणाम करता है और मैं उसको ब्लेसिंग देने के लिए अपना हाथ बढ़ाता हूं, तो बच्चों के अंदर एक चंचलता होती है, बहुत जल्दी वो मेरे स्पर्श के पहले ही वहां से भाग खड़ा होता है। अब यहां हमें समझना होगा कि ऐसी स्थिति में एक काउंसलर की भूमिका दोषारोपण की नहीं है, बल्कि ये समझने की है। और मैंने मां से, उनके बच्चे की मां से कहा कि आप मुझे बताइए कि इस समय आप क्या सोच रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे को तो बड़ा अपमान फील हुआ कि बहुत अच्छे से वह बच्चा नहीं मिला आपसे, या मैं उसको सिखाने में असफल रही। मैंने बोला ऐसा नहीं, हम बच्चों के मनोभावों को बड़ों जैसे विश्लेषण नहीं करें, हम उनकी प्योरिटी को समझें। उस बच्चे के अंदर जो परसेप्शन का लेवल है वो इतना पवित्र है कि वो बच्चा आता है, प्रणाम करता है और वो भाग जाता है। उसको ये विश्वास है कि जब मेरी मां के गुरु बैठे हुए हैं तो ये मेरे लिए कितने हम्बल हो सकते हैं, कितना स्नेह प्यार हमको इनसे मिल सकता है। तो इस भावना को ध्यान में रखते हुए वो बच्चा चला गया। 15 से 20 मिनट के बाद में जब हमारी कुछ बातचीत हुई तो बच्चा वापस आता है और वो बड़े प्यार से मेरे पास आके बैठ जाता है। अब बच्चे की मां को ये विश्वास हो गया कि जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि वो जो पवित्र संवेदनाएं हैं वो वापस लौटी हैं, हमने अपेक्षा नहीं की लेकिन ब्रह्मांड में हमने एक संकल्प भेजा कि बच्चा आएगा और हमसे जुड़ेगा, क्योंकि यहां पर हम उस बच्चे के साथ में कैदी जैसा बिहेव नहीं कर सकते, उसको कुर्सी पर बिठा के बांध के बाई फोर्स नहीं कर सकते कि आपको बात करनी ही पड़ेगी, ये सम्मान देना ही पड़ेगा। ये सारी क्रियाएं हमारी मन स्थिति में चल रही हैं, लेकिन अगर हम पवित्र मनोभाव को देखेंगे तो बच्चे का निश्चल मन, बच्चे का निर्मल हृदय वापस ले आया। और उस पवित्र मन की विशेषता देखिए कि मैंने बड़े धीरे से कहा कि बेटा ये बताओ कि पढ़ने में कितना मन लगता है और खेलने में कितना मन लगता है। अब बच्चे के पास में कोई मेजरमेंट टूल तो है नहीं, ये मन को कैसे बताए। हम सोच रहे हैं कि वो शायद बच्चा बोल देगा कि अभी मेरा पढ़ने में कम मन लगता है और खेलने में ज्यादा लगता है। अब कम और ज्यादा को आप कैसे मेजरमेंट करेंगे। तो बच्चे से मैंने कहा, बच्चे की उम्र के हिसाब से, कि बच्चा 3 या 4 साल का है, उस समय मैंने कहा बेटा आप हाथ से बताओ कि पढ़ने में कितना मन लगता है। तो आप आश्चर्य करेंगे भाई जी कि वो बच्चा छोटी सी मुट्ठी दोनों हाथों को ऐसे बंद करके बोल रहा है कि इतना सा मेरा मन पढ़ने में लगता है। अब मैंने बोला खेलने में कितना लगता है, तो वो बिल्कुल पीछे घूम गया और दोनों हाथों को पूरा वो फैलाता है और कहता है कि इतना सारा मन मेरा खेलने में लगता है, और इतना कह के वो फिर भाग गया। अब मां ने कहा कि आप एज ए काउंसलर बच्चे की मनस्थिति को समझ गए, आपने पवित्र संवेदनाओं को स्वीकार कर लिया, लेकिन क्या मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो सकता है कि ये छोटी सी मुट्ठी बता रहा है कि इतना मन पढ़ने का मैं लगता है, तो ये थोड़ा सा 50% ये हो जाए और खेलने वाला 50% कम हो जाए, तो शायद बैलेंस हो सकता है। तो हमने बाकी प्रोसेस करने का प्रयास किया और उसमें सफलता भी हमको मिली, और बच्चे के मनोभाव को समझते हुए उन्हें को फिर अलग अलग तरीके से मदद के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं मैंने उनकी मदर को बताया और वो उसको उन्होंने फॉलो भी किया। तो कुल मिला के कहने का अर्थ कि हमें बच्चों के उस समय त्वरित क्रिया या प्रतिक्रिया को प्योरिटी के फॉर्म में स्वीकार करना चाहिए और उनके प्रति अपनी संवेदनाओं को और गहरा करके और समाधान के लिए छोटे छोटे प्रयास करना चाहिए। जी
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया, आशा करूंगा हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है। और जिस मनोस्थिति की हम लोग बात कर रहे हैं, कई बार हम लोग चीजों को समझ के भी कभी कभी हम लोग नहीं समझ पाते, ये बहुत जरूरी है कि हम उन सारी चीजों को ठीक से समझे जाने। और जिस तरह से हम लोग अभी बात कर रहे थे खास मनोस्थिति के बारे में और इसमें जो पाठ्यक्रम है उसको लेकर हम बात कर रहे थे, तो उसमें जैसे कि हमने अभी बात की विशेष पवित्र

0: प्रेरणाओं की गरिमा को। तो यहाँ पर अजय सर ने बड़ा अच्छा बताया कि सम्मान और विनम्रता दोनों होनी चाहिए आपकी बातों में, साथ साथ अगर ध्यान और एकाग्रता पर आप अगर जोर देते हैं तो भी आपको अच्छा लगेगा। और कृतज्ञता जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि आप उस पवित्र भावनाओं के साथ ऐसे जुड़ जाए कि आपको हर चीज जो है स्पष्ट रहे और आपको आईने की तरह हर चीज दिखाई दे। आपको बहुत अच्छी तरह से इन चीजों को जब आप समझेंगे तो आसानी से लोगों को बता सकते हैं, समझा सकते हैं और जान सकते हैं। तो ये ऐसा यहां पर कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जहां पर हम लोग हो सकता है कि वो चीजें कर पाए नहीं कर पाए
1: जी,
0: थोड़ा सा मैकेनिज्म वाली बात है। देखिए ट्रायल एंड एरर सारी जिंदगी चलती रहती है
1: जी जी जी,
0: लेकिन आप अगर सोचेंगे कि मैं कंप्लीट कर दूंगा तो वो गड़बड़ है। यू शुड ऑलवेज मतलब हमेशा ये देखिए कि ट्रायल एंड एरर, और ये चीज हमेशा काम करती है। भले आपने सीखा हो लेकिन सीखने के साथ साथ आपको जो है हमेशा जब भी आप बच्चों के मनोस्थिति से जुड़ जाते हैं तो आपको पता नहीं कि बच्चा क्या करेगा, है ना, क्योंकि उसके स्वभाव के आधार पे कुछ चीजें हो सकता है कि आप उसको जान ले, लेकिन कुछ जगह पे आप नहीं जान पाते हैं तो वहां पर आपको कैसे डील करना है ये बहुत जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा कि यहां पर एक और सवाल, एक और भावनाएं जो है हम इस चैप्टर में ले रहे हैं, जैसे कि सकारात्मक दृष्टिकोण का उपयोग करना। तो अजय जी मैं चाहूंगा कि कैसे हम लोग सकारात्मक दृष्टिकोण का उपयोग कर सकते हैं वो थोड़ा सा बताएं।
2: सकारात्मक दृष्टिकोण के संबंध में जो मेरा यहां चिंतन है वो ये है कि बच्चे के मनोभाव को हम समझ रहे हैं, लेकिन उस मनोभाव को समझने और समझाने की क्रिया में जो सबसे बड़ी बाधा आती है कि थोड़े समय तक हमारा प्रयास स्नेह और प्यार को लेकर होता है, हम अच्छी केयरिंग भी कर रहे हैं, नर्सरिंग भी कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चा है हमारी वो हमारी भावनाओं को समझ रहा है, स्वीकार कर रहा है, लेकिन उसके मन में एक अच्छी अपेक्षा है हमारे से कि हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं बनाएंगे, क्योंकि दबाव और तनाव क्या करता है, बच्चे को एक द्वंद में डाल देता है और वो माता पिता से जुड़ने की बजाय उनसे अलग होने का प्रयास करता है, अर्थात एकांत की ओर जाता है। ऐसे समय में हम ये परिस्थिति घटित होने दें, उसके बाद हम सकारात्मकता को फॉलो करेंगे या सकारात्मक दृष्टिकोण हम अपनाएंगे तो उस समय तक हम काफी लेट हो जाएंगे, इससे पहले कि बच्चे के मन में हमारे प्रति कोई दूसरे भाव पैदा हों और उस भाव के कारण वो अपने व्यवहार में बदलाव लाए। उससे पहले ही हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा फर्ज बनता है कि हमारे बच्चे हैं और उस बच्चे को माता पिता के प्रति या गुरु के प्रति ये गहरी आस्था है और वो सोचता है कि ये तीन लोग मिलकर हमारी पालना करते हैं, तो वो मैक्सिमम एफर्ट करता है कि मैं बहुत अच्छा अपना प्रस्तुतिकरण दे सकूं। जैसा आपने भाई जी ने बताया कि आप ये मान के चल रहे हैं कि सारी चीज में परफेक्शन नहीं हो सकता है, परफेक्शन के लिए हम एफर्ट कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, कंप्लेंट एंड सजेशन की गुंजाइश हमेशा होती है। बड़ी से बड़ी व्यवस्था में इस बात के लिए आर्गुमेंट किया जाता है कि आप बहुत सारे अच्छे सजेशन और कहीं अगर कोई शिकायत या सुझाव है तो वो दीजिए, तो वहां परिवर्तन करने की स्थिति ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर या व्यक्तिगत जीवन में भी कोई इंसान कर सकता है। यही वस्तु स्थिति हमारे मन में भी होना चाहिए कि बच्चे की बात जब हम सुन रहे हैं या समझ रहे हैं या किसी को शेयर कर रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम प्रयास करें कि हम सकारात्मक दृष्टिकोण रख के चल रहे हैं, और उस सकारात्मक दृष्टिकोण का प्रतिफल क्या है कि अपने बच्चे की अच्छाइयों, विशेषताओं, गुणों, उस बच्चे का जो इनर पावर है, साहस है, इनिशिएटिव पावर है, कुछ अच्छी बातें जो आपके मन में अपने बच्चे को लेकर गर्व पैदा करती हैं, गौरव पैदा करती हैं, और आप ये मान के चलते हैं कि एक श्रेष्ठ नागरिक बनने में बच्चे के इस गुण के कारण बड़ी मदद मिलेगी, तो उसको हम प्रमोट करेंगे और उसके साथ में बहुत सारी क्वालिटी या बहुत सारी विशेषताएं धीरे धीरे जुड़ती जाएंगी, तो बच्चों के अंदर एक उत्साह होगा, उमंग होगा और उसे लगेगा कि बड़ों के सामने हमारी केवल यहां प्रेजिंग नहीं हो रही है बल्कि कुछ अच्छी चीजों को शेयर किया जा रहा है ताकि इसको और बच्चे को अच्छा कैसे बनाया जा सके। तो हमारा उद्देश्य किसी अच्छाई को बताने के पीछे यह है कि उसमें हम अभिवृद्धि करें और उसको प्रमोट करें और सकारात्मकता को अंत तक बनाए रखें, जिससे कि बच्चे का मनोबल किसी भी स्थिति में अगर कहीं टूट रहा हो तो उसे हम संभाल सकें, संवार सकें और एक नई दिशा दे सकें। जी
0: अजय जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, आशा करूंगा हमारे सभी श्रोताओं को भी बड़ा अच्छा लग रहा है। अब जो बातें हम लोग कर रहे हैं पाठ्यक्रम से बिल्कुल अलग कर रहे हैं।

0: थोड़ा सा पाठ्यक्रम को ले रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश यही है हमारी है हम दोनों के कि आपको अपने लाइफ के साथ जो रियलिटी है उसके साथ जुड़े और उसमें और जल्दबाजी इसमें बिल्कुल नहीं चलती। अगर आप बहुत जल्दबाजी करते हैं तो हो सकता है कि बच्चों की क्रिएटिविटी के बजाय बच्चों को हम लोग उसकी क्रिएटिविटी समाप्त कर रहे हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा आपके शब्दों में बहुत इम्पोर्टेंस होना चाहिए। जिस तरह से आप सम्मान चाहते हैं वैसा बच्चा भी सम्मान चाहता है, क्योंकि सम्मान से उसकी सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि वो आपको उतना ही सम्मान से देख रहा है। बालक आपको एक पिता समान, मां समान, बड़े के रूप में आपको देख रहा है। तो उसके अंदर आपके प्रति जो भाव है, वो भाव से अगर बच्चे को देखना शुरू करेंगे तो चीजें बड़ी अच्छी हो जाएगी। कई बार हम लोग अपने लाइफ स्टाइल में उन चीजों का कहीं मायने बना, ऐसा कोई ट्रेनिंग तो नहीं लेते कि हम बच्चों के साथ कैसे बात करें, है ना। हम सोचते हैं कि मेरा लड़का है, मेरा अधिकार है इसके ऊपर बोलने का, वो सोचते हैं, तो वहां सारा जो है खेल बिगड़ जाता है। तो रियलिटी को ज्ञान जो है दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए होता है। तो स्वदर्शन से परमात्मा दर्शन होगा। ज्ञान को अप्लाई नहीं किया है वो फिर आप ज्ञान सुनने सुनाने तक रहेंगे, लेकिन उसका एप्लीकेशन नहीं है तो इम्प्लीमेंट जीरो है, तो उसका यूज भी नहीं होगा, उसका रिजल्ट्स भी नहीं आएंगे। तो इसीलिए ज्ञान खुद के लिए उपयोग में लाए और अपने जीवन को बेहतर बनाए, अपनी भावनाओं को समझे, अपनी भावनाओं को ठीक करे, तो बहुत अच्छी बात होगी। तो इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले कड़ी में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और ख्याल रखिए अपना और बच्चों की मनोस्थिति को सम्मान से देखे। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 करोड़ सेल्स है, जस्ट द ब्रेन, ओके, 10,000 करोड़ सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 करोड़ सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 crore cells in the brain into 10,000. This is the human network. So many switches connected to so many switches. अब जब इतने switches से connected होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका effect कितना लंबा जाएगा। तो जब brain में 10,000 crore cells connected to 10,000 cells, each cell connected to 10,000 cells in the body, and हर thought जो हम create कर रहे हैं उसका brain पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सिक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है। और हमने कितनी आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे, अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर। उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: चल चल चल मेरे साथी, ओ मेरे हाथी, चल ले चल कटारा पीछे।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।
3: दोस्तों, जीवन में हमने कई बार ऐसा सुना है कि कभी समय का पता ही नहीं चलता किसी से बात करते हुए, और कई बार कई लोग कहते हैं कि ये कब जाएंगे, कब उठेंगे, जैसे ऐसा लगता है हर एक पल उस समय हमें बहुत भारी लगने लगता है। कुछ लोगों की खासियत ही होती है कि वो समय को इतना सहज बना देते हैं अपने बातचीत से कि आपको लगने लगता है कि इनके साथ थोड़ा और समय बिताएं। ऐसे लोगों को हमारे बुजुर्गों ने ज्ञानी, गुणी, विदुषी कहा है, विद्वान कहा है। क्या ऐसे लोग आपके आसपास हैं? होंगे जरूर, नजर खोल के देखने की जरूरत है, थोड़ा सा आसपास के लोगों के साथ मिलने घुलने की जरूरत है। लेकिन अगर आप बिजी हैं तो हम आपके लिए ऐसे ही लोगों को लेकर के आते हैं। यशस्वी भारत कार्यक्रम सुन रहे हैं आप 107.8 रेडियो मधुबन में। मैं आरजे शांतनु आपके बीच में फिर से आया हूँ एक और खास मेहमान को लेकर के। और आज के हमारे मेहमान ऐसे ही हैं दोस्तों, जिनसे बातचीत करना अगर आप शुरू करें तो आपको ऐसा लगेगा कि ये प्रोग्राम कभी खत्म नहीं होना चाहिए। आज के हमारे एपिसोड में हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर अनिल कुमार गुप्ता जी, जिन्हें भारत सरकार ने वर्ष 2004 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। मैंने तो पहले ही कह दिया प्रोफेसर, तो आपको समझ में ही आ गया होगा कि आज का जो हमारा ये बातचीत है, ये मुझे और आपको बहुत ज्यादा ऐसी चीजों से रूबरू करेगा जिनके बारे में हमने शायद कभी इतने ध्यान से सोचा नहीं होगा, या देखा भी होगा लेकिन गौर नहीं किया होगा, सुना भी होगा लेकिन उस पे गौर नहीं किया होगा। आइए बातचीत का दौरा आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं प्रोफेसर अनिल कुमार गुप्ता जी का। अनिल जी, आपका रेडियो मधुबन के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद, धन्यवाद शांतनु, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके, और आपके जरिए उन लोगों तक पहुँचने की कोशिश होगी आज, जिनके पास विचार है, जिनके पास नवसर्जन है, जिनके पास कल्पना है कुछ ऐसी जिससे हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारी समस्याओं का हल होगा, बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हुए, बिना किसी को चोट पहुंचाए हुए, बिना किसी को दर्द पहुंचाए हुए।
3: जैसे आपने कहा कि हमारे देश को बहुत फायदा होगा और देश में रहने वाले लोगों को फायदा होगा, पर्यावरण, प्रकृति, जीव प्राणी जो कोई भी है, हर एक को फायदा हो, लेकिन आज के दौर में हमने देखा कि ये फायदे के दौड़ में कई बार हम ये भूल ही जाते हैं कि जिसके लिए हम दौड़ रहे हैं, और दौड़ते हुए हम कहीं ना कहीं उनको ही पीछे छोड़ जाते हैं। तो ऐसे भागम भाग के दौड़ में हमारे श्रोता साथी जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो आपको सुन रहे हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने बिजी शेड्यूल में से, इतनी व्यस्तता में से आपने समय निकाला हमारे लिए, तो सबसे पहले तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप। अनिल जी, इससे पहले कि हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें, मैं समझता हूँ आपकी कहानी आपकी जुबानी सुनना जरूरी है कि आपने ये जो आपका दौर है जहाँ पर आपने लोगों के लिए, उनके ही द्वारा उनके लिए सृजन करना, उनके लिए उनके ही द्वारा समस्याओं का समाधान करना, इस जर्नी की शुरुआत जब आपने की, इस यात्रा की शुरुआत जब आपने की, इससे पहले की यात्रा हम जानना चाहेंगे। जब आप बचपन में कैसे थे, आपका परिवार, आपका माहौल क्या था, किन चीजों ने आपको प्रेरित किया कि आप अपने जीवन का जो ध्येय है वो इस प्रकार के समाज सेवा प्लस विद्यार्थी या विद्यार्थियों के लिए जो आपने काम किया है उसके तहत, तो ये जो टोटल एक कहानी है वो हम आपकी ही जुबानी सुनना चाहेंगे।
4: मैं संक्षेप में बताऊंगा क्योंकि बात बड़ी पुरानी है, 70 साल पुरानी बात को याद रखना 7 मिनट में कोशिश करूंगा कह दूं। तो मेरा जन्म तो एक गांव में हुआ, गंगागढ़ गांव है, बुलंदशहर जिला है उत्तर प्रदेश में, वहाँ खोचा है, जगह है जहाँ सिरेमिक के बर्तन बनते, जैसे अपने यहाँ मोरबी में बनते हैं गुजरात में, और उसके पास पासू है, पासू के पास गंगागढ़ है, वहाँ मेरी छोटी सी जमीन अभी भी है, खेत है, और हमारे परिवार ने वहाँ एक स्कूल बनाया है। मेरे छोटा भाई आर्मी में था, उसकी याद आलोक चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए, और वहाँ मेरा जन्म हुआ। उसके बाद हमारे पिताजी साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, तो दिल्ली में आ गए IRI में, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में। वहाँ एक जाफरी में रहते थे हम लोग। उस समय तनख्वाहें बहुत कम थी, 250 रुपये में जरा करना पड़ता था पूरे महीने का, तो साधन ज्यादा थे नहीं। कभी कभी क्या होता था कि आखिर के महीने के आखिर में, जैसा मेरे को उन्होंने बताया, मैंने समझा, मैं छोटा था सन, लेकिन 2-3 साल में देखना समझना याद रखना हो गया था शुरू, कि भाई लोग साइकिल के पीछे अखबार रख के जा रहे हैं। तो दुकान मालिक ने पूछा, कहाँ जा रहे हो भाई? हमारे पिताजी बोले कि भाई ऐसा है, इसको बेचूंगा, कुछ मेहमान आने वाले हैं कल, थोड़े पैसे मिलेंगे तो सामान लाऊंगा। तो मतलब ऐसी स्थिति भी थी। उन्होंने फिर मदद की थोड़ी सी, बोले कोई बात नहीं, आप इतना परेशान मत हो जाएगा काम। तो वहां से शुरू हुए और पढ़ना शुरू किया, फिर कानपुर गया, हमारे पिताजी का ट्रांसफर हुआ, थोड़े दिन हम उसके बीच में खोजा में रहे। तो उस जमाने में तख्ती पे लिखा करते थे हम लोग। तख्ती मतलब लकड़ी का एक स्लेट जैसा होता है, उस पर रोज मुल्तानी मिट्टी चढ़ानी होती है। मुल्तानी मिट्टी चढ़ाते वो सफेद हो जाएगी, उसके बाद काली स्याही से उसकी कलम बनाकर सरकंडे की लिखते थे, और कभी टीचर को गुस्सा आ जाए तो वो उसी तख्ती से पिटाई करते थे। तो मतलब कि ये दोनों डबल पर्पज थी, लिखने का भी काम करती थी, पिटाई का भी काम करती थी।
3: और मुझे लगता है आपको कभी पिटाई पड़ी नहीं होगी, क्योंकि आप बड़े अच्छे और क्या होता है ना,
4: एक बार क्या होता है, टीचर जब एक तरह से मारना शुरू करते हैं ना, तो वो एक तरह से सभी बच्चों को शिकायत सजा देते हैं। बच्चे शोर कर रहे हैं, फोन कौन शोर कर रहा है ये नहीं देखते ना, इतना ध्यान कहाँ देते हैं, तो टाइम भी नहीं होता है
3: ना, गेहूं के साथ घुन भी फंस गया।
4: तो वो हुआ जमाना, वहां पर तख्ती और प्लेट जो है टूट जाती है ना, किसी बार तख्ती टूटती नहीं। मेरा मतलब कहने का यह है कि उस जमाने में हमको बताना नहीं पड़ता था सस्टेनेबिलिटी क्या होती है, टिकाऊ जीवन क्या होता है। बड़े मेरा बड़ा था तो मेरे कपड़े छोटे हुए थे, छोटे वाले के काम आ गए, छोटे वाले के हुए तो उसके तीसरे काम पर काम। कभी ये नहीं होता था ये उतरन है ये क्या है, जब तक कोई भी चीज बिल्कुल क्षीण ना हो जाए उसका इस्तेमाल करते थे। हम लोगों को सिखाया गया था बचपन में से ही झाड़ू पीछा करना, बर्तन साफ करना है, तो मतलब कि घर के सभी काम करना जरूरी है, खाली माँ का मतलब नहीं है कि वही करे। तो एक स्वाभिमान, एक कोई काम छोटा नहीं होता, ये बात बहुत बचपन में सीखी है हमने। वहां से फिर हम लोग फिर वापस दिल्ली आ गए हमारे पिताजी। तो वहाँ एक रामजस पहाड़ों पे एक स्कूल है, वहाँ पढ़ा मैं। और बीच में क्या हुआ कि मेरा फौज में भी सिलेक्शन हो गया था, 1968 की बात है, NDA के जरिए, नेशनल डिफेंस अकेडमी में। लेकिन कान में सुनने में उन्होंने कुछ तकलीफ निकाली, मैंने ज्वाइन नहीं किया। और वो करने के बाद फिर मैं हिसार चला गया पढ़ने के लिए, हरियाणा में हरियाणा कच्छ यूनिवर्सिटी। 4 साल वहां रहा, लेकिन क्या होता था, गर्मी की छुट्टियों में मैं घर नहीं जाता था। दो काम करता था, एक तो चित्रकारी करता था, चित्र बनाने का शौक था वो बनाता था, और लाइब्रेरी में पढ़ता था। तो माला की माँ बाप सोचते थे छुट्टियों में सब घर आते हैं, तुम क्यों नहीं आते? मैंने कहा मुझे इतना कुछ पढ़ना है, कैसे पढ़ूंगा मैं, टाइम ही नहीं मिलता है। कॉलेज के दिन होते हैं तो क्लासेज होती हैं, अब मेरे पास 2 महीने हैं, मुझे बहुत कुछ पढ़ना है, साहित्य पढ़ना है, कविता पढ़नी है, जीवनियां पढ़नी है लोगों की जिन्होंने जीवन में कुछ किया। तो उसका मुझ पर काफी प्रभाव भी पड़ा, क्योंकि पढ़ने का शौक होने से क्या होता है, और हमारे माता जी पिताजी का भी काफी शौक था, वो साइंटिस्ट थे, डॉक्टर ज्ञान प्रकाश गुप्ता। हमारी माता को बहुत शौक था सिलाई कढ़ाई का, सिखाती थी सबको। तो एक अपने ज्ञान को बांटने का माहौल मैंने देखा अपने आसपास, और उसका फायदा ये हुआ कि जब किताबों का शौक हो जाता है किसी को, मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि अपनी आमदनी का कम से कम 10% आप किताबों में लगाएं, किताबें खरीदें, घर में लाइब्रेरी बनाएं, पुस्तकालय बनाएं, तो फिर और किसी चीज का शौक नहीं होता, और किसी चीज का अभाव आपको महसूस नहीं होता। मेरे घर में सोफा नहीं है, 2 छोटी-छोटी सी सेटी हैं, 4 पलंग जैसे हैं, उस पर लोग आके बैठ जाते हैं, तकिए रखे हुए, भाई बैठो उस पर काम करो। मेरे पास 4 कुर्सी हैं जो मैंने 1975 में खरीदी थी, वो आज ही मेरे पास है, मेरा काम चल रहा है कुर्सियों से। तो मतलब है कि किसी को आपकी इज्जत, आपके पास क्या है साधन भौतिक, उससे तो नहीं होगी ना
3: जी,
4: आपकी इज्जत आपके विचारों से होगी, आपके काम से होगी। तो मेरा अभिप्राय ये है कि आजकल बहुत सारा समय और साधन लोग भौतिक चीजों की तरफ लगा देते हैं, और उससे क्या है कि मैं कहा करता हूँ कि एक दिमाग में थिंग्स और थॉट्स के बीच में स्ट्रगल होता है। यू कैन एक्सपैंड द स्पेस फॉर थिंग्स, स्पेस फॉर थॉट्स गेट कंस्ट्रक्टेड। जब सामान की जगह बढ़ती है तो विचार की जगह घटती है, सामान को घटा देंगे, ऐसा मेरा मानना है। मेरे बाबा वानप्रस्थी थे, आर्य विरक्त वानप्रस्थ आश्रम में ज्वालापुर में हरिद्वार के पास रहते थे। तो जब छोटे थे तो उनके पास जाया करते थे गर्मी की छुट्टी, और उनसे मैंने काफी प्रेरणा ली।

सारा सामान एक खड्डी में आ जाता था, एक छोरा जो कंधे पे टंगता है ये थोड़ा सा सामान होता है, थोड़ा पीछे उनके हवन के सामान होती थी, हवन की सामग्री वगैरह, हवन कौन, तो वो रोज हवन करते थे, मेरे माता पिता ने रोज किया, मैं रोज करता हूँ पिछले बहुत सालों से। तो क्या होता है कि उसमें आपका सुबह जब आप शुरुआत करते हैं अपने दिन की, मैं तो 4:30 बजे उठ जाता हूँ, पहले अपने कुत्ते की शक्ति को घुमाता हूँ, फिर मैं घूमने जाता हूँ। तो मैंने ये महसूस किया है कि जीवन को शुरुआत जो है हर दिन की धन्यवाद आभार के साथ हो, अगर ईश्वर तुमने मुझे बड़ा अच्छा मौका दे दिया, अब मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मेरा जीवन तो अच्छा होगा लेकिन मेरे आसपास जो लोग हैं उनको भी मौका मिले आगे बढ़ने। हम कभी भी दूसरों को बढ़ाए बिना आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसा मेरा मानना है। फिर मैं आया दिल्ली में, बैंक में रहा मैं 73 से 78 तक, इसलिए बैंक में था, बहुत काम किया, बहुत मेहनत की। और क्या होता था कई बार बैंक में बुजुर्ग आते थे किसान, तो बैठते नहीं थे कुर्सी पर, यदि आप अफसर हैं तो मैं भी खड़ा हो जाता था। मैंने कहा अगर आप खड़े हुए हैं तो मैं भी खड़ा रहूंगा, क्योंकि मैं बैठ नहीं सकता आपके बुजुर्गों के सामने। तो वो लोग बहुत मानते थे इस बात को कि कैसा अफसर है ये तो, लेकिन उससे मेरा काम आसान हो गया कि भाई ये आदमी इज्जत करता है। तो कई लोग जो लोही देते थे समय पर, मैं उनसे अनुरोध करता था भाई आप देखो अच्छी बात तो नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा करते रहो, जितना सामान है उतना देते रहो, बाकी बाद में हम बढ़ा देंगे समय की सीमा को। तो मुरादाबाद में था मैं, अमरोहा में था, वो इलाका बड़ा बदनाम है, लेकिन बहुत ही जो लोग थे वहां पर, वहां के जो अपराधी वर्ग के लोग थे वो भी मेरी इज्जत करते थे कि आप गरीबों के लिए मदद कर रहे तो हम आपको क्यों नुकसान करेंगे। मतलब मेरा यह है कि मैंने मर्यादा के वो रूप देखे हैं कि जिसको शायद मानना आदमी आम व्यक्ति के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि जो अपराधी हैं, जो जेल में थे, छूट कर आए हैं पैरोल में, वो कैसे आपकी परवाह कर सकते हैं। तो वे क्यों नहीं कर सकते, हर एक के अंदर एक अच्छा इंसान होता है जो शायद इंतजार कर रहा होता है एक मौके का कि जिसमें उसको फलने का, फूलने का, अपनी बातों को कहने का मौका मिले। तो थोड़ी सी जगह मिलती है तो वो व्यक्ति उसका व्यक्तित्व से बाहर आ जाता है। तो बैंक में मैंने काम किया बहुत साल तक और देखा कि बैंक से कितनी दूरी है इस पर निर्भर नहीं करता है, भौतिक दूरी नहीं महत्व है, सामाजिक दूरी का महत्व है। क्योंकि मैंने देखा शहर के आसपास भी बहुत से गांव में ऐसे लोग थे जिन तक कोई सुविधा नहीं पहुंची, तो उनके लिए काम किया। फिर मैं दिल्ली में आ गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट है एक रिंग रोड पर, इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वहां 3 साल रहा। एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट था बड़ा अच्छा, जोधपुर, कर्नूल और महेंद्रगढ़, रामनाथपुरम, तमिलनाडु में, बंगाल में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, कर्नूल भी था उसमें, और इस तरह से पूरे और गुजरात में पंचमहल था। तो अलग अलग राज्यों के पिछड़े हुए जिले लिए ताकि वहां पर प्रबंधन की स्थिति सुधारने में युवा लोग कुछ काम कर पाए। तो मैं तो उस समय बहुत ही बात, और वहां उस समय के अंदर 23-24 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में हमने कोशिश की, अध्ययन किया, रिसर्च किया, और वहाँ 3 साल में रहा। लेकिन मैंने उस दौरान में मेरा जो डिग्री है वो बायोकेमिकल जेनेटिक्स की है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, और मुझे जाना था अब इकोनॉमिक्स की तरफ, अर्थशास्त्र की तरफ। तो मैंने तो कल पढ़ा नहीं था, तो पढ़ा उसको, खूब पढ़ा और वहाँ पर काफी शोध किया कि सूखाग्रस्त इलाकों में जहाँ बारिश कम होती है वहाँ के इलाकों में विकास की क्या संभावनाएं पैदा की। उस दौरान मेरी रुचि पैदा हुई उन समाधानों की तरफ जो लोग अपनी सूझबूझ से पैदा करते हैं इतनी मुश्किल जगह पर, रेगिस्तान के अंदर या सूखे क्षेत्रों में किस तरह से लोग जीते हैं, किस तरह से पशुपालक, कारीगर और बाकी लोग, खेती तो 3 साल तो बारिश होती नहीं है, कभी कभी 1-2 साल के अंदर वो 5 साल के लिए कैसे जीते होंगे, कर्जा बहुत हो जाता है उनके ऊपर, बहुत तकलीफें होती। उनको समझा, बल्कि मुझे याद है 1975 में मैं कड़पा में था आंध्र प्रदेश में बैंक में जब था, तो एक जिला, एक गांव था रमनापल्ली, जिसको कि ऊंची जाति के लोगों ने जला दिया था, छोटी जाति के घरों को, मेरा काम था उनका पुनर्वास करना। तो उन अनुभवों से मैंने सीखा कि जब एक व्यक्ति बिल्कुल बर्बाद सा हो जाता है लेकिन उसके अंदर उस गुस्से को कैसे एक नई दिशा दी जाए ताकि वो सृजनात्मक और सकारात्मक बन जाए, बजाय इसके कि वो बदला लेने की बात सोचता रहे, वो अपने जीवन को आगे बढ़ाए। और जो हुआ है वो तो गलत है ही, उसका तो समाधान होना चाहिए, लेकिन हम हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते ना, खाना तो खाना पड़ेगा। तो जीविका के साधनों के लिए हमने उनकी मदद करी। वो जमाना था जब और भी आंदोलन चल रहे थे देश के अंदर, 1974 की बात है ये, तो जयप्रकाश नारायण का नवनिर्माण मूवमेंट विश्व में शुरू हुआ था, वो टोटल रिवॉल्यूशन का जो आंदोलन था, और उसके बाद इमरजेंसी लग गई थी जिसमें मैं उत्तर प्रदेश में था 1975 के अंदर, बहुत संघर्ष का समय था।

0: लेकिन ईमानदारी से काम करने के लिए मौका ढूंढा और मौका मिला मुझे। फिर मैं वहां से आईआईपी आया, आईआईपी से मैं आईआईएम में आ गया, इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट अहमदाबाद में सन 81 में, और 81 से लेकर 2017 तक मैंने वहां पढ़ाया, अभी पढ़ाता हूं लेकिन निवृत्त हो गया मैं 17 में। और आईआईएम के अंदर ऐसे लोगों के लिए जगह बनाना जो गांव से आते हैं और कारीगर हैं, कपड़े भी ठीक नहीं होते हैं उनका, वो सब करने में सहयोग बहुत मिला संस्थान की तरफ से भी, साथियों की तरफ से भी। लेकिन एक बात साबित की हमने कि जो लोग आर्थिक रूप से गरीब होते हैं वो दिमाग से गरीब नहीं होते।
1: जी।
0: मेरी जो किताब है उसका जो टाइटल है उसमें लिखा है, ग्रासरूट इनोवेशन की जो किताब है ये, उसमें लिखा है माइंड ऑन द मार्जिन आर नॉट मार्जिनल माइंड। तो मतलब कि जो सीमांत के दिमाग हैं, जो गरीब हैं, सोचने में थोड़ी गरीब होते हैं। ये ऐसा सत्य था जिसने जीवन की दिशा बदली और मुझे लगा कि ऐसे लोगों को आगे लाना चाहिए। तो हमने बांग्लादेश किया, मैं 85-86 में बांग्लादेश में, 85-86 में, वहां पर गरीबी बहुत थी लेकिन सृजनशीलता भी बहुत थी। तो वहां से आने के बाद मेरे दिमाग में एक सवाल उठा, भाई अनिल कुमार गुप्ता तुमको बहुत सारा पैसा मिला, मैं वहां डॉलर में मुझे कंपनसेशन मिलता था, एक कंसल्टेंट के रूप में था, और जो मेरे साथी थे उनको तो $1 के अंदर पूरा दिन गुजारना पड़ता था, 28-30% उनकी तनख्वाह थी एक दिन की। लेकिन बहुत मेहनत की उन साथियों ने और मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला उस समय। तो मैंने बोला ये जो सम्मान मिला है ये किसके लिए मिला, मैं बहुत होशियार हूँ, मैं बहुत काबिल हूँ इसलिए मिला, या इसलिए मिला कि जिन लोगों के काम के बारे में मैंने लिखा, शोध किया, जिन पर जिनकी मदद करने के लिए नए नए कार्यक्रम सोचे, उनकी प्रतिभा इतनी अच्छी थी कि उसके लिए सम्मान मिला। अगर उनकी प्रतिभा की वजह से मुझे सम्मान मिला तो मेरी तनख्वाह, मेरी आमदनी का कितना हिस्सा उनके पास गया। तो इनकम टैक्स रिटर्न उठा लो, बाकी चीजें उठाई तो देखा कि कोई लाइन तो ऐसी है नहीं जिससे पता चले कि इतनी आमदनी हुई और इतनी आमदनी आपने उन लोगों को दी जिनसे आपने सीखा था। तो ग्लानी हुई कि भाई शोषण के बारे में मैं शोध करता हूँ, जो साहूकार है वो कर्जा देके शोषण कर रहा है, जो व्यापारी है वो भी शोषण कर रहा है, जो जमींदार है वो भी शोषण कर रहा है, तो मैं कौन सा अलग हूँ, मैं विचार की दुनिया में शोषण कर रहा हूँ। अब जब आप सोचते हैं कि आप एक शोषक हैं जबकि आपका सारी दुनिया, सारी जीवन आपका समाजवादी रूप में रहा हो, तो बड़ी ग्लानी होती है ना भाई। उस ग्लानी को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर ये संकल्प आया मन में कि एक दिन शायद घर जाते वक्त मैंने देखा एक मधुमक्खी को, तो मन में एक कल्पना जागी कि अगर मधुमक्खी की तरह से हमारा व्यवहार हो जाए, एक फूलों को दूसरे फूलों से जोड़ती है, परागीकरण करती है, प्रकृति को संपन्न करती है, शायद बनाती है तो सारा अपने पास नहीं रखती, कुछ हमसे मांगती है, क्यों ना हम ऐसे लोगों को जोड़ें जिन्होंने कुछ अपनी तकलीफों के बावजूद, अपनी कमियों के बावजूद, गरीबी के बावजूद कुछ न कुछ विकल्प ढूंढा है, लेकिन वो अकेले अकेले है, एक दूसरे को जानते नहीं है, एक दूसरे से जुड़े नहीं हुए। तो ऐसे ही लोगों को ढूंढना और उनको एक दूसरे से जोड़ने का काम हमने हनीबी नेटवर्क में शुरू किया। और ये काम जब शुरू किया तो लोगों को लगता था कि ऐसा कैसे हो सकता है, कहाँ इतनी गरीबी है, तो उसका मतलब अगर इतना दिमाग होता तो गरीब क्या। वो ये नहीं सोचते थे कि किसी के पास अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन विकल्प को बढ़ाने के लिए कोई संस्था का ढांचा नहीं था, देश में भी नहीं था, दुनिया में भी नहीं था। तो धीरे धीरे आगे बढ़े, 1993 में सृष्टि की स्थापना हुई, एक संस्था बनाई हमने, सोसाइटी फॉर रिसर्च एंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज एंड इंस्टीट्यूशंस। तो टिकाऊ मर्यादाएं और तकनीकों को जोड़कर और जैविक विविधता का सहारा लेकर कैसे आगे बढ़ना है इसके लिए कल्पना की। फिर 1997 में हमने एक कॉन्फ्रेंस की, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन एट ग्रासरूट, ICCIG.org पर सारी रिपोर्ट दी हुई है, आईएमए की 1997 में। उसके बाद हमने निर्णय लिया गुजरात सरकार के साथ मिलकर ज्ञान बनाया, गुजरात ग्रासरूट इनोवेशन ऑगमेंटेशन नेटवर्क। इसका काम था एक त्रिकोण है इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट और एंटरप्राइज का, यानी कि निवेश उनके पास नहीं है, नवसर्जन उनके पास है, नवाचार उनके पास है, लेकिन कई बार लोगों के पास उद्यमी बनने की क्षमता भी नहीं है न कौशल है। क्योंकि उद्यमी क्या करता है, वो बैच बाय बैच हर बार बार एक ही चीज को बार बार बनाता है, लेकिन जो नवसर्जक होते हैं ना

0: कोई भी दो चीज एक जैसी नहीं बना सकते। तो एक तरीके से नव सब्जेक्ट जो है वो भी कलाकार है, वो हर बार कुछ ना कुछ संशोधन करते हैं, हर बार कुछ ना कुछ संशोधन करते हैं। लेकिन उद्यम के लिए बड़ा जरूरी है कि आप डिजाइन को स्थिर करते हैं और एक अरे को एक जैसा डिजाइन मिलना चाहिए, नहीं तो किसी को लगेगा उसको तुमने ये फीचर दिया था, मेरे में तो है नहीं ये, तो मेरा तुमने इसका मतलब मेरे से ज्यादा पैसा ले लिया, मुझे सही चीज नहीं दी। अब कैसे बताएं कि उस समय दिमाग में बात नहीं आई थी, बाद में आई है दिमाग में बात। तो इसलिए नव सब्जेक्ट के लिए, नवाचारी के लिए उद्यमी साथी ढूंढना बड़ा जरूरी है। कुछ लोग हैं जो अच्छे उद्यमी बन गए, काफी लोग नहीं बन पाते हैं। कुछ लोग करोड़पति बन गए, मनसुख भाई प्रजापति हैं जिन्होंने मिट्टी का फ्रिज बनाया, तवा बनाया, बर्तन बनाए, बोतल बनाई, बीसवें देशों में उनका माल गया है, बहुत संपन्न हो गए वो, बहुत बड़ा काम हो गया। कभी कभी रेडी पे चाय बेचते थे वो, और जब हमने मदद की थी बड़े कर्जे में थे वो उस समय, 1998 की बात है, तो ज्ञान ने उनकी मदद की तो आज वो करोड़पति हो गए। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने जीवन में बहुत प्रगति की, लेकिन मैं सच में कहूं तो ऐसे लोग हजारों में होंगे, और ऐसे लोग जिनकी स्थिति बहुत ज्यादा नहीं बदली वो लाखों में। तो मैं ये भी नहीं कहूंगा कि सबकी जिंदगी हम बदल पाए, लेकिन कोशिश जारी है।
1: लेकिन हमने लेकिन कुछ तो बदलाव हुआ होगा, बिल्कुल शून्य से कहीं तो पहुंचे
0: हुआ। मैं आपको उदाहरण देता हूं, 2000 में हमने नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन बनाया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की मदद से और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से। तो जब एनआईएफ बन गया तो एनआईएफ के पास थोड़े ज्यादा साधन आए, सरकार की तरफ से 20 करोड़ का कॉर्पस था, और हमने तय किया था कि किसी भी नवाचारी को आप ऑफिस में नहीं बुलाएंगे, ये ज्ञान में हमने मर्यादा बनाई थी, आप उनके घर पर उनको सुविधा देंगे, किसी को आप ऑफिस में बुलाकर फॉर्म नहीं भरवाएंगे, आप खुद जाके उनके फॉर्म भरेंगे अगर कुछ आपको जानकारी चाहिए। तो एक ऐसी व्यवस्था बनी जिसमें सभी साथियों ने समझा कि भाई जिनके साथ हम काम कर रहे हैं उन्होंने एक समस्या का समाधान कर दिया, हमको बता दिया, उनका काम हो गया, अब हमारा काम शुरू हुआ है। तो ऐसी विचारधारा के साथ लोगों ने बहुत ईमानदारी से बहुत मेहनत की, और 600 जिलों से देश के बहुत सारे उदाहरण लाखों में एनआईएफ में आए। लेकिन जैसा होता है कभी कभी सरकार का हिस्सा बनने के बाद थोड़ी सी जड़ता आ जाती है। कोशिश की, जब तक मैं था 18 साल में वहां रहा, डॉक्टर मशेलकर उसके अध्यक्ष थे, मैं उपाध्यक्ष था, और डायरेक्टर रहे लास्ट में डॉक्टर भूपेन्द्र थे, उसके बाद अभी डॉक्टर राणा हैं। तो काफी हरेक ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की उसको आगे बढ़ाने की, और आज भी बहुत पूरे देश में इनोवेशन यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन जान जिसके मॉडल को हमने एनआईएफ में बनाया था, उसका जो मॉडल था उसको हमने रखा कि नव सर्जन सिर्फ स्थानीय क्षेत्र के लिए नहीं होता, पूरी दुनिया के लिए। हम G2G मॉडल बोलते हैं, B2B, B2C बोलते हैं ना भाई, तो हमने कहा G2G यानी ग्रास रूट टू ग्लोबल। तो UNDP के साथ मिलकर ज्ञान ने, मेरी साथी हैं डॉक्टर अनामिका दे, हम दोनों ने कोर्स पढ़ाया 115 देशों में, 91 लैब हैं उनके साथ मिलकर, कि कैसे ढूंढा जाए दुनिया के अलग अलग देशों में ऐसे लोगों को जिन्होंने अपनी छूझबूझ से कुछ काम किया। तो एक वैश्विक आंदोलन बनाया इसका हमने, और मैं बड़ा खुश हूं इस बात से कि हमको हजारों ऐसे अनुभव मिले पूरे देश के, पूरी दुनिया में, जिसमें लोगों ने बहुत साधारण सी शिक्षा के बावजूद बहुत असाधारण सा काम किया था और कर रहे हैं अभी भी। तो बस यहीं तक मैं अभी छोड़ता हूं बात को, कि हमने एक आंदोलन शुरू किया। अभी हम लोग काम कर रहे हैं बारामूला कश्मीर में, सिक्किम में, वेस्ट सिक्किम में, और किफरे जिला है नागालैंड में, तो वहां पर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जो महिलाएं हैं उनको जैविक साधनों के पारंपरिक ज्ञान को आधार बनाकर नए नए उद्यम लगाने के लिए, बायो एंटरप्राइज लगाने के लिए, क्योंकि समाज में दोनों तरह का ज्ञान है, नवसर्जन भी है पारंपरिक ज्ञान भी है, लेकिन पारंपरिक ज्ञान को अब हम भुलाते जा रहे हैं। जितना क्षरण, जितना नुकसान हमारी ज्ञान की विरासत को इस पीढ़ी में हुआ है, आपकी पीढ़ी में शांतनु, इतना पिछले 5000 साल में नहीं हुआ। क्योंकि अभी क्या है कि जो दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, और पोते पोतियां हैं, नातियां हैं, उनके बीच में संपर्क कमजोर हो गया, और ज्ञान का प्रभाव तो उनके बीच में होता है, बुजुर्गों से बच्चों के पास जाता है, तो वो एक संबंध कमजोर होने के कारण बहुत सारा ज्ञान अब नई पीढ़ी के पास है ही नहीं। तो आपके बच्चों से पूछें भाई जुकाम सर्दी हो जाती है तो क्या करते थे तुम्हारे दादा या दादी, शायद उनको नहीं पता होगा ना, लेकिन ये बात जाननी जरूरी भी तो है। तो भाई नाक से ही आप पानी पी लीजिए तो आपकी नाक साफ हो जाएगी, सरसों का तेल लगा लीजिए तो आपका नाक साफ हो जाएगी। हम बड़े बड़े महंगे महंगे इलाज करते हैं लेकिन भूल जाते हैं।

0: विकसित कर सकते हैं, संवर्धन कर सकते हैं और कम खर्च में अच्छा जीवन जी सकते हैं। मैं कंजूस हूँ, मुझसे मैं खर्च नहीं करता हूँ ज्यादा, क्योंकि मैं समझता हूँ कम से कम साधनों में जीने की आदत होनी चाहिए हमारी।
1: ये आपने जैसे एक महामंत्र दे दिया कि अगर आपको जीवन में कोई चीज की कमी महसूस ना हो, इसके लिए कम से कम चीजों का इस्तेमाल करने का मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा महामंत्र दिया आपने। दोस्तों, मैं समझता हूँ ये महामंत्र मैं और आप आज अपने जीवन में नोट करेंगे और इसको लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन अनिल जी, आपकी कहानी जब मैं सुन रहा था तो मुझे एक ऐसे हीरो का किरदार नजर आ रहा था जिसके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत है। जब आप कहते हैं कि बचपन में एक समय था जब आपने बहुत अभाव देखा, लेकिन फिर एक समय आया जब आपके पास चुनाव करने का मौका था कि आप अपने लिए अच्छे से अच्छा, बेहतरीन, उम्दा, पैसा कमाने जैसा कोई फील्ड आप चूज कर सकते थे, लेकिन आपने चुना कौन सा फील्ड जहाँ पर मेहनत है और आपके जो आसपास में आपके दोस्त रहे होंगे, जो आपके साथ में आपके कक्षा में, आपके कॉलेज में जो आपके साथी रहे होंगे, उन्होंने ऐसा कोई फील्ड चुना होगा, या जिस दौर से आप आए हैं उस दौर में भारत में या कहें जो एशियाई देश हैं उनमें औद्योगिकरण और टेक्नोलॉजी के आने की वजह से जो ये एक धुन सी रह गई कि यू नो एक टेलीविजन का आना, टेलीविजन में फिर एडवर्टीजमेंट्स का आना, उसको देखा देखी उनके जैसा बनना है, द अमेरिकन ड्रीम का गाना सुनते रहना, इन सब चीजों की वजह से आपने समाज को बनते, बिगड़ते, ढलते, सुलझते सब कुछ करते हुए देखा है। आपने खुद को कैसे बांध के रखा है इसमें? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जब आसपास की चीजों को बदलते हुए देखता है तो वो भी बहक सकता है या वो अपने ध्येय को छोड़कर के कुछ नया ध्येय तैयार कर सकता है। खुद को पकड़ के रखना अपने ध्येय के साथ, इसका क्या मंत्र यूज किया आपने?
0: मेरी पत्नी साधना थी, अभी तो नहीं रही, वो 2 साल पहले चली गई, लेकिन उनका बड़ा सहयोग मिला मुझे क्योंकि वो बहुत साधित थी और सच्ची थी। तो एक उदाहरण देता हूँ, क्या हुआ, हमारा छोटा बच्चा जो है प्रयास और आभास, मैं एक बात बताना भूल गया आपको, मैंने अपने बच्चों को अपना सरनेम नहीं दिया। मेरे बच्चों को मेरी जाति सूचक नाम नहीं दिया उनको, तो वो प्रयास अभिनव और आभास अभिनव उनका नाम है। क्योंकि आज से बहुत साल पहले, 43 साल पहले हमको लगा, हम और साधना एक बार बैठे थे जब बच्चे हमारे होने वाले थे, हमने कहा भाई ऐसा है कि कभी कुछ बन गया अगर, उस समय तो पता नहीं था, साधारण से व्यक्ति थे, गैंग नौकरी कर रहे थे, अगर कभी कुछ बन गए हमारे बच्चों को हमारे जीवन से कोई लाभ नहीं मिलना चाहिए, हमारे नाम से कोई लाभ नहीं मिलना चाहिए, तो उनको अपना नाम नहीं देंगे, वो अपना जीवन स्वयं बनाएंगे और अपने रास्ते पर अपने आप चुनेंगे और अपने आप चलेंगे, ये निर्णय हम दोनों ने किया। तो एक उदाहरण याद आ रहा है कि मेरा छोटा बच्चा जो है प्रयास, तो जब छोटा था स्कूल में, तो एक दिन बोला मुझे लूना चाहिए, वो जो वो गाड़ी, वो साइकिल चाहिए स्कूल जाने के लिए। तब तक वो बस में जाता था, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बस में। मैंने बोला तुम्हारा दोस्त कौन है सबसे ज्यादा? तो बोला जोसेफ है। वो भी ले रहा है क्या लूना? बोला वो तो नहीं ले रहा है। तो लूना लोगे तो ऐसे लोगों के साथ जाओगे जिनके पास गाड़ी होगी, मोटरसाइकिल, मतलब साइकिल होगी, मोटरसाइकिल जैसे काइनेटिक होती है आजकल, और बस में जाओगे तो तुम्हारा दोस्त साथ में जाएगा, तुम चुन लो तुम्हें दोस्त के साथ जाना है या लूना वालों के साथ जाना है। तो उसने तय किया कि मैं जोसेफ के साथ जाऊंगा, उसने नहीं खरीदी वो साइकिल। पैसे थे मेरे पास, मैं अफोर्ड कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा उसको अपने आप तय करना चाहिए कि उसको किस चीज को महत्व देना है। एक दोस्त जो नहीं खरीद सकता।
1: जो कहानी आपने सुनाई, इस कहानी के पीछे मुझे एक चीज दिखता है कि एक स्वावलंबिता है, एक आत्मनिर्भरता है जो आप में, आपके परिवेश और संस्कार ने एकदम आपके रग रग में बैठा दी। लेकिन आज जब आप देखते हैं युवाओं को जिनके हर एक के हाथ में, मेरे हाथ में भी मोबाइल होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, 24 घंटे में कितने ही घंटे हमारे हाथों में मोबाइल होता है और कितने ही ऐसे उपकरण आ चुके हैं हमारे चारों तरफ जो हमको हमारे दोस्तों के बारे में, फेसबुक में शायद बहुत सारे दोस्त होंगे लेकिन वास्तव जीवन में कितने दोस्त हैं इसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे समय में आपके पास ऐसा कौन सा, जैसे आपने प्रयास जी के लिए एक बहुत सुंदर रास्ता निकाला कि आप अपने दोस्त के साथ जाना चाहेंगे या गाड़ी वालों के साथ जाना चाहेंगे, एक आपने एक बहुत सुंदर सवाल ढूंढ के निकाला जिसने उसे मजबूर किया कि वो सोचे, समझे और खुद का एक निर्णय बनाए। हम जैसे युवाओं के लिए या हमारे जो भी श्रोता साथी सुन रहे हैं, हमारे लिए आपके पास कौन सा सवाल है या क्या तरीका है?
0: मैंने जैसे बताया कि जितना भौतिक सामान हम बढ़ाएंगे अपने

0: पास मोबाइल फोन है, टेलीविजन है, फिर और चार पांच चीजें हैं। और तो जितनी ज्यादा भौतिक चीजें बढ़ाएंगे उतना ही जो विचार हैं और विचारों की जो जगह है दिमाग में वो कम होती चली जाएगी। थिंग्स एंड थॉट की स्ट्रगल है, देयर इज अ फाइट बिटवीन थिंग्स एंड थॉट्स। यू एक्सपैंड थिंग्स, स्पेस फॉर थॉट्स गोज डाउन। यू एक्सपैंड थॉट्स, नीड फॉर थिंग्स गोज डाउन। अगर विचारों की जगह बढ़ानी है मन में, नए नए विचार आए, नई नई कल्पनाएं आए, मैं नए नए तरीके से समस्याओं का हल करूं, उनको किस तरह ध्यान लगाऊं मैं विचारों को आगे बढ़ाने में? मैं कहता हूं चार शब्द हैं बड़े मेरे दिल में, मैं हमेशा सुनाया करता हूं युवाओं को, व्यक्ति, विचार, व्यवहार और संस्कार। हमारा 90% समय व्यक्तियों की चर्चा में जाता है भाई, उसने ये कहा, उसने वो कहा, उसने ऐसा किया, मैंने वैसा कहा, सही बात है ना
1: जी।
0: तो यदि वो समय हम बचा लें थोड़ा सा और विचारों में समय लगाएं, कैसे हम कौन से काम को बेहतर कर सकते हैं, कौन सी चीज के लिए, कौन से साधन हमारे समाज में जो भी उपयोग में नहीं आ रहे उनके लिए कुछ नवसर्जन कर सकते हैं, कैसे गरीबों के लिए, कैसे हमारे बुजुर्ग हैं उनके जीवन को आसान बना सकते हैं वगैरह, और उस विचार को अगर व्यवहार में ले आए मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा। और वो अगर मेरा संस्कार बन जाए, संस्कार मेरी, मैंने बहुत सा अध्ययन किया शब्द का, तो मन में जो प्रतिक्रिया होती है हमारी क्रिया से वो संस्कार है। वो अंदर से डिफॉल्ट कंडीशन पैदा हो जाती है, हमें पता लग जाता है क्या करना है क्या नहीं करना है, किसी से पूछना नहीं पड़ता। तो मुझे लगता है कि हमारे समाज में युवाओं को विचार, व्यवहार और संस्कार की तरफ सोचना पड़ेगा ताकि जीवन सुंदर हो। मैं आपको उदाहरण देता हूं, हमने सभी देश के हिस्सों में चल के शोध यात्रा की है
1: जी। मेरा सवाल यही था कि आप शोध यात्रा के बारे में भी कुछ बताएं।
0: हर राज्य में चले, अंडमान से लेकर रेज वैली तक, सारे राज्यों में, कोई राज्य छूटा नहीं हमसे जहां हम नहीं चले, कहीं पर दो दो बार गए। हमारी 50वीं शोध यात्रा नागालैंड में होगी किफरे में, जनवरी के दूसरे पखवाड़े में। तो शोध यात्राओं में हमने चार गुरुओं से सीखना शुरू किया। ये चारों गुरु आप सबके पास हैं, मेरे पास ही नहीं है सिर्फ एक। तो गुरु हमने कहा हमारे अंदर है, जो बड़े कड़वे सवाल उठाते रहते हैं, कोई भी काम करें उस सवाल पूछ लेते हैं, जरूरी है ये। तो दूसरी बात, दूसरे गुरु हैं जो हमारे आसपास हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे सहपाठी हैं, और तो और जिन लोगों को हम नहीं जानते वो भी हमारे गुरु सब। तो जो तीसरे गुरु हैं हमारे, हाँ वो हैं प्रकृति, प्रकृति से सीख सकते हैं। और चौथे गुरु हैं हमारे आम लोग, जो गांव में, कस्बों में, शहरों में रहते हैं। कहने को तो आम लोग हैं जिनके पास बहुत ज्यादा साधन नहीं है, लेकिन क्योंकि उनके पास साधन ज्यादा नहीं है इसलिए उनको कम साधनों से ज्यादा जीवन के यापन के तरीके को ढूंढने की उनके ऊपर दबाव भी है और उनके पास कौशल भी है। तो आजकल जो फ्रूगल इनोवेशन की बात करते हैं लोग, कम खर्च में कैसे समस्याओं को हल किया जाए, इसके सबसे बड़े जनक तो वही लोग है ना जिन्होंने किया है ऐसा जीवन,
1: जैसे कहते हैं इज द मदर ऑफ इन्वेंशन।
0: चारों गुरुओं से
1: आवश्यकता है तो फिर उन्नत विचार आएंगे या तरीके निकालेंगे
0: आएंगे, लेकिन
1: परिस्थिति से निकालने के।
0: एक बार कहा करता हूँ और आप जो साथी सुनेंगे उनको भी मैं पूछूंगा कि आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने विचारों को नहीं मारा है?
1: मैं ये सोचता हूँ
0: शांतनु कि क्या कारण है कि सब के सब हत्यारे हैं, सब अपने विचारों की हत्या करते हैं, तो दूसरों के विचारों को कैसे बढ़ाएंगे? तो मतलब ये है कि हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर ये विचार मैं पूरा नहीं कर सकता, इसका पालन नहीं कर सकता तो मुझे इस रास्ते पर नहीं चलना। मैं दिखाता एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी। क्या हुआ, बीरमपुर में थे हम, पालनपुर के पास तक, नॉर्थ गुजरात में, बहुत साल की बात है, 25-30 साल की बात। हमारे साथ जयंती भाई थे, इसरो के स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के वैज्ञानिक और फिल्म बनाने वाले। तो करीब भाई एक जड़ी बूटियों के ज्ञाता हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते थे, उनका काम था, लेकिन पौधों के बारे में बहुत जानते थे। तो उनके ऊपर एक फिल्म बनानी थी, छोटी सी बातचीत के बीच दौरान तो उनको कहा एक पत्थर पे आप बैठ जाइए, एक चट्टान पे मैं बैठ जाता हूँ, बालाराम जैसवाल सेंचुरी जो है रीच की, बियर की, उसके बाहर बैठे थे हम। तो कैमरामैन ने क्या किया, एक छोटी सी डंडी तोड़ी पौधे की, सड़क के किनारे बहुत सारे पौधे थे, निंदामण जो थे खरपतवार, और उनको बोला आप उसको हाथ में पकड़ लीजिए अच्छा लगेगा। कहीं भाई नाराज हो गए। अब मैंने कहा क्या हुआ,

0: अरे इसकी जरूरत थी क्या हमको? आप मुझे कहते थे, मैं बैठ जाता पौधे के पास, बैठ जाता पत्थर की जगह और उसको हाथ से पकड़ लेता अगर आपको मेरे का हाथ में पत्ता ही पकड़ना आता तो। तो मेरे मुंह से एक ऐसी गलती बात निकल गई जिसका मुझे आज भी दोष दुख है। मैंने कहा, करीम भाई क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? इतने सारे पौधे तो हैं सड़क के किनारे, डंडी तोड़ी तो क्या हो गया? उन्होंने क्या कहा आपने, इतने सारे? प्रकृति में कोई भी चीज आवश्यकता से ज्यादा नहीं होती।
1: अरे ये बहुत बड़ी बात है और बहुत सही बात है।
0: दम चकित रह गया क्योंकि मेरी आदत थी पहले कि कभी लॉन में बैठा हूँ तो घास का तिनका तोड़ लिया मुंह में डालना था, कभी झाड़ी के पास खड़ा हूँ तो पत्ते तोड़ के हाथ में मसलने लगा। बिना बात के ऐसे
1: तो ये तो हम में से कई करते होंगे।
0: अब क्या होता है,
1: जैसे ही सर हिला रहे होंगे,
0: जैसे ही मैं पत्ता तोड़ता हूँ हाथ में करीम भाई सामने दिखते हैं, जरूरत थी इसकी, क्यों तोड़ा है इसको? अब मेरी आदत छूट गई। तो मतलब मेरा ये है कि प्रकृति से सीखना भी संभव है। ये सिद्धांत की प्रकृति में कुछ भी ज्यादा नहीं होता है हमको, अगर ज्यादा लग रहा है तो हमको समझ में नहीं आया कि कौन सी चीज की क्या स्थिति है, क्या उसकी उपयोगिता है, वो हमारी ज्ञानपन है। लेकिन प्रकृति में कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा नहीं होती है।
1: सही कहानी में मैंने चारों गुरु के दर्शन कर लिए। आपने एक व्यक्ति के से जो बात सीखी वो आज तक भी आपके ऊपर आपको अच्छे संस्कारों में ढाल रही है। प्रकृति के बारे में जो आपने सीखा वो भी आपको प्रकृति के साथ एक अच्छा व्यवहार निभाने के लिए प्रेरित करती रहती है। लेकिन जब आज का हम दौर देखते हैं, जहाँ पर जैसे आपने कहा कि अगर बहुत ज्यादा आपके पास वस्तु है, सामान है, थिंग्स है, तो थॉट्स के लिए, विचारों के लिए जगह नहीं होती, या यूं कहें हम समय नहीं निकालते अपने विचारों की पालना करने के लिए। विचार तो चलो हम कई क्रिएट कर भी रहे होंगे, रच भी रहे होंगे, लेकिन उन विचारों को, उनमें पानी देना, उनको सींचना, उन विचारों को बड़ा करने का जैसे एक जर्नी है, एक प्रोसेस है, उस प्रक्रिया को हम नहीं ध्यान देते। और ऐसे में आ गया है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहां पर जो पहले समझिए अगर कोई 10% सोचता था, आज वो 1% भी नहीं सोचना चाहता। क्यों? क्योंकि वो कुछ 2-4 शब्द लिख देता है AI में और AI उसके लिए सारा काम कर देता है। मैं किसी एक सभा में गया हुआ था, उस सभा में अंतर्राष्ट्रीय सभा थी और उस अंतर्राष्ट्रीय सभा में एक अंतर्राष्ट्रीय लीडर ने, एक नेता ने एक भाषण पढ़ा, उसका खुद का भाषण था, वो उसका कीनोट स्पीच था। और स्पीच को देने के बाद उसने बोला, ये मैंने AI से निकाला है। अब आप समझो मेरे में और AI में कोई फर्क ही नहीं है, आपने तो उसमें भी ताली बजाई जब मैंने सुनाया। तो ऐसे में अनिल जी, मुझे आपसे जानना है कि आपको कहीं पर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, इस परिस्थिति में आपको क्या लगता है हमारा समाज किस तरफ जा रहा है?
0: देखिए ऐसा है कि मैंने तो ChatGPT का भी इस्तेमाल किया है, टेस्ट किया है। ये बहुत बड़ी भूल होगी यदि कोई सोचेगा कि क्या AI से हम व्यक्ति का विकल्प ढूंढ लेंगे। ये संभव नहीं है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। IIT में कोर्स पढ़ा रहा था मेरे साथी है, वहां पर एक चक्रवर्ती इंडस्ट्री डिजाइन सेंटर में, तो हम लोग डिजाइन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का कोर्स पढ़ाते थे दोनों मिलकर, बहुत सारे स्टूडेंट थे, 250-300। कोविड का टाइम था, ऑनलाइन कोर्स था। तो एक दिन मैंने बच्चों से पूछा, बच्चों ये बताओ आपके घर में ठंडा खाना कौन खाता है? ये सवाल आप ChatGPT से पूछेगा और क्या जवाब मिलेगा आप देखिएगा। तो बच्चा एक धीरे से बोला, माँ खाती है। अरे भाई तो बड़ा गड़बड़ हो गया यार, माँ ने तुम्हें पैदा किया, IIT भेजा इतनी अच्छी जगह पढ़ने के लिए और उसको खाना ठंडा मिलता है। हमने कहा एक काम करते हैं, एक हफ्ते तक आप सभी बच्चे अपनी माँ को गर्म खाना खिलाएंगे और उसके फोटो भी अपलोड करेंगे जो अपने आसपास है, पहली रोटी का भी और आखिरी रोटी जो बनाएंगे वो भी माँ के लिए, उसका भी फोटो करना और फिर बताना हमको क्या हुआ आपके मन में। तो एक हफ्ते बाद हमने संजीव कपूर को बुलाया जो मास्टर शेफ हैं, देते हैं क्लास में, और हमने बच्चों से कहा अपनी माँ को भी बुलाना है क्लास में, इस क्लास में आपकी माँ का भी स्वागत है। अब बच्चे बोल रहे हैं, वो जो चकला होता है ना जिसपे रोटी बेलते हैं, बोले उसकी हाइट थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, झुककर बनानी पड़ती है रोटी। अरे रे रे रे रे, इतने दिन से माँ बना रही थी, सर को झोंक रही थी, कंधे में दर्द से या पीछे कमर में दर्द होता होगा, वो दर्द तो महसूस नहीं हुआ आपको, अब जब खुद बनानी पड़ी रोटी एक हफ्ता तो आपको पता लग गया। ये जो पेडागॉजी है, ये जो प्रक्रिया है किसी के दर्द को अपना दर्द बनाकर जीने का, समझने का, और किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, माँ की बात कर रहा हूँ जो हमारे को सबसे ज्यादा प्यारी है। मेरा मतलब है कि ChatGPT ऐसे सवाल नहीं उठा सकता, न इनका जवाब उठा सकता है। हमें नए तरीके से सवाल उठाने की आदत डालनी

0: नए तरीके से मन को झकझोरना पड़ेगा, जिसमें जो पारंपरिक तरीके से जवाब ढूंढने के कि बाकी लोगों के जवाब ढूंढ रहे हैं और उनको कंपाइल करके दे रहे तो वो जवाब बन जाता था, वो काम ChatGPT कर सकता है। तो जो पहले पूर्व अनुभव है, लेकिन ये अनुभव तो किसी ने किया नहीं ना कभी, कि बच्चों से कहो अपनी माँ को गर्म रोटी खिलाओ, तो ये अनुभव कैसे मिलेगा ChatGPT में आपको?
1: जी, आप जैसे जिन लोगों के साथ हैं, जैसे विद्यार्थी हैं, कई बार विद्यार्थी हो सकता है आपका दिया हुआ जो होमवर्क है या जो काम है वो ऐसे AI के माध्यम से करके ले आते हैं, तो आप उनको फर्क कैसे करते हैं कि भाई ये तुम्हारा काम नहीं, ये AI का काम है?
0: देखिए, ऐसा होता है कि एक क्रम होता है विचारों का, और वो विचारों का क्रम जो ChatGPT है उसने ये मान लिया है कि जो लोगों ने कहा है उनकी बात को या उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को संवर्धित करके मुझे जवाब ढूंढना है। लेकिन हमारे प्रश्न ऐसे मौलिक होने चाहिए। तो ये जो प्रश्न है कि भाई कहीं कहीं पर जड़ता आ गई हमारे समाज में, महिलाएं जो काम करती हैं उनमें परिवर्तन बहुत धीमा हो रहा है, जो काम पुरुष करते हैं उनमें तेज हो रहा है, जो काम कारीगर कर रहा है, जैसे मैं खद्दर पहनता हूं तो खद्दर के जो करगा है उसमें कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है ना, उन क्षेत्रों में कैसे संशोधन लाना है, नवसर्जन लाना है, नवसर्जन का काम ChatGPT नहीं कर सकता। ये जो हो चुका है उसकी समरी बना सकता है।
1: ये सुनकर के बड़ा अच्छा लगा अनिल जी कि कुछ विद्वान जैसे आप आज भी इंसानों के जो काबिलियत है उस पे पूरा पूरा भरोसा रखते हैं, क्योंकि जहाँ तक नई तकनीक जब भी आती है तो एक उसके प्रति डर कहें या अतिशोक्ति जो होती है डर की भी, वो लेकर के हम चलते हैं। जैसे जब फोन आया तो फोन के लिए भी लोग घबरा रहे थे, लेकिन आज घर घर में फोन है, घर घर से भी फोन, जब मोबाइल आया तो लोग मोबाइल को लेकर घबरा रहे थे। तो नई तकनीक का हमेशा कुछ न कुछ विरोध हुआ है, चाहे मानसिक विरोध हो चाहे सामूहिक विरोध हो, हुआ है। लेकिन ऐसे समय में जब आपके जैसे विद्वान और समाज के कर्णधार जब ये सोचते हैं कि नहीं, इसमें भी हमारे लिए भला है और इसके लिए भी हमको कुछ इस प्रकार के प्रावधान सोचने होंगे जिससे कि व्यक्ति अति में ना चला जाए, वो अपने क्या कहेंगे रूट्स को, अपने जड़ों को पकड़ के रखे और फिर ऊंची उड़ान भरे। तो जो युवा वर्ग है उसके लिए अगर, या जो ऐसा वर्ग है जो तकनीकी थोड़ा सा ज्यादा जागरूक है, उनके लिए अगर आपको कोई मैसेज देना हो तो क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: सबसे पहली बात ये है कि मेरा काम है बेचैनी के बीज बोना, उसको बेचैन करना। आप सब एक दो तीन सवाल अपने आप से पूछें, अगर 24 घंटे में एक भी क्षण ऐसा नहीं आया जब आपको अप्रत्याशित भाव मिला, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो ऐसा सोचा नहीं, यानी कि आप अचंके नहीं रह गए, आप सरप्राइज नहीं फील किया आपने, तो समझ लीजिए कि वो दिन बेकार गया, आप जिंदा तो रहे, आप जिए नहीं उस दिन। पहली बात, द डे यू आर नॉट सरप्राइज यू हैव नॉट लिव्ड, यू हैव जस्ट एग्जिस्टेड। आप जिंदा रहे, जिंदा दिल नहीं रहे उस दिन आप। दूसरी बात है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं हमारे आसपास जिनमें सुधार की आवश्यकता है। आपके दादा आपकी दादी बिस्तर पर से उठ रही हैं, उनको जोर लगाना पड़ रहा है उठने में। कारण क्या है? कारण यह है कि बिस्तर की ऊंचाई सही नहीं है, उनके पैर 90 डिग्री पे नहीं है, एक्यूट एंगल बन रहा है, 90 डिग्री होगा तो उनको उठने में आसानी हो जाएगी। थोड़ा बिस्तर की ऊंचाई बढ़ा दो, थोड़ा सा उसके नीचे आधा ईंट लगा दो या तो गत्ता लगा दो या तो कुछ लगा दो, ताकि जब वो उठें उठना उनका 90 डिग्री पे होना चाहिए, 60 या 80 पे नहीं होना चाहिए, तो उनको उठने में आसानी होगी। छोटी छोटी बातें हैं, हमारे बुजुर्ग परेशान रहते हैं लेकिन हम उसका समाधान नहीं ढूंढते। यानी कि जो अकर्मण्यता है, जो इनएफिशिएंसी है, काम करने के कौशल में जो कमी है, हम उसके साथ जीना सीख जाते हैं। मेरा तीसरा अनुरोध है कि कभी भी किसी काम में कोई कमी लग रही है, दिक्कत आ रही है, उस दिक्कत के साथ जीना नहीं है हमको, उस दिक्कत को हल करना है। और मैं नहीं कर सकता हूं तो किसी और से बात करेंगे ना। किसने कहा कि सभी समस्याओं का हल व्यक्ति विशेष एक व्यक्ति कर सकता है? एक बार हमने बहुत सारा डेटा स्टूडेंट से इकट्ठा करवाया है इनके अंदर कि भाई हम जाते हैं शोध यात्रा में, गांव में रहते हैं, तो स्कूलों के बच्चों के लिए कंटेंट इकट्ठा करो, तो उन्होंने कर लिया हिंदी में, अलग अलग भाषाओं में वीडियो वगैरह। हमने कहा इकट्ठा तो हो गया, हम देंगे कैसे, वहां स्कूलों में तो कंप्यूटर नहीं है। एक बच्चा बोला टीचर के पास स्मार्टफोन तो होगा, बच्चों के पास नहीं है। मैंने कहा होगा, तो आप ऐसा करिए एक पेन ड्राइव और OTG केबल दे दीजिए। तो मैंने कभी OTG केबल का नाम सुना नहीं था। मैंने क्लास विद्यार्थी से कहा भाई ये बताओ OTG केबल क्या होता है।

0: मैंने कभी देखा नहीं। बोले सर उसमें एक साइड में मैक्रो यूएसबी होता है, एक साइड में यूएसबी होता है, यूएसबी पेन ड्राइव में लग जाएगा, दूसरी साइड फोन में लग जाएगी, टीचर अपने फोन पे डेटा को लेकर बच्चे को लेसन दिखा देगा जो आपने दिया है हमको। अरे वाह। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या मैं विद्यार्थी के सामने मानने मुझे संकोच होना चाहिए कि मुझे नहीं आता इस बात को। तो जीवन में यदि हमें किसी सवाल का जवाब नहीं मिलता है तो हमें मान लेना चाहिए। हमारे बच्चे कई बार सवाल पूछते हैं जिनका जवाब हमें नहीं पता होता है। ज्यादातर माँ बाप टाल जाते हैं। कुछ माँ बाप हैं जो ढूंढते हैं ऐसे व्यक्ति को जिसके पास उस सवाल का जवाब होगा, वो जवाब पता करते हैं, पता करके बच्चे को बताते हैं। उनका बच्चा वैज्ञानिक सोच वाला बनता है, उनका बच्चा जिज्ञासु बनता है, उनका बच्चा एक नवाचारी बनता है। अगर आप सब चाहते हैं कि आपके छोटे भाई बहन बच्चों में जिज्ञासा जागे, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उनके अंदर कौतूहल हो, उनके अंदर नया कुछ करने की भावना हो, तो उनके सवालों को आप अगर नहीं जानते हैं उनका जवाब, तो मान लीजिए कि आपको नहीं मान, तो बच्चे सीख जाएंगे कि कभी कभी हमें नहीं पता होता ना, तो मान लेंगे। हमेशा हमें उसको घुमाना नहीं चाहिए सवाल को, जवाब को। ये एक बहुत जरूरी बात है। हम अपनी कमी को स्वीकार कर लेंगे तो विकास संभव है, लेकिन कमी को छुपाएंगे तो विकास कभी भी संभव नहीं होगा ना। अगर मैं सवाल नहीं पूछूं क्लास में, अरे बच्चे क्या सोचेंगे, प्रोफेसर को इतना भी नहीं मालूम? नहीं मालूम भाई, तो बताओ ना बच्चों, तुम्हें ज्यादा पता है इस बारे में, तुम लोग ज्यादा गैजेट को जानते हो, तो पता लग गया मुझे एक मिनट के अंदर, सब मेरी समस्या हल हो गई। तो कभी भी हमें समाज में बच्चों के सामने खास तौर से अपनी कमियों को, अपनी अज्ञानता को छुपाना नहीं चाहिए। अंत में कहूंगा कि संवेदना बड़ा एक सुंदर शब्द है। हम माने बराबर, वेदना माने दर्द। जब किसी का दर्द मुझे उतना ही गहरा महसूस हो जितना उसको होता है, तो वो उसका नहीं मेरा हो जाता है। संवेदना से सृजनशीलता, फिर मैं कुछ नया करूं, लेकिन मेरे को प्रेरणा कहां से मिलेगी? स्वांतः सुखाय, अपनी खुशी के लिए कर रहा हूं मैं काम, लो किसी पे एहसान नहीं कर रहा। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन, सबसे बड़ा प्रेरणा का स्रोत है स्वांतः सुखाय, अपनी खुशी के लिए जब हम काम करते हैं तो हमें कोई अपेक्षा नहीं होती कोई हमारी तारीफ करे, कोई हमें इनाम दे, कोई हमारे को पारितोषक दे, कोई हमारा सम्मान करे। ये कमी नहीं लगेगी जीवन में आपको, यदि आपने जो काम किया वो अपनी खुशी के लिए किया। आपका परिणाम, आपको तो इनाम उस चीज में मिल गया जब आपका संतोष मिला, जब आपका सुख मिला किसी की तकलीफ को दूर करके। तो मैं ये तो मानता हूँ कि जीवन में बहुत ज्यादा जरूरत है सृजनशीलता की, नवाचारों की, नए नए आविष्कारों की। हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं, हमें उनके उदाहरणों को अपने स्कूल में लाना चाहिए, अपनी क्लास में लाना चाहिए, अपनी बातचीत में लाना चाहिए, बताना चाहिए, बच्चों की जिज्ञासा बढ़ानी चाहिए। बच्चे कोई सवाल पूछे जिसका जवाब नहीं आता तो मार्क कर उसके सवाल का जवाब ढूंढना चाहिए। और महिलाओं की जो दिक्कतें हैं, उनको महिलाएं ज्यादा सहनशील होती हैं। ये समाज का एक ऐसा चरित्र बन चुका है जिसके कारण उनकी तकलीफों को दूर करने के लिए दबाव नहीं बनता समाज के ऊपर। उनकी सहनशीलता उनकी कमजोरी मान ली जाती है, न कि उनकी ताकत। मैं समझता हूं कि हमें किसी की भी सहनशीलता का, किसी के भी जो सब तकलीफ को झेलने की आदत है, क्षमता है, उसका नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। बहुत सारी तकलीफें हैं आज महिलाओं की जिनका कोई,
1: जैसे आपने माँ का उदाहरण दिया कि वो सहनशील है, रोटी बेल रही है, उनके बैक ऑफ द नेक या उनके कंधे पे दर्द हो सकता है हाइट की वजह से, ये अगर हमने इस पे सोचा ही नहीं, संवेदनशीलता अगर हमारी शून्य हो चुकी है या कम हो चुकी है, तो हम शायद उनके सहनशीलता को उनका एक रोज का एक हिस्सा समझ लेंगे, और कभी उसके लिए ये जो आपने कहा कि भाई कुछ बदलाव लाना वो संभव नहीं हो पाएगा। तो ये जो आपने एक बात कही कि शोध जो है वो विचार शैली जो है वो तब जा करके आपके अंदर आती है जब आप अपने आसपास देख रहे हैं, संवेदनशील हैं, दूसरे की वेदना को समझ रहे हैं, और आपने इस वेदना को समझते हुए जो एक सुंदर यात्रा शुरू की है, शोध यात्रा। इस शोध यात्रा के कई लोग हिस्सा बन चुके हैं और आगे भी बनेंगे, इसके लिए तो पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन मेरा एक सवाल इस शोध यात्रा से जुड़ा हुआ है। आपके शोध यात्रा में आपने कई चीजों को ढूंढा है, कई चीजों को जाना है, और भारत के कई हिस्सों पे आप गए हैं। क्या आपके शोध यात्रा में आपने कोई एक ऐसी बात देखी जो पूरे भारत को भारत बनाती है?
0: देखिए, ऐसा है, एक बात नहीं हो सकती, वो ऐसी बहुत सी बात। ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ पर ऐसी कोई यात्रा नहीं हुई जहाँ पर हमें कुछ ना कुछ नया नहीं मिला हो। हमारी 49वीं यात्रा बलिया से गाजीपुर में थी, और उससे पहले रामनाथपुरम से रामेश्वरम, जहाँ डॉक्टर कलाम साहब का समाधि स्थल है, वहां तक थी। तो गर्मियों में जाते हैं जहाँ गर्मी पड़ती है, ठंड में जाते हैं जहाँ ठंड पड़ती है।
1: बहुत,
0: क्योंकि ऐसे समय में जब आप जाते हैं ना, तो लोगों को कहना नहीं पड़ता आप क्यों आए हैं।

0: आपका तरीका जो है जीवन का, वही आपका मकसद बता देता है। इसलिए हमें कभी ये विश्वास नहीं दिलाना पड़ा किसी के अनजान व्यक्ति को कि आप हमारे हमको समझाओ या हमें बताओ आपने जीवन में क्या क्या संघर्ष किया है। तो मैं यही कहूंगा कि शोध यात्राओं को सबको बांधने का एक सबसे बड़ा तरीका यह है कि हमारा समाज बड़ा दयालु है। ऐसे लोग जिनसे हम कभी दोबारा मिलेंगे नहीं, उनको मालूम है शायद कि हम दोबारा नहीं आएंगे उस गांव में, वो भी कहते हैं रुक जाओ खाना खा के जाना, यहीं सो जाओ। तो ये जो समाज का उदार भाव है पूरे देश का, एक जगह का नहीं पूरे देश का। और मैं ऐसे भी लोगों से मिला हूं जिन्होंने ऐसा काम कर दिया जो कोई करने की कल्पना नहीं कर सकता। करण मेहर और उनकी पत्नी दोनों ने बरगढ़ जिले में उड़ीसा में कुर्ता बनाया जिसमें एक भी सिलाई का धागा नहीं था। ये कुर्ता बुना गया है पूरा का पूरा बांह के समेत, कैसा कर रहा होगा वो। एक कुर्ता विदाउट ए स्टिच मेरा ब्लॉग है, कभी पढ़िएगा कैसे बनाया उसने वो। विश्वास नहीं होगा ना आपको इस बात के अंदर। ऐसे लोग हमारे यहाँ जो अकल्पनीय चीजों का आविष्कार कर डालते हैं, कर देते हैं, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि कोई चुनौती तो ऐसी हो जिस जो सबको पराजित कर दे लेकिन मैं उसका उत्तर ढूंढूं। बहुत लोगों ने अपने जीवन के अनुभव हमसे बांटे, बड़ा निस्वार्थी जीवन है। मतलब हम ये बताएं आपको, मैंने बौद्धिक संपदा के अधिकार पर बहुत काम किया है लेकिन 99% मैं कहूंगा ज्ञान लोग दूसरों से बांटने में कभी हिचकिचाते नहीं। बहुत सारे तरीके कश्मीर में मिले, सब जगह मिलते हैं, मणिपुर में हमने आज चर्चा चल रही है, संसद में भी बहस हुई, चिराचंद्रपुर में जहां पर बहुत ज्यादा हिंसा हुई वहां हमने अपनी शोध यात्रा शुरू की थी एक ऐसे आश्रम से जहां कुकी और नागा जब पहले उनका युद्ध हुआ था तो उनके जो बिना माता पिता के जो ऑर्फन बच्चे थे उनका एक आश्रम बनाया गया जिसमें कुकी और नागा एक साथ पढ़ते थे। मैंने कहा मैती और कुकी जो लोग परिवार टूट गए चल गए तकलीफ हो गई वो एक दूसरे को दवा लगाएंगे ना, ये देश बढ़ जाएगा। हम अभी उनको अलग अलग तरीके से देख रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि तकलीफ हम सबके भीतर हुई है। ऐसा नहीं कुछ ही लोग, कुछ को ज्यादा हुई है मैं मानता हूँ लेकिन तकलीफ तो सबको हुई है।
1: पूरे भारत को जोड़ने वाली चीज जो आपने बताई तो उदारता और निस्वार्थ भाव, और उसको अगर मैं एक शब्द में ढालने का प्रयास करूं तो शायद आत्मीयता। ये जो आत्मीयता है व्यक्ति का, व्यक्ति के अंदर जो उसकी आवश्यकता है उसको पहचानना और ये समझना कि ये आवश्यकता केवल उस व्यक्ति की नहीं है, मैं भी कभी इस दौर से गुजरा हूँ, तो ये जो एक आत्मीयता है, ये जो एक अपनापन है, ये भारत को भारत बनाती है। अनिल जी आपसे बात करते करते जैसे मैंने पहले भी कहा था कि समय का पता ही नहीं चलेगा और चलने भी नहीं दिया आपने, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में फिर कभी आप हमें मौका दें, आपके साथ हम जुड़े और बातचीत करें और हमारे साथी भी आपसे सुन करके आपसे समझ करके अपने जीवन में चार गुरुओं की आपने बात की उन गुरुओं से बातचीत करते करते भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन समय जो है हमें इशारा कर रहा है कि हम आपके साथ एक गेम खेलें, उस गेम का नाम है रैपिड फायर राउंड, तो जिसमें हम आपसे एक सवाल पूछेंगे और सवाल का जवाब आपको एक शब्द में देना होगा। आपने जिस अंदाज में ठीक है कहा उस अंदाज से मुझे समझ में आएगी कि मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट होने वाला ये चैलेंज ऐसे सवाल ढूंढने के लिए। चलिए पहला सवाल आपके साथ ये है, सेवा क्या है?
0: सानिध्य।
1: वाह बहुत सुंदर, पहली बार मैंने ये जवाब सुना, सेवा मतलब सानिध्य, एक दूसरे का साथ, ये बहुत सेवा करता है हमारे ऊपर। जैसे
0: सेवा इसके बिना संभव नहीं है भाई, सानिध्य के बिना सेवा संभव नहीं है।
1: सेवा के लिए सहयोग या सानिध्य जरूरी है,
0: बहुत जरूरी है, जरूरी
1: बिल्कुल। शांति क्या है?
0: संतुष्टि।
1: संतुष्टता क्या है?
0: उल्लास।
1: उल्लास क्या है?
0: उत्सुकता।
1: उत्सुकता और जीवन,
0: उत्सुकता से पैदा होती है ऊर्जा, ऊर्जा से पैदा होता है उल्लास, उल्लास जो है जीवन की अंतिम आकांक्षा होती है जब न पता चलता है कि समय अभाव दुख सुख से परे हो जाते हैं।
1: मैं पूछने वाला था कि उत्सुकता और जीवन को आप कैसे जोड़ेंगे और आपने जोड़ दिया। मेरा अगला सवाल यह है कि उन्नति क्या है?
0: अंतर और बाहर के भेद को कम करना,
1: मतलब
0: अंतरंगता कह सकते हैं एक शब्द अगर आप
1: अंतरंगता या कहेंगे बाह्य और अंतर जगत का एकीकरण,
0: एकीकरण
1: हो, समान हो, बहुत सुंदर।
0: कथनी और करनी एक जैसी हो जाए,
1: कथनी करनी और सोच, किस बात आपने विचारों से की थी, विचार से व्यवहार, व्यवहार से फिर संस्कार, तब जाके वो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो श्रेष्ठ व्यक्तित्व कहलाएगा।
0: बिल्कुल।
1: एक और सवाल जो मेरे जहन में उठता है।

0: वो ये है कि भारत क्या है?
1: सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबका भला हो, हर जीव का भला हो। केवल कृष्ण का कहने मानने वाला, राम की कहानी मानने वाला, अल्लाह के बारे में विश्वास करने वाला, गुरु के बारे में विश्वास करने वाला, खाली उसका भला हो, ऐसा हम कल्पना कर ही नहीं सकते अपने धर्म में। हमें तो सब जीवों का सुख चाहिए, खाली मनुष्य का नहीं।
0: सर्वे भवन्तु सुखिनः,
1: सर्वे चींटी का, गिलहरी का, हर जीव का सुख हो, हर सब निरामय हो, सभी निरोगी हो, सभी सुखी रहें, ऐसे विचार का जहाँ पर प्रादुर्भाव हुआ वो है भारत, जहाँ किसी वर्ग विशेष के सुख की कामना संभव नहीं है, उसको तार्किक रूप में उसको स्वीकार ही नहीं किया जाएगा उस प्रार्थना को। वो मेरा भारत।
0: बहुत सुंदर। आखिरी सवाल, अनिल कुमार गुप्ता कौन है?
1: एक बेचैन आत्मा जिसको हर समय तलाश है कि कैसे समाज को जोड़ा जाए, कैसे नए नए विचारों को तो एक माला में पिरोया जाए, ताकि न केवल हमारा देश बल्कि सारी दुनिया के जो लोग हैं उनका जीवन आगे विकसित हो, आगे बढ़े, हमारा समाहित विकास की जो कल्पना है हमारी वो आगे बढ़े।
0: अनिल जी, आपने खुद को बेचैन आत्मा कहा, बट मैं समझता हूँ और हमारे सभी श्रोता साथी इससे सहमत होंगे कि आप एक वास्तविक वैचारिक क्रांति लाने वाले देश के वो यशस्वी रतन हैं जिनके प्रयासों ने कईयों के जीवन को बदला है। चाहे वो आपने जिक्र भी किया कईयों का, चाहे वो करोड़ों में आज लाभ अपने लिए और देश के लिए ला रहे हैं, या चाहे वो लाखों में ला रहे हैं या हजारों में ला रहे हैं, लोगों के जीवन को शून्य से कहीं और एक मुकाम तक पहुंचाने में आपने बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमारे साथ समय बिताया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करेंगे कि दोबारा कभी ना कभी आपसे जरूर मुलाकात होगी।
1: जरूर जरूर, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।
0: साथियों, अभी तक मैं और आप लाभ ले रहे थे प्रोफेसर डॉक्टर श्री अनिल कुमार गुप्ता जी से, उनके अनुभवों से, उनके जीवन के जो रंग हैं उन रंगों से हम हमारे जीवन के मानस पटल को एक बहुत सुंदर चित्र के साथ, कल्पना के साथ और एक शोध के साथ आगे बढ़ा रहे थे। अनिल कुमार गुप्ता जी को भारत सरकार ने 2004 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया, और इस प्रकार के व्यक्तित्व से हम आगे भी मिलते रहेंगे। जैसे अनिल जी ने कहा कि व्यक्ति के जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान हमें देना होगा अपने विचारों को, विचारों के बाद देना होगा व्यवहार को, कि हमारे वो विचार श्रेष्ठ व्यवहार में तब्दील हो, और वो श्रेष्ठ व्यवहार जो है हमारे अंदर सुसंस्कारों की संरचना करे, और इस सुसंस्कारित संरचना से ही एक सुंदर परिकल्पना की जा सकती है बहुत बखूबी, बहुत खूबसूरत विश्व की। आज हमारे साथ एक वैचारिक क्रांतिकार प्रोफेसर अनिल कुमार गुप्ता जी जुड़े थे। यशस्वी भारत कार्यक्रम में हम आपके बीच में एक और नई एक ऐसी हस्ती को लेकर के दोबारा आगे आएंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM और मैं हूं आपकी अपनी आरजे नीतू। स्वागत है हमारे विशेष आध्यात्मिक कार्यक्रम आंतरिक दिव्यता का आह्वान। दोस्तों, क्या कभी आपने खुद से कहा है, मैं बहुत कुछ सह सकती हूं, लेकिन यह नहीं, मैंने बहुत बर्दाश्त किया है, अब और नहीं कर सकती। हम सभी जीवन

ऐसे लोगों, ऐसी परिस्थितियों और ऐसे अनुभवों से गुजरते हैं जो हमारी परीक्षा लेते हैं। कभी किसी का व्यवहार हमें परेशान करता है, कभी किसी की बात दिल को चोट पहुंचा देती है और कभी परिस्थितियां हमारे अनुसार नहीं चलती। ऐसे समय में हम सोचते हैं कि हमारी सहन करने की क्षमता समाप्त हो रही है, लेकिन क्या वास्तव में हमारी सहन शक्ति सीमित है या फिर हमने स्वयं ही अपनी शक्ति को सीमाओं में बांध रखा है। आज के इस विशेष एपिसोड में हम बात करेंगे सहन शक्ति की गरिमा की, उस शक्ति की जो हर आत्मा के भीतर मौजूद है, उस शक्ति की जो हमें परिस्थितियों के बीच भी शांत, स्थिर और सकारात्मक बनाए रखती है। दोस्तों, जीवन की हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। आइए माँ कुष्मांडा की पावन आरती सुनते हैं और फिर लौटते हैं आज के विषय पर।

स्वागत है आपका। दोस्तों, जब हम सहन शक्ति की बात करते हैं तो अक्सर इसका अर्थ गलत समझ लेते हैं। कई लोग सोचते हैं कि सहन करना मतलब मन मारकर चुप रहना, अपना दुख दबाना, मजबूरी में परिस्थितियां झेलना। लेकिन वास्तविक सहन शक्ति का अर्थ कुछ और ही है। सच्ची सहन शक्ति वह नहीं जहां भीतर दर्द चलता रहे और बाहर हम मुस्कुराते रहें। सच्ची सहन शक्ति वह है जहां बाहरी परिस्थितियां हमारे भीतर की शांति को प्रभावित ही ना कर पाएं। जब कोई व्यक्ति हमारे बारे में कुछ गलत कह दे और फिर भी हमारा मन स्थिर रहे, जब कोई हमारी अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार ना करे और फिर भी हम अपनी सकारात्मकता बनाए रखें, तब हम वास्तव में सहन शक्ति का प्रयोग कर रहे होते हैं। अक्सर हम अपनी शक्ति पर स्वयं ही सीमाएं लगा देते हैं। हम कहते हैं यह मैं सहन कर सकती हूँ, लेकिन यह नहीं, इतना मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन आत्मा की शक्ति पर कोई सीमा नहीं होती। शक्ति अनंत है, जरूरत केवल उसे पहचानने और उपयोग करने की है। जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं, तब कठिन परिस्थितियाँ भी हमें कमजोर नहीं कर पाती। आइए सुनते हैं एक मधुर पुराना भक्ति गीत।

माँ कूष्मांडा की कथा। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के कूष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है। कथा के अनुसार जब सृष्टि का कहीं अस्तित्व नहीं था और चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था, तब माँ कूष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की। इसी कारण उन्हें सृष्टि की आदि शक्ति कहा जाता है। कहा जाता है कि सूर्य मंडल के भीतर निवास करने की क्षमता केवल माँ कूष्मांडा में ही है। उनके तेज से सूर्य को प्रकाश और ऊर्जा प्राप्त होती है। आठ भुजाओं वाली माँ अपने हाथों में विभिन्न अस्त्र और शस्त्र और अमृत कलश धारण करती हैं। माँ कूष्मांडा अपने भक्तों को स्वास्थ्य, शक्ति और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। उनकी कथा हमें यह प्रेरणा देती है।

है कि मुस्कान और सकारात्मक विचारों से अंधकारमय परिस्थितियों को भी प्रकाश में बदला जा सकता है। दोस्तों, यही सहन शक्ति का भी सार है। जब जीवन में अंधकार दिखाई दे, तब शिकायत करने की बजाय स्वयं प्रकाश का स्रोत बन जाना। माँ कूष्मांडा हमें सिखाती हैं कि सकारात्मकता सबसे बड़ी शक्ति है। आइए सुनते हैं माँ की पावन चालीसा।

दोस्तों, सहन शक्ति की सबसे बड़ी नींव है स्वयं को परिस्थितियों से अलग देखने की क्षमता। जब कोई व्यक्ति कुछ गलत कहता है और हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, तब हम उसकी ऊर्जा के प्रभाव में आ जाते हैं। लेकिन यदि हम कुछ क्षण रुक जाएं, गहरी सांस लें और परिस्थिति को एक साक्षी की तरह देखें, तो हमारी प्रतिक्रिया बदल जाती है। हम प्रतिक्रिया नहीं देते बल्कि उत्तर देते हैं। यही आंतरिक परिपक्वता है। जब हम दूसरों के व्यवहार को अपनी शांति का आधार बनाते हैं, तब हम कमजोर हो जाते हैं। लेकिन जब हम अपने मन की स्थिति की जिम्मेवारी स्वयं लेते हैं, तब कोई भी व्यक्ति हमारी शांति नहीं छीन सकता। याद रखिए, स्वीकार करना हार मानना नहीं है, स्वीकार करना वास्तविकता को समझना है। और वास्तविकता को समझने के बाद सही प्रतिक्रिया चुनना ही सहन शक्ति की पहचान है। परिस्थितियों से ऊपर उठकर उन्हें देखना ही वास्तविक शक्ति है। आइए सुनते हैं एक सुंदर गरबा गीत।

दोस्तों, यदि हमें सहन शक्ति को अपने जीवन का स्वभाव बनाना है तो सबसे पहले हमें स्वयं के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाना होगा। हम चाहते हैं कि लोग हमें स्वीकार करें,

को स्वीकार करना और बिना शर्त स्वयं से प्रेम करना। जब हम अपने प्रति प्रेम और सम्मान विकसित करते हैं, तब दूसरों के प्रति भी स्वाभाविक रूप से सहनशीलता बढ़ने लगती है। तब सहन शक्ति प्रयास नहीं लगती है, वह हमारा स्वभाव बन जाती है। जो स्वयं से प्रेम करना सीख जाता है, वह दूसरों को भी सहजता से स्वीकार कर पाता है। आइए सुनते हैं एक सुंदर भक्तिमय गीत।

खिलने लगता है। आज का आध्यात्मिक होमवर्क, अगले 24 घंटे तक स्वयं के लिए एक माँ बनकर रहिए। अपने विचारों को प्रेम से देखिए। अपनी गलतियों के लिए स्वयं को दोष देने के बजाय समझिए। यदि कोई कमजोरी दिखाई दे तो उसे स्वीकार कर सुधारने का प्रयास कीजिए और दिन में कई बार स्वयं से कहिए, मैं स्वयं को स्वीकार करती हूँ, मैं स्वयं से प्रेम करती हूँ, मेरे भीतर हर परिस्थिति को शांतिपूर्वक सहने की शक्ति है। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि आपकी आंतरिक शक्ति बढ़ रही है और जीवन पहले से अधिक सहज लगने लगेगा। मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे नीतू। आप सुन रहे थे आंतरिक दिव्यता का आह्वान, केवल रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। खुश रहो, खुशियाँ बांटो। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।

प्रिय श्रोताओं, आज हमने जाना कि सहन शक्ति कमजोरी नहीं है, यह आत्मा की सबसे सुंदर शक्तियों में से एक है। जब हम स्वयं को परिस्थितियों से अलग करके देखते हैं, जब हम दूसरों को स्वीकार करना सीखते हैं, जब हम स्वयं के प्रति करुणामय बनते हैं, तब हमारे भीतर सहन शक्ति का

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को डिप्लीट नहीं करना, क्योंकि हम हीलर्स हैं, हम एंजल हैं, और हमारी एनर्जी का असर हमारे आसपास के लोगों पर एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जो हीलिंग के आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माई एनर्जी लाइक दिस। माई एनर्जी इज फॉर अ पर्पज ऑफ हीलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। एंड जब हम उस इंटेंशन से अपनी एनर्जी को बचाएंगे, सबसे पहले कौन बच जाएगा? हम खुद। हम काम करेंगे, काम करवाएंगे, डिसिप्लिन करेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे, लेकिन हिले बिना। इट्स ओनली अ लाइफ स्टाइल चेंज। दीज आर लाइफ स्टाइल चेंजेस। एनर्जी लाइफ है, ये निकल जाए तो लाइफ खत्म हो जाती है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें।

0: आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: हमारा भोजन हमारा व्यक्तित्व। लेखिका सुधापुरी। पात्र परिचय: उन्नति, दृष्टि, यश, वेदांत, आदित्य प्रकाश, आदित्य, सैंडी, आकाश।
2: मजा आ गया, ये तरबूज तो बहुत ही मीठा है।
3: मेरे खरबूजे का तो कोई मुकाबला ही नहीं।
1: मैं क्या बात करते हो, फलों के राजा के सामने किसी और फल की तारीफ। लाहौल फिलाकवत।
4: वो क्या होता है?
1: मुझे भी पता नहीं, पर ऐसा ही कहते हैं ना जब कोई कुछ गलत करता है।
4: ये फलाहारी पिकनिक मुझे बहुत अच्छी लगती है।
2: हाँ, ये मेरे ही दादाजी का आइडिया था।
3: हाँ, मैं तो उन्हें बाबूजी कहकर पुकारता हूँ।
4: और मैं बाबा।
2: वो मेरे सब दोस्तों को बहुत प्यार करते हैं और कहते हैं बचपन में बहुत सारे दोस्त बनाने चाहिए, बचपन की दोस्ती हमेशा प्यारी लगती है।
5: मेरे पापा भी यही कहते हैं।
3: मैं भी इस बात में विश्वास रखता हूँ कि हर एक दोस्त जरूरी होता है।
1: जैसे किसी के साथ हम कोई खास खेल खेल सकते हैं,
4: कोई पढ़ाई में मदद करता है चाहे वो खेलने में उतनी दिलचस्पी नहीं लेता हो,
2: और कोई हमारा मजेदार चटपटा खाना खाने में हमारे साथ होता हो।
5: जैसे इस समय हम सभी मिलकर गर्मियों के मजेदार फल खा रहे हैं।
2: हाँ, ये ठीक है।
6: ये फलों का आइडिया अच्छा है, कितने ही पेड़ पर क्यों न खा लो, कभी सुस्ती ही नहीं आती,
5: बल्कि इन्हें खाकर हम ताज़ा ही महसूस करते हैं।
0: तुम्हें पता भी है फल हमारे शरीर की किस प्रकार मदद करते हैं?
2: मजे करने में।
0: वो तो है ही, पर सबसे जरूरी बात ये है कि ये हमारी बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं।
5: तो रोटी, पूरी, आलू, दाल, ये सब?
3: हाँ, और दूध।
0: वो सब भी जरूरी है, पर अलग अलग भोजन हमारे शरीर को अलग अलग तरीकों से मदद करते हैं।
7: अभी हम पर पहुँचे ही हैं विज्ञान में।
0: हाँ, तुम सब इन अलग अलग फूड ग्रुप्स के बारे में पढ़ोगे, जैसे कुछ बॉडी बिल्डिंग के लिए होते हैं, कुछ एनर्जी देने के लिए, तो कुछ बीमारियों से रक्षा के लिए।
1: सब भोजनों में अलग अलग पौष्टिक तत्व होते हैं ना?
0: जैसे दालों में प्रोटीन जो बढ़ने में और शरीर की कोशिश

0: कणों की मरम्मत करने में मदद करता है। अनाज में कार्बोहाइड्रेट जो काम करने की शक्ति देता है। मक्खन और घी में वसा, ये भी हमें शक्ति देता है और कई विटामिनों को शरीर में ग्रहण करने की भी क्षमता है। फल और सब्जियों में विटामिन और मिनरल होते हैं।
1: और दीदी, संपूर्ण आहार पता है किसे कहते हैं?
2: मुझे पता है, दूध को।
0: और संतुलित आहार?
3: ऐसा भोजन जिसमें सब पौष्टिक तत्व सही मात्रा में हो।
4: पर ऐसा तो किसी व्यक्ति की उम्र, अवस्था, लिंग, वो क्या कार्य करता है, इस सब पर भी तो निर्भर होगा ना कि उसके लिए हम किसे संतुलित आहार कहेंगे।
0: हाँ, जैसे बढ़ते बच्चों के लिए खाने में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होनी चाहिए।
5: और किसी मजदूर को शक्ति देने वाले भोजन की जरूरत होगी।
0: बिल्कुल ठीक,
6: पर मुख्य बात तो यह है ना कि हमें जीने और बढ़ने के लिए भोजन की जरूरत है।
1: क्यों, बीमारियों से रक्षा भी तो।
2: और ताकतवर बनने की भी।
7: कहते हैं सबसे पौष्टिक भोजन वह होता है जो सबसे कम पका हो।
0: हाँ, उसके पौष्टिक तत्व आग से और पकने से नष्ट नहीं होते।
3: पर कच्चा भोजन तो बस फली हुए ना, जैसे अमरूद, केला, खरबूजा,
4: अनार, सीताफल, खुरमानी, आलू बुखारा, नाशपाती।
0: केला भूल गए, छोटे बच्चों के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी।
5: मुझे तो जामुन बहुत अच्छा लगता है।
6: मेरे दादाजी इन्हें बहुत खुश होकर खाते हैं।
0: ये मधुमेह की बीमारी वाले लोगों के लिए बहुत लाभकारी होता है।
6: उन्हें तो पपीता भी बहुत पसंद है।
1: मुझे तो बेर बहुत पसंद है।
2: मुझे शहतूत।
0: मुझे फालसे।
3: क्यों, कुछ सब्जियां भी तो है जिन्हें हम कच्चा खा सकते हैं, जैसे गाजर, मूली, टमाटर, चुकंदर
0: और ककड़ी, खीरा। टमाटर को हम सब्जी कहते हैं पर असल में ये एक फल होता है।
5: अच्छा, फिर नट्स भी तो, जैसे मूंगफली, बादाम, काजू, अखरोट,
6: किशमिश और चिलगोजे भी।
1: पता है अब चिलगोजे बहुत मुश्किल से मिलते हैं।
2: कहीं मौसम में बदलाव तो इनके कम उगने का कारण तो नहीं?
4: तुम भी ना,
0: हर बात को प्रदूषण तक ले जाते हो। तो गलत क्या है, जब पशुओं की इतनी प्रजातियां विलुप्त हो रही है मानव के प्रदूषण फैलाने से, तो पेड़ भी तो हो रहे हैं।
3: जरा सोचो, ऐसा हो कहीं एक दिन हमें भोजन देने वाले पेड़ पौधे कहीं विलुप्त ना हो जाए, जैसे मक्का, बाजरा।
4: क्यों, गेहूं भी तो है।
5: और दालें, फल, मटर, राजमा, चना,
6: सब्जियां जैसे पालक, गोभी।
1: पर अगर पौधे प्रदूषण से प्रभावित हुए तो हम सब भूखे ही मर जाएंगे, क्योंकि तेल और घी भी तो इन्हीं से आता है, कुछ सीधे सीधे और कुछ
2: पता है इनडायरेक्ट तरीके से।
7: गाय घास या पौधा खाती है, दूध देती है, मक्खन निकलता है और घी।
3: पर बात सुनो, अगर पौधों पर प्रदूषण का बुरा असर पड़ेगा तो पशुओं पर भी पड़ेगा, तो दूध पर भी, दही, शहद, पनीर, अंडे या मांस।
4: मैं तो शाकाहारी हूँ।
6: मैं भी मांसाहारी नहीं हूँ, शाकाहारी हूँ।
0: चलो कुछ सकारात्मक सोचते हैं, कुछ नहीं होगा, तुम सब हो ना। जब जानते हो क्या समस्या है तो समाधान भी तुम ही निकालोगे। अच्छा ये तो बताओ, क्या तुम सब खाने से पहले हाथ धोते हो?
4: मैं तो धोती हूँ।
5: मैं भी, अच्छी तरह साबुन से।
6: मैं भी।
1: सबको हाथ धोकर ही खाना खाना चाहिए और खाने को खूब अच्छी तरह से चबा चबा के खाना चाहिए।
2: दादाजी कहते थे हमारे 32 दांत होते हैं, तो हर एक दांत को एक एक बार तो भोजन चबाने का मौका मिलना ही चाहिए।
7: ये बात ठीक है, ऐसा हम हर कौर को कम से कम 32 बार चबा कर ही लेंगे।
0: हाँ, पर खाते खाते बातें नहीं करनी चाहिए।
3: मेरी मम्मी कहती है कि सही समय पर भोजन करना चाहिए।
4: वह कहते हैं कि जो बच्चे नाश्ता करके स्कूल जाते हैं उनका दिमाग बहुत तेज चलता है।
5: तो हमें नाश्ता जरूर करना चाहिए।
6: हमारी टीचर उस दिन कह रही थी कि दिन में नाश्ता, दोपहर को लंच और रात का खाना तो जरूर ही खाना चाहिए।
1: और दीदी, सबसे जरूरी बात जो सब भूल ही रहे हैं वो है साफ खाना खाना, ढका हुआ और ताज़ा खाना।
2: बासी खाना या सड़ा गला भोजन करने से बीमारी हो सकती है।
7: हाँ, और उन पर मक्खियाँ बिल्कुल न बैठी हों, ये ध्यान रखना चाहिए।
3: और साफ बर्तनों में खाएं, इस बात का सबको ध्यान रखना चाहिए।
4: पर सबसे जरूरी बात तो ये है

0: खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए।
1: हाँ बिल्कुल नहीं, ऐसे कितने ही लोग हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमें इतना अच्छा भोजन मिल रहा है, उतना ही लेना चाहिए जितना कि हम खा सके।
2: दीदी शादियों में देखा है लोग अपनी प्लेटों में कितना खाना भर लेते हैं और
3: फिर खाया नहीं जाता तो फेंक देते हैं।
4: चलो आज मिलके कसम खाते हैं, न खाना वेस्ट करेंगे न किसी को करने देंगे।
5: हाँ उतना ही प्लेट में डालेंगे जितना खा सके।
6: इन सब बातों से ही तो एक अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण होगा।
7: अच्छा भोजन अच्छा व्यक्तित्व,
8: ताज़ा लाभदायक रुचिकर सबको पसंद आने वाला, सही मात्रा में सब गुणों वाला, साफ सशक्त समस्याओं से लड़ने में सहायक।
1: ये भोजन की बात कर रहे हो कि व्यक्तित्व की?
7: दोनों की।

बोला मुझको खा लो मैं तुमको मोटा कर दूंगा। पालक बोला मुझको खा लो मैं तो तुमको ताकत दूंगा। गोभी मटर टमाटर बोले गाजर भिंडी बैंगन बोले। अगर हमें भी तुम खाओगे रोज रोज बढ़ते

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी न कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी। तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म, वन। सेकंड, अब मैं अगर व्हाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए व्हाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि अब जब हम व्हाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM खुश रहो खुशियां बांटो।
1: आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं, अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुणेरी आवाज 107.8, खुश रहो खुशियां बांटो।

ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। सेल्फ मैनेजमेंट की इस पूरी श्रृंखला में हमने पिछली कड़ी में बात की थी रोल्स की। हम में से हर कोई कहीं न कहीं एक एक्टर के रूप में अपने आप को जरूर देखना चाहता है, तो आज मौका मिला है कि हम जिंदगी में किस तरह के रोल अदा करते हैं उन्हें देख पाए। जब अवेयरनेस, क्योंकि जब भी हम एक्ट कर रहे होते हैं हम अवेयर होते हैं कि हम एक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली अगर जो रोल मैं दिन भर में प्ले कर रहा हूं उसके प्रति अगर हम अवेयर हो जाते हैं, हमें पता चल रहा है कि मैं ये रोल प्ले कर रहा हूं, थोड़ा सा भी अगर अपने आप को डिटैच करके देख पाते हैं, इट इज एक्चुअली लाइक एन एक्टर। हम वो हर रोल को बहुत अच्छी तरह से अदा कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, अभी तक कहीं ना कहीं प्री डिफाइंड था कि इस रोल को मुझे ऐसे ही डिफाइन करना।

0: लेकिन स्पिरिचुअलिटी या पिछली कड़ी अगर हमें देखें वो हमें फ्रीडम देती है कि मैं हर रोल को हर सीन को अपने हिसाब से अदा कर सकता हूं। तो फिर कौन ज्यादा अच्छा एक्टर होगा जो अपने हिसाब से स्क्रिप्ट लिखेगा और फिर उसे प्ले करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जब हमने ट्राई किया तो स्क्रिप्ट लिखने में मुश्किल आ रही थी कि कहीं ना कहीं वो पुरानी जो चीजें हैं वो टेक ओवर कर जाती हैं। कैसे अपनी स्क्रिप्ट लिखनी है इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं प्रभा कुमारी सिस्टर शिवानी। सिस्टर शिवानी बहुत बहुत स्वागत। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि आप शेयर करें कि हाउ इज दिस क्रिएटिविटी एंड स्पिरिचुअलिटी गोज हैंड इन हैंड, क्योंकि उसमें कहीं फन दिखता है वो जिंदगी के नजदीक दिखती है और स्पिरिचुअलिटी ऐसा लगता है कि नहीं समथिंग टू रियली यू नो थिंकिंग है या डूइंग में कुछ नहीं हो रहा होता।
1: सी वी फॉरगॉट व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली। स्पिरिचुअलिटी मीन्स कि जो हम कर रहे हैं हमारा हर कर्म हमारा हर संबंध हमारा हर इंटरेक्शन उसमें मेरा अपनी चॉइस मेरा अपना कंट्रोल मेरा राइट वे ऑफ थिंकिंग राइट वे ऑफ फीलिंग राइट वे ऑफ परसीविंग एंड देन राइट वे ऑफ एक्टिंग। हर कर्म करते हुए मेरी सही सोच क्या है उसका रिजल्ट मेरी सही फीलिंग क्या होगी। मैं हर एक व्यक्ति को हर परिस्थिति को किस दृष्टिकोण से देखते हूँ और फिर जैसा मेरा दृष्टिकोण होगा वैसा मेरे व्यवहार में आएगा। तो वो स्पिरिचुअलिटी ने मुझे पावर दी है कि वो राइट थिंकिंग क्या है। इनफैक्ट स्पिरिचुअलिटी ने मुझे सिखाया कि मैं थिंकिंग करती हूं। पहले तो यही नहीं पता
0: वही था। तो मैं कह रही हूँ कि जो तीन पोर्शन आपने बताए वो तो ऑटोमेटिक हो रहे थे। मैं सिर्फ एक्टिंग या मैं जो कर्म कर रहा था उस पर केंद्रित था
1: क्योंकि हमने अपने आप को सिर्फ बाहर देखा है। स्पिरिचुअलिटी मीन्स सीइंग कि वो प्रोसेस शुरू कहां से होता है। यू नो जैसे एक प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट रेडी होकर मेरे हाथ में आ गया लेकिन प्रोडक्ट का जो प्रोसेस था कि वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कैसे हुआ। तो आज दिन तक बॉडी कॉन्शियस या हम मटेरियलिस्टिक जिसको कहते मतलब प्रोडक्ट को देखना दिस पर्सनैलिटी आफ्टर इट इज रेडी। तो ये पर्सनालिटी कैसे बोलती है और ये पर्सनालिटी कैसे व्यवहार करती है लेकिन ये पर्सनालिटी क्या सोचती है वो उसकी फाउंडेशन है। लेकिन जब हमें ये नहीं पता था कि थिंकिंग इज द फाउंडेशन ऑफ माय एवरी वर्ड एंड एक्शन और मुझे ये नहीं पता था कि आई एम द क्रिएटर ऑफ एवरी थॉट मेरा हर संकल्प मैं क्रिएट करती हूं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पावर कि इरिस्पेक्टिव परिस्थिति कैसी भी है आई हैव द पावर टू क्रिएट विच एवर थॉट आई वॉन्ट। सो बेसिकली ज्ञान या स्पिरिचुअलिटी हमें ऑटोमेटेड मोड से चॉइस के मोड में ले आता है कि आई चूज टू डू टू थिंक टू प्ले टू एक्ट द वे आई वॉन्ट एंड दिस इज फ्रीडम दिस इज कम्प्लीट फ्रीडम। तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी विल गिव मी फ्रीडम दिस फ्रीडम विल गिव मी क्रिएटिविटी कि एक बार मुझे समझ में आ गया मेरी फ्रीडम है मेरी चॉइस है मैं हर रोल को कैसे भी प्ले कर सकती हूँ दिस विल गिव मी क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी विल एनहांस माई इफेक्टिवनेस। नाउ वेदर इट्स अ पेरेंट्स रोल वेदर इट इज द रोल ऑफ अ बॉस द रोल ऑफ अ वाइफ एनी रोल माई इफेक्टिवनेस इन प्लेइंग दैट रोल विल इंक्रीज एंड जहां मेरी इफेक्टिवनेस बढ़ती जाएगी माई सेटिस्फेक्शन लेवल विल ऑल्सो इंक्रीज।
0: और कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रांग ये रहेगा कि आपको जो कुछ भी मैं एक्ट कर रहा हूं उसे पहले का प्रोसेस में समझ चुका हूं और ये मैं अपने कारण कर रहा हूं।
1: दैट्स व्हाई वी कॉल द प्रोग्राम अवेकनिंग कि पहले हम अंदर तो एकदम स्लीपिंग मोड में थे और बाहर काम कर रहे थे। तो मतलब ड्राइवर सोया हुआ था गाड़ी चल रही थी अपने आप बट देन इट वॉज जस्ट गोइंग वेर एवर इट वॉन्टेड। नाउ द ड्राइवर हैज द पावर टू टेक द कार वेयर ही वॉन्ट्स टू टेक द कार एंड ड्राइव एग्जैक्टली द वे ही वॉन्ट्स टू ड्राइव एंड देन वेन द ड्राइवर वेक्स अप ही कैन ड्राइव अवॉइडिंग एक्सीडेंट। हमने स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं देखा था कि हाउ इज इट वर्किंग। हमें लगा स्पिरिचुअलिटी मतलब सिर्फ ध्यान करना परमात्मा को याद करना विच इज येस बट परमात्मा को याद करके फिर उससे क्या करना उस शक्ति को लेकर जीवन के हर रोल में प्ले करते हुए उसको कैसे यूज करना। सो आई थॉट स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन मतलब सिर्फ परमात्मा को याद करना तो वो तब करेंगे जब सारे कामों से बाकी फ्री हो जाएंगे।
0: 70 साल में आप जाओ और तब करो।
1: इसीलिए द फर्स्ट कॉमन आंसर दैट कम्स इज आई डोंट हैव टाइम बिकॉज इट वॉज सपोज टू बी अ सेपरेट थिंग। तो जहां की मेरे आज अभी की जो जिम्मेवारियां वो ही नहीं पूरी हो रही हैं 24 घंटे के अंदर तो एक अलग पहलू के लिए टाइम निकालना इट इज चैलेंजिंग। वी नीड टू हैव फन बट बिकॉज वी वर नॉट हैविंग फन इनसाइड वी वर लुकिंग फॉर फन आउटसाइड।
0: हमने इतना खेला बाहर, इतना खेला और समझ में आया नहीं कि हम मतलब उसको हम एंजॉय ही नहीं कर पाए थे।
1: लेकिन हम फिर अगेन वी वर लुकिंग फॉर फन इन सिचुएशंस। सी अगेन मटेरियलिस्टिक मीन्स आप सब कुछ बाहर सिचुएशंस में ढूंढते हो कि मैं क्या ऐसा करूं जिससे आई विल हैव फन, मैं क्या ऐसा खाऊं, मैं क्या ऐसा पहनूं, मैं क्या ऐसा लोगों से मिलूं, मैं क्या करूं जिससे आई विल हैव फन, बिकॉज I want to have fun, I want to have joy, I want to enjoy life, but then we were looking for it in physical things because we thought I am the body. Jis din samajh mein aaya ke who wants to have fun, I want to have fun. I not body doesn't want to have fun kyunki iski to koi feeling hi nahi hai, isko nahi aati. I want to have fun. Now where do I have fun?
0: In fact, yes, I just go back to that jab hame ye samajh mein aaya tha ki responsibility sabse pehle kiski hai, meri, like the being, aur uski fir core values kya hai aur tab purpose of life jo hai, it actually now stays,
1: So spirituality answered this fundamental question ki main kaun hu, aur main kaun hu jab sharir se hatkar आत्मा पर आंसर आया तो सब कुछ चेंज होने लग गया ना, जस्ट द मीनिंग ऑफ एवरीथिंग चेंज एंड देन आई स्टार्टेड फीलिंग गुड। आई वॉज डूइंग एवरीथिंग, पहले भी हम सब कुछ कर रहे थे बट ये ना जानकर कि कौन है वो जो चाहता है अच्छा फील करना, एक्सपीरियंस करना, आई डिडंट नो। सो सब कुछ करते हुए भी आई वॉज नॉट रियली एंजॉयिंग एंड फिर वो जीवन कट रही है वाला एक्सपीरियंस था कि बीत रहा है, हर एक दिन गुजर रहा है, अगेन देयर वाज नो फन। सो स्पिरिचुअलिटी इज नॉट बोरिंग, स्पिरिचुअलिटी इज नॉट सीरियस, स्पिरिचुअलिटी इज एक्साइटिंग। आप एक दिन को ही देख लो ना, अगर हर दिन आप इस अवेयरनेस से हम चलेंगे कि आई एम गोइंग टू चूज माई रोल, इट्स एक्साइटिंग, आई विल लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सीन। लेकिन अगर मुझे लगे कि कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है, you are going to control my scene, you are going to control my dialogue, why should I look forward to the next scene? Then I don't look forward to the next scene, क्योंकि मेरा जो experience है वो ये कि परिस्थितियां और लोग मुझे ऐसे control करके चल रहे हैं और मैं सब चीज के अंदर जैसे फंसी हुई हूँ और बस उन्हीं की वजह से मैं जैसा सोच रही हूँ, बोल रही हूँ और व्यवहार कर रही हूँ, that's not fun at all.
0: लेकिन अब क्या आ रहा है कि very true, अगला पल मेरा क्या होगा, अगला सीन क्या होगा, उसके बारे में अगर मैं अवेयर भी हूं, अगला रोल मेरा आएगा, पर मुझे लग रहा है कि उसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा, वो जो कहीं ना कहीं मेरी स्किल्स जो है वो मंजी हुई नहीं है अभी उतनी, क्योंकि वो काफी टाइम से उस पर काम नहीं किया गया है, तो वो थोड़ा अभी इमर्ज नहीं हो पाया है।
1: लाइक व्हाट वी सो लास्ट टाइम वाज के हम पोजीशन कॉन्शियस हो जाते हैं तो एक्टर कॉन्शियस नहीं रहते, एक्टर कॉन्शियस मीन्स सोल कॉन्शियस, लेकिन हम पोजीशन कॉन्शियस हो जाते हैं और दूसरा हम अपने रोल से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा व्यवहार बहुत अग्रेसिव डिफेंसिव हो जाता है कि मेरे रोल को कोई कुछ न कहे, मेरे रोल को कोई इनसिक्योरिटी ना हो, आई एम एबल टू मेंटेन माय रोल, तो इसलिए भी हम उसमें क्रिएटिविटी नहीं लाते कि वो जैसे चल रहा है ये ऐसे ही ठीक है, आई डोंट वांट एनी चेंज इन दिस। एंड तीसरा, जैसे आपने कहा था कि सम पीपल से आई डोंट नो हाउ टू एक्ट, आई एम नॉट अ क्रिएटिव पर्सन, मुझे तो बस ऐसा ही करना आता है, ये भी कहीं ना कहीं अपने आप को लिमिट करना हो गया, क्योंकि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि हम क्रिएटिव नहीं है, क्रिएटिव बहुत थोड़े लोग होते हैं, वी फील, बट एक्चुअली एवरीवन इज क्रिएटिव, ईच वन ऑफ अस इज सो क्रिएटिव, लेकिन इट्स जस्ट दैट डिपेंड्स कि कौन अपनी क्रिएटिविटी को यूज कर रहा है और कौन उसको डोमिनेंट रख रहा है, क्योंकि क्रिएट करना, एक्ट करना मतलब क्या, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर एक्शंस, एवरी थॉट एंड एक्शन दैट आई एम क्रिएटिंग, I am the creator, इसको ही तो act बोलेंगे ना, creator of the action, तो action कौन create कर रहा है सारा दिन, हम create कर रहे हैं।
0: मैं पानी का ग्लास भी उठा रही हूँ, right? मैं यहाँ बैठ रही हूँ, चल रही हूँ, ये action है जिन्हें मैं create कर रही हूँ,
1: जो मैं सोच रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ, ये मैं action है जो मैं create कर रही हूँ, तो who's doing it, तो how can I say I don't know how to act, लेकिन जब हम उस awareness से चलेंगे हमें पता चलेगा कि role means what, role means a set of mental and physical actions, कैसे सोचना और कैसे उसको व्यवहार में लाना, दैट इज माई रोल एंड आई कैन लर्न हाउ टू डू दैट, आई कैन लर्न टू चेंज माई वे ऑफ थिंकिंग, आई कैन लर्न टू चेंज माई वे ऑफ बिहेविंग। जब हम ये कह रहे हैं कि मैं क्रिएटिव नहीं हूं, एक्चुअली मतलब मैं चेंज होना नहीं
0: चाहती, मैं जैसा चल रहा है चलने दो, क्योंकि अब उस पर भी कोई काम करे। अभी तक तो मेरे पास इतने सारे काम है, मुझे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, मेरे पास इतनी बड़ी डेडलाइन है, मुझे फिर आगे चल के जो है अपने हॉलीडे को भी पूरा प्लान करना है, मुझे ये भी करना है वो भी करना है, तो अब मैं इस

0: different, which one makes me feel better. तो इसलिए आप इसको कल जाकर किसी भी रिश्ते में करके देखिए कि किसी भी रिश्ते में एक पर्टिकुलर कंडीशन रिस्पॉन्स बहुत टाइम से चल रहा होगा. कई बार हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप में एक कंडीशन रिस्पॉन्स हो रहा है कि हर रोज इरिटेशन है ही है, हर रोज आर्ग्यूमेंट है ही है.
1: पूरे दिन की स्क्रिप्ट जो है हमने एक ही तरह से लिखी हुई है, तो हर रोज यही होगा यही हो, और उसी कारण हम फिर दूर भागते हैं. अगर हम आज देखें कि रिश्तों की जो दूरी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण, बिकॉज वी नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इवनिंग में क्या होगा, सुबह क्या रोल प्ले किया जाएगा, सुबह क्या सीन क्रिएट होगा, वी ऑल सीन इट, वी विजुअलाइज इट एंड वी स्टिल गेट इन टू इट एंड वी डोंट ट्राई टू चेंज.
0: एंड नाउ लेट्स क्रिएट इट अ डिफरेंट वे ताकि वी लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट डे. अभी क्या होगा, हो सकता है आपके साथ अगर मैं बहुत सालों से रह रही हूँ, यू नो स्पेशली हस्बैंड वाइफ, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, मुझे आपकी एक एक सोच समझ में आ गई है, व्यवहार समझ में आ गया, तो मुझे पता है कि हर परिस्थिति में आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे. लेकिन आजकल कई बार वी डोंट रिस्पॉन्ड इन द सेम वे बिकॉज समटाइम्स आवर रिस्पॉन्सेज हैव बिकम वेरी अनप्रेडिक्टेबल आजकल. लेकिन वो जो यू नो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है वो थोड़ी सी नेगेटिव साइड पर जा रही है, क्योंकि अंदर इतना दर्द भरा हुआ है कि वो लोग जो आज तक काफी ठीक थे, स्टेबल थे, अब वो छोटी छोटी बातों में रिएक्ट करने लग गए हैं,
1: स्ट्रांग होने लग गए.
0: यू नो बच्चे हमारे जो ठीक थे सडनली टीनेज एज में आ रहे हैं, वो क्यों इस तरह से जवाब दे रहे हैं, वो क्यों आर्ग्यू कर रहे हैं, तो अनप्रिडिक्टेबिलिटी आ रही है. सो बेसिकली पहले क्या हो रहा था, मुझे आपके रिस्पॉन्सेज फिक्स्ड पता थे, तो कहीं मेरे भी रिस्पॉन्सेज फिक्स्ड थे आपके. लेकिन नाउ आई हैव टू बी रेडी कि हरेक के साथ जिनके साथ मैं डील कर रही हूँ कोई भी तरह का रिस्पॉन्स आ सकता है. तो समवेयर आई कैन नॉट फिक्स माई रिस्पॉन्सेज, आई विल हैव टू बी रेडी कि अलग अलग लोगों से अलग अलग रिस्पॉन्सेज आने वाले हैं. हाउ एम आई गोइंग टू रिस्पॉन्ड इन द बेस्ट वे. कई लोगों के साथ ऑफिस में स्पेशली पता ही नहीं चलता सडनली आज ये लोग अलग तरह से क्यों बिहेव कर रहे हैं, कल तक तो ठीक थे, आज क्या हो गया. फिर क्या होता है, जैसे हमें दूसरे के रिस्पॉन्स में कुछ डिफरेंस दिखाई देता हम उनके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, ये आज इस तरह से क्यों नहीं बात कर रहे. सपोज आपके अंदर कोई टेंशन है, आपने मुझे गुड मॉर्निंग नहीं कहा सुबह, आप कॉरिडोर में मुझे ऐसे ही क्रॉस करके चले गए, अब मैं आपके बारे में ही सोचना शुरू कर दूंगी, क्या बात है, मेरे से नाराज है,
1: हाँ, मुझसे मैंने रूठ क्यों हो गए हैं, मेरे साथ मेरे इनके साथ रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम आएगी, किसी और ने तो नहीं कहा.
0: एग्जैक्टली, सी वेयर ऑल द थिंकिंग इज गॉन एंड पूरी कॉन्शियसनेस किस पर है कि आपने अपना रोल किस तरह से प्ले किया और अब मैं क्या करूं जिससे आप अपना रोल चेंज कर. That's it. Why not कि ठीक है आपने गुड मॉर्निंग नहीं किया या आपने ठीक से बात नहीं की, why can I just not continue? Is it necessary कि जैसे ही आपका रोल चेंज हुआ मुझे भी चेंज करना है कि उन्होंने गुड मॉर्निंग नहीं किया तो फिर अब मैं क्यों गुड मॉर्निंग करूं. No, I have to be creative with my role and कहीं ना कहीं मेरी एनर्जी, मेरी क्रिएटिविटी और कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो क्रिएटिविटी जरूर जागृत करेगी. दैट इज डेफिनेट. सो लेट्स बी कॉन्शियस, अवेयर. अवेयरनेस जहां आई कि हर पल अवेयरनेस ऑफ हाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट माय रोल. अब इसके ऊपर ये शायद सुनने में थोड़ा सा लगे कैसे कैसे करेंगे, इज इट वेरी डिफिकल्ट, इसको तुरंत आज या कल में जाकर करना है कि जहां कोई रिश्तों में फिक्स्ड आ रहा था या कहां हमें बहुत दिनों से एक दूसरे से किसी से अगर हमने बात नहीं की थी या ठीक से बात नहीं की थी, जस्ट गो एंड बी क्रिएटिव एंड यू नो जस्ट डू इट अ डिफरेंट वे टुडे.
1: एंड इनफैक्ट यू नो वो चेंज होता है या नहीं होता उन तक आपकी वाइब्रेशंस पहुंचती है नहीं पहुंचती, आपकी अपनी वाइब्रेशंस जो है वो आपको बहुत खुशी दे देंगे,
0: बिकॉज हमने खुद को ही खुशी देनी है. दैट्स व्हाट वी सेड, हर चीज जो हम करेंगे It makes me feel good. अभी मैं सोच रही थी पहले कि आप मुझे अगर ठीक से विश करोगे सुबह में आके, then I'll feel good. But now I've understood, आप करो या नहीं करो, अगर मैं आपको अच्छी तरह से विश करती हूँ आई फील गुड. दैट्स ऑल. अब मैं हर स्टेप पे हर एक को मिलती जाऊँ, हर सीन में क्रॉस करती जाऊँ और हर स्टेप पे ध्यान रखती जाऊँ, फील गुड फैक्टर मेरा.
1: You know, I feel so light actually.
0: Yes, पहले आपको देख देख कर आपके बारे में सोच सोच कर मैंने यहाँ बहुत भारी कर लिया था, इसने क्यों नहीं आज ठीक से बात की, इसने इस तरह से क्यों व्यवहार किया, इसने जवाब क्यों नहीं दिया, यू नो हर चीज में भारी. अब मुझे सिर्फ एक के बारे में सोचना है और एक पर ध्यान देते जाना है कि उन्होंने जैसा भी किया मुझे कैसा करना है. अ न्यू रिस्पॉन्स एवरी टाइम. दिस विल

0: मी फील वेरी लाइट एंड ये मुझे बहुत हल्का रखेगा और क्रिएटिविटी मुझे एक मोटिवेशन देगी सारा दिन एंड आई विल लुक फॉरवर्ड टू इट. और उससे क्या होगा, मेरे कोई भी रिश्तों में वो दूरी नहीं आएगी क्योंकि जहां अगर मुझे लगा भी कि कहीं दूरी आ गई है तो वो किसके हाथ में है,
1: मेरे अपने हाथ.
0: क्विकली गो चेंज प्ले द रोल अ डिफरेंट वे. दूरी आई क्योंकि हम इतने पर्टिकुलर टाइम से उस रोल को इस तरह से प्ले कर रहे थे. अगर लग रहा है दूरी आ रही है एंड इफ यू वॉन्ट टू चेंज इट, यू नो, अगर आप उसको ठीक करना चाहते हो जस्ट गो एंड प्ले द रोल अ डिफरेंट वे.
1: बट हम तो बेसिकली क्या होता है, कई लेवल्स पे पहुंच के हम चेंज ही नहीं करना चाहते, हम उसको ठीक ही नहीं करना चाहते क्योंकि हम कहते हैं कौन करे क्या है उनसे, हमें मुझे मिल के, जैसे आप कह रहे हैं कि उनसे मुझे मिल क्या रहा था,
0: उनसे नहीं मिल रहा है ना.
1: हाँ, बट बेसिकली ये मुझे एम्पावर कर रहा है.
0: एब्सोल्युटली. तो इसको आई थिंक अगर हम आज की आज एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, इट्स गोइंग टू बी अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टूगेदर.
1: एंड इफ इज गोइंग टू बी विद मी, जिनके साथ भी मेरा रिश्ता है, अगर वो मेरे साथ ऑफिस में होने वाले हैं तो उनका इम्पोर्टेंट रोल होगा ही.
0: एब्सोल्युटली.
1: तो मैं उनके साथ दूरी क्यों बढ़ाऊं?
0: क्यों ना हम जितनी बॉन्डिंग क्रिएट कर सकते हैं उतनी करते जाएं, क्योंकि वो सारी किसके हाथ में है, सारी अपने हाथ में है, तो उसको करते जाओ. एंड इसके लिए एक बहुत सिंपल कुछ एक बातों का हमें ध्यान देना है. सबसे पहला है हमारा दृष्टिकोण, माय परसेप्शन हैज टू बी वेरी राइट, कि मेरा जीवन के प्रति क्या परसेप्शन है.
1: हाँ, लोगों को छोड़ो, स्थितियों को छोड़ो, अब लाइफ के प्रति
0: मेरा क्या परसेप्शन है. एंड इट हैज टू बी अ वेरी क्लियर परसेप्शन कि ये वर्ल्ड ड्रामा है, ये एक ड्रामा है, इसमें मैं एक एक्टर हूं, मैं एक रोल प्ले कर रहा हूं. रोल प्ले कर रहा हूं इज वेरी इम्पोर्टेंट एंड एवरी टाइम आई हैव टू टेल माई सेल्फ इट्स जस्ट अ रोल. उसके अंदर इतना ना अटक जाएं कि
1: बस वहीं रुक जाएं.
0: इट्स जस्ट अ रोल. एंड जब मुझे याद रहेगा दिस इज जस्ट अ रोल, दिस इज जस्ट अ सीन, हर सीन जो गया इट्स जस्ट अ सीन, नो वन सीन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द अदर सीन, एवरी सीन इज इक्वली इम्पोर्टेंट, इट्स जस्ट अ सीन एंड आई एम प्लेइंग अ रोल, आई एम एन एक्टर. जब मुझे ये याद रहता है, ये परसेप्शन रहती है कि आई एम एन एक्टर, आई एम प्लेइंग अ रोल, मुझे ये भी याद रहता है आई कैन क्रिएट इट द वे आई वॉन्ट. मुझे ये भी याद रहता है कि मेरे पास चॉइस है, मेरे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, मुझे एक पर्टिकुलर तरह से नहीं प्ले करना. मुझे ये भी याद रहता है कि आई विल नॉट स्विम विद द करंट, मैं फ्लो नहीं हो जाऊंगी, आई विल बी एबल टू डिटैच माई सेल्फ जहां चाहिए क्योंकि इट्स जस्ट अ सीन. और फिर मुझे ये याद रहेगा कि फाइनली ये सीन भी खत्म हो जाएगा, चाहे वो कितनी भी बड़ी परिस्थिति आज, इट्स जस्ट अ सीन विच विल फेड अवे. एंड आई ऑल्सो हैव टू रिमेम्बर दिस रोल विल ऑल्सो वन डे फेड अवे. द ओनली वन हु रिमेन्स
1: मी
0: इज द एक्टर. तो वो राइट दृष्टिकोण से मुझे इस जीवन की यात्रा में चलना पड़ेगा कि ये रोल भी आज है, कल हो सकता है, नहीं है. द ओनली थिंग इटर्नल इज आई द एक्टर. तो जब सारे रोल्स प्ले कर रहे हैं एक्टर का ध्यान दें, एक्टर को भूल के रोल के कॉन्शियसनेस में अगर इतने फिट हो जाते हैं तो ये परसेप्शन अगर रहता है इट्स जस्ट अ गेम, इट्स जस्ट अ ड्रामा, इट्स जस्ट अ रोल.
1: एंड आई हैव अनदर चॉइस, यू नो, लाइक अगर ठीक है इस सीन में मैं बहुत अच्छा नहीं भी कर पाया फिलहाल, आई हैव अनदर ऑप्शन. अगला सीन जो है उसमें आई कैन डू माई बेस्ट,
0: आई कैन डू, सो इट गिव्स मी दैट फ्लेक्सिबिलिटी. और उससे क्या होगा, जब यहां इस तरह से हम जीवन को देखेंगे तो हम बहुत प्लेफुल हो जाएंगे. यू नो, जैसे हम प्ले करते थे तो उसमें कितना मजा आता था, जीवन में क्यों नहीं वो मजा आ रहा.
1: बिल्कुल, हम थिएटर की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, कितने कितने घंटों हम बैठ पाते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी भी क्रिएटिव चीज में होते हैं
0: वेरी
1: टाइम रुक जाता है.
0: एब्सोल्युटली, इट्स वेरी एंजॉयबल. तो वो क्रिएटिव पर्सपेक्टिव को जीवन की यात्रा में ले आओ. दिस इज ऑल अ ड्रामा, एवरीवन इज एन एक्टर, वी आर ओनली प्लेइंग रोल्स. रोल्स में इतने ना फंस जाएं क्योंकि एक सेकेंड एंड ये रोल खत्म हो जाएगा, एक मिनट लगेगा एंड द रोल कैन फिनिश. उस रोल में इतने नहीं अटैच्ड हो जाओ कि एक्टर ही भूल जाए, तो वो एंजॉय नहीं करेगा. तो रोल प्ले करेंगे क्रिएटिवली, बहुत प्लेफुल हो जाएंगे. प्लेफुल होंगे ना तो वो जो आनंद का अनुभव हम करना चाहते हैं हर स्टेप पे, इट विल बिकम वेरी वेरी
1: इजी.
0: एंड क्रिएटिविटी की जो बेसिक एनर्जी होती है वो है लव, प्यार. सो व्हेन आई एम क्रिएटिव कंटिन्यूअसली, लव एज माय क्वालिटी विल जस्ट फ्लो नेचुरली. यू नो, आप किसी भी आर्टिस्ट को देखो, लव की एनर्जी है तो उनका जो वो आर्ट है वो कितने उस तरह के रूप से निकल कर आता है.

0: experiment and then see if the result works for us.
1: Wonderful. Thank you so much, Sachinani.
0: Om Shanti.
1: कोई सवाल, कोई बात, कोई सजेशन अगर आपके पास है, आपके बहुत से सजेशन हम तक आते हैं जिन्हें हम इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं, तो आपका हम एक खुला निमंत्रण देते हैं. ये मंच आपका है, इस पर आप सीधा संपर्क कर सकते हैं या फिर आप हमें फोन कीजिए या फिर ईमेल कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर है 09993446 09873 666 09799 744 555. हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@pkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही. रोज को देखते हुए ये एक्सपेरिमेंट जो हम आपसे कह रहे हैं उसका अनुभव जरूर ले. आगे आपसे फिर मुलाकात करेंगे. ओम शांति.
2: ब्रह्मा कुमारीज के प्रत्येक सेवा केंद्र पर राजयोग मेडिटेशन निशुल्क सिखाया जाता है. ये कोर्स 7 दिन प्रतिदिन 1 घंटे का है. भारत में बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों में हमारे 8000 से अधिक सेवा केंद्र हैं. राजयोग सीखने के लिए और अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता जानने के लिए संपर्क करें.

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है, आजकल पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज ठीक है, आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टुडे, एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दूं, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होनी चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप एकताइत रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आनंदाचे सुर पुण्याचा माग आपण ऐकत आहेत रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुशियां बांटो।
1: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: जब हम अपने आप को परमिशन देते हैं ना गुस्सा करने की, तो हम दिन में दो चार बार कर देते हैं। अब जितनी बार हम करेंगे वो संस्कार क्या होता जाएगा, वो संस्कार पक्का होता जाएगा। जैसे सपोज किसी को स्मोकिंग की आदत है तो वो कहते हैं दिन में सिर्फ दो, तो जब तक वो दिन में दो लेंगे वो कभी नहीं छूटेगी, क्योंकि जितनी बार की तो वो आदत क्या होती जाएगी, पक्का। लेकिन अगर अब उन्होंने कहा तीन दिन बिल्कुल नहीं, तो वो तीन दिन में उन्होंने उस आदत को कमजोर करना शुरू किया। तो कोई भी आदत को खत्म करने का एक ही तरीका है सिर्फ, कि उसको कर्म में आने नहीं देना। जितनी बार वो आएगी वो सिर्फ क्या होती जाएगी, स्ट्रेंथन होती जाएगी।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुशियां बांटो।

0: पावसाच्या थेंबात दडलेलं जुनं प्रेम, आठवणींचा ओलावा. कधी कधी विरहातलं मौन सुद्धा गाण्यापेक्षा जास्त बोलतं.
1: अश्विनी ये ना, ये ना.
0: जीवन म्हणजे चालत राहणं, गाणं, हसणं आणि स्वप्न पाहणं.
2: वाऱ्यावरती गंध पसरला ना ते मनाचे.
0: आईचा आवाज म्हणजे मनाला शांती मिळवण्याचं संगीत. या सगळ्यांची सांगड कुठे बर घातली जाते? आपल्याच पुणेरी आवाज 107.8 FM वर. आनंदी रहा, आनंद लुटा.
3: ब्रह्मा कुमारी इस श्रृंखला में आज फिर आप सबका हार्दिक स्वागत, नमस्कार. जागरूकता किसके प्रति होनी है? जागरूक हमें अपने प्रति होना है कि हु एम आई, आई द सोल, आई द बॉडी, आई द माइंड. इसके बारे में हम कई बातें कर चुके हैं और ये बात हमारे सामने आती है कि आई द सोल इज सुप्रीम. और उसके बाद जागरूकता अपने पूरे इस सफर में खुद को पहचानने की और किस तरह से जिंदगी जीते हुए एक

0: अच्छी जिंदगी, एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। याद होगा कि पिछली कड़ी में हमने बात की थी डिप्रेशन की, क्यों है इतना प्रेवलेंट आज डिप्रेशन, क्यों आज हर आम आदमी डिप्रेस्ड फील करता है। किसी न किसी मोड़ पर जरूर हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं या हम डिप्रेस्ड हैं। हमने ये जाना था कि डिप्रेशन जो है वो एक ऐसा एहसास है, एक ऐसा एस्पेक्ट है जिससे हमें दो चार होना पड़ सकता है, एक ऐसी सच्चाई है, लेकिन उससे हम अपनी माइंड पावर से यानी कि अपने विचारों से भी बदल सकते हैं और बाहर आ सकते हैं। आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सिम्टम्स होते हैं और किस तरह से प्रोफेशनल्स की मदद की कब जरूरत पड़ सकती है और किस तरह मदद ली जा सकती है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, जो कि खास मुंबई से आए हैं। और डॉक्टर गिरीश पटेल के बारे में ये भी बता दें कि 7 किताबें लिख चुके हैं कि किस तरह से जिंदगी को पॉजिटिव किया जा सकता है। आपका हार्दिक स्वागत।
1: नमस्कार।
0: और हमारे साथ हर बार की तरह हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी, अ वेरी वार्म वेलकम।
2: ओम शांति।
0: ओम शांति। डॉक्टर गिरीश, हमने जहां छोड़ा था वहां एक बार फिर लौटते हैं और डिप्रेशन की हमने बात की थी कि इतना प्रेवलेंट है, इतने सारे लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। एक बार फिर उस डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, ये जानने को थोड़ा और डिटेल में कोशिश करते हैं कि डिप्रेशन है क्या।
1: ये शब्द में ही वह क्या है, वह समय है। जैसे कि भी डिप्रेस्ड, किसी को दबाना, नीचा करना, तो वैसे ही जब व्यक्ति अपने आप को नीचा समझता है, जीवन में इंटरेस्ट खो बैठता है, इस प्रकार की जो स्टेज होती है तब उसको कहेंगे डिप्रेशन। बल्कि कई सिम्टम्स भी है। आज अमेरिकन साइकेट्रिक सोसाइटी ने हर बीमारी के वास्तव में लिस्ट ऑफ सिम्टम्स उन्होंने तैयार किए हैं, और उसमें से कुछ 60-70% अगर सिम्टम्स फिट होते हैं तब उस व्यक्ति को कहेंगे कि ये सचमुच डिप्रेस्ड है।
0: जी बिल्कुल। और सिस्टर शिवानी, अगर हम बात याद करें तो सेल्फ एस्टीम की बात की थी, आज अभी डॉक्टर पटेल कह रहे हैं कि खुद को ही सप्रेस करने लग जाए, खुद को ही कहे कि मुझ में तो कुछ रह ही नहीं गया, मैं तो कर ही नहीं सकता, या पूरा ये डिप्रेशन का एस्पेक्ट आ जाता है। सेल्फ एस्टीम ऐसे में कितनी हेल्प करती है और कहां हम अपनी सेल्फ एस्टीम खो बैठते हैं कि हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं।
2: क्योंकि अपने असली स्वरूप को नहीं पहचाना, अपने आप को नहीं समझा, अपनी शक्तियों को नहीं पहचाना, अपनी विशेषताओं को नहीं जाना, तो एक खालीपन है कि नहीं, मेरे से नहीं हो सकता, या मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। कोई ना कोई ऐसी थॉट इसको ट्रिगर कर देती है, या मैं कितना भी ट्राई करूं मुझे सक्सेस नहीं मिलती है, मेरे से कोई अच्छी तरह से बात नहीं करता, या जो उनके पास है वो मेरे पास नहीं है, यू नो कंपैरिजन, सो ऑल दैट पब्लिक ओपिनियन, लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, दिस कैन लीड टू सप्रेसिंग माय एक्चुअल क्वालिटीज एंड इनेट इंटरनल यू नो द ब्यूटी दैट इज देयर इन आई स्टार्ट सप्रेसिंग इट।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक पूरी तरह से हमें नजर आता है कि डिप्रेशन क्या है बेसिकली, खुद को सप्रेस करने का एक एस्पेक्ट। अगर हम देखें तो आपने बात की थी कि डिफरेंट स्टेजेस होती हैं लाइफ की, वो लाइफ स्टेट की जो बात की जाती है कि यहाँ यहाँ यहाँ यहाँ से चढ़ते हुए कहाँ तक पहुंचते हैं, या वहां से नीचे कहाँ तक आते हैं, एक बार फिर से उनसे दोबारा दो चार हो लेते हैं कि कौन सी है वो स्टेजेस।
1: सबसे पहले तो जो हाईएस्ट स्टेज है वह है कि हमें जीवन में पूरी लाइवलीनेस है, हर क्षण का आप पूरा पूरा आनंद उठा रहे हैं। वो भले कह सकते हैं कि भी करोड़ों में एक व्यक्ति को ही आएगी, परंतु वो एक आइडियल लक्ष्य हो। सेकंड जो स्टेज है कि सचमुच जीवन में हैप्पीनेस है, हाँ, और वो सदा के लिए, वो हैप्पीनेस कम ज्यादा नहीं हो रही है। कभी थर्ड स्टेज है कि भी कभी खुशी कभी गम वाली स्टेज है, कि भी थोड़ा सा एक दो घंटा अच्छा लगता है, फिर से दो घंटा में निराश हो रहा हूं या तो अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। बाद की स्टेज है कि भाई वो जो अच्छा नहीं लगना या दुख का अनुभव करना, कुछ मुझे जीवन में इंटरेस्ट नहीं है, इसी स्टेज वो लंबी चलती है, दिन में देखो 8 घंटा भी इसी स्टेज चली, 3-4 घंटे ही आपको अच्छा लगा। और फिर है कि सचमुच व्यक्ति डिप्रेस्ड फील करता है सदा के लिए, अच्छा नहीं लगता। जो जहां पर हम कहेंगे क्लिनिकली आइडेंटिफाइबल यहां होता है, साइकेट्रिस्ट के पास भी आप तब ही जाते हो, नहीं तो जो आगे की स्टेजेस है उसके तो आज हमने जीवन का एक समझ लिया है कि हमारे जीवन का हिस्सा है।
2: लेकिन जो मेरे को लगता है जो केमिकल इम्बैलेंस की उस दिन बात हुई, ठीक है, तो वो इसमें से कौन सी स्टेज पर हो रहा होगा या शुरू से है?
1: नहीं, शुरू से नहीं, थर्ड स्टेज कहेंगे कि भी थर्ड स्टेज,
0: कभी खुशी कभी गम
1: वाली स्टेज, तब शुरुआत हो गई आपके केमिकल इंबैलेंस।
2: तो मेजोरिटी इसका मतलब देन
0: दिस इज अगेन अ मिथ ना, जो हम रॉन्ग बिलीफ पर जीते आ रहे हैं कि हम उस स्टेज पर तो पहुंच ही नहीं सकते कि हर क्षण हमें खुशी मिलेगी, हर क्षण हम सुखी हैं, ये स्टेज तो हमारी कभी हो ही नहीं सकती, ये हम सदियों से सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं।
1: सचमुच हो सकती है, आज राजयोग भी यही सिखा।
0: नहीं बिल्कुल,

0: इतनी बड़ी गलत फहमी है जिसे हम आज बाहर निकल सकते हैं कि हर क्षण हम सुख का अनुभव कर सकते हैं। तो क्या ये स्थित प्रज्ञ की जो बात की जाती है टोटली अनअफेक्टेड है हमारे आसपास क्या हो रहा है, ये है वो स्टेज या फिर ये कोई और स्टेज?
1: वो स्टेज नहीं, बोले स्थित प्रज्ञ होना अच्छा है कि उससे वह स्टेज बन सकती है, परंतु यह स्टेज एक नेचुरल भी आएगी। अगर हम एसेंस समझ ले कि मेरे में एक दिव्य चेतना है और उसका नेचर ही है सुख, मैं जो आत्मा हूँ वह आत्मा ही सुख स्वरूप है, मैं आत्मा ही सच्चित आनंद स्वरूप हूँ, नहीं वो एक मेरी पर्सनालिटी है, ये मेरा एक स्वभाव है,
2: इनहेरेंट कुछ चीज है जो इनहेरेंट है। अब सपोज डॉक्टर साहब एक डॉक्टर है, अब आप कहें बाहर चाहे कुछ भी हो जाए डॉक्टर तो डॉक्टर ही रहेंगे।
1: हाँ जी,
2: अगर सारी दुनिया भी कहे कि नहीं ये डॉक्टर नहीं है, इवन देन ही विल नॉट से कि नहीं मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बिकॉज अंदर ये पता है कि मैं डॉक्टर हूँ, सो इट इज इनहेरेंट, वो है ऑलरेडी। अब ये एक एक्सटर्नल क्वालिफिकेशन है जो धारण की और इसलिए याद रहती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन कुछ चीजें हैं जो इनहेरेंट है, वो तो और भी अच्छी याद रहनी चाहिए, लेकिन वो भूल गई है। जैसे ही वो वापस जागृत होगी, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा मैं हूँ ही सुख स्वरूप, तो अब बाहर कुछ भी हो जाए, माई नेचुरल नेचर कैन नॉट गेट अफेक्टेड। इसका मतलब ये नहीं है कि यू नो आई एम इम्यून या आई डोंट कंसर्न फॉर पीपल, लेकिन वो उस स्टेज को डिस्टर्ब करे बिना भी हम लोगों को हेल्प कर सकते,
0: मदद कर सकते हैं और पूरा उन चीजों को अपना एंजॉय भी कर सकते हैं। हमने उससे एंजॉयमेंट और सुख की बात की, एक्साइटमेंट की बात की थी, और कहीं ना कहीं यू नो इनर्ट जो है,
2: और हर्ट और कंपैशन,
0: या
2: दोनों एक है, हम दूसरे के दुख में हम भी दुखी हो जाते हैं, और एक है हम अपनी सुख की स्टेज को अगर मेंटेन करें तो देन हम दूसरे को सहयोग दे सकते हैं,
0: उसकी ज्यादा बेहतर, ज्यादा लॉजिकल
2: और ज्यादा अच्छी तरह से।
1: एक बात बहुत अच्छी हाल है, जब कई महिलाएं मेरे पास आती है, जैसे हम देखते हैं सास और बहू का प्रॉब्लम है, तो नहीं कंप्लेन मेरी सास ऐसी ये है ये कर रही है, तो मैं उनको सब हमेशा ये कहता हूँ दो काम करो, देखो एक तो आप अपने नजरिए को बदलो, एटीट्यूड को बदलो, एंड सेकंड इज एंजॉय द म्यूजिक, एंजॉय अदर थिंग, स्टार्ट एंजॉयिंग ऑल्सो व्हाट शी इज डूइंग,
0: एंजॉय द म्यूजिक ऑफ व्हाट शी इज
1: डूइंग, व्हाट टिक टिक करती है ना, कहते आके सारा दिन टिक टिक करती रहती है।
2: बट वन थॉट विच आई हैड जो कहा कि केमिकल इम्बैलेंस, तो इसका मतलब हम रॉन्ग थिंकिंग करते हैं तब वो केमिकल इम्बैलेंस होता है, या केमिकल इम्बैलेंस हो रहा है इसलिए हम रॉन्ग थिंकिंग कर रहे हैं?
1: दोनों सही है।
0: ओके,
1: अधिकतर तो ये कहेंगे कि रॉन्ग थिंकिंग कर रहे हैं इसलिए केमिकल इम्बैलेंस हो रहा है। अभी दूसरा ये भी है कि जहाँ पर जीन्स प्रीडोमिनेंट है, तो भी परिस्थिति भी ऐसी नहीं, व्यक्ति भी कुछ भी नेगेटिव नहीं सोच रहा है, फिर भी अचानक डाउन फील करता है, अचानक डिप्रेस्ड हो जाता है, तो वहाँ कहेंगे कि प्रीडोमिनेंट केमिकल इम्बैलेंस का रोल है।
0: ओके,
2: और फिर क्या उससे नेचुरली नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे?
1: या तो उसके लिए मुश्किल होगा, उस स्टेज में पॉजिटिव सोचने लगे ज्यादा मेहनत, जैसे भी प्लेन पर चलना इजी है, पहाड़ी पर ऊपर चलने के लिए आपको फोर्स लगाना।
0: तो अब हम उन्हीं सिम्टम्स पर आते हैं, यू नो द नेक्स्ट स्टेज बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, हमने लाइफ स्टेज पे तो देख लिया वो जब कभी खुशी कभी गम है, कभी कभी खुश हो जाता हूँ, कभी कभी दुखी हो जाता हूँ कुछ कुछ घंटे के गैप के बाद, उसके बाद सिम्टम्स क्या नजर आए कि हमें सोचना चाहिए कि डिप्रेशन सीप इन कर गया?
1: हाँ जी, नहीं बहुत सारे डिप्रेशन है, काफी जितना संभव होगा आपको मैं बताता हूँ कि एक तो बात यह है कि भी व्यक्ति को ये होगा कि चलो जो ऑफिस नहीं जाना है, घर में ही पड़ा रहूं, कोई बीमारी नहीं है, और एक जो बात देखी गई कि भी अच्छे से स्नान करने की दिल नहीं होगी, अच्छे कपड़े नहीं पहनेगा, है कैसे भी कपड़े पहन लेगा, शेविंग करने का अच्छा नहीं लगेगा, नेल्स कट नहीं करेगा, ऐसी जो सिंपल चीजें हम आमतौर पर करते हैं, भले जीवन में समस्याएं हैं फिर भी एक सामान्य व्यक्ति करता है,
0: लेकिन एक दिन करें तो चलेगा। अगर ज्यादा दिन चेक करेंगे तब, एक दिन तो मैंने कई लोगों को देखा ये करते हुए कि एक दिन वो कहते हैं कि संडे को हर चीज की छुट्टी,
1: एक दिन ठीक ये वो तो भी इसलिए ये नहीं कि आपको इच्छा नहीं है, परंतु संडे के दिन आप फ्रीडम लेना चाहते कि भी आराम से बोले साढ़े नौ बजे
2: उठे रूटीन से ब्रेक करने,
0: कितने दिन तक अगर वो करते रहे तो डिप्रेशन का शिकार,
1: वो तो पांच छह दिन भी कहेंगे, एक दिन जो संडे को आप कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि आप रिलैक्स होना चाहते हैं, नो यू वॉन्ट टू जस्ट लेट गो थिंग्स, परंतु ऐसा अगर दो तीन भी रहे और आपको दिल नहीं हो रहा है तो उसका मतलब है कि भी वो डिप्रेशन की सचमुच शुरुआत है, हो गई है। और कुछ इम्पोर्टेंट सिम्टम्स है कि भी खाने का दिल नहीं होता,

0: आ रहा है और साथ में और भी सिम्टम्स है। हाँ, कुछ फिजिकल डिजीज में भी लॉस ऑफ वेट हो, जैसे डायबिटीज वाले भी वेट को लूज करते हैं, दैट इज डिफरेंट। और सिम्टम्स के साथ उसको जोड़ना होगा तो सचमुच पता चलेगा। और एक पिक्यूलियर सिम्टम्स है कि जो कई बार फैमिली फिजिशियन भी मिस कर जाते हैं, वह एक्सेसिव स्लीप।
1: अच्छा, ज्यादा सोना,
0: ज्यादा सोना भी कहते भी बच्चा सोता ही जा रहा है, 11 बजे उठता है सवेरे, बड़े भी है उनको लगता है सवेरे 9 बजे अभी भी थकावट है, अभी भी सो जाऊं। दैट एक्सेस ऑफ स्लीप ऑल्सो कैन बी अ सिम्टम ऑफ। और एक पावरफुल जो सिम्टम है वह है कि जीवन जीने की इच्छा खो देना। कभी एक शुरुआत में होता है कि मर जाऊं तो अच्छा है, कल खुद बोलेगा नहीं परंतु कोई पूछेगा तो कहेंगे हाँ जीवन अच्छा नहीं है। दूसरा एक है व्यक्ति खुद बोलेगा कि अभी भगवान ले ले तो अच्छी बात है। उसके आगे की स्टेज है कि व्यक्ति प्लान करने लगता है कि भी कैसे मरूं, ट्रेन के नीचे गिर के मरूं, जहर पी के मरूं, क्या करूं तो मैं मर जाऊं। अगर प्लानिंग की शुरुआत होगी तो देन स्टिल यू आर इन अ डीपर डिप्रेशन। एंड दोज हु हैव कमिटेड सुसाइड दे आर रियली एक्यूटली डिप्रेस्ड।
1: यहाँ ये एक बहुत क्लियर बात हमें ये सामने नजर आ रही है कि जो सिम्टम्स हैं इन्हें पकड़ लेना चाहिए हमें खुद भी, और अगर हम खुद नहीं पकड़ पा रहे तो हमारे अपने क्या समझ सकते हैं इस बात
0: को। बिल्कुल है ना, वो अपनों फैमिली मेंबर्स को ही देखना चाहिए। कई बार फैमिली मेंबर्स क्या कहते हैं, उसको ब्लेम करते हैं।
1: एक ईमेल भी हमारे पास आया है शिवानी डॉक्टर साहब की, ये अल्पना जी ने अपनी बेटी के लिए भेजा है कि ये 16 इयर्स की इनकी बेटी है, 12th में पढ़ रही है और 10th में भी रिजल्ट बहुत अच्छे थे, 10th में टॉपर थी, लेकिन 11th में आते आते सडनली शी सेज की शी हैज लॉस्ट इंटरेस्ट इन हर स्टडीज, और अब वो टोटली रिबेल भी हो गई है, लेकिन म्यूजिक में चली जाती है, कभी कभी अपने फ्रेंड्स के पास चली जाती है, और इतना हम प्रेशर नहीं भी डाल रहे, लेकिन उसके बावजूद भी वो पढ़ने में इंटरेस्ट खोती जा रही है। और कई बार ये कह रही है कि मैंने उसे देखा है कि वो, मैंने बात करने की कोशिश भी की है कि किससे प्यार तो नहीं हो गया या कुछ ऐसी बात तो नहीं होगी, वो भी कोई ऐसी बात नहीं है, तो कहीं मेरी बेटी डिप्रेशन में तो नहीं चली गई है, तो क्या ये कोई ऐसी बात पता चलती है?
0: काफी है वो इसी प्रकार की, और भी थोड़ा अच्छे से उसको केस को स्टडी करना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत सारी सिम्टम्स है यहाँ।
1: एक सडनली जो है पढ़ाई से इंटरेस्ट हो जाना,
0: अगर ये सडन हुआ और अगर यही बात एग्जाम के दौरान हुई है, समझो एग्जाम के 15 दिन एक मास पहले, तो फिर एग्जामिनेशन फोबिया भी कॉज
1: नहीं, शी सेज कि 10th में शी वाज अ टॉपर बट 11th तक आते आते शी हैज लॉस्ट इंटरेस्ट।
0: एंड इफ इट हैज हैपेंड फ्रॉम द स्टार्टिंग, फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, कि जब भी कोई एग्जामिनेशन फोबिया का सवाल ही नहीं है, तो फिर वो डिप्रेशन की संभावना है,
1: तो ऐसे
0: और भी थोड़ा स्टडी करना चाहिए।
1: कैसे कैसे वो हेल्प कर सकती हैं अपनी बेटी की?
0: एक तो भी बहुत अच्छा है कि उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया, कई माता पिता इस चीज को ऑब्जर्व ही नहीं करते, उल्टा ब्लेम करते कई बार कि भी बच्चा आलसी हो गया है, उसने जिसे और कहीं उसका मूड लग गया है, कई बार तो भी सच में ड्रग्स लेने लगे, सचमुच वो डिप्रेस्ड हो सकते हैं, तो जो आइडेंटिफाई किया वो बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ पर आवश्यकता है कि भी प्रोफेशनल को भी कंसल्ट करे एक बार, तब है ना एग्जैक्ट वो बात को समझ में आएगी, और एक्सपर्ट सचमुच बता सकते हैं, कई टेस्ट भी आती है इसकी।
1: स्कूल काउंसलर जैसे में कितना हेल्प कर सकते हैं? स्कूल काउंसलर से बातचीत अगर की जाए, बच्चा अगर बातचीत करने की हिम्मत रख पाए, तो कितना कहां तक उनकी मदद हो सकती है?
2: आई थिंक काउंसलर बहुत अच्छी मदद कर सकेंगे, लेकिन उससे अच्छा भी अगर ये मदर,
1: हाँ, इफ शी कैन टॉक,
2: मदर अगर बात करती है, एंड इसीलिए वो एक रिलेशनशिप पहले से कैसे बना हुआ था, अगर वो डॉटर उतनी कंफर्टेबल है कि वो जिस दौर से गुजर रही है अगर वो शेयर कर पाए, देन द मदर विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट
1: रोल। एक्चुअली पर किस एज की ये बात करें, उसमें रिबेल भी हो चुका होता है बच्चा, तो कहीं ना कहीं मदर और डॉटर के बीच में भी कई बार वो कोल्डनेस आ चुकी होती है।
2: ट्रू,
1: मतलब देखा ये गया बिकॉज शी इज अ रिबेल, द वे शी इज कमिंग आउट ऑल्सो, कि वो इग्नोर करती है चीजों को, तो मदर भी अप्रोच नहीं कर पा रही, तो वो
0: प्रोफेशनल काउंसिलर कैन डेफिनेटली, शुड बी मोर प्रोफेशनल इनफैक्ट, ना आज ना काउंसिलर, एनीबॉडी कैन बी अ काउंसिलर।
1: अंडरलाइंड हमने बात की थी, आपने एक बार कहा था कि अंडरलाइंड कुछ वो बातें होती हैं, तो अंडरलाइंड वजहें क्या हो सकती हैं
0: इस प्रकार की स्टेज की? हाँ हाँ, अभी ये जो यूथ में अगर हम इस बात को स्टडी करते हैं, तो यूथ में तो एक नो लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम कैन बी अ कॉज, क्योंकि ये एक स्टेज है कि जिसमें बॉडी ग्रो हो रही है, वो बच्चे भी नहीं है शायद एडल्ट भी नहीं है, तो जो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, ऑर्गन्स आर ऑल्सो गेटिंग ट्रांसफॉर्म, तो तब कई यूथ कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो कंफ्यूजन में उनको सही आंसर नहीं मिले तो भी डिप्रेशन होने की एक बहुत बड़ी संभावना।
1: और आज के वक्त में जबकि

0: अवेयरनेस है, मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो गई है, कहीं ना कहीं नॉलेज नहीं है.
1: एंड आई थिंक यही वो फेज है जहां हम वो आइडेंटिटी क्राइसिस से भी गुजरते हैं. यूथ ये वाले एडोलेसेंट पीरियड में फिजिकल चेंजेस भी हो रहे हैं, लेकिन वो इंटरनल जो चेंजेस हैं, फिर से कॉलेज स्कूल लाइफ तक फिर भी एक प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट था, लेकिन कॉलेज में आने के बाद कंपैरिजन, इनसिक्योरिटी, दूसरों की तरह बनने की कोशिश, किसी फिल्म स्टार की तरह यू नो, और फिजिकल ब्यूटी पर बहुत ज्यादा अटेंशन.
0: तो ये भी रॉन्ग मिथ्स हो सकती है क्या कि एडोलेसेंस में ऐसा होता ही है कि बच्चे रिबेल होते ही हैं या आइडेंटिटी क्राइसिस होता ही है? क्या ये भी एक रॉन्ग मिथ है या
1: होता ही है? नहीं है, बट उनके लिए सिचुएशंस वैसी बनती जा रही हैं. यू नो, एक तो वो पेरेंट्स से थोड़ा सा विड्रॉ कर जाते हैं क्योंकि लगता है ये वो पीरियड है जहां हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, या कुछ एक पर्सनल रिलेशनशिप्स में इस तरह से फंस जाते हैं जो अभी अपने पेरेंट्स के साथ नहीं शेयर कर पाते. ये वो भी पीरियड है जब पेरेंट्स बहुत ओवर प्रोटेक्टिव होने लग जाते हैं, इंटरफियरिंग ज्यादा लगने लगते हैं, करने तो नहीं लेकिन शायद वो लगने बहुत लगते हैं. दिस इज दैट पीरियड जहां आप अपनी फ्रीडम शायद बहुत ज्यादा पसंद करने लगते हैं. तो बहुत सारे फैक्टर्स जब इकट्ठे प्ले करते हैं, और उस टाइम पर अगर आपने वो इंटरनल ब्यूटी पर नहीं ध्यान दिया तो देन दीज फैक्टर्स कैन यू नो जस्ट वे यू अवे एंड आपको वो दूसरी तरफ फिर ले जाता है.
2: करंट सिवानी में मैं बहुत समझता हूँ कि आज पेरेंट्स में जो सबसे बड़ी गलती हुई है क्योंकि सब कुछ दे देते हैं, पैसा दे दिया,
1: बहुत ज्यादा
2: गिव टाइम,
0: और एक्चुअली उनके पास कुछ बचता ही नहीं कि खुद अचीव करने के लिए. बच्चों के पास भी कुछ नहीं बचता कि वो अचीव करें. दे कांट इवन लुक अप टू कि अगर मैं ऐसा परफॉर्म करूंगा तो मुझे ये मिलेगा. उनके कहते ही तो मिल जाती है चीज़.
2: हाँ, वो चीजें मिल जाती
1: है. लेकिन जो डॉक्टर साहब ने जो
2: बता रहा हूँ, और मेरी एक नहीं सचमुच राय भी है कि भले आप कम कमाओ कोई बात नहीं है, कम लग्जरीज लो, आपका फ्लैट छोटा होगा कोई बात नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए कम से कम एक घंटा रोज दो.
1: और अपने लिए
2: भी अपने लिए तो देना है, अपने लिए देना है, लेकिन बच्चों के लिए भी कम से कहीं से भी निकालना है.
0: एक्चुअली ये पूरा सफर जो हम तय कर रहे हैं उसमें एक बात सामने ये आती है कि अभी तक तो हम ये जानते आए थे कि हमें लोगों के लिए काम करना चाहिए, लेकिन एक बात जो मुझे क्लियर लगती जा रही है वो ये कि सबसे इम्पोर्टेंट मैं हूँ. यू नो, आई हैव टू बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, क्योंकि उसके ऊपर काम नहीं किया गया है. सबसे कम काम हमने अपने ऊपर किया है और बाहर काम हमने सबसे ज्यादा.
1: क्योंकि जैसे इस केस में भी अगर वो मदर अपनी बेटी को हेल्प करना चाहते हैं तो वो खुद एक बहुत अच्छी स्टेट ऑफ माइंड में होने चाहिए. यू नो, बच्चे को डिप्रेशन से निकालना, पेरेंट खुद स्टेट ऑफ माइंड में है तो वो बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे उनके लिए.
2: जो आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो अपने लिए भी, लेकिन हम शरीर के लिए समय निकालते हैं, आत्मा के लिए नहीं निकालते. इनर डेवलपमेंट ठीक है ना, आंतरिक जो उन्नति की जरूरत है कि सदा काल के लिए चलेगी.
0: अच्छा, आज अभी जब हम बात ही कर रहे हैं डॉक्टर साहब, आज के यूथ की बात कर रहे हैं तो बहुत कुछ अवेयरनेस की बात करी. वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस इतने ज्यादा हैं आज की, वो बच्चा जो है वो पूरी तरह से कंफ्यूज है कि क्या सच्चाई है और क्या बाहर से मैंने लिया है. तो ऐसे में जहां हम ये देख रहे हैं कि हम तो पूरी तरह से इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं, अगर हम पश्चिम की तरफ देखते हैं तो वहां भारतीय जो पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस है या पूरी हमारी फिलॉसफी है उसे अपनाया जा रहा है, क्योंकि वहां पे भी कहीं इतना सब कुछ होने के बाद खोखलापन है. तो ये जो टू वे कम्युनिकेशन चल रहा है कि वहां का सब कुछ है, जो नेगेटिविटी है हम ले रहे हैं, हमारी जो पुरानी पॉजिटिविटी है वहां जा रही है, तो इसका क्या आगे आस्पेक्ट नजर आ रहा है?
2: आपने कहा तो ये बात मुझे एक याद आई कि कहीं अखबार में पढ़ा था कि भूटान के किंग को किसी ने पूछा कि आपके वहां पर जो पर कैपिटा इनकम है वो कम है, तो उन्होंने कहा कि मुझे इसकी ज्यादा फिक्र नहीं है कि भले पर कैपिटा इनकम कम हो, लेकिन मुझे इंटरेस्ट है कि पर कैपिटा हैप्पीनेस कितनी है.
0: बहुत इम्पोर्टेंट
2: है, तो सभी को यह देखना चाहिए. वेस्टर्न कंट्रीज में भी अगर जो रूलर्स है वही यह सोचे कि भी पर कैपिटा हैप्पीनेस को मुझे सचमुच बढ़ाना.
0: लेकिन अगर हम वहां देखें तो वहां अब अध्यात्म को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाने लग गई है. द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी या इस तरह का पूरा आस्पेक्ट जो है इतने ज्यादा पैमाने पर नजर आ रहा है. क्यों?
2: नो, पर फिर भी है ना, वो इतना ज्यादा नहीं है. सच देखेंगे ना तो जो ऐसी किताबें पढ़ते हैं, ऐसे प्रोग्राम, दे आर लिमिटेड पीपल, मे बी 1%, 2%, और उसी से भले वो तो बेस्ट सेलर किताब भी बन जाती है अगर 1% भी पढ़ने लगे तो. परंतु ओवरऑल अगर हम अवेयरनेस देखें तो और लाने की जरूरत है. लोगों को ये सचमुच बताया जाए कि आप अपनी जो अंदर की खुशी है उसको प्रायोरिटी दीजिए.
0: तो हम डिप्रेशन पे हैं डॉक्टर साहब, की डिप्रेशन के उस आस्पेक्ट पे बात कर रहे थे हम जब बच्चों पे आ गए थे.
2: हाँ जी.
0: हर वर्ग में, हर उम्र में डिप्रेशन नजर आ रहा है. केमिकल चेंजेस तब हो रहे थे जब

0: खुशी कभी कम वाले स्टेज पर थे कि थोड़ा थोड़ा वक्त हम खुश थे, थोड़े थोड़ा हम सुखी थे, लेकिन वो स्टेज वो है जहां हम डॉक्टर के पास जाने की अभी जरूरत नहीं है, स्कूल के काउंसलर से बात चल जाएगी या अपने ही किसी परिवार वालों से बात चल जाएगी। आज उस सीवियरिटी की बात करते हैं, जब डिप्रेशन इतना बढ़ जाए कि हमारे अपने हाथ में ना रहे, जब पूरा कंट्रोल खो दें हम, अब कितने सीवियर केसेस हमने देखे हैं, चाहे वो वेस्ट में हो, कई बार भारत में भी देखने को आ रहे हैं, जो डिप्रेशन का शिकार होके वायलेंस पर उतर आते हैं। सो ऐसे में पहले ही कैसे रोका जा सकता है?
1: ये भी बात बहुत ही अच्छी है कि क्या सीवियर चीज होती है वो हमें कई बार देखना चाहिए। अभी सूरत में ही हुआ था कि भी थोड़ा सा डिप्रेस था, सब बच्चों को भी नींद की गोलियां दे दी, खुद सुसाइड कर दिया, सारा परिवार खत्म हो गया।
0: मतलब क्या हमने जिंदगी को इतना छोटा बना लिया है, पूरी तरह से बात
2: होपलेसनेस आ गई है ना। तो जैसे कहा, जीवन जीने का उत्साह नहीं रह गया, और जीवन जीने की शक्ति जो चाहिए, पावर टू फेस द वर्ल्ड, वो भी नहीं है
1: इसमें। तो नहीं, हमारे दर्शकों को ये समझने की आवश्यकता है सचमुच कि भी इस चीज से क्या भयानक परिणाम हो सकता है शुरू में, जैसे नहीं बढ़ आगे बढ़ रहा है उसको हम रोक सकते हैं। तो डिप्रेशन की जो स्टेज शुरुआत हुई उसको रोको। नहीं, अमेरिका में कुछ समय पहले मैंने देखा था कि जो यूथ ने गन लेके आया और कहीं 25-30 को खत्म कर दिया, देवर डिप्रेस्ड। हम समझते नहीं, कई बार हमें ना उसको कहीं और कॉजेज ढूंढने लगते हैं, लेकिन इन बहुत सारी चीजों में कॉज है वो डिप्रेशन। कई बार ऐसा भी हुआ कि मां ने बच्चों को मार दिया, वो डिप्रेशन की स्टेज थी एक्चुअली।
0: अगेन होपलेसनेस भी था ना, बिल्कुल कुछ नहीं नजर आ रहा था, रोशनी नहीं नजर आ रही थी। तो वो रोशनी जो है वो हमें कहाँ से मिल सकती है, ये हम आपसे जानते हैं इस वक्त।
2: उसी में अगर हम पहले से ही, ये तो एक बहुत सिवियर स्टेज पर पहुंच गए, तो आई थिंक इस समय तो मेडिकल हेल्प की जरूरत है, वो ट्रीटमेंट और मेडिसिन की बहुत ज्यादा जरूरत है, कि उसके बिना, क्योंकि शायद इस टाइम सेल्फ काउंसलिंग पॉसिबल भी नहीं है, हमें शायद अवेयरनेस भी नहीं है कि हम उस दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन उससे पहले, जैसे समय की बात की, थोड़ा समय अगर हम अपने लिए निकालना शुरू करें, थोड़ा अपने प्रायोरिटीज को देखना शुरू करें। अब ये डॉक्टर साहब ने कहा कि भले छोटा फ्लैट हो, बट हाउ मेनी पीपल विल अग्री कि भले छोटा फ्लैट हो लेकिन अपने लिए समय निकाले। एवरीबडी वॉन्ट्स द बिगेस्ट, बिगेस्ट घर, बिगेस्ट गाड़ी, बिगेस्ट एवरीथिंग, अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी,
0: और ये भी कि दूसरों का भी हाल ले लें।
2: हाँ, तो वो कंपैरिजन, कंपटीशन, तो वो अगर जीवन की यात्रा के दौरान हम इतना जोर से भाग रहे हैं इस यात्रा में कि हमें रुक कर चेक करने के लिए भी टाइम नहीं है कि हम सही दिशा पर हैं कि नहीं, बिकॉज वी जस्ट वॉन्ट टू रन। आई थिंक स्टॉप एंड पॉज, एम आई, दिस इज वॉट आई वॉन्ट, क्या मेरे जीवन का सिर्फ यही उद्देश्य रह गया है कि मुझे पैसे से खरीदी जाने वाली हर चीज चाहिए, तो वो हो जाएगा, लेकिन वो सब चीज भी खुशी के लिए चाहिए थी, तो क्या वो खुशी भी उतनी ही मात्रा में आ रही है। आई थिंक बीच में अगर एक बार भी रुक कर ये चेक किया जाए, और अगर हम पाते हैं कि नहीं ये थोड़ा कम हो रहा है, वील बी एबल टू चेंज इट, वील डेफिनेटली।
0: यू सेड स्टॉप एंड पॉज, लेकिन वो स्टॉप एंड पॉज भी हम तभी करेंगे जब अंदर से कहीं उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे हम। एक्चुअली हम अभी तक तो अपने तरीके ढूंढ लेते हैं, हम में से हर कोई, जैसे आपने भी लाइफ की कई स्टेजेस बताई, उसमें हम अभी तक अपनी उस खुशी को, कि चार घंटे अगर मैं खुश हूं तो चार घंटे दुखी हो भी जाता हूं, तो मैं कोई ना कोई बहाना भी ढूंढ लेता हूं, तरीका ढूंढ लेता हूं,
2: क्योंकि तब हमने बहाना बाहर को दिया हुआ है ना, तो हम जस्टिफाई कर लेते हैं अपने दुख को। लेकिन जहां वो बिलीफ सिस्टम को थोड़ा सा चेंज किया कि बाहर मेरा दुख का कारण नहीं है, मेरे अपने अंदर है, तो अगर वो चार घंटे नहीं, चार मिनट के लिए भी आता है, आई विल हैव टू स्टॉप एंड चेंज। अगर वो बाहर तक था तो वो चार घंटे आ जाएगा, कल 8 घंटे आएगा, when it's inside then I can change faster।
0: बिल्कुल। और अब डॉक्टर साहब ये बात करते हैं कि ये तो पूरे एस्पेक्ट हुए कि हमें किस तरह से अपने मेंटली अपने आप को, अगर हम समझ लें इस बात तक आ जाएं कि दुख भी आ रहा है, वो चार घंटे जो दुख आ रहा है वो बाहर से अगर आ रहा है, तो हमें इंटरनली अपने आप को रियलाइज करवाना है कि वॉट आई वॉन्ट, यू नो, एंड विल आई गिव द राइट टू समबडी एल्स टू ब्रिंग अनहैप्पीनेस टू मी। एक वो स्टेज जब डॉक्टर की जरूरत पड़ जाती
1: है,
0: जब कोई सेल्फ काउंसलिंग, कोई किसी की बात, आवाज ही नहीं पहुंच रही, क्या करना पड़ता?
1: तो दो चीजें, जो शिवानी बेन ने दवाइयों की बात की, उतना ही इक्वली इफेक्टिव है साइकोथेरेपी, पर भारत में शायद इतना पॉपुलर नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास धर्म की आदि बातें भी, लेकिन विदेशों में सचमुच रिसर्च स्टडीज भी हुई। कई बार साइकेट्रिस्ट भी यही कहते हैं कि भाई दवाइयां ही लो बस, तो दवाइयों से डेफिनेटली फायदा होता है, लेनी भी चाहिए, परंतु अब स्टडीज में उतनी ही इफेक्टिव है साइकोथेरेपी। इसको कहा गया है बिहेवियर कॉग्निटिव थेरेपी।
0: साइकोथेरेपी में बेसिकली क्या

0: किया जाता है।
1: ऐसे बहुत प्रकार की साइकोथेरेपी है, जैसे फ्रॉइड से इसकी शुरुआत हुई वास्तव में, सेगमेंट फ्रॉइड ने सारी सिस्टम डेवलप की साइको एनालिसिस की। उसके बाद उनके ही शिष्य कहेंगे यंग थे कि जिन्होंने एनालिटिक साइकोलॉजी बनाई। ऐसे ही दूसरी एक है बिहेवियर थेरेपी, परंतु वर्तमान समय में कि जो बहुत प्रैक्टिकल भी है, व्यक्ति अपने आप भी बहुत कुछ कर सकता है, वह है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निशन मतलब कि जो आप फील करते हैं, जो आप सोचते हैं, उसके द्वारा अपनी बिहेवियर में परिवर्तन लाओ। और इस पर अमरीका में तो लाखों डॉलर खर्चे किए गए ये देखने के लिए कि वो कितनी इफेक्टिव है। और ये देखा गया कि एमिप्रामाइन नाम की एक मेडिसिन है, कि जो बेसिक मेडिसिन है डिप्रेशन के लिए, एमिप्रामाइन जितना मदद करती है उतना ही ये बिहेवियर कॉग्निटिव थेरेपी हेल्प करती है। दैट्स एन पावरफुल रिसर्च।
0: तो बिल्कुल, अब ये जो पूरी थेरेपीज हैं जो कि काउंसलिंग का भी एक हिस्सा हो सकती है और पूरे रिसर्च पे बेस्ड है, इसके ऊपर बातचीत हम डिटेल में अगली कड़ी में जरूर करेंगे कि डिप्रेशन को कौन कौन से सीवियर डिप्रेशंस में ये मदद कर सकती है और किस तरह से बिना दवाई के भी। हम ये कोशिश ये कर रहे हैं कि ड्रगलेस थेरेपीज के बारे में बात करें, तो इन थेरेपीज को अपना के हम जो सीवियर डिप्रेशन के केसेस हैं उनको भी लाभ दिलवा सकते हैं। और उसके अलावा जो आम जिंदगी में जो है, किस तरह से इस तरह का जो पूरा दिनचर्या जीने का हम अपना एक एस्पेक्ट ले रहे हैं, उससे हम डिप्रेशन से ही दूर रह सकते हैं। तो फिलहाल आज आपके साथ बातचीत रही डॉक्टर गिरीश पटेल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आपको भी बता दें कि आज हमने जिन छोटे छोटे मुद्दों पर बातचीत की है वो क्या एस्पेक्ट्स हैं, उनको एक बार फिर नक्शल में ले लेते हैं कि कई स्टेजेस में हम जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन जब ये लगने लगे कि कभी खुशी है कभी गम है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं डिप्रेशन हमारे आसपास आ चुका है, सीप इन कर रहा है। और जब उस स्टेज पर पहुंच जाए कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा, हम वो तरीके तलाशने लगते हैं कि किस तरह से हम सुसाइड करें या किस तरह से जीवन को खत्म कर सकते हैं, ये वो स्टेज है जहां हमें अब कोई भी इंतजार नहीं करना है, प्रोफेशनल हेल्प ले लेनी है। इसके अलावा और भी कई बातें हैं जो डिप्रेशन से जुड़ी हैं, जो आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे, कई ईमेल्स भी हमारे पास आ रहे हैं, अगली कड़ी में हम उन्हें जरूर शामिल करेंगे।

तिरुपनी आवाज 107.9 पर आ रहा है एक अनोखा आध्यात्मिक सफर, आंतरिक दिव्यता का आह्वान। जानिए कैसे देवी दुर्गा और लक्ष्मी हमारे भीतर की शक्तियों का प्रतीक है, कैसे जागरण, व्रत और दीपक जलाना हमें आत्मा चेतना की ओर ले जाते हैं, और कैसे रास गरबा हमें सिखाते हैं। जीवन में सामंजस्य और सहयोग। नवरात्रि के नौ दिन रोज सुबह 11 बजे जुड़िए आरजे संजय के साथ सिर्फ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। अंतरिक्ष दिव्यता का आह्वान।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: आदत बनी कैसे? करते करते करते करते आदत बनी। अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, जैसे किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिढ़ के बोलना है, कुछ भी हुआ चिढ़ के बोलना है। किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना, उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना है। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माई चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज़।

0: आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
1: मनन से मनोबल तक, आस्था से अस्तित्व तक, पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं। वेलकम सिस्टर।
3: ओम शांति।
2: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन।
3: थैंक यू।
2: आप बात कर रहे थे लास्ट टाइम अबाउट द क्वालिटीज ऑफ सोल, तो सारी क्वालिटीज का इफेक्ट हमारी बातचीत में, घर के माहौल में,
3: एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट अंदर फीलिंग में। इवन इफ यू जस्ट टेक द वन लाइन, आई एम अ प्योर सोल, जस्ट क्रिएट दिस थॉट, अंदर कैसा फील होगा? क्योंकि जब हमें अपने अंदर आई एम अ प्योर सोल ये याद रहेगा, तो दूसरों के अंदर भी प्योरिटी दिखाई देगी। लेकिन आई एम एन एंग्री सोल, तो अंदर ये फीलिंग कैसे आएगी? फिर बोल, फिर व्यवहार, फिर कर्म, फिर दूसरे के प्रति नजरिया, वो तो फिर सेकेंड स्टेजेस है। जस्ट हाउ डू वी फील इनसाइड इफ दिस कॉन्शियसनेस स्विचेस फ्रॉम ईगो टू सोल कॉन्शियसनेस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हमने ये सेवन क्वालिटीज देखी, प्योरिटी, पावर, पीस, लव, हैप्पीनेस, नॉलेज, ब्लिस, सेवन क्वालिटीज। इसीलिए कहा जाता है आत्मा सतोगुणी है। ये सात गुण आत्मा के अपने गुण हैं। जैसे ये शरीर पांच तत्वों का बना है, जैसे ही वो फाइव एलिमेंट्स में कुछ भी अनबैलेंस्ड होगा, शरीर बीमार होने लगेगा।
2: आयुर्वेद हो, प्राणिक हीलर हो, या मतलब नेचुरोपैथी हो,
3: तो वो क्या कहेंगे?
2: बोलते हैं ना आपकी, या तो वायु बढ़ गई, या हीट बढ़ गया, या पित्त बढ़ गया है।
3: एंड विच मीन्स सिर्फ ऊपर से दवाई खा ली तो वो बीमारी ठीक नहीं होगी, वो फाइव एलिमेंट्स को क्या करना है, बैलेंस करना है। इसी तरह से ऊपर से कुछ अच्छा खा लिया, टीवी देख लिया, किसी से बात कर ली, तो सुख नहीं मिलने वाला है, वो सेवन क्वालिटीज को बैलेंस करना है। जब तक वो अंदर सेवन क्वालिटीज नहीं, वो जो फीलिंग जिसको हम ढूंढ रहे हैं, हम सीख कर रहे हैं, हम मांग रहे हैं, विल नॉट बी एबल टू एक्सपीरियंस दैट। तो ये अब सेवन क्वालिटीज को हमने पकड़ना है और आज से अपनी वोकैबुलरी को चेक करना है कि कहीं भी अभी भी गलती से भी इन सातों को बाहर नहीं ढूंढना है। शांति, सुख, शक्ति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, आनंद, बाहर नहीं ढूंढना है। पुराना संस्कार है बाहर ढूंढने का, तो इसलिए जाएगा मैं यहाँ इसमें, वो सब करना है जो बाहर कर रहे हैं, लेकिन इन सातों को उसमें ढूंढना नहीं है।
2: शहर का या गांव का एक राजा है और वो भीख मांगने चला गया, मुझे 2 रुपए दो,
3: वो नहीं होगा। उससे जीवन क्या हो रही है, जो हमें चाहिए हम उसको बाहर ढूंढ रहे हैं, बाहर वो है नहीं, वो अंदर बैठा है, ढूंढते ढूंढते मिल नहीं रहा, तो गुस्सा क्या हो रहा है और बढ़ता जा रहा है कि जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल नहीं रहा। वी लुकिंग फॉर इट आउटसाइड बिकॉज मे बी लुकिंग फॉर इट आउटसाइड इज इजियर फॉर अस। अंदर क्रिएट करना, एक्सपीरियंस करना हमें डिफिकल्ट लग रहा
2: था, मालूम भी तो नहीं,
3: मालूम भी नहीं था, लेकिन अब जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो वो बहुत सिंपल हो जाएगा। एंड वो अनुभव जो है, इसी अनुभव को कहते हैं अति इंद्रिय सुख। ये सेवन क्वालिटीज को जो आत्मा अपने अंदर बढ़ाती जाएगी, सातों क्वालिटीज को, वो आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती जाएगी, वो आत्मा को हम कहेंगे डिवाइन बीइंग।
2: डिवाइन बीइंग,
3: इसके अंदर वो सेवन क्वालिटीज इमर्ज्ड है। ये आत्मा जहां आपको दिखेगा कोई भी ऐसा, तो आप कहेंगे दिव्य आत्मा है, क्योंकि उसकी वो अंदर की डिविनिटी उसके चेहरे पे दिखाई देगी। चेहरा दिखेगा कि चेहरा बदल गया है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड, तो जैसे जैसे माइंड बदलेगा चेहरा बदलेगा।
2: बोलते हैं ना किसी को देख के कितना डिवाइन सोल है ये,
3: तो वो दिखता
2: चेहरे पे कितनी डिविनिटी है,
3: वो दिखता है,
2: यही है बीइंग डिवाइन।
3: आई द बीइंग आई एम डिवाइन, ये हमारी ओरिजिनलिटी है। सातों को भी अगर एक एक करके हम ना लें, रोज अगर हम सिर्फ ये एक लाइन लें, आई एम अ डिवाइन बीइंग, तो ऑटोमेटिकली, जैसे पहले दिन आपने कहा डिवाइन बीइंग बोलते ही अच्छा लग रहा है,
2: हाँ,
3: तो सोचेंगे, फील करेंगे, उस कैरेक्टर को प्रिपेयर करेंगे कि दिव्य आत्मा, आज तक हम दिव्यता को देवी देवताओं के चित्रों में देखते थे, मंदिरों में जाकर मूर्तियों में देखते थे, संत महात्माओं में ढूंढते थे, वो दिव्यता तो हर आत्मा की ओरिजिनलिटी है।
2: पर डिवाइन फीलिंग जो बचपन से एक हल्की सी एक्सपीरियंस्ड है, जैसे पिकनिक पे गए और सनसेट देखा या सुबह उठ के सनराइज देखा, तो डिवाइन सी फीलिंग आती है, मतलब एक फीलिंग आती है, तो मालूम नहीं था इसको क्या बोलते और कैसे आती है।
3: डिवाइन शब्द हमने सुना है, वी हैव हर्ड द वर्ड, वी यूज द वर्ड, वी हैव स्टिल टू एक्सपीरियंस द वर्ड। जो हमने सनसेट में, सनराइज में, सी शोर पे, प्रकृति, जब प्रकृति सतोप्रधान मिलती है हमें, मतलब प्रकृति भी उस समय बहुत प्योर वाइब्रेशंस है, तो कुछ क्षणों के लिए हमारे मन की जो टर्बुलेंस है, क्योंकि वातावरण का हम पर प्रभाव पड़ता है, तो मन की जो टर्बुलेंस है वो बिल्कुल शांत हो जाती है, तो कुछ क्षणों के लिए हमारी जो ओरिजिनलिटी है वो इमर्ज होती है, कुछ क्षणों के लिए,
2: सुर के साथ सुर मिलता है जैसे,
3: उसको कहेंगे हम इट वॉज अ डिवाइन एक्सपीरियंस। लेकिन कोई अगर बहुत अशांत है तो वो सनसेट या सनराइज के सामने खड़े होकर भी टेंशन में होगा, वहां भी वो वही करेगा। यस, तो वातावरण में वो वाइब्रेशन है, लेकिन वातावरण की वाइब्रेशन के साथ अपनी वाइब्रेशन को इमर्ज करना पड़ेगा वो डिविनिटी एक्सपीरियंस करने के लिए। लेकिन वो भी जो प्रकृति की वाइब्रेशन अभी है उसको हम यू नो, इट्स वेरी पीसफुल, इट्स वेरी सूदिंग, वी स्टिल कैन नॉट कॉल इट डिवाइन।
2: दैट वॉज फॉर मी क्लोजेस्ट टू इट।
3: हाँ,
2: फॉर मी एज अ पर्सन
3: इट वॉज क्लोजेस्ट टू इट।
2: लेकिन डिविनिटी का मीनिंग नहीं मालूम पड़ा।
3: डिविनिटी को हम कहते हैं दिव्यता, उसी दिव्यता शब्द से आता है शब्द देवी देवता।
2: ओके,
3: देवी देवता मतलब वो आत्मा जो संपूर्ण दिव्य है, कंप्लीट सोल, परफेक्ट
2: चार्ज देने वाला
3: सोल, कंप्लीट फुल्ली चार्ज्ड, उन दिव्य आत्माओं के लिए कहा जाता है सोला कला संपूर्ण आत्मा। सोला कला संपूर्ण मतलब थोड़ा भी कमी नहीं है, जैसे हम कहते हैं सोला आने सच्ची बात, मतलब
2: उसमें कोई 100% प्योर गोल्ड,
3: उसमें कोई मार्जिन नहीं है झूठ की। तो सोला कला संपूर्ण आत्मा मतलब जिसमें एक थॉट भी इम्प्योर नहीं है, एक थॉट भी सोल कॉन्शियस से हटके नहीं है। इस समय हमारी स्थिति वो वाली नहीं है, लेकिन एक ऐसा समय था जो वो स्थिति थी। उन आत्माओं को हम आज याद करके कहते हैं ये देवी देवता, उनकी हम पूजा करते हैं, उनकी हम महिमा करते हैं, उनकी महिमा में हम इतने सुंदर सुंदर गीत गाते हैं, तो किसकी महिमा कर रहे हैं, उस दिव्यता की कर रहे हैं। हम चेहरे पर भी वो डिविनिटी देख पाते हैं, जबकि अभी तो सिर्फ उनके चित्र हैं, मूर्तियां हैं जो आज के समय के किसी आर्टिस्ट ने बनाई है,
2: उसका अपना इमेजिनेशन भी आ जाता है ना।
3: अब अपना आता है तो अभी का इस समय के कोई आर्टिस्ट,
2: हाँ,
3: अगर देवी देवता की पिक्चर ड्रॉ करे, लेकिन उस आत्मा ने जो अभी ड्रॉ करेगी, जो उस चित्र को बनाएगी, उसके पास वो दिव्यता वाला संस्कार नहीं है, उसको इमेजिन भी नहीं हो सकता कि वो डिविनिटी कैसी होती है।
2: जैसे मैं फील नहीं कर पाया था और सुबह की मतलब वॉक को, सनसेट सनराइज को, क्लोजेस्ट वहां पहुंचा,
3: क्लोजेस्ट उसको हम पहुंचेंगे। तो परमात्मा हमें कहते हैं सत्युग में जो आत्माएं थी, जो देवी देवताएं थे, और आज जो आप बच्चे

0: उनके चित्र बनाते हो तो वो चित्र वो डिविनिटी वाले नहीं है, क्योंकि आप आत्माओं को आज पता ही नहीं है कि वो डिविनिटी कैसी वाली थी। लेकिन वो चित्र हम क्लोज बनाते हैं उसके, लेकिन जितना हम आत्मा के सात गुणों को अनुभव करना शुरू करेंगे, हमें वो डिविनिटी के नजदीक, वी विल स्टार्ट गोइंग क्लोज टू दैट डिविनिटी, बिकॉज दैट इज आवर एम। वी आर गोइंग फ्रॉम 0% सोल कॉन्शियसनेस टू 100% सोल कॉन्शियसनेस, विच मीन्स वी आर गोइंग टूवर्ड्स डिविनिटी। तो ऑन द वे भी, मतलब जैसे जैसे बैटरी चार्ज हो रही होगी, अभी संपूर्ण दिव्यता क्या है हमें नहीं पता, लेकिन जैसे जैसे बैटरी थोड़ी भी चार्ज होगी ना, हमें वो डिवाइन फीलिंग आने लगेगी, बिकॉज वो डिवाइन फीलिंग हमने बहुत समय से एक्सपीरियंस नहीं की है। जैसे उसकी कुछ परसेंटेज भी एक्सपीरियंस हो गई, जैसे दिस इज अ डिवाइन फीलिंग एंड डिविनिटी मीन्स, वी ओनली नाउ नीड टू कीप दिस वर्ड, डिविनिटी मीन्स जिस आत्मा के अंदर एक भी इम्प्योर थॉट नहीं आई, तो बोल और कर्म में तो आ ही नहीं सकती, एक भी थॉट इम्प्योर नहीं आएगी। जब एक भी थॉट इम्प्योर नहीं, तो बोल एक्यूरेट, कर्म एक्यूरेट, तो भाग्य एक्यूरेट बनना ही है। ये राजयोग की फर्स्ट स्टेज है।
1: ये फर्स्ट है तो फिर लास्ट क्या होगी?
0: राजयोग मतलब क्या? दो मीनिंग्स है। एक राजयोग मतलब स्वयं का स्वयं पर राज्य, A ruler over myself. दूसरा राजयोग मतलब क्या? राजयोग मतलब जो हाईएस्ट है उसके साथ योग,
1: राजयोग,
0: कनेक्शन विद द हाईएस्ट, कनेक्शन विद सुप्रीम। तो अभी जो हम स्टेज कर रहे हैं वो है फर्स्ट स्टेज, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन, कॉन्टेम्पलेशन, सोल कॉन्शियसनेस, मतलब आत्मा अपने को पहचाने और अपनी ओरिजिनलिटी को इमर्ज करे। जो सेकंड स्टेज है वो है आत्मा परमात्मा को पहचाने और आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन हो, वो राजयोग है। अब आत्मा जब अपने आप को पहचान कर अपने संस्कारों को इमर्ज करती है, वी कैन डू दैट, हम कर रहे हैं अभी, ये हुआ, लेकिन बैटरी के चार्ज होने की स्पीड थोड़ी सी स्लो होगी, धीरे धीरे चार्ज होगी। लेकिन आत्मा अगर परमात्मा से कनेक्ट हो जाए, तो बैटरी अगर पावर हाउस से कनेक्ट हो जाए, तो फिर उसके चार्ज होने की स्पीड बहुत बढ़ जाती है। तो वो जब चार्जिंग होने लगती है, तो डिविनिटी बहुत फास्ट अपने अंदर एक्सपीरियंस होती है। तो वो है सेकंड स्टेज राजयोग, के आत्मा परमात्मा से कनेक्ट हो। अब जब आत्मा परमात्मा से कनेक्ट होगी, तो परमात्मा की पावर्स, परमात्मा का प्यार, परमात्मा का ज्ञान आत्मा में भरता जाएगा। अब आत्मा की डिविनिटी नेचुरल फ्लो करने लगेगी। तो ये है जो हम रोज सुबह मेडिटेशन में करेंगे, कि मेडिटेशन में हमने क्या करना है, थॉट, टेक अ थॉट, फील इट, उसको अनुभव करें, उसको विजुअलाइज करें, और फिर जब मेडिटेशन से उठें, तो उसको कर्म में लेकर आए।
1: मतलब थॉट कौन सी लेवे?
0: सपोज आई एम अ डिवाइन बीइंग, ये एक थॉट है।
1: आई एम अ डिवाइन बीइंग, थॉट लेना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उसको मैं पहचानता नहीं। आई एम अ पीसफुल और आई एम अ पीस लेते हैं,
0: ठीक है, आई एम अ पीसफुल बीइंग, पीस ले लेते हैं। अब आई एम अ पीसफुल बीइंग एक थॉट हमने लिया, और हमने कहा हम इस थॉट के साथ 5-7 मिनट अभी बैठेंगे। जैसे हम दूसरी कोई प्रॉब्लम की थॉट्स के साथ बैठते हैं ना, बैठते हैं ना, कोई मन हमारा परेशान है किसी बात को लेकर, ऑफिस में कुछ हुआ, किसी ने कुछ कहा, हम बैठ जाते हैं, कितनी देर बीत जाती है?
1: बहुत देर, पता भी नहीं चलता,
0: तो 10-15 मिनट तो हम ऐसे ही बैठ जाते हैं। तो 10-15 मिनट हम अंदर क्या कर रहे हैं? हम वो थॉट क्रिएट कर रहे हैं, मन करता है, बुद्धि उसको विजुअलाइज करती है, हमेशा दिखाई देगा, जैसे उसने कहा था, हम कहते हैं उसने ऐसे बोला था, ऐसे हमारे को दिखाई दे रहा होता है सामने। किसको दिखाई दे रहा होता है? इसको दिखाई दे रहा होता है, इसीलिए इसको तीसरा नेत्र कहते हैं, बिकॉज इंटेलेक्ट मीन्स विजुअलाइजेशन पावर ऑल्सो। तो जैसे जैसे हम थॉट क्रिएट करते हैं, उसने फोन किया, फिर ये बोला, फिर ऐसे किया, फिर वैसे हुआ, बुद्धि उसको विजुअलाइज करती है। जब माइंड थॉट क्रिएट कर रहा है,

0: भी उसको विजुअलाइज करते हैं, धीरे धीरे हम वो फील करना शुरू कर देते हैं। थोड़े साल पहले कोई बात हुई थी, हम उदास हुए थे, हमें रोना आया था उस दिन, हम आज उसको सोच के फिर से रो सकते हैं। दिस इज मेडिटेशन। मेडिटेशन मीन्स आप उस समय पूरी तरह से उस मोमेंट पर कॉन्सेंट्रेटेड थे। आपने सोचा भी उसके बारे में, मन ने सोचा उसके बारे में, बुद्धि ने विजुअलाइज किया और वो सारा अनुभव वैसे का वैसे क्रिएट हो गया और इतना तक क्रिएट हो गया कि आंखों से आंसू भी आ गए। नाउ दिस सेम थिंग कैन बी डू इट विद अ प्योर थॉट ऑल्सो,
1: व्हाई नॉट,
0: है ना। अब सेम हमें बैठना है 5 मिनट। अब हमारी ये थॉट है, आई एम अ पीसफुल बींग। ये थॉट लेनी है ना, आई एम अ पीसफुल बींग। जैसे ही हम बैठेंगे, हो सकता है कि ऑन द स्क्रीन ऑफ द माइंड कुछ और बातें आ जाएंगी। जब हम बैठते हैं, अपने मन को प्रिपेयर करना है कि अभी हम किस लिए बैठे हैं, हम इस चीज पर सोचने के लिए बैठे हैं। लेकिन जैसे ही हम बैठेंगे, शुरू भी करेंगे, हो सकता है कि कोई और थॉट आए,
1: ओवरपावर कर देती है, कुछ और बात आ जाती है,
0: कुछ और बात ध्यान में आ जाती है। हमें उस समय उठना नहीं है, डिस्टर्ब नहीं होना है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट उस थॉट के प्रभाव में आकर उधर बह नहीं जाना है,
1: फिर हटाना है,
0: फिर मन को इधर लेकर आना है, फिर वो बात को याद आएगी, फिर उसको फुल स्टॉप करना है, फिर उस मन को इधर लेकर आना है। क्योंकि हम अपने मन का जैसे चैनल बदल रहे हैं, ग्रूव बना हुआ है, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, अब हम एक नया ग्रूव क्रिएट कर रहे हैं, आई एम अ पीसफुल बींग। तो अब क्या होगा, जैसे ही हम बैठेंगे, वो माइंड वापस उस पुराने वाले ग्रूव पे जाने लगेगा। हमें उसको ध्यान से धीरे से इस ग्रूव पर लाना है। सो इनिशियली इट विल रिक्वायर लिटिल पेशेंस, थोड़ी सी धैर्यता, गिव अप नहीं करना उस टाइम पे। कई बार क्या होता है, कुछ पहले हमारे से नहीं होता, हम नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं, हर एक कर सकता है। सिर्फ ये है, किसी को कम टाइम लगेगा, किसी को थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है उसको कर पाने में, लेकिन हम हर एक कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वी सिट विद दैट कॉन्सेंट्रेशन कि मुझे ये करना है, आई एम अ पीसफुल बींग। अब इसको विजुअलाइज करें, इस कैरेक्टर को विजुअलाइज करें।
1: किस कैरेक्टर को?
0: आई एम अ पीसफुल बींग। थॉट क्रिएट किया, आई एम अ पीसफुल बींग। आत्मा को देखा, यहां पर इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड एक सुंदर सा चमकता हुआ सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट, आई एम अ पीसफुल बींग। फील करते हैं कि पीस की वाइब्रेशन निकलकर चारों तरफ फैल रही है। बिकॉज एनर्जी विच वी क्रिएट हियर, इट विल वाइब्रेट ओवर हियर एवरीवेयर, ये चारों तरफ फैलेगी। आई एम अ पीसफुल बींग, ये थॉट यहां क्रिएट हो रही है, मेरे पूरे शरीर में फैल रही है। एवरी थॉट हैज एन इफेक्ट ऑन एवरी सेल ऑफ द बॉडी।
1: मैंने एक बार ट्राई किया था पीस का, आपका वो सुन के, तो उसके बाद मेडिटेशन के बाद ना मुझे तो बोलने का मन नहीं कर रहा था।
0: हाँ।
1: और बोल रहा भी था तो इतना सॉफ्टली, तो ऊंची आवाज में बोलने का मन नहीं कर रहा था, इतना पीसफुल लगने लग गया था, लेकिन थोड़ी देर के लिए।
0: हाँ, थोड़ी देर के लिए होने वाला है, थोड़ी देर के लिए होने वाला है, क्योंकि दूसरा ग्रूव तो अनेक जन्मों का है, अनेक जन्मों का है ना। और ये कितनी देर बनाया है अभी, 5 मिनट। लेकिन 5 मिनट का असर देखो कितना असर पड़ा था, 5 मिनट का
1: बहुत असर पड़ा।
0: धीरे से बोलना शुरू किया,
1: बात करने का मन भी नहीं कर रहा,
0: बात करने का मन नहीं कर रहा कुछ क्षणों के लिए। उसका भी मीनिंग क्या है, आत्मा को इंद्रियों के सुख की जरूरत नहीं पड़ रही, आत्मा अंदर।
1: ना न्यूज़पेपर पढ़ने का मन किया,
0: वो नहीं कर,
1: मैंने साइड किया और बस इतना शांत, और किसी की आवाज भी ऊंची सुनी तो थोड़ा धीरे करो थोड़ा। तो आई वांटेड टू रिमेन इन दैट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, उसमें इसलिए मैं इतनी मेरी आवाज भी कम हो गई थी।
0: वी वांट टू रिमेन इन दैट एक्सपीरियंस फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो हम कर सकते हैं, आज हमने 5 मिनट किया, कल हम उसको 10 मिनट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, सुबह करके उसको हर एक घंटे के बाद 1-2 मिनट।

0: लिए करेंगे।
1: अच्छा, सुबह लंबा करके?
0: हाँ, सुबह अच्छे से, क्योंकि सुबह टाइम होता है, तो सुबह करके फिर हर एक दो घंटे के बाद एक मिनट के लिए करेंगे।
1: अलार्म अलार्म अलार्म।
0: सपोज हम कार में जा रहे हैं कहीं, एंड मे बी देयर इज अ ट्रैफिक जैम और वी आर स्टक, बट इफ वी आर ड्राइविंग, अगर हम पीछे बैठे हैं तो आराम से कितनी भी देर कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ड्राइव भी कर रहे हैं, हम एक ट्रैफिक सिग्नल पे हैं या हम एक ट्रैफिक जैम में अटके हैं, वी हैव 30 seconds, वी हैव 1 minute.
1: What a beautiful way of I mean spending that little time.
0: It's because you
1: grumble करके चिड़चिड़ करके सामने वाला हटता नहीं, पता नहीं गवर्नमेंट को समझ में आती नहीं, इतनी तकलीफ है, इतने लोग हैं,
0: उस कॉन्शियसनेस में आत्मा की एनर्जी घटती है। अब उस एक मिनट का अगर सदुपयोग कर लिया, उसमें ऐसी थॉट क्रिएट कर ली, तो आत्मा की एनर्जी बढ़ती है। जस्ट 1 मिनट, इसको हम कहते हैं जस्ट अ मिनट, मतलब हर 59 मिनट्स के बाद एक मिनट निकालें बैटरी को फिर से चार्ज करने के लिए। आजकल फोन के चार्जर सब लोग साथ लेके चलते हैं, हर जगह भी जाओ तो हर जगह चार्जर लटके हुए हैं, चाहे किसी दुकान में, एयरपोर्ट पे, रेस्टोरेंट में, चार्जर हर जगह लगे हुए हैं। तो लोग क्या करते हैं, थोड़ी देर भी मिला 10 मिनट चार्जर के साथ, क्यों? क्योंकि फोन बहुत ज्यादा यूज होता है सारा दिन। अब हर बार एक एक घंटे के लिए फोन को चार्जर पे नहीं लगा पाते, उतना टाइम ही नहीं है, फोन यूज करना है, तो बीच बीच में 5-10 मिनट करके चार्ज करते रहते हैं। तो वो 5-10 मिनट चार्ज करने से क्या हो जाता है, फोन चार्ज रहता है। अगर सिर्फ सुबह चार्ज किया और सारा दिन में बहुत यूज किया, चार्ज नहीं रहेगा पूरे दिन। तो सुबह मेडिटेट किया, पूरे दिन में अगर वापस उसको नहीं किया, थोड़ा सा वापस प्रभाव में आ जाएंगे। तो हर एक घंटे के बाद एक मिनट, ये बहुत पावरफुल टूल है। तो अगर फोन पे हम अलार्म लगा लें कि हर एक घंटे के बाद एक रिमाइंडर आएगा, कोई सॉफ्ट म्यूजिक बजेगा, या कहीं भी हम जा रहे हैं, आ रहे हैं, बैठे हैं, एक मिनट, आई एम अ पीसफुल बींग, आई एम अ प्योर बींग। अब हम किसी से मिलने जा रहे हैं, मीटिंग है या किसी से कोई अपॉइंटमेंट है, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ऐसे ही नहीं जाना है। डोंट एंटर फ्रॉम वन सीन टू द नेक्स्ट इन अ केओटिक स्टेज। हम क्या कर रहे हैं आज, एक सीन से नेक्स्ट सीन में ऐसे ही केओटिक स्टेज में जाते हैं। डॉक्टर के पास जा रहे हैं, जाने से पहले बैठे, आई एम अ प्योर बींग गोइंग टू मीट अनदर प्योर सोल। ये प्योरिटी की वाइब्रेशन उस आत्मा को टच होगी, वो आत्मा हमारे प्रति जो वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे, उनकी इमोशनल स्थिति उस टाइम कितनी साइलेंट होगी, वो हमारा डायग्नोसिस सही करेंगे। क्योंकि वो स्ट्रेस की वाइब्रेशन उनकी क्या हो जाएगी, एकदम साइलेंट हो जाएगी।
1: मेरे भेजने से हो जाएगी,
0: हम भेजेंगे और वहां जाकर भी पहली थॉट क्रिएट करेंगे।
1: इंस्टेड ऑफ सेइंग कितनी देर बाहर बैठा दिया, कब से मैं बैठा हूँ, पता नहीं दूसरे पेशेंट को लेके बैठा है अंदर।
0: अब उसमें क्या होता है, अंदर वाला तो स्ट्रेस है ही डॉक्टर, क्योंकि वो एक के बाद एक लेट हो रहा है, ये हो रहा है, केओटिक स्थिति है। हम भी अंदर गए, हम भी केओटिक स्थिति में, केओटिक स्थिति का मन दूसरे केओटिक स्थिति के मन को हील कर रहा है। प्योर बींग मीटिंग अनदर प्योर बींग, एक मीटिंग में जा रहे हैं, एक क्लाइंट को मिलने जा रहे हैं, एक प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हैं, एक प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, कितना कुछ है सारा दिन। ऐसे ही घुस जाते हैं हर सीन के अंदर, सब कुछ प्रिपेयर करते हैं सीन के लिए, यहां नहीं प्रिपेयर करते, आत्मा को अपनी सीट पर बिठाकर सीन के लिए नहीं चलते हैं। तो ये एक एक मिनट अगर हम निकालते जाएं, बिफोर वी एंटर इनटू द सीन, आत्मा को अपनी सीट पर और अपनी राइट कॉन्शियसनेस पर बिठाकर चलें, तो उस सीन का फ्लेवर, उस सीन का एक्सपीरियंस और फिर यहां जो रिकॉर्डिंग होगी वी कंप्लीटली डिफरेंट। ये हमें सिर्फ एक दिन करके देखना है कि हर घंटे के बाद एक मिनट, और कोई भी सीन टू सीन चेंज किया, किसी से मिले तो एक मिनट पॉज करके ये वाइब्रेशन क्रिएट करके देन एंटर इनटू द सीन।
1: जरूर करेंगे सिस्टर, थैंक यू सो मच। एक मेडिटेशन हो जाए थोड़ी,
0: सिट बैक कंफर्टेबल, बॉडी को रिलैक्स करें, एक एक अंग हल्का होता जा रहा है। मैं आत्मा अपने आप को आने वाले सीन के लिए तैयार कर रही हूं।

शांत स्वरूप आत्मा हो। मेरी हर थॉट, हर बोल, हर कर्म शांति की शक्ति से भरा हुआ है। शांति ही मेरा स्वभाव है, शांति ही मेरा संस्कार है। विजुअलाइज करें ये एक ही थॉट की वाइब्रेशन एक लेजर बीम की तरह मेरे पूरे शरीर में फैल रही है। एवरी सेल ऑफ माय बॉडी, एवरी ऑर्गन ऑफ माय बॉडी इज रिसीविंग द वाइब्रेशंस ऑफ पीस। कहीं भी कोई दर्द, कहीं भी कोई बीमारी, I'm sending it the vibrations of peace.

0: सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: 24 घंटे का व्रत रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, मेरा मन, वाणी और व्यवहार शांत और प्रेम से भरपूर। सिर्फ 24 घंटे का व्रत रखें तो भी हमने सृष्टि की कितनी सेवा की, और जो चीज हम एक दिन कर सकते हैं हम उसको हर रोज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास पावर है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: देखें, अगर देखने का समय नहीं है तो सुन ही लीजिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं।

0: हैं, बने रहिए हमारे साथ।
1: ओम शांति। नमस्कार, मैं आकाश मानिसार से नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एक वॉलंटियर मेंबर। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
2: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करियर अपसेट इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे, और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष अमृत पाल कौर जी उपस्थित हैं और करियर इन साइकोलॉजी के बारे में बातें करने वाले हैं। और पिछली बार आपने बहुत ही अच्छी बातें बताया था करियर इन ह्यूमन रिसोर्सेस के बारे में, एचआर में किस तरह से हम अपना करियर कर सकते हैं, और अब हम लोग बात करने वाले हैं करियर इन साइकोलॉजी में। तो अमृत पाल कौर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप?
3: थैंक यू भाई जी, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, बहुत बहुत शुक्रिया
2: जी। जी जी, मैं चाहूंगा कि सबसे पहले तो आप थोड़ा सा अपने बारे में हमें बताइए। जी
3: जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मेरा नाम अमृत पाल कौर है और मैं दिल्ली से हूँ। पिछले 13 साल से मैं एज एन एचआर फील्ड में काम कर रही हूँ, और अभी मेरा रोल एचआर मैनेजर का है, और स्पेसिफिकली हम लोग हायरिंग में काम करते हैं, हायरिंग ट्रेनिंग, और कैसे लोगों को हम लेकर आते हैं और किस तरह से उनको कंपनी के लिए प्रोडक्टिव बनाते हैं। तो पर्सनल ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, दोनों ही चीजों में साथ साथ काम करते हैं। तो आज जो हमारा सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। कुछ लोग थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं, साइकोलॉजी और साइकेट्री इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। तो साइकोलॉजी और साइकेट्री दो अलग अलग चीजें हैं, और इन दोनों में जाने के लिए अलग अलग पाथ होते हैं। साइकोलॉजी जो है ये ज्यादातर बिहेवियर के ऊपर आता है, चाहे वो सोशल बिहेवियर है, चाहे वो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट बिहेवियर है, मतलब अलग अलग स्ट्रीम्स होती हैं इसकी। तो साइकोलॉजी बेसिकली डॉक्टर नहीं होते, ये लोग आपको थेरेपीज देते हैं, और या फिर इसको हम कॉर्पोरेट में जैसे काम होता है, ऑफिस होते हैं, और एडवर्टाइजिंग एरियाज होते हैं, इन सभी जगह पर, या मार्केटिंग होती है, इन सभी जगह पर बिहेवियर साइकोलॉजी आती है। इसकी काफी सारी फील्ड्स हैं जिसको हम आगे डिटेल में बात करेंगे। और वेयर एज जो साइकेट्री है, साइकेट्री एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड एरिया है, जो कि हम डॉक्टरी, जिसको जैसे हम एमबीबीएस करते हैं, तो एमबीबीएस, नॉर्मल एमबीबीएस करने के बाद इसको हम पोस्ट ग्रेजुएशन में साइकेट्री को स्पेशलाइज करते हैं, जिसमें एमडी होती है, पीएचडी होती है। और सबकी नॉलेज के लिए मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो ही सिर्फ आपको मेडिसिन लिखकर दे सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन कोई भी साइकोलॉजिस्ट आपको कभी भी कोई मेडिसिन नहीं देगा, क्योंकि वो एंटाइटल्ड नहीं है, क्योंकि वो ऑथराइज डॉक्टर्स नहीं है। तो साइकोलॉजी हमेशा हमारी बिहेवियर्स के ऊपर आती है, वो किसी भी फील्ड का बिहेवियर हो सकता है, जबकि साइकेट्री जो है प्रॉपर आपको एमबीबीएस करके डॉक्टरी करनी होती है, और उसके बाद आप स्पेशलाइजेशन करते हैं, जहां पे अगर हमारे कोई जरूरत होती है तो हम वहां पे मेडिसिन का भी सहारा ले सकते हैं। तो ये एक बहुत ही मेजर डिफरेंस है साइकोलॉजी और साइकेट्री में। और अभी आज हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी के बारे में। तो साइकोलॉजी इस फील्ड में बहुत सारी लाइंस होती हैं, जैसे सोशल साइकोलॉजी, बिहेवियर साइंस, और इवन आज की डेट में मार्केटिंग में एनजीओज वगैरह जो होते हैं वो लोग भी, कॉर्पोरेट में, हर जगह साइकोलॉजी का इस्तेमाल होता है। अब साइकोलॉजी का इस्तेमाल क्यों होता है, क्योंकि हम सब जो इंसान हैं, बिहेवियर हमारा होता है, एक ही सिचुएशन में हर व्यक्ति का अलग अलग बिहेवियर।

0: क्लियर होता है, कभी किसी का गुस्सा हो सकता है, कभी किसी का प्यार हो सकता है, कभी किसी को किसी तरह के भी नेगेटिव इमोशंस या पॉजिटिव इमोशंस। तो बेसिकली हमारी जो बिहेवियर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, चाहे हमारे खरीदने की बिहेवियर है, चाहे हमारा स्पेंड करने का बिहेवियर है, चाहे हमारे जो मेंटल थॉट्स होती हैं उनके ऊपर है, तो इन सबसे रिलेटेड साइकोलॉजी में डील किया जाता है। और साइकोलॉजी की जो सब फील्ड होती हैं, जैसे हमने सोशल साइकोलॉजी की बात करी है, तो इसमें जितने एनजीओज होते हैं, जितने हमारी मार्केटिंग डिविजन्स होते हैं, एडवर्टाइजिंग डिविजन्स होते हैं, ये सब सोशल साइकोलॉजी के अंडर आते हैं, जहां पे सोशल बिहेवियर इंसान का क्या होता है उसके ऊपर वो रिसर्च करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग उसमें अपना फर्दर काम करते हैं। इसी के साथ कॉर्पोरेट साइकोलॉजी आती है, कॉर्पोरेट साइकोलॉजी में ह्यूमन रिसोर्स भी आता है, क्योंकि जब हम ह्यूमन से बात काम करते हैं तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में काम करवाने के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, और हर इंडस्ट्री का अपना एक बिहेवियर होता है। और इसमें जैसे हायरिंग होती है कंपनी में, तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक फील्ड होती है जिसको हम कहते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट, जिसे आपकी अंदरूनी जो एक्चुअल में जिसको बोलना चाहिए स्पेशलाइजेशन, कुछ लोगों में कुदरती होती है कुछ कुछ चीजों में, कोई लीडरशिप रोल के लिए बना है, कोई सिखाने के लिए बना है, कोई कैसे, वो आपके अंदर की चीजें होती हैं जिससे हम लोगों को समझ आता है इन टेस्ट के जरिए, या एक स्पेसिफिक फील्ड में जब हम हायरिंग करते हैं तो उसके लिए स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट के जरिए हमें पता चलता है कि ये इंसान इस पर्टिकुलर फील्ड में फिट होगा या नहीं। और इसके बाद जो हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजी है, जो कि साइकोथेरेपी जिसको बोलते हैं, इसमें मेंटल हेल्थ, मेंटल डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन, चाइल्ड डेवलपमेंट, ये सब चीजें आती हैं, ये लोग हेल्प करते हैं। जैसे कई लोगों में सुसाइडल टेंडेंसीज होती हैं, कई बच्चों में ग्रोथ के इश्यूज होते हैं, कई बुजुर्ग लोगों में या बड़े लोगों में, इवन आज की डेट में जैसे स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे होती है, अलग अलग सिचुएशंस को कैसे डील किया जाए, तो ये सब बिहेवियर के अंडर आते हैं और इनके साथ वो डील करते हैं। अब जैसे कॉर्पोरेट साइकोलॉजी का हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया है कि ह्यूमन रिसोर्स, एडवर्टाइजिंग, साइकोमेट्रिक टेस्ट, ये सब आते हैं। इवन एजुकेशनल साइकोलॉजी भी आज की डेट में बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी है, जहां पे एजुकेशन में कि कौन सी स्ट्रीम में बच्चे जाएं, जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पेरेंट्स को ज्यादातर यही लगता है कि हमारे बच्चे या साइंस ले लें, ज्यादा नहीं तो फिर कॉमर्स ले लें, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी फील्ड हैं जहां पे आज की डेट में बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सब चीजें कुछ स्पेसिफिक टेस्ट के जरिए हम लोग पता लगा सकते हैं कि बच्चे कौन सी फील्ड में जाएं ताकि आगे बढ़ सकें।
1: जी जी, अमृतपाल कौर जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, और आशा करूंगा कि हमारे विद्यार्थी मित्रों को और जो श्रोता मित्र है उन सभी को अच्छा लग रहा है साइकेट्री और साइकोलॉजी में क्या डिफरेंस है ये आपने बताया। और निश्चित तौर पे लोग ऐसी छोटी सी जो बारीकियां हैं इसमें कभी कभी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, और बहुत सारे लोग साइकोलॉजिस्ट जरूर होते हैं, वो डॉक्टर नहीं होते, वो मेडिसिन नहीं लिखते, लेकिन काउंसलिंग कर सकते हैं, और साइकेट्री के पास आप जाते हैं तो वो लोग मेडिसिन भी रेकमेंड करते हैं कुछ ऐसे, ताकि आप जो है अपने डेली रूटीन में उन चीजों का इस्तेमाल करके जीवन को अच्छा बना सके। तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर और विस्तार से बात करेंगे कि साइकोलॉजी के साथ करियर करना हो तो किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर करियर ऑप्शन, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। अमृतपाल कौर जी से बातचीत हो रही है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में, करियर इन साइकोलॉजी पे बातें हो रही हैं। तो आइए अमृतपाल जी, मैं चाहूंगा कि अब साइकोलॉजी में हमें करियर करने के लिए किन किन बातों पे ध्यान रखना है और किस किस तरह से हमारी पढ़ाई हो जानी चाहिए, आफ्टर टेंथ हमें किन चीजों पे या किन स्ट्रीम्स के साथ जुड़कर हम इसमें एक्सेल कर सकते हैं और कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है इसमें। जी
1: जी बिल्कुल, जैसे कि हमने पहले भी बात करी है इस बारे में कि साइकोलॉजी और साइकेट्री में फर्क होता है, तो साइकोलॉजी में स्पेसिफिकली जिन लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता मैथ्स में स्पेसिफिकली, वो लोग अगर अपने आप को उस लेवल पे देखना चाहते हैं जहां पे एक सोशल स्टेटस होता है, जहां पे आप इनकम भी आपकी अच्छी हो सकती है, तो हम साइकोलॉजी फील्ड को 10th पास करने के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। तो 11th 12th में हम साइकोलॉजी एज अ मेजर सब्जेक्ट 11th 12th में चूज कर सकते हैं। आज की डेट में बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारे स्कूल्स साइकोलॉजी एज ए सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। साइकोलॉजी के लिए एक चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है, लोग सोचते हैं कि ये माइंड रीडिंग की बात है कि हम किसी का मन पढ़ लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। ये एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड है और इसमें बहुत सारी अलग अलग फील्ड होती हैं जिसमें हम आगे बढ़ के स्पेशलाइजेशन करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है, साइकोलॉजी आप आर्ट्स लेकर, आर्ट्स में साइकोलॉजी एज ए सब्जेक्ट लेकर आप साइकोलॉजी 11th 12th से ही स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके साथ आप दूसरे अपने सब्जेक्ट जैसे सोशल साइकोलॉजी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक कॉम्बिनेशन हर स्कूल का अलग अलग होता है, वो आप 11th 12th से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपकी आती है बैचलर्स इन साइकोलॉजी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज करवाती हैं जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी है और हमारी अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में जहां साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, तो इसमें आप स्पेशलाइज कर सकते हैं एट द ग्रेजुएशन लेवल। इसके बाद आती है मास्टर्स, इसके बाद आती है पीएचडी। तो साइकोलॉजी में ही आप जब पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको जब बैचलर्स की जाती है तो फर्स्ट ईयर के बाद आपको साइकोलॉजी में स्पेसिफिकली क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए वो आपको एक इंटर्नशिप की ऑफर देते हैं कि आप किसी अच्छा। भी साइकोलॉजी हॉस्पिटल में जाके, जैसे जहां पे मेंटल डिसऑर्डर्स या जैसे रिमैंड एक बहुत ही फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे लोग अपने मेंटल प्रॉब्लम्स के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का डाइवोर्स हो रहा है, तो जब डाइवोर्स हो रहा है तो दोनों ही पति पत्नी बहुत सारी मेंटल प्रेशर्स में जाते हैं, तो वहां पे रिमैंड जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पे वो आपको थेरेपी देते हैं कि आप अपनी लाइफ के इस जो मेजर चैलेंज आपको आ रही है उस प्रेशर को किस तरह से डील करें, क्योंकि अक्सर ऐसी सिचुएशन में जैसे 11th 12th में बच्चों के मार्क्स कम आते हैं तो बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो वुमेन बहुत सारी चीजों में मेंटली सपोर्ट करता है, तो ये ऐसी जगह पे जाकर आपको फर्स्ट ईयर या फर्स्ट ईयर के बाद आपको एक इंटर्नशिप ऑफर की जाती है। ये है स्पेसिफिकली क्लिनिकल साइकोलॉजी के बाद। लेकिन अगर आपका क्लिनिकल साइकोलॉजी में इंटरेस्ट ना हो, ये थोड़ा सा मेंटल डिसऑर्डर, चाइल्ड डेवलपमेंट, इन सब चीजों में डील करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दूसरों का दुख नहीं सुन पाते क्योंकि वो हर चीज अपने ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि हर चीज में अगर आप क्योंकि अगर आपके पास दिन में 50 लोग आ रहे हैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ओवरवेल्म हो जाते हैं या उनकी अपनी इमोशंस इतनी हावी हो जाती हैं कि वो इन चीजों से डील नहीं कर पाते, नेगेटिव चीजों से। तो ऐसे बच्चे बैचलर्स करके उसके बाद एचआर फील्ड में आ सकते हैं, जिसको हम कॉर्पोरेट साइकोलॉजी या सोशल साइकोलॉजी

0: ये भी एक एरिया है जहां पे आप आ सकते हैं। अगर किसी का मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग एरिया में इंटरेस्ट हो तो वो उस तरह भी जा सकते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि खाने पीने की चीजों में स्पेसिफिकली अगर हम एडवर्टाइजिंग देखें तो येलो कलर, ब्राइट ऑरेंज, ब्राइट रेड, इस तरह के, तो ये कलर साइकोलॉजी को यूज करके वो एडवर्टाइजिंग बनाते हैं, एडवर्टाइजर्स बनाते हैं जिसमें बच्चों को अट्रैक्शन हो, जिसमें उनकी चीजें अच्छे से दिखे। तो हर फील्ड में आज की डेट में साइकोलॉजी यूज हो रही है। आप उसमें मास्टर्स कर सकते हैं, काफी सारे कोर्सेज हैं जो बैचलर्स के बाद आप साथ साथ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर मार्केटिंग में जाना है तो मार्केटिंग रिलेटेड कुछ कुछ कोर्सेज होते हैं, तो साइकोलॉजी करने के बाद आप मार्केटिंग में जा सकते हैं, एडवर्टाइजिंग में जा सकते हैं, या कॉरपोरेट साइकोलॉजी में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं मास्टर्स करके या कोर्सेज करके। तो दोनों ही तरह से ये चीजें आपके काम आ सकती हैं। इसमें काफी सारी मैं कहूंगी कि फील्ड्स खुल जाती हैं किसी को सोशल सेक्टर में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ लोग जैसे वो सोशल सर्विस करना चाहते हैं या एनजीओ के साथ काम करना चाहते हैं, तो वहां पे भी बिहेवियर साइकोलॉजी बहुत काम आती है। तो ये है अलग अलग फील्ड्स जिसमें वो जा सकते हैं। तो बेसिकली 11th 12th से ही वो अपने आप को इस फील्ड में डाल सकते हैं। अब इसमें आगे इसको स्पेशलाइजेशन करना है, कुछ लोग स्पेसिफिकली सिर्फ साइकोमेट्रिक टेस्ट में जाना चाहते हैं, और ये टेस्ट बहुत ही स्पेशलाइज्ड होते हैं जिसमें आपको इसमें स्पेशलाइजेशन करनी पड़ती है, क्योंकि ये अलग अलग फील्ड्स में यूज होते हैं। तो उसकी एक प्रॉपर प्रोसेस होती है कि कैसे आप किस तरह के क्वेश्चन कौन सी सिचुएशन में पूछेंगे तो आपको सही रिजल्ट मिलेंगे। तो ये भी एक फील्ड है जिसमें आप जाकर स्पेसिफिकली अपने आप को साइकोमेट्रिक टेस्ट में लेकर जा सकते हैं, ये स्पेशलाइजेशन हो सकती है। एचआर में कॉर्पोरेट साइकोलॉजी है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया।
1: जी, जी, जी।
0: तो कॉर्पोरेट में भी अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग तरह के बिहेवियर चाहिए होते हैं। अगर कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का बंदा है तो उसका बिहेवियर एक अलग होगा, लेकिन अगर कोई साइंटिफिक फील्ड में है तो उसका बिहेवियर अलग होगा। जैसे आजकल काफी सारी दवाइयां बनाने वाली कंपनीज होती हैं, तो उस फील्ड में कोई स्पेशलाइजेशन करना चाहता है तो उसका बिहेवियर अलग होगा। आज की डेट में तो AI बहुत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत आ गई है, तो उन सब फील्ड्स में आज की डेट में साइकोलॉजी बहुत यूज होती है। और इसमें अगर हम इसको आगे फर्दर थोड़ा सा और अगर समझना चाहते हैं तो इसकी बहुत सारी सब फील्ड्स भी होती हैं। इवन बायोसाइकोलॉजी नाम की भी एक फील्ड होती है जिसमें बायोलॉजिकल बिहेवियर्स यूज होते हैं। जैसे हम इसको कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो प्लांट्स की साइकोलॉजी में भी डील करती हैं, किसी को अगर फील्ड में शौक हो तो वहां भी वो अपना करियर बना सकते हैं। तो इसमें आपको पहले 11th 12th और ग्रेजुएशन लेवल तक अपने आप को एक्सप्लोर करना होगा कि मेरा असल में किस चीज में इंटरेस्ट है, क्योंकि इसमें बहुत सारी फील्ड्स हैं। तो आप उन फील्ड्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं 11th 12th और ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन, और उसके बाद मास्टर्स में आप स्पेशलाइज कर सकते हैं।
1: अमृतपाल कौर जी, बहुत ही अच्छा आपने विस्तार से बताया कि कैसे हम लोग जो है साइकोलॉजी में आगे बढ़ सकते हैं, और इसमें बहुत ज्यादा जो है आजकल जो है हर विषय को लेकर जो है काफी अच्छा काम हो रहा है। तो विस्तार से आपने बताया कि इसमें प्लांट साइकोलॉजी के बारे में भी आपने बताया, हो सकता है कि ये भी एक अच्छा विषय हो कि आजकल जो है इंडोर और आउटडोर प्लांट्स भी होते हैं जो घर के अंदर पौधे लगाए जाते हैं। तो क्योंकि AC रूम होता है तो ऑफिस वगैरह AC में होते हैं, तो वहां पर बंद कमरे होते हैं तो प्योर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो वो अंदर भी प्लांट्स लगाते हैं। तो अलग अलग प्लांट्स की अपनी खूबसूरती होती है, कई लोग अंदर में अच्छे से ग्रो करते हैं, ऑक्सीजन अच्छा देते हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो समझने के लिए या समझाने के लिए तो इस तरह के जो है बायोसाइकोलॉजिस्ट भी जरूरत होती है, और बहुत सारी जगह पे जो है HR में भी इसकी जरूरत पड़ती है, जैसे आप खुद वहां पर काम कर रही हैं। और निश्चित तौर पे ये एक अच्छा सब्जेक्ट है जिसपे हम लोग मास्टरी करके बहुत जगह पे अलग अलग जो काउंसलिंग सेंटर्स होते हैं वहां पर भी आप अपना जो है करियर बना सकते हैं, ये आपने बताया। तो आइए आगे बढ़ते हुए एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर हम साइकोलॉजी में जिन लोगों ने अच्छा नाम किया है इस सब्जेक्ट को लेकर, अपने करियर को और अपना नाम भी किया है, ऐसे लोगों की कुछ ऐतिहासिक चीजें हम लोग आफ्टर ब्रेक सुनेंगे अमृतपाल जी से। आप सुनाए हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मस्कराते रहो।

मैं हूं अनंत संभाजी और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बहुत ही अच्छी बातें हो रही है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। अमृतपाल कौर जी हमारे साथ है और उनसे बातें हो रही है। करियर इन साइकोलॉजी की बातें चल रही हैं, जहां पर हमने इंट्रोडक्शन में बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है जिसे ठीक से समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद साइकोलॉजी में क्या क्या चीजें हो सकती है और कैसे आप इसमें अपना स्ट्रीम पूरा करके आप इस फील्ड में आगे एक्सेल कर सकते हैं, तो स्पेशल सेंटर्स भी होते हैं जो इस विषय को लेकर आपको पढ़ाते भी हैं, और कुछ जगह पे आप जो है अपने मेन स्ट्रीम के साथ इस साइकोलॉजी सब्जेक्ट को भी चूज कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप जिस जगह पे हो, जहां पर भी हो, वहां पर किस तरह की अवेलेबिलिटी है और आपके बजट के अनुसार वो चीजें आपको अलाउ करते हैं। तो दोनों चीजें हैं, आप इसमें अगर एक्सेल करना चाहते हैं तो बजट की बात नहीं आती, पढ़ने की बात आती है। आप पढ़ाई करेंगे तो आगे चल के आप अपने करियर को फ्रेम आउट अच्छा कर सकते हैं। तो अमृतपाल कौर जी फिर से एक बार आपका स्वागत है। कार्यक्रम के इस आखिरी मोड़ पर पहुंचे हैं, जहां पर मैं चाहूंगा कि जिन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है साइकोलॉजी में और अपना करियर के साथ साथ नाम किया है, यूनिक अपना जो पहचान है बनाई है, ऐसे लोगों के कुछ ऐतिहासिक चीजें हमारे साथ शेयर कीजिए। जी
1: जी जरूर। साइकोलॉजी तो वैसे बहुत पुरानी है, जिसको हम कहते हैं बीसी एरा, यानी कि बिफोर क्राइस्ट एरा, वहां से साइकोलॉजी चलती आ रही है और हमारे देश के जो ऋषि मुनि हैं वो इन सब चीजों में बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे कि मनुष्य का बिहेवियर कौन सी सिचुएशन में कैसा होता है। लेकिन पिछले 150 सालों में साइकोलॉजी का एक मॉडर्न वर्जन जो है वो स्टार्ट हुआ है, जिसमें वैसे तो बहुत सारे नाम हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक नाम है सिगमंड फ्रॉयड का। ये इसको मॉडर्न साइकोलॉजी का पिता भी कहा जाता है। और इनकी जो शुरुआत हुई थी, इन्होंने अपने बेटे को, छोटे बच्चे को ऑब्जर्व करना शुरू किया था कि वो किस तरह से बढ़ रहा है, उसकी कौन सी सिचुएशन में क्या हरकतें होती हैं, वो किस तरह से छोटी छोटी चीजों को सीखता है, करता है। तो वहां से ह्यूमन साइकोलॉजी का जो आज का लेटेस्ट वर्जन है, उसी की आगे बहुत सारी थ्योरीज को लेकर सिगमंड फ्रॉयड ने इस फील्ड में बहुत सारी अपनी रिसर्च करी थी, रिसर्च पेपर्स दिए थे। और इनका मेजर जो शौक था वो ह्यूमन बिहेवियर, कि वो किस तरह से अनकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस मेमोरीज जो होती हैं, वो हमारे आज के संदर्भ में, मतलब हमारी जो पुरानी जैसे हमारे सोल लेवल पे जो मेमोरीज होती हैं, वो किस तरह से हमारी काम करती हैं आज के संदर्भ में, यानी कि आज की जो मेरी लाइफ है, जो मेरी पुरानी थॉट प्रोसेस है, वो किस तरह से अचानक से उभर कर सामने आती है। क्योंकि हर बच्चा या हर व्यक्ति एक सिचुएशन, सेम ही सिचुएशन हो, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो एक व्यक्ति आएगा, वो देखेगा, फोटो खींचेगा, चला जाएगा, दूसरा व्यक्ति आएगा, वहां खड़ा रहेगा, दूसरा उससे पूछेगा और चला जाएगा, लेकिन तीसरा व्यक्ति आएगा, वो उस व्यक्ति के मुंह में पानी डालेगा और उसको हॉस्पिटल लेके जाएगा। सिचुएशन तो सेम है, लेकिन आपका जो बिहेवियर है सेम सिचुएशन के लिए, वो एक डिफरेंट बिहेवियर या एक डिफरेंट आपका स्टिमुली या उस सिचुएशन का जो रिएक्शन है वो डिफरेंट होगा। तो इन सब चीजों को बहुत ही डिटेल में फ्रॉयड ने इस चीज को स्टडी किया।

0: और उसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च करी है। और अगर हम फ्रॉयड की ही साइकोलॉजी, क्योंकि नाम तो बहुत सारे हैं लेकिन सिगमंड फ्रॉयड, कन्फ्यूशियस में सब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अलग अलग लेवल पे, प्लूटो अलग अलग लेवल पे इन लोगों ने इसकी रिसर्च करी है। जो फ्रॉयड की साइकोलॉजी है या प्लूटो भी कह सकते हैं और कन्फ्यूशियस वगैरह, जितने भी ये बहुत ही बड़े बड़े लोग हैं, इन लोगों का जो प्री कंसेप्ट था साइकोलॉजी में, ये एनालिसिस करते थे सबकॉन्शियस माइंड का। कुछ चीजों में हमारी फिक्सेशन हो जाती है, कई बार किसी सिचुएशन में हम अपने आप को डिफेंड करने लग जाते हैं, या जैसे हमें ड्रीम्स आती हैं, हमें स्वप्न आते हैं, उन स्वप्न का क्या मीनिंग होता है, कौन सी सिचुएशन में हमारा क्या मीनिंग होगा, हमने ड्रीम में देखा कि बारिश में हम घूम रहे हैं तो उसका क्या मीनिंग होगा, हम उड़ रहे हैं तो उसका क्या मीनिंग होगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीजों में फ्रॉयड की बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन रही है कि वो किस तरह से हर एक चीज को एनालाइज करके और इनका क्या मीनिंग होगा, वो उसने बहुत सारे पेपर्स लिखे हैं। इवन उसने मेल और फीमेल यानी कि मर्द और औरत, इन दोनों की भी साइकोलॉजी में डिफ्रेंशिएट किया है कि सेम सिचुएशन में एक पुरुष क्या सोचेगा और एक औरत क्या सोचेगी, और एक पुरुष क्या करेगा और एक औरत क्या करेगी। तो इसमें उन्होंने बच्चों की साइकोलॉजी, उनका किस तरह से जैसे कई बच्चे अब्यूज में अब्यूज फील करते हैं, जैसे स्कूल में बच्चों को बुली किया जाता है, यानी कि उनको कुछ बच्चों को परेशान किया जाता है, तो एक बच्चा बिल्कुल दब्बू होकर साइड पे बैठ जाएगा, एक बच्चा सामने से लड़कर सामने आएगा। तो ये अलग अलग सिचुएशन में एक ही मतलब सिचुएशन में बच्चों के अलग अलग जो बिहेवियर होते हैं, कैसे पर्सनैलिटी डेवलप होती हैं, और कैसे जैसे एक ही बच्चा अगर दब्बू है तो उसको हम किस तरह से उसमें से निकाल सकते हैं, ये सब क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंडर उन्होंने इसकी बहुत लंबी चौड़ी रिसर्च करी है। और अगर हम प्लूटो की बात करें तो प्लूटो काफी उन्होंने धर्म को लेकर काफी सारी चीजें करी हैं, जिसका हम मेरे हिसाब से इसको हम क्योंकि बच्चों का हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो शायद हमें इसमें इतना डिटेल में नहीं जाना चाहिए। तो बेसिकली जितनी भी हमारी ये एनालिसिस होता है, बिहेवियर एनालिसिस, हमारा डिफेंस एनालिसिस, कैसे डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है, इन सब चीजों में अगर कोई सचमुच में इस साइकोलॉजी फील्ड में आना चाहता है तो फ्रॉयड की थ्योरीज को पढ़ना बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे ही वो 11 12th में अगर लेना चाहते हैं, आपके पास 10th की छुट्टियां आती हैं 10th के एग्जाम के बाद, तो आप इसको पढ़ें, इसके बारे में जानें, इसको समझें और फिर अपने इंटरेस्ट को देखें कि आपका इंटरेस्ट कहाँ बनता है, तो वहां से एक आपको लाइन समझ आ सकती है कि हमें इस फील्ड में जाना भी है या नहीं जाना, हम इसको कर सकेंगे, हमें इंटरेस्ट बनता है। क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट बनता है तो साइकोलॉजी जैसी कोई फील्ड नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी अलग अलग फील्ड आगे खुल जाती हैं। अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो साइकोलॉजी एज ए सब्जेक्ट सिर्फ बैचलर्स लेवल पे नहीं, मास्टर्स लेवल पे और पीएचडी लेवल पर भी सपोर्ट करते हैं, और यहाँ की लाइब्रेरी, यहाँ का सब कुछ बहुत ही बेहतरीन है, जहाँ आपको अच्छे से समझ आ सकती है कि आपको आगे क्या करना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, अमृतपाल कौर जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया, और आशा करूंगा हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को और श्रोता मित्रों को अच्छा लग रहा है। एक बात जाते जाते मैं चाहूंगा कि इसमें कितना टाइम लगता है करियर में अच्छे से फ्रेम आउट होने में, क्योंकि कई बार होता है कि आपके पास डिग्री तो है लेकिन क्या होता है कि जब प्रैक्टिकल में आप फील्ड में जाते हैं तो आपको थोड़ा टाइम लगता है अपने आप को सेट करने में, तो इसी तरह यहाँ पर कितना टाइम लगेगा इनको, अगर आप कोई बंदा साइकोलॉजिस्ट बन के अगर काम करना चाहे तो कितना टाइम लग सकता है सेट होने में?
0: जी, सो जैसे हम

0: डिस्कस किया कि 11th-12th में आप साइकोलॉजी एज ए सब्जेक्ट लेते हैं, उसके बाद 3 साल आपके ग्रेजुएशन के हैं, तो अगर आप साथ साथ इंटर्नशिप करना शुरू कर देते हैं, ना सिर्फ क्लिनिकल साइकोलॉजी में बल्कि किसी भी फील्ड में, फाइनल ईयर में ही अलाउड होता है कि आप साथ साथ इंटर्नशिप करें, चाहे आप क्लिनिकल साइकोलॉजी में जाना चाहें, चाहे आप कॉर्पोरेट साइकोलॉजी या इससे रिलेटेड किसी भी फील्ड में आप जाना चाहें, तो आप इंटर्नशिप अगर करते हैं फाइनल ईयर में 3 महीने की, 4 महीने की, 6 महीने की, अलग अलग जगह पे अलग अलग उसकी ड्यूरेशन होती है, तो इसके बाद आपको एज अ फ्रेशर बहुत सारी कंपनी हायर कर लेती हैं। तो ये स्टार्टिंग का फेज है, तो पहले 2 साल आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आप फर्दर आगे कोई स्टडी नहीं करते हैं, तो कम से कम 2 साल का आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है, जहां पे स्टार्टिंग सैलरी जो है वो 20-25-30 हजार ही होती है, लेकिन एक बार आप अपने आप को इस फील्ड में सेट कर लेते हैं तो फिर जब वो जो आपके पास हैंड्स ऑन नॉलेज आ जाती है, वहां से 2 साल जो आप बिल्कुल प्रैक्टिकल सीखते हैं, क्योंकि कुछ चीजें बुक्स में सिखाई जाती हैं, कुछ चीजें आप एक्सपीरियंस के साथ सीखते हैं, तो वो 2 साल के बाद आपका एक्चुअल करियर ग्रो करना शुरू करता है। तो मेरा सजेशन ये है कि जब आप स्टार्ट करते हैं, ये सिर्फ इस फील्ड के लिए नहीं है, हर फील्ड के लिए है, कि जब आप पढ़ाई खत्म करने के बाद नौकरी ढूंढते हैं, तो पहले दिन ये मत सोचिए कि मेरी 1 लाख रुपया महीना सैलरी हो जाएगी। शुरुआत के 2 साल जो है वो किसी भी फील्ड में सिर्फ और सिर्फ आप सीखने की नीयत से जाइए, आप सीखिए, 2 साल जब आप सीखेंगे, आप सर्टिफिकेशन लीजिए, आप पढ़िए, आप आगे हैंड्स ऑन काम कीजिए और सीखिए, उसके बाद आपका करियर सही ढंग से ग्रो करता है।
1: चलिए अमृतपाल कौर जी, बात ही अच्छी बात आपने बताया, क्योंकि कई बार हम लोग इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं तो कई लोग सोचते हैं कि भाई अपना काम हो गया, अब हमें एक अच्छी नौकरी फटाफट मिल जाए और अच्छा पैकेज मिल जाए, तो अच्छे पैकेज में पैकेज के चक्कर में काफी लोग जो है टाइम वेस्ट कर लेते हैं और फिर उस वजह से भी थोड़ी दिक्कतें हो जाती, तो ऐसा ना करके आप एक्सपीरियंस के लिए जरूर शुरुआत में कम में भी आप जो है छोटी सी छोटी जो पोजीशन है उस पर भी आप अगर करेंगे और फिर आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा और आपका काम देखकर जो है अपने आप ही आपको इम्पोर्टेंस मिलने लगेगा और लोग भी सामने से आपको ऑफर करेंगे। तो बहुत ही अच्छा लगा, पूरी जानकारी आपने दी साइकोलॉजी के बारे में, करियर कैसे कर सकते हैं, अमृतपाल कौर जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में करियर ऑप्शन कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: बड़ा ही प्रतिभावान लड़का था। बचपन से ही इस बच्ची की रुचि विज्ञान विषय में रही।
1: बेटा अबुल, सभी तुम्हारी प्रतिभा की बड़ी तारीफ करते, मैं भी बहुत खुशनसीब हूँ। बेटा हमेशा याद रखना, परेशानियाँ हमें आत्मविश्लेषण का मौका तो देती है, इसलिए उनसे घबराना नहीं बल्कि उनका डटकर मुकाबला करना।
2: जी पिताजी, मैं हमेशा आपकी बात याद रखूंगा और आपको भविष्य में कुछ बनकर दिखाऊंगा।
0: अपने सपनों को साकार करने के लिए अबुल इंजीनियरिंग में दाखिला लेना चाहते थे। वे मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में दाखिला का प्रयास करने लगे। एक दिन बहन जोहरा के घर अबुल कुछ सोच में बैठे थे।
3: अबुल, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? आगे क्या करना है, कुछ सोचा है? क्या हुआ, इस तरह उदास क्यों बैठे हो?
2: मेरा सपना इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करके कुछ कर दिखाने का है। दाखिल के लिए चुने गए लड़कों में मेरा नाम भी है, लेकिन पढ़ाई इतनी खर्चीली है कि पिताजी के पास इतने रुपए होने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता।
3: अबुल, मुझे तुम्हारी प्रतिभा पर पूरा यकीन है, फीस की चिंता ना करो, बस मन लगाकर पढ़ने की तैयारी करो, तुम्हारी बहन है ना।
0: जोहरा ने अपने जेवर बेचकर फीस का इंतजाम किया और अबुल ने भी इस त्याग का पूरा मान रखते हुए अपने लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। पढ़ाई का एक वर्ष पूरा करने के बाद अबुल ने एरोनॉटिकल विषय को चुना। इस दौरान उन्हें विशेषज्ञों का भरपूर सहयोग और ज्ञान मिला। इस प्रेरणा से अबुल भी विषय में गंभीरता से डूबते गए।
4: अबुल, अब हम सभी तुम्हारी मेहनत और लगन से बहुत खुश हैं। अबुल, अब तुम्हें एक बहुत खास काम सौंपा जाएगा। तुम्हें लड़ाकू विमान का डिजाइन तैयार करना है। इस काम को भी पूरी मेहनत और लगन के साथ करना।
0: अबुल पूरे मनोयोग से विमान के डिजाइन तैयार करने में जुट गए। उनका काम थोड़ा धीमा चल रहा था, जिससे उनके प्रोफेसर उन पर नाराज होते हुए भड़क गए।
4: अबुल, ये क्या है, तुम्हारा काम निराशाजनक है। अगर तुमने 3 दिनों के अंदर यह काम पूरा नहीं किया तो तुम्हारी छात्रवृत्ति रोक दी जाएगी।
2: अब 1 माह का काम मुझे 3 दिन में करना ही होगा, अगर छात्रवृत्ति रुक गई तो मुसीबत हो जाएगी।
0: वह दिन रात अपने काम में जुट गए। 3rd दिन उनका काम पूरा होने ही वाला था, तभी उनके प्रोफेसर आ गए, जिन्होंने उन्हें डांटा था।
4: अबुल, तुम वाकई तारीफ के काबिल हो, मुझे पता था कि तुम्हारे अंदर तनाव पैदा हो रहा है और तनाव में तुमसे ये काम नहीं हो सकेगा। भारी तनाव के बाद भी तुमने कम समय में ये काम पूरा करके कमाल कर दिया।
0: कई बार उन्हें असफलताओं का स्वाद भी चखना पड़ा और निराशाएं भी उनके जीवन में आई। यही नहीं, एक बार वायुसेना में नौकरी पाने में वे चूक गए थे, लेकिन पिता की बातों को याद करते हुए वे आगे बढ़ते गए। निराशा में भी आशा का दामन को न छोड़ने वाले अबुल अपने ज्ञान में विस्तार करते गए। विज्ञान की गहराइयों में डूबकर वे देश के कई बड़े बड़े कार्यक्रमों में जुड़े और देश के रक्षा अनुसंधान के लिए कई कार्य किए। भूतकाल में यही अबुल देश के महामहिम राष्ट्रपति थे। इन्हें हम बच्चे कलाम चाचा और मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं और लोग इन्हें APJ अब्दुल कलाम के नाम से संबोधित करते हैं।
5: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
6: गलती तो गलती हुई ना, दूसरे की गलती को अगर पहली बात हमें कोई राइट भी नहीं है, लेकिन दूसरे की गलती को चेक करने का आपको हक तब है जब आप बिल्कुल परफेक्टली राइट पर हैं। आप भी गलती करके दूसरे की गलती को सुधारें तो उसकी दूसरे के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उस चीज का पड़ेगा ही नहीं। एंड इसीलिए हम सब लोग दूसरों को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं, बट इट्स नथिंग इज रियली वर्किंग, इट वोंट वर्क दैट वे, क्योंकि हम खुद वो गलतियां या उससे भी बड़ी गलतियां कर रहे हैं।
5: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज, माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: सो क्यूट,
1: राइट।

0: Davis.
1: Oh, yes! Anthony Gonzalez.
2: लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
3: इतिहास से, भूगोल से,
2: समाज से, संस्कार से,
3: आधुनिकता से और विचार से,
2: खूबियों से भरा अनोखा है मेरा भारत।
3: एक महान राष्ट्र है मेरा भारत,
4: अतुल्य भारत।
2: चलिए आपको बताते हैं
3: भारत की 69 ऐसी विशेषताओं के बारे में
2: जो बनाती हैं भारत को पूरी दुनिया से अलग
3: और प्रदान करती हैं हमें एक गर्वित भारतीय नागरिक होने का हक।
5: क्या आपको पता है कि रामानाथा स्वामी मंदिर, जो कि रामेश्वर का मुख्य आकर्षण है, उसका कॉरिडोर यानी गलियारा विश्व में सबसे लंबा है। ये कॉरिडोर ईस्ट से वेस्ट तक 197 मीटर और नॉर्थ से साउथ तक 133 मीटर चौड़ा है। यहाँ भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग स्थित है। कहते हैं श्री राम ने रावण को हराने के लिए यहाँ पूजा की थी।
3: भारत की विशेषताओं को करते रहिए सलाम।
2: पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो। जय हिंद,
3: जय भारत।
6: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
7: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा, ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया, सबको डांट रहा था। तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा। इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे, वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहाँ और ठीक करने की उंगली भी यहाँ। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं, उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
6: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आफाक और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: जब हम अपनी ये मनुष्य बुद्धि अर्थात स्थूल बुद्धि को, जो कि देखती ही सब कुछ हद का है, जिसकी समझ ही लिमिटेड है, तो जब इस बुद्धि को हम परमात्मा को दिल से समर्पण कर देते हैं कि बाबा अब तू बता कि इस बुद्धि को कैसे यूज करें, तो शिव बाबा फिर इसे दिव्य बनाकर दिव्यता के साथ यूज करता है, जिससे कि फिर हमारा भाग्य भी ऊंचा बन जाता है।
2: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
3: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी, और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माई वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड, मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब आप वो उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर, ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड एंड इट कम्स बैक टू माई माइंड लेटर ऑन। शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी।

हेलो, हिंदुस्तान का मेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ।

0: लड़की। अरे कौन थी वो लड़की?
1: मैंने जब पूछा बोल तेरा नाम क्या, तो हंस के वो बोली नाम से है काम क्या। आई थी वो धमसे, आई थी वो धमसे, गई छम छम छम मन्नू।

0: रहा।
1: झूठ मत बोल।
2: आ नहीं जा रहा।
0: देखो तुम्हारे लाल लाल सिग्नल,
1: सिग्नल को तोड़ दो बात बड़ी सिंपल।
0: देखो पेल बॉटम, गालों पे डिंपल, हल्का सा गालों

से देखो हूँ फागुन में से गाई हो, तेरा दिल करता हो यूं यूं आँख मेरी शर्माई हो, जी आँख मेरी शर्माई हो, फिर देखो।

जितता पर नाच कृष्ण कन्हैया गोपी के संग राज बचावत नाच जावत ताता तैया तई तैया तई तैया गेंद से गेंद गिरी यमुना बिज नित्य कियो कहनागन थैया गोप के इंद चढ़ो बिज ऊपर गोप कर सब हा हा दैया डाय उठाय लियो गिर नक पर बंत बजावत देन चलैया जगके मोहन मन में माए नित्य करत राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा।

0: good morning. Good morning, good morning, oh Papa. Good morning, oh Daddy. Good morning to everybody. Good morning, good morning, good morning, good morning.
1: बेटा
2: यस पापा
1: बरखोरदा
0: यस डैडी
1: अपनी भाषा में बोलो
0: अरे हाँ हाँ आई एम सॉरी
3: नमस्ते नमस्ते ओ पिताजी
4: नमस्ते

कंगाल है पन राजा है दिल का, दिखने में कंगाल है पन राजा है दिल का। हाँ मैं बना देगा तुझे प्यार की मलका, कभी एक रोज आके मेरा झोपड़ा।

फलक पे जितने सितारे हैं वो भी शर्माए ओ देने वाले।